सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:56 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकहिना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जो देता है हमें उजाला आकर नित्य सवेरे, जो देता है हमें उजाली रात लगा कर फेरे, उन सबको हम लोग सारे करते प्यार नमन हैं, चुका सके हम ऋण उनका करते पावन प्रण हैं। प्रातःकाल के इस स्वर्णिम बेला पर आइए भगवान सूर्य को नमन करते हुए उनकी वंदना करते हैं।

सीताराम, इस नाम को ईश्वर का सर्वोच्च नाम माना गया है। इसे जपने से मन को शांति और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। यदि जीवन में सुख, शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त करनी है तो सीताराम जपना ही होगा।

परमात्मा ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है। ये ज्योति सब में है, जीवन एक और ज्योति एक है। सब में ज्योत है सोई, तिस दे जानक सब में जानक हुई।

हे माँ, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज की वंदना में कलाकार थे नितिन मुकेश, असलम वारसी, मनमोहन सिंह, सोनू निगम।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: नीति युक्त काम तो वो कहा जाना चाहिए जो हमारा अपना है, यानी जो हमारी इच्छा से किया गया हो। जब तक हम मशीन के पुर्जे की तरह काम करते हों, तब तक हमारे काम में नीति का प्रवेश नहीं होता। मशीन के पुर्जे की तरह काम करना हमारा फर्ज हो और हम करें तो ये विचार नीति युक्त है, क्योंकि हम उसमें विवेक बुद्धि से काम लेते हैं। ये यांत्रिक काम और वो काम करने का विचार करना, इन दोनों में जो भेद है वो ध्यान में रखने योग्य है। राजा किसी का अपराध माफ कर दे तो उसका ये काम नीति युक्त हो सकता है, पर माफी की चिट्ठी ले जाने वाले चपरासी का राजा के किए हुए नीतिमय कार्य में यांत्रिक भाग है। हाँ, चपरासी ये समझकर चिट्ठी ले जाए कि चिट्ठी ले जाना उसका फर्ज है, तो उसका काम नीति युक्त हो सकता है। जो आदमी अपनी बुद्धि और दिमाग से काम नहीं लेता और जैसे लकड़ी बहती है वैसे प्रवाह में बहता जाता है, वो नीति को कैसे समझेगा। कितनी ही बार मनुष्य रूढ़ी के विरुद्ध होकर परमार्थ करने के इरादे से कर्म करता है। जब तक तुम लोग खुद विचार करना और उसे प्रकट करना नहीं सीख लेते, तब तक मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो इसकी मुझे चिंता नहीं है। ये स्थिति हमें तब तक प्राप्त नहीं होने की जब तक हम ये मानने और अनुभव न करने लगे कि सबका अंतर्यामी ईश्वर हम सबके कार्य का साक्षी है। इस तरह किया हुआ काम स्वतः अच्छा हो इतना ही काफी नहीं है। वो काम हमने अच्छा करने के इरादे से किया हो ये भी जरूरी है। अर्थात कार्य विशेष में नीति होना न होना करने वाले के इरादे पर अवलंबित है। दो आदमियों ने एक ही काम किया हो फिर भी एक काम नीति युक्त माना जा सकता है, दूसरा नीति रहित। जैसे एक आदमी दया से द्रवित होकर गरीबों को खाना देता है, दूसरा मान प्राप्त करने या इस तरह के स्वार्थी विचार से वही काम करता है, दोनों का काम एक ही है, फिर भी पहले का काम नीति युक्त माना जाएगा और दूसरे का नीति रहित। नीति के विषय में विचार करते हुए हमें इतना ही देखना है कि किया हुआ काम शुभ है और शुद्ध हेतु किया गया है, उसके फल पर हमारा बस नहीं, फल देने वाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसे नीति युक्त काम में डर या जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वैसे ही उसमें स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहने में ये हेतु नहीं है कि जिस काम में स्वार्थ हो वो बुरा है, पर उस काम को नीति युक्त कहें तो ये नीति को धब्बा लगाने के समान है। ईमानदारी अच्छी व्यवहार नीति है। ये सोचकर अपनाई हुई ईमानदारी अधिक दिन तक नहीं टिक सकती।
0: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज के इस कार्यक्रम में आधुनिक जीवन शैली और कमर दर्द, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा।
2: स्वास्थ्य संदेश के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, यदि आज के दौर की पुराने दौर से तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि जहाँ पहले कमर दर्द की समस्या बुजुर्गों को भी नहीं होती थी, वहीं आज के दौर में

0: युवा ही नहीं वरन बच्चों को भी कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर हम किसी रोग विशेष को हटा दें तो इसके पीछे अत्यधिक संसाधनों से पूर्ण जीवन शैली, शारीरिक श्रम एवं व्यायाम का अभाव, अनुचित खान पान, कमजोर पाचन तंत्र आदि मुख्य कारण हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे संपूर्ण शरीर का आधार है। यह 33 हड्डियों से बनी होती है जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं। ये कशेरुकाएँ एक दूसरे से लचीले एवं मजबूत लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, जो शरीर के दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ते समय इन कशेरुकाओं को अपने स्थान पर बनाए रखते हैं। दो कशेरुकाओं के बीच गद्दीनुमा तंतु उपास्थ होती हैं और कशेरुकाओं के बीच से ही तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के सभी अंगों तक जाती हैं। ये गद्दियाँ शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करती हैं, जिससे झटकों से ही सुरक्षा नहीं होती बल्कि गतिशीलता के दौरान दो कशेरुकाओं के सतह आपस में रगड़ भी नहीं खाती। इन गद्दियों में एक चिपचिपा चिकना पदार्थ भरा होता है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही तंत्रिकाओं द्वारा हमारा मस्तिष्क संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी जिन्हें जीवन में कभी कमर दर्द ने परेशान न किया हो। कमर दर्द उत्पन्न करने वाले सामान्य कारण इस प्रकार हैं: जीवन में शारीरिक सक्रियता का अभाव। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में प्रचलित कार्यशैली में शारीरिक सक्रियता से कहीं अधिक मानसिक सक्रियता जरूरी हो गई है। अपने और अपने परिवार के जीवन यापन हेतु ज़्यादातर लोग इस कार्यशैली को अपनाने को विवश हैं। अलग से कोई शारीरिक श्रम या व्यायाम तो दूर की बात है, दैनिक जीवन की सक्रियता की उपस्थित भी नगण्य है। परिणामस्वरूप शरीर की मांसपेशियाँ एवं स्नायु कमजोर व शिथिल होने लगे हैं। यही कारण है कि आजकल कमर दुखने की समस्या हर किसी के मुँह से सुनने को मिल जाती है। अत्यधिक शारीरिक वजन अनुचित जीवन शैली और खान पान का ही परिणाम है कि मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिक शारीरिक वजन और व्यायाम का अभाव जहां शरीर की मांसपेशियों और लिगामेंट्स को कमजोर करते हैं, वहीं शरीर की हड्डियों पर भार भी बढ़ाते हैं। पानी की कम मात्रा का सेवन, बहुत से लोग आदतन कम मात्रा में पानी पीते हैं या पीते भी हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के रूप में। रीढ़ की पेशियों, लिगामेंट्स और कशेरुकाओं के बीच पाई जाने वाली गद्दियों में जल की कमी से कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। तेज गति से वाहन चलाना, जिन लोगों का पेशा ऐसा होता है जिसमें फील्ड वर्क अधिक होता है, वे दोपहिया वाहन पर प्रतिदिन कई कई किलोमीटर यात्रा करते हैं। ज़्यादा समय वाहन चलाने और जल्दबाजी में किसी गड्ढे में वाहन जाने से कमर पर जोर पड़ता है और धीरे धीरे कमर दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कमर दर्द से मुक्ति के उपाय, यदि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए, यानी योग, व्यायाम, उचित आहार विहार को अपनी जीवनचर्या में शामिल किया जाए तो कमर दर्द ही नहीं बल्कि कई अन्य शारीरिक समस्याओं से भी बचाव हो जाता है, क्योंकि कमर दर्द की ही तरह कई अन्य रोगों की जड़ अनुचित जीवन शैली और गलत आहार विहार ही होते हैं। सक्रिय दिनचर्या को अपनाएं। यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि यदि मांसपेशियों को लचीला और शक्तिशाली बनाना है तथा हड्डियों के कार्यभार को कम करना है तो अपनी जीवनचर्या में शारीरिक सक्रियता को महत्व देना ही होगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि प्रातःकालीन आहार में खट्टे फल जैसे आंवला, मौसमी, संतरा आदि को शामिल करने से शरीर कब्ज से मुक्त रहता ही है। साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त होने से शरीर की हड्डियाँ शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि हड्डियों के प्रमुख प्रोटीन कोलेजन के निर्माण के लिए विटामिन सी अत्यावश्यक होता है। दिन भर में पानी की उचित मात्रा सही विधि से सेवन करनी चाहिए। सामान्य मौसम में 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें। भोजन के 1 घंटा पहले व 1 घंटा बाद पानी का सेवन कर सकते हैं।
1: आधुनिक जीवन शैली और कमर दर्द, अभी इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा। इसी के साथ स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। संध्या 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे इंग्लैंड में आईसीसी

0: T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से आप तक सुबह जाएंगे। क्रिकेट कमेंट्री आप केवल मीडियम वेव पर सुन सकेंगे। FM पर हमारे विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। मैच संध्या 7:30 से रात्रि 8:45 तक, रात्रि 9:30 से मैच की समाप्ति तक। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। सवेरे 7 आप सुनेंगे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी अंजू अग्रवाल। 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। 102.9 मॉर्निंग हिट्स फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सवेरे 8:45 पर। गौरव भारत देश के ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 9:25 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे करतार सिंह की गौरव गाथा। सुबह 9:30 पर हमारे केंद्र से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जाएगा जिसमें आप समाप्त फरमाएंगे एक चर्चा डिजिटल इंडिया मिशन, साथ ही खेलों में खवातीन में मवाके स्कोप। सामयिन के मनोरंजन के लिए गजल भी सुनवाई जाएगी। सामयिन वक्त याद रखिएगा सुबह 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम के तहत। 10 हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा आपका पत्र मिला। 10:45 पर हम आपको सुनवाएंगे विपिन बिहारी मिश्रा की लिखी झलकी मास्टर जी। दिन में 11 आप सुनेंगे अंजुम रशीद का लिखा नाटक अहले वफा, प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। 11:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन, गीत आपके नाम। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:10 पर। बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम होगा कन्या दिन में 1:15 पर। इसमें चर्चा के अलावा नन्हे बोल कार्यक्रम होगा, साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए बाल गीत भी सुनवाया जाएगा, प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की होगी, सुनहरा दौर। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे 50 के कुछ फिल्मी गीत। शाम दूसरी सभा हमारी आरंभ होगी 5। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कम्पेट कार्यक्रम आज शाम। 5:15 पर युवा दोस्तों का दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी, और शाम 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट कृषि जगत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान का 349वीं भाग संख्या,
1: एपिसोड नंबर 349, 349।

ब्रह्मा तथा दशरथ प्रभु चरणों की वंदना करके सुरलोक के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब स्वयं देवराज इंद्र शोभाधाम शरणागतों को अनंत विश्राम देने वाले जगदीश्वर की स्तुति कर रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान के 349वें भाग संख्या। कलाकार थे जगजीत सिंह, सुरेश वाडकर और साथी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य विंशति दिनांकाद् अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य विंशति दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 7 बजे हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अंजू अग्रवाल।

लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कलाकार हैं अंजू अग्रवाल।

0: अंजू अग्रवाल के गाए इसी लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
3: जय जय बाबा बर्फानी।
4: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
5: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
4: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
5: आपातकाल में साथ निभाए,
4: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए।
5: 112
4: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
5: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
4: यदि चाहिए पुलिस सहायता
5: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
4: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
5: मिटाकर हर सस्पेंस को
4: डायल 112।
5: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
4: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
5: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
4: या फिर भेजें ईमेल

0: शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

0: उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पर लोगों ने मुझे अभिमान दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
0: श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कायम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
3: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को 2-2 पाली और कल 1 पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। ये परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और SDF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
4: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTAT 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:32 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह की ओस, हवाओं का मधुर सा पैगाम, कुदरत की गोद में मिलता है सुकून तमाम। सभी सुनने वालों को सुनील सक्सेना का नमस्कार। प्रातःकाल का समय प्रकृति का सबसे मनोहारी उपहार माना जाता है। उगते सूरज की सुनहरी किरणें, शीतल हवा, पक्षियों की मधुर आवाज मन को नई ऊर्जा से भर देती है। यही कारण है कि सुबह की सैर को स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा है, क्या हमारी सुबहें पहली जैसी हरी भरी रह गई हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं। आज जब हम टहलने निकलते हैं तो कई स्थानों पर पेड़ों की हरियाली की जगह कंक्रीट की ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। खुली हवा की जगह वाहनों का शोर और धुएं का असर महसूस होता है। ऐसे में सुबह की सैर केवल एक शारीरिक गतिविधि बनकर रह जाती है, जबकि उसका सबसे बड़ा आनंद तो प्रकृति के सानिध्य में ही मिलता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सभी अपने आसपास पेड़ों को लगाएं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक पूरे भारत में वृक्षों का त्योहार मनाया जाता है। डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा वर्ष 1950 में शुरू किए गए इस महोत्सव का उद्देश्य आम नागरिकों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, वनों की कटाई से लड़ना और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। वन महोत्सव 2026 इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के हरित आवरण को बढ़ाने, जैव विविधता की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वन महोत्सव सिर्फ वृक्षारोपण का आयोजन नहीं है, ये एक पर्यावरण संबंधी पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। पर्यावरण मंत्रालय हर वर्ष वन महोत्सव के लिए एक विशेष विषय की घोषणा करता है। इस वर्ष का विषय है हरित पहलू के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण। ये महोत्सव वृक्षों, हरियाली और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि वृक्षारोपण और उसका पालन पोषण मात्र एक दिन का कार्य नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम केवल हरियाली की कमी पर चिंता ना करें बल्कि उसके संरक्षण और संवर्धन पर भी संकल्प लें। अपने घर, आसपास के क्षेत्रों, स्कूल कॉलेजों में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। अगर हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो यकीन मानिए तभी हम इस तरीके का गीत भी गुनगुना सकते हैं।

आइए हम सभी ऐसी सुबह का निर्माण करें जहां टहलते हुए हमारी आंखों को हरियाली मिले, सांसों को स्वस्थ हवा और मन को प्रकृति का सुकून। यही स्वस्थ जीवन का मार्ग भी होगा। न केवल यह हमारे लिए स्वस्थ जीवन का मार्ग होगा, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीवधारी के लिए छोटे जीव हों बड़े जीव हों हर एक के लिए पर्यावरण संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। श्रोताओं याद कीजिए जरा गर्मियों की रातों में खेतों बागों और तालाबों के किनारे टिमटिमाने वाले जुगनू कभी ग्रामीण भारत की पहचान हुआ करते थे। बच्चों के लिए वो किसी जादुई दुनिया की चमक थे, लेकिन अब उनकी रोशनी तेजी से मंद पड़ रही है। बरसात की हल्की फुहारों के बीच जब अंधेरा धरती पर उतरता है तब प्रकृति का एक नन्ना सा चमत्कार अपनी रोशनी बिखेरता दिखाई देता था, और वो जुगनू। टिमटिमाती ये प्राकृतिक चमक न केवल आंखों को सुकून देती थी, बल्कि हमें प्रकृति के अद्भुत संतुलन का भी एहसास कराती है। आज 5 जुलाई है और आज पूरे विश्व में विश्व जुगनू दिवस भी मनाया जा रहा है। जुगनू अपनी जैव दीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसिस के कारण पहचाने जाते हैं। ये अपने शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश उन्हें अपने साथी को आकर्षित करने, संवाद स्थापित करने और कुछ हद तक प्रकाश प्रदान करने में सहायता करता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज जुगनुओं की संख्या लगातार घट रही है, जिसका कारण है अनियंत्रित शहरीकरण, वनों की कटाई, रासायनिक कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग और कृत्रिम रोशनी का अत्यधिक फैलाव। उनके अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। यदि समय रहते हमने इन कारणों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां शायद केवल किताबों और चित्रों में ही जुगनुओं को देख पाएंगी। विश्व जुगनू दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का हर छोटा जीव पर्यावरण की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम हरियाली बढ़ाएंगे, अनावश्यक कृत्रिम रोशनी कम करेंगे, रसायनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करेंगे तो जुगनुओं की चकमकाहट फिर से हमारी रातों की सुंदरता बन सकती है। और वैसे भी जुगनू तो बहुत से कामों के लिए भी जाने जाते हैं।

श्रोताओं, इस विश्व जुगनू दिवस पर हम सभी लोग ये संकल्प लें, प्रकृति की इस अनमोल रोशनी को बचाने में हम पूरा अपना योगदान देंगे। और चीज यही है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। श्रोताओं, अब डालते हैं हमारे आसपास के क्षेत्रों में कौन सी वो ऐसी सुर्खियां हैं जो आज अखबारों में छाई हुई हैं। और सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि पिछले दो दिनों से जो बारिश हो रही थी, हालांकि कल से उसका कुछ ब्रेक लगा है। कल पूरे दिन हमारे रामपुर शहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रही, उमस भरी गर्मी थी, और आज भी यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पेपर इसी ओर इशारा कर रहा है कि रविवार को भी आंशिक रूप से हालांकि बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी से निजात नहीं रहेगी, धूप भी खिलेगी। बात करें अगर तापमान की तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 28। जो हमारे आसपास का क्षेत्र है यानी कि मुरादाबाद, इनको भी कोई राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। बस यहाँ पर 1 डिग्री कम यानी कि अधिकतम 35 और न्यूनतम 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अब हमारे वो सामीन जिन्होंने आयुष्मान कार्ड तो बनवा रखा है, लेकिन उनके कार्ड में किसी तरीके की कोई त्रुटि है जन्मतिथि को लेकर के या पते को लेकर के या फिर उनके नाम को लेकर के, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए राहत की खबर यह है कि अब आयुष्मान कार्ड में नाम, जन्मतिथि और स्थायी पते जैसी तकनीकी त्रुटियों का आसानी से संशोधन कराया जा सकेगा। शासन स्तर से जारी नए निर्देशों के जिले में भी प्रक्रिया ये शुरू कर दी गई है और संशोधन का कार्य आयुष्मान सेंटर पर शुरू किया गया है। अब तक कार्ड बन जाने के बाद तकनीकी त्रुटियों को ठीक कराने का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से लाभार्थियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। कई मरीजों को इलाज के दौरान दस्तावेजों में अंतर होने के कारण दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। नए निर्देश लागू होने से ऐसी समस्याओं का समाधान आसान हो जाएगा। जो हमारे ऐसे सामीन जिन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना में शामिल होने का बना रखा है, उनके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने बताया है कि 9 जुलाई को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह होना है। और उन्होंने कहा कि लाभार्थी आधार में फिंगरप्रिंट व फेस अपडेट अवश्य कराने। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि जो उर्वरक विक्रेता हैं अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे अपने संबंधित राजकीय बीज भंडारण अथवा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वो स्टूडेंट, वो छात्र जो कक्षा 10 और 12 में इम्प्रूवमेंट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए यह, और अब उसके लिए जो परीक्षा होनी है वो 28 तारीख को होनी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12 की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 28 जुलाई को दो पालियों में होगी। पहली पाली में कक्षा 10 और दूसरी पाली में कक्षा 12 के परीक्षार्थी शामिल होंगे। वर्ष 2026 की हाईस्कूल व इंटर की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उम्मीदवारों की परीक्षाएं 28 जुलाई को ही होनी है। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से उन्हें वो डाउनलोड

कर सकते हैं। दसवीं की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:45 बजे तक, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगी। इसके लिए हम आपको बता दें कि हमारे रामपुर में ऐसे छात्र जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, उसके लिए राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज को परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। किसी भी देरी से बचने के लिए या किसी भी प्रकार की ये आप अपने परीक्षा केंद्र पर जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, अब है 5 जुलाई और आज के दिन इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। कौन सी हैं वो प्रमुख घटनाएं, आइए आपको बताते हैं। आज ही के दिन यानी कि 5 जुलाई 1658 में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया था। लेबर पार्टी ने 1945 में ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में विजय हासिल की थी, जबकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आज ही के दिन ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में शाही स्वीकृति भी मिल गई थी। बीबीसी ने 1954 में पहला टेलीविजन प्रसारण किया। इसकी अवधि 20 मिनट थी और इसे पहले इसे बनाकर तैयार किया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1954 में हुई थी। भारत की 1968 में पहली पनडुब्बी सोवियत से रूस पहुंची थी। बात करें उन जिनका आज जन्म हुआ, उनमें से प्रमुख हैं प्रसिद्ध रचनाकार असगर वजाहत का जन्म आज ही के दिन 1946 में हुआ था। समकालीन कवि एवं लेखक ज्योति खरे का जन्म भी आज ही के दिन 1956 में हुआ था। अब वो साथी जो हमारी इस दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कह गए, अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवित्री तोरुदत्त का निधन आज ही के दिन वर्ष 1877 में हुआ था। श्रोताओं, ये थी इतिहास से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।

दोस्तों, आज 5 जुलाई के दिन दो राष्ट्रीय दिवस भी हम और मना रहे हैं। एक है कर्मठ दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय वर्कहॉलिक्स डे, यानी कि नेशनल कर्मठ कर्म ही पूजा है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। अगर हमारी उसमें ईमानदारी मेहनत सब शामिल होगी तो मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन नेशनल वर्क हॉलिक्स डे, जो कि हर वर्ष आज ही के दिन 5 जुलाई को मनाया जाता है, ये दिन उन लोगों के लिए समर्पित है जो अत्यधिक कार्य करते हैं और अक्सर अपने स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन की अनदेखी कर देते हैं। वर्क हॉलिक व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे आराम, मानसिक शांति और व्यक्तिगत संबंधों के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि संतुलित जीवन जीना बहुत जरूरी है। लगातार तनावपूर्ण कार्य करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ये दिन हमें सिखाता है कि कार्य के साथ साथ आराम, मनोरंजन और अपनों के साथ समय बिताना भी उतना ही आवश्यक है। बहुत जरूरी है काम ईमानदारी से भी करें, मेहनत से भी करें और थोड़ा थोड़ा काम के दौरान बीच बीच में हल्का फुल्का मनोरंजन भी करते रहें।

बिल्कुल साहब, झूमते भी रहिए, गाते भी रहिए और अपने काम का भी ध्यान रखिए। जो भी काम आपको मिला है उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगल में हो, दुआओं में हमें याद रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की सुनील सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
5: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Uran to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Uran in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Uran scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
6: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture

फिल्म संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। इस समय आप आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत मधुवंती बागची और शाहिद आलिया की आवाज में। फिल्म का नाम है जाट।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये कार्यक्रम की सेवा भी आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गांव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीवी रामजी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी
2: सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को ग्रामीण विकास और आर्थिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मॉडल में ये किस तरह का परिवर्तन ला सकता है, खासतौर पे तब जब इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और मौसमी घटनाओं से जुड़े कामों पर फोकस किया गया है।
3: विगत 12 वर्षों में लगातार मोदी सरकार ने खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाया, जैसे वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर जोर दिया गया। मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जो कोशिश की गई है हाल ही में, भारत देश का विकास तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा, लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है। ये एक गारंटी है रोजगार की, जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन।

0: भी गांव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़ कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी।
1: बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए। तो आपको सर क्या लगता है, जो प्रावधान किए गए हैं उससे ये सोच कैसे पूरी हो सकती है?
0: देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ODOP सेक्टर की क्रियाएं हैं, कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है, तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नई तकनीक में जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए, और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा तो तार्किक तौर पर गांव में एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, भौतिक संपत्तियों का या भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा, तो गांव की तरक्की एक टिकाऊ आधार पर होगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया था कि गांव का विकास तो तभी टिकाऊ आधार पर होगा जब गांव स्तर पर रोजगार और आजीविका के टिकाऊ और गुणवत्ता परक संसाधनों में वृद्धि की जाती है। कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम इस मंतव्य के साथ शुरू की गई है कि गांव का एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पर जिंदगी सुगम हो लोगों की, गरीबों की, जो मजदूर हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो मेरा मानना है कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बढ़ी हुई गांव की क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी, क्योंकि ये जरूरी है कि गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह गांव का जब विकास होगा तो लोगों की जिंदगी में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम होगा, उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिलेंगे, तो इस प्रकार वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्थाएं उनके गांव स्तर की हैं उनसे जुड़कर विकास को और आगे बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग कर सकने की स्थिति में होंगे।
1: बिल्कुल सर, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद इस अधिनियम के जरिए की जा रही है, लेकिन सर मनरेगा की वो कौन सी बड़ी खामियां थीं जिन्हें दूर करते हुए इसे लागू किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये किस तरह का अवसर पैदा करेगा? और सर क्या आपको लगता है इससे गांव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था वो कम होने की संभावना है? बड़ी खामियों की बात करें तो जिस तरह से मनरेगा में हम देख रहे थे, चाहे दिनों की संख्या की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात कर लें या फिर कृषि फसलों के अवकाश की बात कर लें, ये सारी चीजें दूर की गई हैं इस नए अधिनियम में।
0: देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, जो पहले स्कीम चली तो उसमें कुछ खामियां पाई गई, जैसे बड़े पैमाने पर उसमें पारदर्शिता का अभाव था, यही नहीं जवाबदेही का अभाव भी पाया गया, कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, कई तरह से कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, काम जो मजदूरों से होना था उनको मशीनों के जरिए कराया गया, और जो लेखा जोखा होता था उसमें भी जवाबदेही की कई तरह की कमियां पाई गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी वो तो डिमांड ड्रिवन थी, कह सकते हैं लोग मांग करेंगे तब उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम नई शुरू की गई है इसमें सप्लाई की जाएगी या सप्लाई ड्रिवन रोजगार सृजित किए जाएंगे, अर्थात सरकार के स्तर पर ये जो स्कीम लागू की गई है अब पंचायतों को स्थानीय स्तर पर इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के लिए वित्तीय जो

0: प्रबंधन है, वित्तीय जो संसाधन है वो केंद्र सरकार 60% देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेशों को 10% लगाना होगा, बाकी केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यह स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग तीनों को एक साथ लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो गांव की आर्थिक विकास की गति तेज होगी और जो पहले से कह सकते हैं मनरेगा में व्याप्त एक जवाबदेही का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था, एक नई प्रणाली ऐसी उभरेगी जिसमें जवाबदेही होगी, बेहतर कार्यान्वयन होगा और यही नहीं जो स्कीमें लागू की जाएंगी उनका अनुश्रवण भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डैशबोर्ड के जरिए दृष्टांकित किया जाएगा कि कौन सा काम कहाँ कब होना है, किस प्रकार की स्कीमों को तैयार किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक स्कीमें हैं गांव के समग्र विकास के लिए उन स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात है कि इसमें जो प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं यानी जो जलवायु से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उनको भी संबोधित करने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम में एक क्षेत्र दिया गया है, कार्य का क्षेत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जल सुरक्षा हो, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेती हो, मछली पालन हो, भंडारण हो, बाजार हो, कौशल विकास हो, इन सभी को एकीकृत करते हुए गांव की समग्र उन्नति की चेष्टा के लिए ये स्कीम लागू की गई है और इससे गांव स्तर पर तो तरक्की होगी ही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि गांव अब राष्ट्रीय विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने कहा कि गांव भी अब राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकेंगे, तो सर आपसे जानना चाहेंगे इस नए अधिनियम में रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की बात की गई है, ऐसे में कौन कौन से वो विशेष प्रावधान है जो आपको इस नए अधिनियम में विशेष तौर पर प्रभावी लगते हैं?
0: देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में सड़क है, सार्वजनिक भवन है, जैसे स्कूल के निर्माण की बात अगर है, स्वच्छता की विभिन्न सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, सोलर प्रणाली और कह सकते हैं जो नवीकरण ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम, और जो आवासीय योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं और नई स्कीमें आवास की शुरू की जाएंगी उनमें कह सकते हैं मजदूरों को रोजगार देकर एक ओर जहां उन्हें आजीविका के गुणवत्ता पर अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही साथ जो ये बात केंद्र में महत्वपूर्ण होगी या ये कह सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के सृजन द्वारा गांव का विकास होगा और गांव स्तर पर ही कह सकते हैं स्थानीय रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। तो इससे जब पलायन थमेगा तो ये कह सकते हैं कि नगरीय विकास पर भी जो एक दबाव बनता है, गांव से जब मजदूर पलायित होकर नगरों की तरफ आते हैं तो कई प्रकार की नगरीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको भी संबोधित करने में ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम सहायक सिद्ध हो सकती है।
1: सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है, उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है?
0: देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है, साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ओटीओपी का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और उसको और अधिक मजबूती देने में इस स्कीम से मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसको मूर्त रूप देने में भी ये स्कीम काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये स्कीम केवल रोजगार देने की स्कीम नहीं है या आजीविका देने की स्कीम नहीं है, इसमें एक ओर जहां समेक मजदूरी देते हुए मजदूरों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ मजदूर एक जनशक्ति के रूप में राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है या मानवीय पूंजी है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में। तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है कह सकते हैं, ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा, गांवों का आमूलचूल परिवर्तन कर।

0: या मानवीय पूंजी है उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में। तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है कह सकते हैं, ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा, गाँव का आमूलचूल परिवर्तन करते हुए या गाँव की तरक्की को तेज करते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति को भी टिकाऊ बनाना और 2047 तक लक्ष्य को प्राप्त करना विकसित भारत का। वो इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्कीम बहुत कारगर साबित होगी। आवश्यकता इस बात की है कि निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।
1: बिल्कुल सर, आपने विस्तार से बताया कि ये बदलाव केवल रोजगार योजना का विषय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था के व्यापक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सामयिक पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
4: कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सामिन के पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी मेजबान मारिया खुशनूत, सलामी अदब कबूल करें। सामिन, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर जिंदगी की सहूलियात का तस्वुर करना मुश्किल है। ये वो दौर है जहां डिजिटाइजेशन के सबब सब कुछ आसान हो गया है। एक क्लिक पर दुनिया की हर मालूमात हमारे सामने मौजूद होती है। जहां तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बात है, यहां पर डिजिटल इंडिया हिंदुस्तानी हुकूमत का एक अहम मंसूबा है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को बाकायदगी से की गई। इस मिशन का मकसद हिंदुस्तान को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाना, आवाम तक सरकारी स्कीमों को ऑनलाइन पहुंचाना और मुल्क की तरक्की को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फरोग देना है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में हर शोबे, महकमे और इदारे को डिजिटल कर दिया गया है जिससे हमारे काम आसान और तेज हो गए हैं। ऑनलाइन काम होने के सबब हम घर बैठे बिल, फॉर्म, टिकट की लंबी लंबी कतारों से बच जाते हैं। डिजिटल अदायगी के सबब वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। सरकारी खिदमात भी बिना रुकावट जरूरतमंद तक पहुंचती है। साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके भी फराहम हुए हैं। हालांकि डिजिटल इंडिया एक कामयाब मिशन है लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। अभी भी कई इलाकों में इंटरनेट की कमी देखी है, साथ ही जराइम का नया रूप भी देखने को मिला है जिससे साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट भी कहते हैं, यानी इसमें फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। नतीजे के तौर पे कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया मिशन एक जदीद और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की जानिब अहम कदम है, बशर्ते हम इस टेक्नोलॉजी का सही और मजबूत इस्तेमाल करें जिससे हमारा मुल्क मजीद तरक्की की राह पर गामजन हो। सामीन, ये तो बात हुई डिजिटल इंडिया की। आइए अब हम एक अहम मुद्दे या जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं जिसका ताल्लुक खेल के मैदान से और ख्वातीन से है। मौजूदा दौर में जहां ख्वातीन ने हर शोबे में अपनी जहानत और हिम्मत के बलबूते कामयाबी हासिल की है और मर्दों के शाना बशाना इस मुल्क की तरक्की में तावुन किया है, तो खेल के मैदानों में भी कामयाबी के परचम बुलंद किए हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन, टेनिस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती, हर खेल में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इन ख्वातीन खिलाड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है जो हमें फख्र करने के साथ साथ इस बात का एहसास कराती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मैदान कामयाबी से अछूता नहीं है और इसकी जिंदा मिसाल है पीटी उषा, गीता फुगाट, बबीता फुगाट, कर्णम महेश मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, निखत जर्रीन, सविता पूनिया, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, नवनीत कौर, मुमताज खान वगैरह, जिन्होंने खेल को अपने कैरियर के तौर पर चुना, जिससे जाहिर होता है कि ख्वातीन के लिए खेलों में बेहतर स्कोप है, जिससे वो नाम, शोहरत और पैसा सभी हासिल कर सकती हैं। खेलों में महिलाओं के लिए कितना स्कोप है और इसे कैसे कैरियर के तौर पर चुना जा सकता है, इसी सिलसिले में हमने कुछ खिलाड़ी और कोच से बात की है अपने ओबी प्रोग्राम के तहत। तो सुनते हैं ये ओबी प्रोग्राम। इस सिलसिले में सबसे पहले हम बात करेंगे मुरादाबाद मंडल जिला बिजनौर से सीनियर कोच चित्रा चौहान जी से, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खेल के मैदान में कामयाबी हासिल की और एक कोच के तौर पर अपने कैरियर को बनाया। चित्रा जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताएं।
5: मैं चित्रा चौहान, जिला बिजनौर में नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण देती हूँ।
4: चित्रा जी, आपने अपने खेल की शुरुआत कैसे की? इस क्षेत्र में आपके लिए कई चुनौतियां भी आई होंगी और साथ ही आप अपने उपलब्धियों के बारे में भी बताएं।
5: मैंने खेलना शुरू किया था तब लड़कियों को निकाला भी नहीं जाता था, बहुत कम लड़कियां निकलती थी उस समय, निकलती थी लेकिन बहुत कम निकालते थे। मेरे पेरेंट्स भी मेरे को अलाउड नहीं करते थे, पेरेंट्स से बहुत मिन्नतें करके तब हम लोग प्रैक्टिस पे जाते थे। मन लगा कि हाँ प्रैक्टिस करी, उसके बाद रिजल्ट यह आया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हो गया। पूरे मंडल मुरादाबाद से एक अकेली उस समय मैं थी लड़की, मेरे टाइम में मेरे से पहले रजत दी वगैरह गई हुई है हॉस्टल में बिसौर से, और फिर मैंने वहीं प्रैक्टिस करी। मैंने नेशनल सीनियर नेशनल फेडरेशन कप सब खेला वहां से, उसके बाद मैंने फिर पटियाला से एनआईएस किया, फिर मैं कोचिंग लाइन में आई। देखिए जब मैं आपका कोचिंग लाइन में आई हूँ तो उसमें मेरे लड़के भी और लड़कियां भी स्पोर्ट्स हॉस्टल में भी गए, स्पोर्ट्स कॉलेज में भी चयनित हुए हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चल रहे हैं इस समय, उनमें चयनित हुए हैं बच्चे मेरे और नेशनल लेवल तक पहुंचे। यहाँ तक कि मेरा एक लड़का अभी एनी रेलवे में ज्वाइन किया है उसने, और एक इंटरनेशनल टूर भी किया है विक्रांत सिंह ने। ये मेरी उपलब्धियां रही है और मेरे मतलब कि अधिकतर ये है कि मेरे बच्चों में से एक दो हर साल नेशनल लेवल पर जरूर पहुंचता है और कॉलेज हॉस्टल पे।
4: इस वक्त में जो लड़के लड़कियां खेल के मैदान में अपना कैरियर बना रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी जिससे उनके हौसले बुलंद हो और उनके पेरेंट्स भी इस तरफ जागरूक हों?
5: मैं तो यही कहूंगी कि पेरेंट्स अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, बच्चों को मतलब ये देखे समाज की उससे ना देखे दृष्टि से, अपने बच्चों को निकालें और उसको सपोर्ट करें कि हाँ भाई उसको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है, और उसको हमेशा मतलब वो सुविधाएं दें कि जो एक लड़के को दी जाती है वही लड़की को। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां आगे नहीं निकलती, लड़कियां बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट हमारे यहाँ मतलब हिंदुस्तान में बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट है लड़कियों में।
4: चित्रा जी, सरकार इस क्षेत्र में खिलाड़ियों की क्या मदद करती है, क्या उन्हें कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है?
5: उसके लिए ये है, इस समय तो हमारे यहाँ यूपी पुलिस की भी टीम है, यानी रेलवे है, कई सारे मतलब ऐसे विभाग है जिसमें स्पोर्ट्स के तौर पे मिल रही है, नौकरियां भी मिल रही है, यहाँ तक कि हमारा खेल विभाग भी उनको नौकरी दे रहा है। आप अगर मेडल लेके आते हैं तो खेल विभाग भी अपना आरएसओ के पद तक और डिप्टी डायरेक्टर के पद तक उनको नौकरी मिल रही है, लड़की हो या लड़के हो। लेकिन बस यही है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचिए और मेडल लेके आइए। बहुत सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, जो बच्चे नेशनल खेल के आते हैं उन्हें भी स्कॉलरशिप मिलती है, अपने अपने प्रदेश के अनुसार उनको एक अवार्ड भी मिलता है और इंटरनेशनल लेवल पे भारत सरकार भी देती है अवार्ड, उसके साथ साथ धनराशि भी देती है, उनको बहुत सम्मान तरीके से देखा जाता है।
4: चित्रा जी, आप बच्चों को बताएं कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए और क्या टारगेट रखना चाहिए?
5: बहुत कड़ी मेहनत के साथ अपना मतलब अभ्यास करना चाहिए जिस भी क्षेत्र में उसका इच्छा हो, मतलब गेम में ये नहीं कि मैं कहूंगी कि मैं हॉकी की कोच हूं तो वो हॉकी ही खेले, लेकिन वो आए पहले अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपना स्टेडियम में जाए, वहां देखे कि गेम किस तरीके से खेल चलता है, और खेल को चूज करे कि मैं इस गेम को मतलब उसमें रुचि दिखाए। बिना रुचि के कुछ नहीं होता है। जब तक वो अपने मन से नहीं करने का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेयर हो, कोई मतलब लड़की हो या लड़का, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, तन मन से करना ही पड़ेगा अभ्यास उसको।
4: बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी हमसे बात करने के लिए। ये थी सीनियर कोच चित्रा चौहान जी बिजनौर से। आइए सामीन अब रामपुर की एक होनहार बेटी से उनकी कामयाबी की दास्तान सुनते हैं, जिन्होंने खेल के जरिए अपना कैरियर बनाया और जो मौजूदा समय में रेलवे में अपनी खिदमात को अंजाम दे रही हैं। इनका नाम है आरती टमटा। तो सुनते हैं उनकी दास्तान, उनकी जबानी।
6: हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है आरती टमटा और मैं एक हॉकी खिलाड़ी हूँ और इस समय मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जो बरेली में है, बरेली में पोस्टिंग है मेरी, मैं उसमें कार्यरत हूँ रेलवे में। और अभी तक मेरा जो ये सफ़र रहा कि मैं एक खिलाड़ी कैसे बनी और मैं इस मुकाम पे कैसे पहुँची, तो वो अब तक का जो सफ़र था मेरा, पॉजिटिव बातें, निगेटिव बातें, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा और कैसे मैं सक्सेसफुल हुई, कैसे मुझे जॉब मिली, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। सो मैंने एक फोर्थ क्लास की एज में और शुरू किए थी हॉकी खेलना, और हॉकी खेलना मैंने एक छोटा शहर रामपुर, एक छोटा सा ही शहर रहा है, और जिस समय मैं खेलना शुरू करती थी 2004 की बात है, वहाँ उस समय कौन खेलता था, कहाँ इतना कोई ध्यान देता था स्पोर्ट्स वगैरह में, लेकिन मेरे पापा जाया करते थे, पनवड़िया एक जगह थी, वहाँ दूध लेने जाते थे, तो मैं वहाँ उनके साथ जाने लगी थी। मैंने देखा कि यहाँ एक स्टेडियम है, वहाँ पता नहीं लोग क्या खेलते हैं, तो पापा ने मेरी वो चीज़ समझी, उन्होंने कहा कि बच्चे को लग रहा है इंटरेस्ट है, उन्होंने वहाँ कोच से बात करी, फिर मुझे फरहत सर से उन्होंने, सर पापा को मिले, उन्होंने उनसे बात करी जो मेरे पहले गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस मुकाम तक, और आज मैं जो भी हूँ मैं उन्हीं की बलबोते पर हूँ। उन्होंने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता, मुझे खिलाया नहीं होता, मुझे आगे नहीं बढ़ाया होता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो फरहत सर मिले जो भवनपुरी स्टेडियम में कोच के रूप में, हॉकी कोच के रूप में कार्यरत हैं इस समय, और उन्होंने मुझे खेलना शुरू करा। पापा का एक स्ट्रगल रहा, उन्होंने बहुत, फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमें आगे बढ़ाने में, जो मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, पापा ने मेरे बहुत स्ट्रगल किया, मुझे साइकिल से छोड़ने जाते थे, फिर पापा ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, उन्होंने कहा बेटा आपको इस सफर में आगे खुद अकेले बढ़ना है, क्योंकि माँ बाप एक समय तक साथ दे सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको उस सफर में आगे बढ़ते चले जाना है। फिर पापा छोड़ने जाने लगे, फिर मैं खुद जाने लग गई, छोटी सी लड़की अपने आप जाने लग गई, मतलब एक हिम्मत आई जाती है जब माँ बाप का सपोर्ट होता है, भरोसा होता है, तो मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, और स्टेडियम जाने लग गई, खेलने लग गई, बहुत मेहनत करी, और बड़े वैसे स्ट्रगल था कि निखर पहनती है वो लड़की, देखो एक लड़की आती है खेलने, कुछ अजीब से लड़के, कुछ बेकार लोग जो होते हैं जो निगेटिव बातें करते हैं, अरे देखो ये क्या ही करेगी, गाने गाते थे, चिढ़ाते थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, लेकिन मेरे को ये था कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। सर ने मुझे कहा कोई बात नहीं बेटा, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दो, मम्मी पापा को भी मैं आके बताती थी, पापा मम्मी ऐसे बोलते लोग, सबने ये मुझे यही समझाया, कोई बात नहीं बेटा, कोई भी कुछ भी कहता तुम ध्यान ही मत दो, इग्नोर, जितना इग्नोर करोगे अपने बस एम पे ध्यान दो। तो मेरा यही था। फिर मेरा गोरखपुर में मैं ट्रायल देने गई, वहां मेरा सफर स्टार्ट हुआ, एक खेल का जो मेन सफर होता है। फिर मैंने सिक्स क्लास से एडमिशन हुआ, खेलना शुरू किया, मेरे दूसरे गुरु मिले शशि मैम, उन्होंने मुझे बहुत मेहनत कराई, मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ाया, वहां से मैंने स्कूल नेशनल, ग्रामीण नेशनल, ये सब खेला। फिर मैं नाइन्थ क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, मैंने लखनऊ में एडमिशन हुआ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक अलग ही लेवल है, लेवल अप हो जाता है एक स्पोर्ट्स का वहाँ पे जाके। फिर वहाँ से मैंने मेरा सफ़र एक अलग टाइप का शुरू हुआ, वहाँ सीनियर्स मिले, एक नई चीज़ें देखने को मिली, अच्छा भी मिला बुरा भी मिला, कुछ अच्छे सीनियर थे जो बहुत आगे बढ़ाते थे, खूब मेहनत कराते थे, कुछ बुरे थे जो चाहते ही नहीं थे कि आगे बढ़े, लेकिन सब टाइप के लोग होते हैं। तो लेकिन आप अगर मेहनत करते हो तो सब आपका साथ देते हैं, तो इसलिए कभी भी बुरी बातों पे ध्यान नहीं देना है। गलत चीजें बड़ी हमें अट्रैक्ट करती हैं, गलत लाइन पे हमें बड़ी जल्दी जाते हैं कि ये लाइन चुन लो या ऐसा कर लो, शॉर्टकट अपना लो, लेकिन कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, और जितना टफ चीज होगा वो उतनी ही उसकी सक्सेस उतनी ही आगे तक की होगी। तो इसीलिए मेहनत करते रहो, गलत चीज पे मत जाओ, और अपने मम्मी पापा से सारी बातें शेयर करो, ये बहुत बड़ा रोल है। मैं एक हर एक बात अपनी मम्मी से शेयर करती थी, अपने पापा को बताती थी, पापा कि इस लड़के ने मुझे ऐसा कहा या इन्होंने मुझे ऐसा कहा, तो मैं कुछ नहीं छुपाती थी, मैं सब बातें शेयर करती थी। तो फिर मेरा जो सफर था वो शुरू होता गया, और फिर मैं सब जूनियर नेशनल में गई, फिर जूनियर नेशनल में गई, फिर मेडल आने लग गए, फिर सीनियर नेशनल में गई, फिर मैं वहां पे मेरे को दो कोच मिले, मेरी एक मैम थी नीलम मैम और एक रजा सर थे, उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत करी, वो मेरे पे बहुत भरोसा करते थे कि ये बच्चा कुछ ना कुछ आगे बनेगा जरूर। मैं बहुत मेहनत करने लग गई थी, खूब मेहनत करती थी। मेहनत से डर नहीं डरना चाहिए, मेहनत एक ऐसी चीज है ना, कहते हैं ना लोग अरे हम तो बहुत मेहनत करते हैं पर कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं, हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत एक ऐसी चीज है ना जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी ही बनाएगी, चाहे वो आज बना दे चाहे वो 10 साल बाद बने। फिर मेरा मेडल आया, मैं यूनिवर्सिटी में आई, तो मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल आया। उसी साल मैंने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में जाके ट्रायल दिया, स्पोर्ट्स कोटे से वैकेंसी निकली, ओनली बस एक ट्रायल दिया, ट्रायल में बहुत अच्छा खेली, उसमें इतना अच्छा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, किसी को नहीं जानते थे, कोई हम एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, ना ही मेरे पूरे खानदान में कोई प्लेयर था, और मेरे को मतलब हमारा कोई सोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हमें हर चीज की वैल्यू थी कि हमें पैसों की भी वैल्यू हुआ करती थी, मुझे हर एक चीज की वैल्यू थी कि कैसे इतनी हमारे पापा मेहनत करते हैं, कितनी मम्मी मेहनत करती हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, सैक्रिफाइसेस हैं उसके। तो मुझे ये था कि बस मुझे आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है और कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो मैंने अपनी उसी शिद्दत से ट्रायल दिया, खूब मेहनत करी, मेरा वो ट्रायल बहुत बेस्ट था, मेरी लाइफ का बहुत बेस्ट था। और फिर मैं जॉब लगी 2014, तो आज मेरी सर्विस के पूरे 12 इयर्स हो गए हैं, और मुझे भी बड़ा खुशी हो रही है ये बताते हुए। और उसके बाद मैं रेलवे में आई, बहुत अच्छा सफर रहा मेरे पापा के लिए, बहुत अच्छा रहा। मैं रामपुर से एक छोटे से शहर से निकली हुई लड़की और इस मुकाम पे पहुंच गई, पापा का बहुत नाम होता था, फोटो निकलती थी पेपर में, नाम छपता था, मतलब बहुत मेरे पापा को बहुत बहुत अच्छा लगता था कि वो कहीं भी जाते थे तो उनको कहते थे कि इन्हीं की लड़की है ना, वो जो छोटी सी है आरती और उसका हॉकी खेलती है, बताओ आज वो जॉब करने लग गई है। 19 इयर्स में मेरी जॉब लग गई थी, तो इतने शॉर्ट टर्म में जॉब से वे सिर्फ स्पोर्ट्स दे सकता है, और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, एक स्पोर्ट्स ऐसा अचीवमेंट है कि आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे एनर्जी के लिए, हमारी पॉजिटिविटी के लिए, हम डिसिप्लिन के लिए, और हम हमारी सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स एक ऐसा है जिससे हम जल्दी पा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, लेकिन अगर स्पोर्ट्स करो तो पहले ये जान जाओ कि आपको मेहनत तो करनी ही करनी है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स में मत, लेकिन आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हो तो स्पोर्ट्स चुनिए, आगे बढ़िए, खूब सक्सेसफुल बनिए, आपको वो मुकाम जरूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है आज नहीं मिले, कल नहीं मिले, लेकिन वो जल्दी ही मिल जाएगा। फिर मेरे रेलवे में जॉब के बाद मेरे को गीता मैम है हमारी कोच रही, उन्होंने भी हमें बहुत समझाया, बहुत आगे बढ़ाया। फिर मैं इंडियन रेलवेज के कैंप करने लग गई, और फिर मेरा बहुत अच्छा सफर रहा रेलवे में आने के बाद, और आज मैं 12 इयर्स की मेरी सर्विस हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी मेहनत से मत घबराइए और स्पोर्ट्स को चुनो, क्योंकि स्पोर्ट्स में आने के बाद ना आप डिसिप्लिन सीखते हो, आपको टाइम की वैल्यू होती है कि हमें वो 4 बजे उठना है, हमें वो एक जो काम है हमें वो 1 घंटे में पूरा करना है। आपने देखा होगा एक स्पोर्ट्स वाला एक नॉन स्पोर्ट्स वाले में कितना फर्क होता है, वो टाइम टाइम की वैल्यू नहीं करता, लेकिन हमारा क्या है, टाइम की हम पंचुअल होते हैं, वैल्यू होती है हमें टाइम की, और हम फिजिकल फिटनेस से दूर नहीं होते। देखो ये फिटनेस आज मैं खेल नहीं रही हूँ, अब मेरा मैं जो शादी हो गई, मेरा बेटा है 5 ईयर्स का, तो मैं अब खेल नहीं रही हूँ क्योंकि अब मेरा नहीं हो पाया, मतलब मैं नहीं उसको कनेक्ट कर पाई, पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई। और लेकिन ये है कि फिटनेस पे हम अभी भी ध्यान देते हैं, फिट रहते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं। देखो हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर फिट रहोगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि आप स्पोर्ट्स चुनिए, अपने बच्चों को खिलाइए, बॉय है या गर्ल है। और गर्ल्स के लिए तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में अपने पैरों पे खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्ल्स अगर स्पोर्ट्स कर रही है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। एक तो वो पॉजिटिव बनेगी और इंडिपेंडेंट बनेगी, नेगेटिव चीजों से दूर होगी, डिसिप्लिन सीखेगी, तो वो हर जगह सक्सेसफुल है। स्पोर्ट्स की गर्ल्स अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा सिखा सकती हैं, अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा कुछ सिखा सकती हैं, और अपने हस्बैंड, अपनी ससुराल या अपना मायका, वो दोनों को बहुत अच्छा बैलेंस करके चल सकती हैं। तो जॉब, सक्सेस, फैमिली, ये सबसे कनेक्ट है, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें सभी कुछ सिखाता है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाइए, डालिए, मेहनत से मत घरवाइए, और बच्चों को अपने पर विश्वास दिलाओ, बच्चों पे भरोसा करो, और उनको अपने से शेयर करो, एकदम फ्रेंड्स की तरह रहो। तो बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
4: ये थी आरती टमटा, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया, और ये थी उनकी कामयाबी की दास्तान।
7: अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फरत अली खान, जो जिला खेल कार्यालय में कार्यरत हैं और यहाँ पर हॉकी कोच के रूप में अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। फरत साहब, आपके पास बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं हॉकी की, तो आप उनका मुस्तकबिल किस तौर से देखते हैं?
8: देखें, मुझे लगभग 26 साल हो गए यहाँ पर हॉकी की ट्रेनिंग देते हुए, और बहुत से बच्चे और बच्चियाँ जो थे वो आला मुकाम पर पहुँचे। छोटा शहर होने के नाते या कम सुविधाएं होने के नाते थोड़ी सा तकलीफें बच्चों ने झेली, और हम लोगों ने भी दिमागी तकलीफें झेली। जहाँ रह जाता है ख्वातीन की बात कि वो खेलों में किस तरीके से हिस्सा लेती हैं, आज हम बताते चले आपको कि जो हमारी भारतीय, जो हमारी हिंदुस्तानी ख्वातीन हैं, उन्होंने ओलंपिक से लेकर वर्ल्ड कप, एशियाड, कॉमनवेल्थ में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। जहाँ पर हमने देखा है दूसरे खेल के मुकाबले क्रिकेट ने ज्यादा तरक्की की, इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में मर्दों से ज्यादा हमारी ख्वातीन ने तरक्की की। अब बड़ा सर फख्र से बुलंद होता है जब बेटियां तरक्की करती है, बहनें तरक्की करती हैं। इसी अगर मैं लिस्ट में नाम लूं जो बड़े नाम हैं, उसमें सबसे पहला नाम हम पीटी उषा का लेते हैं, जो आज ओलंपिक संघ की बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। पीटी उषा ने ये साबित किया कि एशियाड खेलों में कैसे गोल्ड मेडल जीता जाता है, बहुत हम उन पे फख्र करते हैं। इसके बाद फिर शुरू होता

0: आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, आज आपके पत्रों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री अवधेश कुमार गौतम जी। सर, आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार मनोज, और नमस्कार सभी सम्मानित श्रोता साथियों को। आप सभी का कार्यक्रम आपका पत्र मिला, जो आप ही की प्रतिक्रियाओं पर, आप ही के पत्रों पर आधारित है, आप सभी का स्वागत है। और जल्द ही आपके जो पत्र हैं वो उनका पढ़ने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मनोज जी, सबसे पहला पत्र देखते हैं हमारे किस श्रोता साथी से हमें प्राप्त हुआ है।
0: बिल्कुल सर, ये जो सबसे पहला पत्र हमें मिला है ये हमारे रामपुर के ही श्रोता हैं और बहुत ही डिटेल्स में ये प्रोग्राम्स के बारे में लिख करके हमें भेजते हैं। आज भी जो इनका खत हम तक पहुंचा है ये 20 पेज का खत है और 1 जून से लेकर इन्होंने अब तक के जितने भी प्रोग्राम, यानी कि 30 जून तक के जो प्रोग्राम इन्होंने सुने हैं उन सब के बारे में इसमें लिखा है। सबसे पहले पेज पर इन्होंने आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर जितनी भी प्रस्तुतियां आकाशवाणी रामपुर से की गईं वो सब इनको पसंद आई हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। जैसे कि 1 जून को इन्होंने सुबह सवेरे प्रोग्राम में आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर जो प्रस्तुति थी वो पसंद आई है। और इसके अलावा 2 तारीख को आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर जो सुबह सवेरे में अंकुर राजपूत जी द्वारा प्रस्तुति थी इनको बेहद पसंद आई है, परिवार जगत कार्यक्रम इनको पसंद आया है। इसके अलावा पेज नंबर 2 पर इन्होंने रूपक अभिनंदन आकाशवाणी के 90 साल ये इन्होंने पसंद किया है, और असीम सक्सेना अवधेश कुमार गौतम जी को और साथ में विक्रांत चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई लिख करके भेजी है। पेज नंबर 3 पर इन्होंने सर लिखा है कि प्रोफेसर राजेश कुमार साहब जो राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के हैं, जो जवेरिया इशरत जी ने बातचीत की थी आकाशवाणी के 90 साल पर, वो इनको पसंद आई है। नाटक इनको पसंद आया है जो आकाशवाणी के 90 साल पर विशेष रूप से प्रसारित किया गया था। श्रोता मंच में राजेश सोनी जी से बातचीत इनको अच्छी लगी है। पेज नंबर 4 पर धरोहर के अंतर्गत सुनते सुनाते 90 साल आकाशवाणी के, इस पर कड़ी संख्या 1 इनको बहुत पसंद आई है। इसके अलावा पेज नंबर 5 पर इन्होंने लिखा है कि धरोहर में सुनते सुनाते 90 साल इसकी कड़ी संख्या 3 इनको पसंद आई है, और इसमें जिन भी श्रोताओं को शामिल किया गया था उन सबके इन्होंने नाम भी लिखे हैं और सभी को बधाई भी दी है सुंदर प्रस्तुति के लिए। पेज नंबर 6 पर इन्होंने आकाशवाणी के 90 साल पर विशेष कार्यक्रम की कड़ी संख्या 4 श्री कमल शर्मा साहब से बातचीत इनको अच्छी लगी है, और आगे इन्होंने लिखा है धरोहर कार्यक्रम की कड़ी संख्या 6 को भी इनको पसंद किया है इन्होंने, जिसमें चंद्रिका जोशी जी से बातचीत थी। पेज नंबर 8 पर भी इन्होंने मंजुला नेगी जी से, जो सुबह सवेरे में सुनील सक्सेना जी ने बातचीत की थी, बेहद पसंद आई है। 8 जून को सुबह सवेरे में जीशान वारसी जी के विचार इनको पसंद आए हैं, और इन्होंने एक शिकायत लिखी है पेज नंबर 9 पर कि आंचल कार्यक्रम में जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं मीना जी, वो राम राम नहीं कहती हैं और सीधे कार्यक्रम को प्रस्तुत कर देती हैं। एक और शिकायत इन्होंने लिखी है इशरत जवेरिया जी की कि गीत गाता चल और व्हाट्सएप संदेशों पर जो श्रोता हैं उनके कई बार इन्होंने नाम पढ़े हैं और इनका नाम नहीं पढ़ा गया है। आगे पेज नंबर 10 पर इन्होंने लिखा है कि 15 जून को सुबह सवेरे कार्यक्रम जो रेणु यादव जी ने प्रस्तुत किया था इनको पसंद आया है, विविधा में रक्तदान और आमजन ये वार्ता इनको पसंद आई है, रामचरितमानस गान इनको अच्छा लगा है, उपशास्त्रीय संगीत जो 16 जून को 9:50 पर प्रस्तुत किया गया था ये इनको पसंद आया है। इस तरीके से इन्होंने 17, 18, 19 जून के कार्यक्रमों को पसंद किया है। शिकायत फिर से इन्होंने लिखी है कि हेलो रामपुर कार्यक्रम जो रात में 10 बजे प्रसारित किया जा रहा था, इसमें 5 कॉलों पर बात हुई, पहली कॉल और चौथी कॉल में एक ही श्रोता ने फ़ोन किया, उनका नाम भी इन्होंने लिखा है। और आगे आपने पेज नंबर 12 पर योग आग्रह सबका साथ सबका विश्वास जो 2:30 पर 21 जून को प्रसारित किया गया था ये इनको पसंद आया, सभी प्रतिभागियों के इन्होंने नाम भी लिखे हैं। और एक और शिकायत इन्होंने लिखी है कि आकाशवाणी रामपुर के एक अनाउंसर हैं उनका नाम नहीं बताया, योग दिवस पर सभी को इन्होंने शुभकामनाएं भी प्रस्तुत की हैं। पेज नंबर 13 पर इन्होंने एक और प्रस्तुति को पसंद किया है, आसपास, जिसमें सर विक्रांत चौधरी साहब को इन्होंने बधाई दी है। शिकायत फिर से इन्होंने लिखी है पेज नंबर 13 पर कि 1:05 पर कार्यक्रमों का विवरण नहीं बताया गया और खेद भी नहीं व्यक्त किया गया। और 21 जून को ही 5 युववाणी कार्यक्रम में सह प्रस्तुति मेघा ठाकुर और मैडम शरीन खान जी की में इनको कार्यक्रम पसंद आया है और प्रस्तुतकर्ता अवधेश कुमार गौतम साहब को बधाई भेजी है। आगे इन्होंने लिखा है 7:23 को कानून और हम कार्यक्रम में इन्होंने श्री गौतम सिंह गंगवार जी से अवधेश कुमार गौतम जी की बातचीत पसंद की है। कवि गोष्ठी इसी दिन की इनको पसंद आई है। शिकायतें इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। दिनांक 23 का गीत गाता चल में इनका नाम शामिल नहीं किया गया। यही शिकायत 24 के प्रोग्राम की भी है कि इनका नाम शामिल नहीं किया गया। और आगे आप लिखते हैं पेज नंबर 15 पर जो
1: दिल ढूंढता है कार्यक्रम के बारे में,
0: दिल ढूंढता है कार्यक्रम के बारे में लिखा है और जिन जिन श्रोताओं के उसमें खत शामिल हुए थे उन सब के बारे में भी इन्होंने लिखा है और यहाँ तक कि उनका पता भी लिख करके इन्होंने भेजा है। आगे आपको पेज नंबर 16 पर इन्होंने दिल ढूंढता है कार्यक्रम के बारे में ही लिखा है और लिखा है कि इतने बढ़ चढ़ कर श्रोताओं ने पत्र भेजे, कुल 17 श्रोताओं की भागीदारी रही, सभी का प्यार इसने देखकर इन्हें अच्छा लगा है। आगे उर्दू प्रोग्राम जो 9:30 पर 26 को प्रसारित किया गया था वो इनको पसंद आया है। फरीदुल्ला खान साहब और मैडम शिवा नूर जी को इन्होंने बधाई प्रेषित की है। आगे पेज नंबर 17 पर इन्होंने शिकायत ही लिखी है, सारी शिकायत लिखी है, सभी अनाउंसर्स के नाम लिखे हैं, अगर सर आप कहें तो मैं शिकायतों
1: बिल्कुल बिल्कुल मनोज शिकायतें जो हैं वो सबसे पहले स्थान पर हैं।
0: ये पहली शिकायत अपर्णा जी की है जो 7:20 पर व्हाट्सएप किया था, इनका नाम शामिल नहीं किया गया। अखिलेश सक्सेना जी की भी यही शिकायत है, मैडम रेणु तिवारी जी से भी यही शिकायत है और एक शिकायत इन्होंने नव्या अग्रवाल और स्वास्तिक मिश्रा साहब की भी की है जो युववाणी कार्यक्रम की है कि भाई रफत साहब का नाम 2 शामिल किया गया, बहुत से कंपेयर कुछ श्रोताओं से सहानुभूति रखते हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। आगे इन्होंने रिजवान साहब की भी शिकायत लिख करके भेजी है कि 1 WhatsApp 2 स्थानों के नाम पर पते से शामिल किए गए हैं, यही इनकी शिकायत है। और आगे भी अगला पेज जो पेज नंबर 18 है इसमें भी शिकायतों का सिलसिला है जिसमें मैडम शरीन खान और असरार मियां साहब की है जिन्होंने भाई रफत साहब का नाम 2 लिया। रिजवान साहब से फिर से शिकायत इन्होंने की है कि ईमेल पर आधारित जो कार्यक्रम था उसमें नबी हसन अब्बासी जिला एटा और शारून अंसारी बरेली और आकाशवाणी आकाश रस्तोगी जो मीठा कुआं रामपुर के श्रोता हैं इनके नाम 2 बोले हैं। और आकांक्षा सक्सेना जी की भी शिकायत इन्होंने लिखी है, यही शिकायत है इनकी कि नाम को बार बार पढ़ा जाता है। और भी नाम हैं सर इस शिकायत की फहरिस्त में। आगे इन्होंने पेज नंबर 20 पर सभी कार्यक्रमों को पसंद किया है और खास तौर से आकाशवाणी के 90 सालों पर जो विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे उन सभी को आभार व्यक्त किया है इन्होंने। और सर विक्रांत चौधरी साहब, सर अवधेश कुमार गौतम साहब और सर असीम सक्सेना साहब, आप सबकी देखरेख में आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, हमारी दुआ है कि आकाशवाणी रामपुर हमेशा की तरह तरक्की करता रहे।
1: बिल्कुल, आपकी दुआएं, आपका स्नेह और जो आपका जो साथ है आकाशवाणी रामपुर के साथ।
0: सर इससे पहले आप इनके खत का जवाब दें, इनके कुछ साथी भी हैं, इरफान खां PWD वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शिवा, इमरान खां, इकराम खां, रेहान खां, समीना, आसिफा और शबीना, ये हमारे श्रोता हैं थाना 3 ऊंची मस्जिद रामपुर से।
1: हमारे नियमित श्रोता, बेहद ही सतर्क श्रोता, और अपनी प्रतिक्रिया नियमित रूप से हम तक पहुंचाते हैं, वो चाहे शिकायत हो चाहे कार्यक्रमों की सराहना हो, वो हर कार्यक्रम को लगभग देखते हैं और हर कार्यक्रम की जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में जानकारी जो होती है उनके रंगीन हस्तलिखित पत्र के माध्यम से हमें हर महीने प्राप्त होती है और इस प्रकार इस बार भी उनका पत्र हम तक पहुँचा है। आप हैं इरफान खान जी और आपकी सबसे खास बात है कि आप प्रोग्राम अच्छा होता है तो अच्छा लिखते हैं, अपने जैसे भी आपको महसूस होता है आप पूरी तरीके से आप अपने पत्र में वो सब कुछ लिख के हम तक भेजते हैं। रही बात शिकायतों की, तो इसमें दो प्रकार की शिकायत

0: एक से ज़्यादा बार कार्यक्रमों में शामिल किए जा रहे हैं। सबसे पहले इस ओर चर्चा करते हैं, और आकाशवाणी का जो 90 सालों का जो पड़ाव है, जो आकाशवाणी ने इस ऐतिहासिक माइलस्टोन को अचीव किया है, वो उसमें सब में आप सबका, आप सभी श्रोता साथियों का साथ रहा है, और उसी के साथ ही आकाशवाणी इस लेवल पर पहुंचा है। इस आज 8 जून को उसने 90 साल अपने पूरे किए, तो ये कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से आप लोगों के साथ की वजह से संभव हो पाया है। और इसी साथ का हवाला देते हुए मैं आप सभी श्रोता साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो 2 बार नाम पढ़ने की जो स्थिति है, वो हमारे अनाउंसर्स के लिए भी लाइव प्रोग्राम एक चैलेंजिंग प्रोग्राम बन जाता है। तो हमारे अनाउंसर्स की भी, आपको भी समझें कि किस प्रकार वो आप सबके नामों को शामिल करने की कोशिश में रहते हैं, और आप सबके साथ की वजह से ही कार्यक्रम सफल बनता है। तो अगर आपके तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप अगर 2 बार या 3 बार अपने लेटर्स या कमेंट्स या फिर फ़ोन कॉल्स लगाएंगे, तो शायद ये कार्यक्रम के लिए और बाकी श्रोता साथियों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जैसे कि इरफान खान साहब की चिट्ठी में ये सब कुछ परिलक्षित होता भी है। तो सभी श्रोता साथियों के साथ से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पहले तो वो अपना एक ही जवाब भेजें, एक ही कमेंट भेजें, एक ही लेटर, ईमेल और एक ही फ़ोन कॉल करें। दूसरी बात, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि दो दो बार किसी के नाम ना हो, और किसी के नाम अगर छूट रहा है तो पूरी तरीके से शामिल हो पाए। इरफान खान साहब, आपने सारे प्रोग्राम्स का को सुना, आकाशवाणी को अपना इतने सालों से, अपने जीवन के इतने समय से आपने अपना साथ दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत पत्र को लिखने के लिए। अब मनोज, अगली चिट्ठी पर रुख करते हैं।
1: बिल्कुल सर, अगली जो चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं गांधी समाधि रोड रामपुर से, हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान और इनके परिवार वाले। लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। 28 जून आपका पत्र मिला कि महफिल सजाई। हमारे हर दिल अजीज असीम सक्सेना और मनोज कुमार जी ने बेहतरीन अंदाज में पत्र पढ़े। असीम सक्सेना जी ने पत्रों के शानदार अंदाज में जवाब दिए। अच्छा लगा आसपास मन की बात गीत आपके नाम, बच्चों का कार्यक्रम कलियां, ये सभी इनको पसंद आए हैं। 29 जून को सुनील सक्सेना जी का आपके अनुरोध पर बेहद पसंद आया। रिजवान जी का गीत आपके नाम अच्छा लगा। आंचल प्रोग्राम इनको पसंद आया है। आकांक्षा सक्सेना ने हेलो रामपुर शानदार किया। 30 जून को शैजी आगा का सुबह सवेरे, प्रीति दिवाकर जी का शब्दावलियों का प्रोग्राम मन भावन, ये इनको पसंद आया है। परिवार जगत कार्यक्रम इनको अच्छा लगता है। 1 जुलाई को रेणु तिवारी जी का आपके अनुरोध पर सुनहरा दौर धारावाहिक, ये सभी प्रोग्राम इनको पसंद आए हैं। इसके अलावा कुमकुम कार्यक्रम इनको पसंद आया। शाजिया परवीन जी का गीत गाथा चल, गीतांजलि शानदार और अच्छा लगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम बेहद पसंद आया है। 2 जुलाई को आकांक्षा सक्सेना जी का सुबह सवेरे धारावाहिक नाटक पापा मैं तारा बन गई, इनको बेहद अच्छा लगा है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शैजी आगा जी का गीत गाथा चल अच्छा लगा है। 3 जुलाई को रेणु तिवारी जी का सुबह सवेरे, नवाब अंजुम साहिबा का और आयशा राहत जी का उर्दू प्रोग्राम नाटक ख्वाबों के पंख पसंद आया है। शाजिया परवीन जी का गीत आपके नाम इनको अच्छा लगा है। नाते कव्वाली प्रोग्राम भी इनको पसंद आया। अखिलेश सक्सेना जी ने हेलो रामपुर शानदार किया है। 4 जुलाई को सुबह सवेरे कार्यक्रम इनको बेहद ही पसंद आया। फिर नाटक इनको अच्छा लगा है, हरजाई बेहद खूबसूरत था। रेणु तिवारी जी का हेलो फरमाइश इनको अच्छा लगा है। और श्रोता मंच में असीम सक्सेना जी की जो बातचीत थी नवाबुद्दीन भाई से, वो इनको बेहद पसंद आई है। मनोज कुमार जी का आज शाम अच्छा लगा है और झलकी मेहमान भगाने की मशीन, ये सुनना चाहते हैं।
0: गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, साथ में है रजिया खान और सिमरन खान जी। आपकी तरफ से हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है। आप ही हमारे बहुत पुराने और नियमित श्रोता हैं। नियमित रूप से आपकी चिट्ठियां और आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती हैं। आज ईमेल के माध्यम से आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने रामपुर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले काफ़ी कार्यक्रमों की जानकारी आपने इस अपने पत्र में मेंशन की है, और आपको वो कार्यक्रम काफ़ी पसंद आए हैं। आपको पापा में तारा बन गई जो नाटक काफ़ी पसंद आया है। श्रोता मंच के अंतर्गत असीम सक्सेना जी ने जो स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता नवाबुद्दीन जी से जो उनकी बातचीत थी, वो आपको काफ़ी पसंद आई है। झलकी के बारे में आपने सुनना चाहा है, मेहमान भगाने की मशीन, तो बिल्कुल इस फरमाइश को ज़रूर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आपकी चिट्ठी हमारे लिए एक मार्गदर्शन की तरह होती है। स्पष्ट शब्दों में आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक प्राप्त

0: हैं। आपकी चिट्ठी आज उसी स्टाइल में हम तक पहुंची है। आप रामपुर आकाशवाणी के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और आगे भी यही कामना रहेगी कि आपका और आकाशवाणी रामपुर का ये साथ हमेशा बना रहेगा।
1: बिल्कुल। और सर, ये जो चिट्ठी हमें अगली प्राप्त हुई है, ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार वाले। ये लिखते हैं कि सर, कार्यक्रम आपका पत्र मिला, पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। आकाशवाणी रामपुर केंद्र से सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। 28 जून का आपका पत्र मिला प्रोग्राम सुना, जिसमें ईमेल पढ़ने का अंदाज व जवाब देने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगा। आगे 29 जून का हेलो रामपुर इनको पसंद आया है। 30 जून का मन भावन सुना, बेहद पसंद आया। 1 जुलाई का गीत आपके नाम सुना, बहुत अच्छा लगा। 2 जुलाई का मन भावन सुना, श्रोताओं की शब्दावलियों का पढ़ने का अंदाज और गीतों का चयन बहुत ही अच्छा रहा। 3 जुलाई को हेलो रामपुर सुना, जिसे पेश किया था अखिलेश सक्सेना जी ने, प्रोग्राम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। 4 जुलाई का गीत आपके नाम, हेलो फरमाइश, ये दोनों ही प्रोग्राम इनको पसंद आए हैं। इसी दिन का श्रोता मंच असीम सक्सेना जी की जो बातचीत थी नवाबुद्दीन जी से, बहुत ही अच्छी लगी है। अन्य प्रोग्राम भी सुने हैं, कृषि जगत, उर्दू प्रोग्राम, परिवार जगत, गीतांजलि, गीत गाता चल, ये सारे ही कार्यक्रम इन्हें अच्छे लग रहे हैं। एक बात कहना चाहते हैं ये कि गीत आपके नाम प्रोग्राम में ईमेल पर आधारित है और गीत गाता चल व्हाट्सएप पर आधारित है। श्रोता ईमेल करते हैं और व्हाट्सएप करते हैं, दोनों ही प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में ईमेल और दूसरे में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। कुछ लिखते हैं और कहते हैं कि हमारा ईमेल शामिल नहीं किया, हमारा व्हाट्सएप मैसेज शामिल नहीं किया। हर श्रोता का ईमेल या मैसेज हर रोज़ शामिल नहीं किया जा सकता, चाहे आप प्रोग्राम पेश करके देख लें। तो मेरी नज़र में आगे ये लिखते हैं,
0: मेरी नज़र में यह कोई शिकायत नहीं है, सभी श्रोता समझदार हैं और सब कुछ जानते हैं।
1: और फोन इन प्रोग्राम में जब कॉल लगाते हैं तो घंटी बराबर जाती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। हमें तो मालूम है कि रिंग वहां पर नहीं जा रही, अगर जाती तो कॉल रिसीव जरूर होती है।

0: हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि कभी हमारा फोन अनअटेंडेड नहीं रहता, किसी न किसी श्रोता से हमारी कॉल कनेक्टेड रहती ही है। तो ऐसे केस में तो घंटी जाना जब कॉल कनेक्टेड है और घंटी रिसीव करना, ये एक जो हमारा संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी है उसकी तरफ से एक ग्लिच है, जिसके संबंध में उनके अधिकारियों से चर्चा जारी है। आपने इस दिक्कत को समझा है और साथ में आप ये भी कहते हैं कि हर श्रोता का हर दिन जो नाम है वो शामिल नहीं हो सकता, ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। लेकिन बावजूद इसके कोशिश पूरी की जाती है कि हर श्रोता जिसका नाम हम तक पहुंचे, जिसका पत्र हम तक पहुंचे, जिसका ईमेल, जिसकी फ़ोन कॉल, जिसका व्हाट्सएप हम तक पहुँचे, सबके नाम ज़रूर कार्यक्रम में शामिल हो, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। सिद्दीकी साहब, आपने बहुत ही अच्छा पत्र भेजा, काफ़ी खुशी हुई कि आपने अनाउंसर के एंगल से ये पत्र लिखकर हम तक भेजा है। कार्यक्रमों को आपने सुना, उनकी सराहना भी हम तक आपने लिखकर भेजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आगे भी आपके आपके साथ ये पत्रों को पढ़ने का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे, ऐसी हमारी उम्मीद है।
1: और सर, जैसे कि पिछले पत्र में भी जिक्र हुआ था कि एक ही श्रोता का दो दो बार नाम शामिल किया जा रहा, तो उसके पीछे का कारण एक ये भी है क्योंकि श्रोता एक ही श्रोता कई कई नंबर से और अलग अलग ईमेल से नाम भेजते हैं, तो फिर डबल होने का, नाम डबल पढ़ने का जो सिलसिला है वो हो
0: कभी
1: जाता है।
0: कभी मनोज ऐसा भी होता है कि ऐसा ना हो कि किसी ऑथेंटिक श्रोता का नाम रह जाए, इस वजह से भी एहतियातन तौर पर भी ये ऐसा किया जाता होगा अनाउंसर के द्वारा कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले कहीं रह तो नहीं गया,
1: बिल्कुल
0: उसको उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो एक कंप्यूटर मशीन की तरह तो नहीं हो सकता कि वो खटाक से उसको याद रहे कि वो ये हो चुका है या नहीं हो चुका, वो जिस स्टेट में होता है उस स्टेट में वो कार्यक्रम को अंजाम देता है और आप तक पहुँचाता है। तो ये प्रैक्टिकल कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं, इन समस्याओं को हम कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो आपका साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो ज़रूर इन समस्याओं से हम निजात इनसे इनका समाधान कर पाएंगे, और आपका साथ हमें ज़रूर चाहिए होगा।
1: बिल्कुल। और ये जो अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें रामपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 28 जून का आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें मनोज जी ने खतों को पढ़ा और असीम भाई ने खूबसूरत अंदाज में पत्रों के जवाब दिए। तीसरी आवाज़ की भी थोड़ी सी झलक सुनने को मिली, वो भी अच्छी लगी। गीत आपके नाम, गीत गाता चल मन भावन के अलावा इन्होंने 3 जुलाई को लोक मंजरी कार्यक्रम सुना, उसमें फरमाइश मंगाने के लिए जो नंबर बताया गया था वो, क्या इस नंबर पर फरमाइशें भेजी जा सकती हैं आप?

0: बेहतरीन और प्रेरणादायक बातचीत सुनी, बहुत अच्छी लगी। मुझे कुछ कहना है, कार्यक्रम हो सके तो शुरू कर दें, आपकी मेहरबानी होगी।
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्राल हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम इसमें वर्णित नहीं है। आपकी तरफ से ये पत्र प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मुख्य बात पर आते हैं, जो आपने अपने पत्र में इंगित की है वो है कि फरमाइशी गानों के लिए जो PNT नंबर है वो फरमाइश मंगाने के लिए PNT नंबर का अनाउंसमेंट किया गया। हम इस अगर ये बात वैसी की वैसी है तो हाँ, ये एक प्रेजेंटर की तरफ से एक त्रुटि मानी जा सकती है, लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो हमारा PNT नंबर है फ़ोन कॉल्स के लिए अवेलेबल है और फ़ोन कॉल्स पर आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। बाकी अनाउंसर्स से भी इस पर चर्चा की जाएगी और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम के लिए हमारे पास व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है, ईमेल प्लेटफॉर्म है, तो संबंधित जो नंबर्स हैं, संबंधित जो ईमेल्स हैं वो अनाउंसमेंट्स के दौरान आप तक पहुंचाए जाते हैं। बीच बीच में अनाउंसमेंट्स के द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है। आपने इस संबंध में अपने पत्र के माध्यम से इस ओर इशारा किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में ज़रूर कोशिशें की जाएंगी कि ऐसा ना हो। और आपने कहा रामपुर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना, सुनकर अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक भेजी, कार्यक्रमों को आपने पसंद भी किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार इसी वादे के साथ कि आगे भी आपके पत्र इसी प्रकार हम तक पहुंचते रहेंगे और पत्रों को पढ़ने का सिलसिला आकाशवाणी के साथ आपका साथ हमेशा बना रहेगा।
0: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कोसर। लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप असीम जी, विक्रांत जी और अवधेश जी, और साथ में कार्यक्रम पेश करने वालों को भी इन्होंने सलाम भेजा है। आगे आप लिखते हैं कि ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद आते हैं। 4 जुलाई का आपके अनुरोध पर जो शाजिया परवीन जी ने पेश किया बेहद ही पसंद आया, रेणु तिवारी जी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था गीत आपके नाम, ये इनको पसंद आया है। इसके अलावा 3 जुलाई का आपके अनुरोध पर जो रेणु तिवारी जी ने पेश किया ये इनको पसंद आया, गीत गाता गीत आपके नाम शाजिया परवीन जी का अच्छा लगा है इन्होंने। इसके अलावा अखिलेश सक्सेना जी का गीत गाता चल अच्छा लगा है। 2 जुलाई का आपके अनुरोध पर जो आकांक्षा सक्सेना जी ने प्रस्तुत किया था बेहद ही पसंद आया है। 1 जुलाई का आपके अनुरोध पर जो रेणु तिवारी जी ने पेश किया बेहद पसंद आया है, गीत आपके नाम भी अच्छा लगा है, गीत गाता चल कार्यक्रम इनको पसंद आया है। आपका पत्र मिला में विक्रांत जी और अवधेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं, हम उनको भी आपका पत्र मिला में सुनना चाहते हैं, धन्यवाद।
1: तो अवधेश कुमार गौतम आज आपका पत्र अटेंड करने के लिए हाजिर हैं और विक्रांत जी भी जल्द ही आपके पत्रों को पढ़ने के लिए पत्र मिला कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होंगे। ये हमारे हैं एक बहुत ही पुराने युवा साथी हैं, मोहम्मद वकार फरीदी और मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से इनका पत्र हमें प्राप्त हुआ है। साथ में है मोहम्मद इकबाल फरीदी और भी इनके साथी हैं। हमेशा की तरह जैसा आपका स्टाइल है आपने पत्र हमें भेजा है। सबसे मुख्य जो आपके पत्र में बातें रहती हैं वो फरमाइशी प्रोग्राम और फिल्मी जो सॉन्ग्स हैं उन पर आधारित जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके संबंध में आपके प्रतिक्रियाएं बड़ी सटीक रहती हैं और साथ के साथ आप प्रेजेंटर्स के भी नाम हम तक लिखकर पहुंचाते हैं जो आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं। मोहम्मद वकार फरीदी जी, आपने हमारे रामपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को पसंद किया और नियमित रूप से एक सशक्त श्रोता के तरह आपने हम तक अपना पत्र पहुंचाया और हर कार्यक्रम जो भी है एक पत्रों पर आधारित होता है उसमें आपके प्रतिक्रियाएं नियमित रूप से मिलती हैं, तो इस साथ के लिए आपका विशेष आभार, विशेष धन्यवाद और आगे भी आप और सभी हमारे श्रोता साथियों का साथ इसी प्रकार आकाशवाणी रामपुर के साथ बना रहेगा, इसी कामना के साथ हम सभी श्रोता साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। अगली चिट्ठी हमारी किस श्रोता साथी के साथ की तरफ से प्राप्त हुई है?
0: ये अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन और सिद्दीकी। लिखते हैं कि हम आकाशवाणी रामपुर के पुराने नियमित श्रोता हैं, आपके यहाँ से पेश किए जाने वाले सभी प्रोग्राम बहुत ही पसंद आते हैं, जैसे कि आपका पत्र मिला, मन भावन, सुबह सवेरे, आपके अनुरोध पर गीत आपके नाम, गीत गाता चल, श्रोता मंच और ग्रामीण जगत, ग्राम जगत, ये सारे कार्यक्रम इन्होंने सुने हैं, सभी पसंद आए हैं। आपके अनुरोध पर जिसको पेश किया था सुनील सक्सेना जी ने, गीत गाता चल सुना जिसको रेणु तिवारी जी ने प्रस्तुत किया था, इनको पसंद आया है। आगे आप लिखते हैं कि आपके अनुरोध पर कार्यक्रम जो अखिलेश सक्सेना जी ने प्रस्तुत किया था ये इनको पसंद आया है।

0: गीत गाता चल कार्यक्रम भी इनको अच्छा लगा है। आगे आप लिखते हैं कि गीत गाता चल कार्यक्रम जो मनोज कुमार जी ने प्रस्तुत किया ये भी इनको बेहद पसंद आया है, और इन्होंने सभी को दिल से शुक्रिया लिखा है। श्रोता मंच कार्यक्रम में जो नवाबुद्दीन भाई से असीम सक्सेना जी की बातचीत थी बेहद इनको अच्छी लगी है। आकाशवाणी रामपुर का इन्होंने दिल से शुक्रिया कहा है, और इस सप्ताह के कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत थे, सभी मनोरंजन पूर्ण थे, और सभी को दिल से इन्होंने शुक्रिया लिखा है।
1: और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया रियासत हुसैन सिद्दीकी जी आपका भी इस पत्र को भेजने के लिए। आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ है जसपुर उत्तराखंड से, और साथ में आपके हैं नाज़मा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी और रिफाकत हुसैन सिद्दीकी जी। आपने अपने पूरे परिवार अपने साथियों के साथ रामपुर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना, और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया भी बड़े खूबसूरत अंदाज में हम तक पहुंचाई। विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र अपने पत्र में आपने किया है, और प्रेजेंटर्स का भी आपने जिक्र किया है। उन सभी प्रेजेंटर्स को जिनकी प्रस्तुतियां आपको पसंद आई हैं, आपने उनका नाम अपने पत्र में वर्णित किया है, उन सभी को बधाइयाँ, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आभार रामपुर आकाशवाणी के साथ रहने के लिए, और रामपुर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। भविष्य में ये आशा करते हैं कि ये सिलसिला और प्रगाढ़ होगा और यूं ही चलता रहेगा।
0: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं रामपुर से नवाबुद्दीन साहब। लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों की खिदमत में आदाबो तस्लीमात। गुलाब अच्छा है, सागर अच्छा है या जाम अच्छा है, हमारी समातों के लिए तुम्हारा हर कलाम अच्छा है। जी हाँ, आज फिर तुम्हारे रूबरू होकर कलम के जरिए कलाम करने का मौका फराम हुआ। उम्मीद है कि आज फिर दिले बेकरार को तुमसे हम कलाम होकर कुछ करार मिलेगा। एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे, ये कैसा शहर तुम्हारी आप शीरी में है जो समाते हमेशा तुम्हारी मुंतजिर रहती हैं। दिल की चाहत भी यही होती है कि काश किसी न किसी बहाने मुलाकात हो जाए। सबसे अहम बात यह है कि जिसके लिए विक्रांत सर को शुक्रिया बार बार करने को दिल करता है कि आकाशवाणी रामपुर के लिसनर्स का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके जोड़ दिया गया है लिसनर्स को, और ये एक अहम जरूरत थी आज के दौर की। इसके अलावा दिल ढूंढता है मैं असीम भाई ने जो अपने जौहर बिखेरे वो काबिले तारीफ हैं। खतों के साथ पढ़ने वाले के अंदाज और एहसास की मंजर कशी करता है ये प्रोग्राम, लाजवाब भी है। इसके अलावा मुहर्रम पर विक्रांत जी का प्रोग्राम अच्छा लगा। मंगलवार को शैजी आगा ने सुबह सवेरे अच्छा कार्यक्रम किया। गीत गाता चल जो रिजवान जी द्वारा प्रस्तुत था, सभी गीत अच्छे सुनवाए गए। 26 जून की शाम में नात कव्वाली इनको पसंद आई है, और आगे इन्होंने सभी को सलाम पेश किया है।
1: ये बेहद ही खूबसूरत शब्दों के साथ ये पत्र हम तक पहुँचा है। हमारे बेहद ही पुराने लिसनर हैं
0: नवाबुद्दीन जी
1: जिनकी आमद श्रोता मंच कार्यक्रम में थी, और आकाशवाणी के 90 वर्षों पर के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि वॉकथॉन, म्यूज़िक कंसर्ट और भी जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनमें भी आपका प्रतिभाग रहा, और हमारे और भी श्रोता साथियों का प्रतिभाग रहा। इस कारण से हमारे वो प्रोग्राम सब सफल हुए। आप सभी लोगों का और नवाबुद्दीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी साथ को देखते हुए, इसी एक्साइटमेंट को देखते हुए, एक व्हाट्सएप ग्रुप जो श्रोताओं के लिए डेडिकेटेड है वो भी बनाया गया, और उसमें भी आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती हैं और आपका साथ हम तक बना रहता है। और आज इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र में छिपे जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो शब्द है, उसके माध्यम से आज भले ही आप हमारे सामने नहीं है, लेकिन आपका पत्र हमारे सामने है, और इस पत्र के ज़रिए आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे एक संवाद स्थापित हो रहा है। ये एक अलग ही एहसास है, और ये एहसास आकाशवाणी और आकाशवाणी लिसनर्स के साथ ही हो सकता है, और जो इसके बीच में कड़ी है ये वही इसका अनुभव कर सकते हैं, और वही अनुभव आज हम भी प्राप्त कर रहे हैं। एक बेहद सौभाग्यशाली क्षण से हम गुजर रहे हैं जब हम अपने श्रोता साथियों के जज्बातों के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। आपने ये बेहद ही खूबसूरत चिट्ठी हम तक पहुँची। आपका बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट आकाशवाणी के साथ रहा, आपका दिल

0: की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
1: ये सर अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी। लिखते हैं कि मुझे आपके यहाँ के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। 2 जुलाई का मनभावन सुरिंदर कौर जी ने अपनी सुरीली आवाज़ में पेश किया, अच्छा लगा। इसी दिन का गीत आपके नाम कार्यक्रम इनको पसंद आया है। 4 जुलाई का रेणु तिवारी जी का गीत आपके नाम अच्छा लगा है। और ओल्ड इज गोल्ड में जो गीत सुनवाए गए थे वो इनको पसंद आए हैं। रेणु तिवारी जी को इन्होंने बधाई दी है। प्रोग्राम सभी अच्छे चल रहे हैं, कोई कमी नहीं है और यहाँ के प्रेजेंटर्स बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, करते रहेंगे। सभी को मुबारकबाद इन्होंने पेश की है। आगे आपने लिखा है कि रिकॉर्डिंग के लिए मुझे क्या करना होगा बताने की जहमत करें।
0: ये पत्र हम तक पहुंचा है ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी और रईस दूल्हा अंसारी जी की तरफ से। आप अपने पत्र में कहते हैं कि आपको रामपुर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 2 जुलाई के कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया है, 4 जुलाई के कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया है। मनभावन जो सुरेंद्र कौर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया वो आपको बेहद अच्छा लगा। गानों का चयन आपको काफ़ी अच्छा लगा। रेणु तिवारी जी की प्रस्तुति गीत आपके नाम के अंतर्गत जो थी वो आपको काफ़ी पसंद आई है। ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छा लगा है। आपके द्वारा जो भी प्रेजेंटर्स के नाम आपके पत्र में वर्णित किए गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने रामपुर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना, सराहा और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई। आपने लास्ट में कहा है कि रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या करना होगा। रिकॉर्डिंग के लिए आपको, आप चाहें तो आप कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी रामपुर के नाम से लेटर भी लिख सकते हैं और आपकी जो बात है वो हम संबंधित अनुभाग तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप पत्र लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और संभावनाएं हुई तो आपको भी आकाशवाणी रामपुर में रिकॉर्डिंग के लिए मौका दिया जाएगा। तब तक आप आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को सुनिए और हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचाइए। आपका पत्र भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।
1: मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, नगमा नाज मंसूरी और इनके परिवार वाले लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम बराबर सुन रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। इस सप्ताह अखिलेश सक्सेना जी को सुना आपने हेलो रामपुर, गीत गाता चल जैसे कार्यक्रमों में आकर 4 चांद लगा दिए। यह तो गीतों का चयन बहुत ही अच्छा और प्यारा था। इनको इन्होंने अखिलेश सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई दी है। इसके अलावा शनिवार की शाम 7 बजे श्रोता मंच कार्यक्रम में भाई नवाबुद्दीन साहब से असीम सक्सेना जी की बातचीत इनको बेहद पसंद आई है। आगे आप लिखते हैं कि नवाबुद्दीन साहब ने मोहम्मद अली मौज पर जो बातचीत की उनकी यादें ताज़ा की, अच्छा लगा। इसके अलावा मनोज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि खास करके आपका पत्र मिला में ईमेल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और जब फरमाइशी कार्यक्रमों में आते हैं तो सभी को दिल से शामिल करते हैं। शनिवार का कार्यक्रम सुना, गीत गाता चल, गीतों का चयन इन्हें अच्छा लगा है और अधिक से अधिक SMS भी शामिल करने के लिए इन्होंने बधाई लिखी है। इसके अलावा सुनील सक्सेना जी की अगर बात करें तो सुनील सक्सेना जी आगे लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे कार्यक्रम लेकर आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी प्रस्तुति के सभी प्रोग्राम हमें पसंद आते हैं। सुनील जी को भी हमारी तरफ से दिल से बधाई। रेणु तिवारी जी, सुरेंद्र कौर, इन सभी के कार्यक्रमों को भी ये पसंद करते हैं और सभी तक अपनी बधाई पहुंचाने के लिए कहते हैं। आपसे इतना कहना चाहेंगे कि कार्यक्रमों में फ़ोन इन कार्यक्रमों में घंटी तो जाती है लेकिन कॉल नहीं उठाई जाती। शिकायत हमारी नहीं है और भी श्रोताओं की है। आप अपना फ़ोन सही करें, अपनी लाइन सही कराएं या फिर इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर दें ताकि अच्छे से बातचीत हो सके और हम खूबसूरत से खूबसूरत कार्यक्रम हमें मिल सकें। बस थोड़ी सी दिक्कत यही है, बाकी सब कुछ ठीक है और आगे अगले हफ्ते।
0: सबसे पहले तो आपने जिन प्रेजेंटर्स का जिक्र किया है अपने पत्र में, अखिलेश सक्सेना जी, मनोज कुमार, सुनील सक्सेना जी सुरेंद्र कौर जी, रेणु तिवारी जी और भी जो भी प्रेजेंटर्स का आपने जिक्र किया है, उन सभी को बधाई। आपने कार्यक्रमों को सुना जो आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित हुए, उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक भेजी हैं इस पत्र के माध्यम से, सराहना भी हम तक पहुंची है आपकी, और कुछ इश्यूज़ के बारे में भी आपने इस अपने पत्र में जिक्र किया है, उस पर भी एक बात होगी। सबसे पहले क्योंकि मनोज जी का भी जिक्र इस आपने अपने पत्र में जिक्र किया है, तो हम चाहेंगे कि मनोज आप कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें।
1: बिल्कुल सर, जो फोन इन प्रोग्राम होते हैं उनमें तो घंटी हमें अगर मिलेगी तो हम श्रोताओं की कॉल जरूर अटेंड करेंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखी है कि जो फरमाइशी कार्यक्रम है जैसे ईमेल पर आधारित है और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है, तो हम श्रोताओं से बस इतना ही कहेंगे कि अगर आपने एक बार ईमेल कर दिया है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, या आपने संदेश भेज दिया तो थोड़ा सा इंतज़ार करें जब तक आपका नाम ना पढ़ा जाए। और कई बार श्रोता ऐसा भी करते हैं कि सर कार्यक्रम में नाम हमने उनका शामिल कर लिया फिर भी अलग नंबर से संदेश हम तक भेजते हैं, इससे क्या होता है कि नाम को पुनः पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, फिर श्रोताओं की ये शिकायत हो जाती है कि एक ही श्रोता का दो दो बार,
0: संभावनाएं बढ़ भी जाती हैं, और फिर जो हमारे दूसरे श्रोता होते हैं जो एक ही बार अपना नाम हम तक पहुँचा रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं भावनाएँ आहत होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आप सभी श्रोता साथियों के कॉपरेशन पर ही डिपेंड करता है कि आप भी अपने बाकी श्रोता साथियों का भी सम्मान करें, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें, और जो क्या कहते हैं कार्यक्रम को और अनाउंसर को सपोर्ट करें इस तरह की वो बेहतर तरीके से कार्यक्रमों को प्रेजेंट कर पाए। एक जो इशू आपने अपने पत्र में लिखा है कि जो फोन कॉल्स पर आधारित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जब आप कॉल करते हैं तो घंटी बजती रहती है लेकिन यहाँ पर अटेंड नहीं होती, उस विषय में हम कहना चाहते हैं कि ये एक टेक्निकल इशू है जो संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी के साथ हमने डिस्कस किया है, और ऐसी उम्मीदें हैं कि इसका कुछ समाधान हमें मिल पाएगा और आगे के कार्यक्रमों में ये दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ये उसकी तरफ से है, क्योंकि लाइंस जो हैं वो इंटरनेट पर शिफ्ट हुई हैं जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है। आपकी तरफ से हम तक जो कॉल्स आती हैं वो अटेंड हो जाती हैं, और उस वक्त जब कोई कॉलर हमें कॉल करेगा तो उसको कॉल वेटिंग जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, कॉल वेटिंग की जगह घंटी ही जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी घंटी जा रही है लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही, जबकि यहाँ पर कॉल ऑलरेडी पहले कॉलर की रिसीव हो रखी होती है, लाइन पर वो कॉलर रहते हैं जैसा कि आपने कार्यक्रम में सुना ही होगा। तो इन सब समस्याओं के समाधान की तरफ प्रयास जारी है, भविष्य में कामना की जाती है कि ऐसी समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा और कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से हम आप तक पहुंचा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पत्र हम तक पहुंचाने के लिए।
1: और सर समय बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ ही मिनट हमारे पास शेष हैं और पत्र हमारे पास अधिक संख्या में है। ये हमारे श्रोता हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़से और विनोद खड़से जी लिखते हैं कि आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित अधिकांश कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, सभी कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानप्रद और मनोरंजक लगते हैं। युववाणी, श्रोता मंच, गीत गाथा, शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम, गीत आपके नाम, हेलो रामपुर, हेलो फरमाइश, मेरी माटी मेरा देश धरती गाती है, ये सभी कार्यक्रम इनको पसंद आते हैं। सभी प्रस्तुतकर्ताओं की आवाज़ें और प्रस्तुतिकरण इन्हें पसंद आता है। एक कार्यक्रमों में उम्मीद इनको रहती है कि ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन कार्यक्रम इनको मिले। बीते बुधवार को असीम सक्सेना जी की दिलकश प्रस्तुति में सजा श्रोताओं की भावनाओं पर आधारित कार्यक्रम दिल ढूंढता है इनको इनके दिल को छू गया। आगे इन्होंने असीम जी से जिस अंदाज में श्रोताओं के संदेश पढ़े वह अंदाज काबिले तारीफ था। एक घंटे का समय कैसे बीत गया समझ ही नहीं पाए, प्रस्तुति इतनी सुंदर थी कि कार्यक्रम में हम खो गए। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए असीम सक्सेना जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
0: बेहद खुशी की बात है कि दिल ढूंढता है कार्यक्रम के लिए पत्रों की संख्या अक्सर कम रहती थी, लेकिन इस बार जब उसको आप ही के सुझाव पर विचार करके सोशल मीडिया के माध्यम से उसको जब पब्लिसिटी की गई तो आपकी प्रतिक्रिया भी हमें बहुत अच्छी मिली, ढेरों काफ़ी संख्या में पत्र प्राप्त हुए और कार्यक्रम बेहद लाजवाब स्तर तक पहुँच गया। इसके लिए आप सभी का साथ ही हम आप सभी के साथ को इसका क्रेडिट देते हैं, और साथ के साथ असीम सक्सेना जी को भी बहुत बहुत बधाई और आप सभी श्रोता साथियों को भी बहुत बहुत बधाई और आभार।
1: ये अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं गांव खावरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवन्या। प्रोग्राम पेश करने वाले साथियों को

0: प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम लाजवाब हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छे लग रहे हैं। शिकायत है तो बस इस बात की कि हम ठीक 12 बजे ईमेल करते हैं तो शामिल नहीं होते, ठीक 8 बजे व्हाट्सएप करते हैं तो गीत गाता चल में भी शामिल नहीं होते। कृपया हमें ये बताने का कष्ट करें कि हम किस समय ईमेल और व्हाट्सएप संदेश भेजें जिससे कि प्रोग्राम में शामिल हो जाएं।
1: देखिए, समय तो इसका कोई फिक्स हम नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि कार्यक्रम से पहले आप अपने आपके जो पत्र हैं, आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जो आपके ईमेल्स हैं, वो हम तक पहुंच जाएं, तो संभावनाएं आपके नाम को शामिल करने की ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लास्ट टाइम पर अगर आपके मेल्स, व्हाट्सएप्स या जो पत्र हैं वो अगर पहुंचेंगे तो संभावनाएं कम हो जाएंगी, और ये उस समय पर डिपेंड करेगा कि उस वक्त आपका पत्र शामिल हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि समय पर बहुत कुछ डिपेंड रहता है। तो यही हमारा सुझाव रहेगा, आपने हम तक अपनी प्रतिक्रिया इस पत्र के माध्यम से पहुँचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद राजवीर सिंह जी।
0: सर, ये जो अगली चिट्ठी हम तक पहुँची है, ये हमारे श्रोता हैं, इनका ईमेल अभी फ्लैश हुआ था और ये फिर से गायब हो गया है। फिर से हम रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। फिर श्रोताओं की ये शिकायत भी अभी एक लिसनर्स की आ गई है कि आप एक ही बात पर 10 मिनट खर्च कर दिए आपने।
1: लेकिन मनोज, हमारे पास जो भी लेटर्स आए थे वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं और कार्यक्रम का समय भी अब खत्म होने के कगार पर है।
0: बिल्कुल, और अब इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से कर लेते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आपका पत्र मिला। अभी आप सुन रहे थे ये साप्ताहिक कार्यक्रम। आज आपके पत्रों का उत्तर दे रहे थे श्री अवधेश कुमार गौतम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं विपिन विहारी मिश्रा की लिखी झलकी मास्टर जी। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।
1: आज हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन बिहारी मिश्रा की लिखी नाटिका मास्टर जी। निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का है।
2: अरे कलुआ, घड़ी तो तुम्हारे हाथ में बहुत जम रही है रे। कहाँ से चुरा लिया रे?
3: देख गेलुआ, जुबान संभाल के बोल, शोर होगा तेरा बाप और तू।
2: कलुआ, तू तो सचमुच गुस्सा हो गया रे। अरे मैं तुझसे मजाक कर रहा था। अच्छा छोड़ इस बात को, जरा घड़ी में देख के बता टाइम क्या हो रहा है।
4: घड़ी देखने आए तब तो टाइम बताए, ऐसे ही टाइम बताते।
3: अरे तो तेरे कहने का मतलब है कि मुझे घड़ी देखना नहीं आता?
4: अरे इसमें कहना क्या है, कहीं तो तेरे घड़ी देखने नहीं आता। अगर आता है तो बता दो टाइम।
3: टाइम टाइम देखना है? अरे भाई टाइम देखना है तो बाप से घड़ी खरीदवा लो ना।
4: तुम्हारी तरह हमारा बाप भी
5: दलाली खाता
4: तो घड़ी क्या हवाई जहाज खरीदवा देते।
3: अच्छा, हमारा बाप दलाल है? हमारा बाप
4: तो सारी दुनिया जानती है।
3: ठीक है, मास्टर जी को आने दो, मास्टर जी को आने दो।
4: 12 बज रहे हैं, अब मास्टर जी नहीं आएंगे। और आएंगे भी तो
3: पहले
5: तुम्हारी
4: पिटाई होगी। क्योंकि मास्टर जी ने जो सवाल लगाने को दिया था वो तुम सबको आया ही नहीं होगा।
5: आया तो नहीं?
4: ये हमारे हाथ में कमची देख रहे हो, मास्टर जी ने मुझसे इसीलिए मंगाई है। अब बोलो किसकी पिटाई होगी, मेरी या
5: हम सबकी?
2: अब क्या होगा कलुआ रे? अरे तू तो कुछ बोलता ही नहीं रे।
3: क्या बोलूं रे?
2: कुछ भी बोल रे, कुछ उपाय बता रे।
4: ये क्या उपाय बताएगा, अभी देखना जब मार पड़ेगी तो कैसे
5: ढेचू ढेचू
4: चिल्लाएगा।
3: ये तो समय बताएगा चंदना। कलुआ ने क्लास में जिसका भी चाहा है चाम खिंचवाया है। अब उपाय मेरे दिमाग में है, आज तो कोई ताकत मुझ

0: नहीं पिटवा सकती।
1: क्यों?
2: पहले मास्टर जी को आने तो दो।
3: मास्टर जी ये चंदना कह रही थी ना जी कि मास्टर जी रोज 12 बजे आते हैं ना जी।
1: हैं? मैं जी? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत?
2: मैंने नहीं कहा मास्टर जी।
1: चुप रहो शैतान, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अरे कमची लाओ ना जी इधर। अब अगर मेरे बारे में आज से किसी ने कुछ कहा ना जी, अरे तो हड्डी तोड़ के रख दूंगा। अरे तुम होते कौन हो हमारे बारे में कुछ सोचने वाले? देखो चंदना, हम सरकारी मुलाजिम हैं, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। और बात और है, सबसे पहली बात है ना जी, अरे कि गुरु का दोष तुम लोगों को देखना ही नहीं चाहिए। क्या
4: गुरु का दोष?

0: तो साक्षात ब्रह्म का अवतार होता है। क्या होता है?
1: ब्रह्म का अवतार होता है।
0: ब्रह्म क्या? अरे ब्रह्म से भी बढ़कर होता है। क्या होता है?
1: ब्रह्म से बढ़कर होता है।
0: और जो कोई गुरु की निंदा करता है वो नरक जाता है। कहा जाता है?
1: नरक जाता है।
0: नरक का भागी बनता है। अरे मूर्खो, अरे वो क्या तुम लोगों को गुरु की महत्ता के बारे में कबीर का वो दोहा याद नहीं ना जी?
2: याद मास्टर जी।
0: अरे तो सुना दो ना इस गधे को भी।
2: गुरु गोविंद गो हरे का के ला गो पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए।
0: सुन लिया ना जी?
3: जी मास्टर जी।
0: अरे कुछ समझ में आया?
3: जी।
0: इस दोहे से क्या शिक्षा मिलती है हमको?
3: शिक्षा मिलती है कि गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है।
0: अब ऐसा करो तुम लोग, मैं

0: तीन ही बनता इस पर।
1: ए, ए,
0: हाँ, जय श्री राम। रहीम।

0: हम तो तेरे आशिक हैं पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने।
1: क्या हो रहा है बच्चों?
2: अंताक्षरी,
1: तुम्हारे मास्टर जी कहाँ हैं?
2: अंदर रहे हैं।
1: चलो उन्हें जगाओ तो।
2: हम नहीं जगाएंगे, नहीं तो मास्टर जी मारने लगेंगे।
1: नहीं मारेंगे, हमारे साथ आओ।
3: चलो
1: जगाओ जगाओ,
4: जरूर कौन है ना जी? बदतमीज कहा है ना जी? मौन पठन करो तुम लोग, मैं कुछ पूछना होगा तो बाद में पूछ लेना ना जी, मुझे सोने दो, रात भर का जागा हूँ।
1: अरे उठिए उठिए मास्टर जी, उठिए ना।
4: आप आपका शुभ परिचय।
1: मैं डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हूँ।
4: तो बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए।
1: मैं यहाँ बैठने नहीं, इंस्पेक्शन करने आया हूँ मास्टर जी।
4: जी
1: यहाँ आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं?
4: नौ नौ।
1: नौ ही क्यों? इतना बड़ा गांव है और बच्चे हैं इस स्कूल में नौ। मास्टर जी आपकी यहाँ किसकी नियुक्ति हुई है?
4: तो मैं क्या करूँ, मैं बच्चे पैदा करूँ? इस गांव में दो दो मॉन्टेसरी स्कूल है, गांव के सारे लड़के वहाँ चले जाते हैं ना जी, है ना जी?
1: लेकिन क्यों?
4: इसमें क्यों क्या ना जी, लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं ना जी, इससे अधिक हमें कुछ नहीं पता ना जी।
1: लेकिन हमें पता है मास्टर जी, लड़के यहाँ पढ़ने क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, मेज पर टांग फैलाकर सुवाई होती है और वेतन बढ़ोतरी के लिए

0: चमक मैं धुंधली नहीं होने
1: दूं।
2: अरे भाई मास्टर जी, आप अभी तक यहीं हैं? जल्दी चलिए ना, नहीं तो मीटिंगवा में विलंब होगा। और हाँ, वो बच्चों से पोस्टर बैनरवा सटवा लगवा दिए हैं कि नहीं?
0: ये स्कूल है मान्यवर।
2: पहले ये बताइए, आप हैं कौन?
0: मैं सहायक विद्यालय निरीक्षक हूँ।
2: अच्छा, और मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ का विधायक हूँ।
0: वो तो आपके आते ही मालूम हो गया। हाँ। तो कहिए, क्या सेवा करूँ आपकी? चाय पान, जलपान?
2: नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, बस मास्टर जी को भेज दीजिए।
0: हाँ हाँ, तो ले जाइए। मैं तो मास्टर जी को आपके साथ भेजने की सोच रहा हूँ, हमेशा के लिए।
2: जी हैं? हमेशा के लिए?
0: हाँ, आखिर यहाँ इनकी जरूरत भी क्या है? पढ़ाने में इनको भी दिक्कत ही होती है, और आपको यहाँ तक आने में भी दिक्कत होती है। आपकी मीटिंग वगैरह उसकी व्यवस्था भी ये ठीक ढंग से नहीं कर पाते। देखिए, मैंने मास्टर जी को जीवन भर के लिए छुट्टी देने की सिफारिश करने का फैसला कर लिया है, और ये फैसला

0: अरे बेटी जोया,
1: जी अब्बू जान,
0: जरा इधर आइए बेटी।
1: अभी आई अब्बू।
0: बात सुनिए।
1: जी कहिए
0: बेटी। आप हर वक्त पढ़ती रहती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी खेला भी करो, दोस्तों में भी जाया करो, मिला करो उनसे, अम्मी भैया भाभी के पास भी बैठा करो।
1: हमें डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी मन से करनी पड़ेगी। और रही अम्मी भैया और भाभी की बात, तो आप तो जानते हैं अब्बू कि कोई भी हमसे ठीक से बात नहीं करता है।
0: अरे बेटा वो
1: बस बस एक आप ही हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं। सच कहें तो अम्मी और अब्बू दोनों का प्यार हमें आपने ही तो दिया है अब्बू, वरना इतनी बड़ी हवेली में हम खुद को तन्हा ही समझते हैं।
0: नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप असल में पढ़ती रहती हो ना, बस शायद ये सब लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे ना। बस बस यही बात है बेटी, बस बस।
1: नहीं नहीं अब्बू जान, अब हम बच्चा नहीं है। हम देखते हैं कि अम्मी आपकी तिमारदारी भी नहीं करती। हाँ बस एक हुस्ना आंटी और अहमद चाचा ही ऐसे हैं जो आपकी देखभाल करते हैं।
0: बेटी आप ठीक?
1: अबू क्या हुआ? अबू
0: बेटी
1: अबू
0: जा जा जल्दी से।
1: अब क्या हो गया आपको?
0: हुस्ना आंटी को बुला लो बेटी, हमारी हमारी
1: अबू
0: हमारी तबीयत बहुत बहुत खराब हो रही है बेटी, जल्दी आ।
1: अबू जान उन्हें बुलाने के लिए आप हमें ही भेजते हैं, हमें बहुत अजीब लगता है।
0: जल्दी जाओ बेटी,
1: हर वक्त वहाँ से गाने बजाने की आवाजें आती रहती हैं।
0: हमारा आखिरी आखिरी वक्त है शायद बेटी, जल्दी उन्हें।
1: ऐसी बातें ना करें अब्बू जान, मैं भी बुला कर लाती हूँ। आदाब आंटी।
2: हाँ
1: जल्दी चलिए, जल्दी चलिए आंटी, अब्बू जान की तबीयत बहुत खराब हो रही है।
2: क्या? अच्छा अच्छा चलो चलो चलो चलो जल्दी से।
1: अब्बू आज आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप हौसला रखिएगा। हाँ आप को फोन करती हूँ अभी।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हो सकता बेगम, नहीं कैंसर कभी ठीक नहीं होता सुनहरा।
1: कैसी बात कर रहे हो आप?
0: बहुत बहुत देर हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे जैसे जैसे बदन में आग की भट्टी चल रही है सुनहरा। तुम मेरी बात गौर से सुनो सुनहरा।
1: बोलो बोलो
0: सुनो
1: बोलो।
0: ये देखो फैसपुर वाली 20 बीघा जमीन का बैनामा मैंने मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। ये कागज तुम संभाल कर रख लो। दो लाख रुपए की FD जोया के नाम की है। इसे इसे इसे अच्छा

0: अच्छा डॉक्टर बनाना उस नारा, अच्छा डॉक्टर बनाना।
1: नहीं, तुमने
0: बहुत साथ दिया है मेरा उस नारा, मुझे मुझे मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारा असल असल मुकाम ना दिला सका उस नारा।
1: आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे शौहर हैं, मेरे सरताज हैं, मेरी जागीर तो आप हैं। आपके बिना यह जागीर मेरे की

0: को नहीं मिलने चाहिए। कैसी नालायक औलाद पैदा की है।
1: वही तो मैं कह रही हूँ, कैसी नालायक औलाद पैदा की है आपने।
0: क्या क्या कहा तुमने?
1: अरे कुछ नहीं, मतलब हमने कैसी औलाद पैदा की है।
0: लाहौल बिला कुव्वत, कैसी बीवी पल्ले पड़ी है, मेरी जिंदगी नरक बना दी है।
1: जी हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, सबने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है।
0: ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ।
1: अरे सुनो जी, वो ना मेरी नज़र ना थोड़ी कमजोर हो गई है, आज शाम को जल्दी आ जाओ तो मैं आपके साथ डॉक्टर को आंखें दिखाने चलूंगी।
0: दिन रात मुझे आंखें दिखाती रहती हो, हैं? उससे मन नहीं भरा जो बेचारे डॉक्टर को आंखें दिखाने चलोगी।
1: आपकी तो बात और है जी, डॉक्टर तो बहुत पढ़ा लिखा काबिल इंसान होता है।
0: अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा?
1: नहीं कुछ नहीं जी।
0: बोलो कहना क्या चाह रही हो, हैं? मैं बेहद नाकाबिल, अनपढ़ और निकम्मा इंसान हूँ।
1: मैं क्या बोलूँ जी, आप तो खुद ही सब कुछ जानते हैं। खैर छोड़ो ये सब, शाम को आप चलेंगे ना तो मैं वो कांजीवरम वाली साड़ी पहनकर तैयार मिलूंगी आपको।
0: कांजीवरम? क्यों, वो शादी वाली साड़ी पहनकर तैयार मिलना?
1: सोच तो वही रही थी जी, लेकिन तीन तीन इतने बड़े बड़े बच्चे, सो थोड़ी सी शर्म आती है अब।
0: कोई सादा सी साड़ी पहनकर तैयार मिलना? डॉक्टर के यहाँ जा रही हो? हाँ, कोई अपनी नुमाइश लगाने नहीं जा रही हो?
1: जी ठीक है, अब तो आंखें दिखाने चलोगे ना?
0: जी नहीं, अगर तुम डॉक्टर को आंखें दिखाओगी तो वो तुमसे नाराज नहीं होगा क्या, हैं? तुम्हारा इलाज क्या हक करेगा?
1: तो क्या करूँ जी?
0: यही कि आंखें टेस्ट कराने चलूंगी।
1: तो क्या वो मेरी आंखें टेस्ट करेगा?
0: बिल्कुल करेगा।
1: फिर क्या वो टेस्ट करके बताएगा कि मेरी आंखें टेस्टी हैं या नहीं?
0: अरे बाबा, टेस्ट नहीं, टेस्ट चेक करेगा वो तुम्हारी आंखें। हाँ,
1: अब इतना बुद्धू भी मत समझिए आप हमें, इतना तो हम जानते हैं कि चेक क्या होता है। चेक तो बैंक का होता है।
0: हे भगवान, ये क्या रचना है तेरी?
1: कौन रचना? वो पड़ोस वाली। अजय, आपका उससे क्या लेना देना, आपकी बेटी की उम्र की है वो, बूढ़े हो गए हो लेकिन शौक नहीं बदले अभी तक। हाँ,
0: अरे भगवान, अरे मुझे माफ कर दे, तुझसे तो बस बात करना ही बिल्कुल फिजूल है।
1: तो चीख क्यों रहे हो, बहरी थोड़ी हूँ मैं।
0: जानता हूँ, तभी तो जब कभी माँ से कोई बात करता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें ही सुनाई देता है। वो बेचारी तो

0: तुम्हारे बात ही सुन पाती है। अरे अच्छा? आज भी देर हो गई दफ्तर को।
1: अच्छा अब मैं चलती हूँ, अंदर जाकर शाम के लिए तैयार भी होना है।
2: अब महादेव जी का घर यही है क्या?
3: लगता तो यही है।
2: आप तीनों को पढ़ाने के लिए ही मुझे आपके पिताजी ने यहाँ बुलाया है।
1: नहीं तो आप क्या समझ रहे थे, बच्चों की माँ को पढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया है?
2: जी आपकी तारीफ
1: जितनी भी की जाए कम है सर जी। आप अपने ही मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? वैसे इन तीनों होनहार बच्चों की माँ मैं ही हूँ जी।
2: ओके ओके, हाउ आर यू चिल्ड्रन?
3: बेटर देन यू सर।
1: देखा देखा आपने, तीनों के तीनों कितने इंटेलिजेंट हैं। रटा रटाया नहीं बोलते हैं, कुछ हटके करते हैं सारे काम।
2: हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है आप, वो तो दिख ही रहा है।
1: अच्छा अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है शाम के लिए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। सर जी जरा ध्यान से मन लाकर पढ़ाइएगा।
2: अच्छा बच्चों, पढ़ाई आरंभ करने से पूर्व परिचय हो जाए, एक एक कर आप अपना नाम तथा कक्षा बताइए।
4: सर मैं अर्जुन कक्षा 10।
5: सर मैं भीम कक्षा 6।
6: सर मैं कर्ण कक्षा 8।
2: ठीक है, मैं आपका नया शिक्षक चितरंजन दास। आज की कक्षा में सामूहिक रूप से आप तीनों के ज्ञान का स्तर जांच लेते हैं। अर्जुन सबसे पहले आप बताइए, ये करेला क्या होता है?
4: करेला सर
2: हाँ, बताइए। आप कक्षा 10 के विज्ञान के विद्यार्थी हैं, बहुत साधारण सा प्रश्न है आपके लिए तो।
4: हाँ याद आया सर, करेला नामक सब्जी का अपभ्रंश है। ये खाने में अत्यंत कड़वा होता है, प्रायः बच्चे करेले की सब्जी को पसंद नहीं करते हैं, परंतु करेला पेट के लिए बहुत ही लाभकारी एवं गुणकारी होता है सर। हृदय रोगी को ना इसके रस का सेवन अत्यधिक लाभकारी होता
2: क्या,
4: है सर।
2: क्या क्या क्या क्या क्या कहा तुमने? मैं करेला नहीं करेला कह रहा हूँ।
5: तो क्या हुआ सर, आप दक्षिण भारतीय जिसे करेला कहते हैं उसे ही हम करेला कहते हैं?
2: यू आर रॉन्ग कर, करेला इज ए पार्ट ऑफ द फ्लावर।
5: यू आर 100% रॉन्ग सर, अर्जुन भाई बिल्कुल सही कह रहा है। जब कभी मम्मी करेले की सब्जी बनाती है मैं उसे छूता तक नहीं। रियली सर बहुत कड़वी होती है।

0: नहीं है।
1: बिल्कुल वजह भरवा रहे हैं बरखुरदार। अच्छा भीम, ये जो तुमने किताब खोल रखी है उसे जरा स्पेलिंग सहित पढ़कर तो सुनाओ, क्या लिखा है?
0: यस सर, PUT PUT, BUT BUT, HUT HUT, NUT NUT, CUT CUT।
1: बस करो बस करो, सब गलत पढ़ रहे हो।
0: क्यों सर जी?
1: ये पीयूटी पुट होता है परंतु बीयूटी बट होता है और एचयूटी हट होता है।
0: क्यों सर जी? जब पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुट ही हुआ ना?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, इनका उच्चार अलग प्रकार से होता है।
0: मगर क्यों सर जी? देखिए, यूटी से उठ हो गया जो कि सब शब्दों में लगा हुआ है, बस पहला अक्षर ही तो बदला हुआ है। तो हम सभी जानते हैं पी से पा, बी से पा, एच से हा, एन से ना का उच्चारण होता है।
2: सर कह तो बिल्कुल सही रहा है, अब आप भी मान ही जाइए।
1: शट अप। कोई नहीं बोलेगा। बड़े आए शब्दों का विश्लेषण करने वाले, पता नहीं कैसे दसवीं क्लास में आ गए। ठीक है अर्जुन, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की बहुत आदत है ना, तो तुम बताओ साइक्लोन क्या होता है?
2: वेरी सिंपल सर, जो लोन साइकिल पे लिया जाता है ना उसे साइक्लोन कहते हैं।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या खूब उत्तर दिया है। साइक्लोन का अर्थ होता है चक्रवात, समझे? जो वायु
2: चक्रवात, साइकिल पर लोन, ये सब अलग अलग बातें हैं सर, प्लीज इन्हें मिक्स मत करिएगा वरना वही कहावत सिद्ध हो जाएगी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा।
1: इसका मतलब ये है कि आप मुहावरों में पारंगत हैं।
2: जी सर।
1: ठीक है, तो फिर एक मुहावरा है, 2 जून की रोटी, इसका क्या अर्थ हुआ?
2: ये तो बहुत ही आसान है सर, इसे तो भीम भी बता देगा।
1: भीम तो बता ही देगा, तुम बताओ ना।
2: सर इतने आसान से मुहावरे का अर्थ बताकर मैं क्या करूंगा, दसवीं का छात्र हूँ। चल भीम तू ही बता दे।
0: सर 2 जून की रोटी का अर्थ हुआ, जो रोटी 2 जून को खाई जाए उसे ही 2 जून की रोटी कहते हैं सर।
2: साफ बात, देखा सर। मैं क्या कहता था, भीम सब बता देगा।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छे, खोदा पहाड़ और निकली चुईया।
2: कहा है सर? सर कहा है?
3: मुझे चुईया से बहुत डर लगता है सर,
2: और मुझे भी सर। अच्छा सर, सर मेरी तो जान निकल जाती है, बताइए ना कहा है चुईया?
1: वाह तुम तो महावीर महाधनुर्धर अर्जुन हो ना, चुईया के नाम से ही डर गए।
2: सर मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो आज तक धनुष बाण हाथ में नहीं लिया सर।
1: और तुम भी अर्जुन से कोई कम थोड़े ही हो, तुम भी महावीर महापराक्रमी और महादानी हो का?
3: सर ये आपको क्या हो गया सर? हम वो नहीं है सर जो आप समझ रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, हम वो महाभारत वाले नहीं हैं।
1: अच्छा तो तुम वो महाभारत वाले नहीं हो, तो ये भीम इतना भीमकाय क्यों है?
3: सर, आर यू ओके सर? आप ठीक तो हैं? आपको अचानक से ये क्या हो गया सर?
1: ठीक हैं? अरे मैं तुम जैसे नालायक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कदापि नहीं, मैं चला।
0: सर प्लीज ऐसा मत कहिए सर, पापा हमें बहुत मारेंगे, घर से निकाल देंगे सर, प्लीज सर।
2: आप क्या कहेंगे?
0: वैसे ही हम करेंगे
2: सर, प्लीज सर, अब हम कुछ नहीं करेंगे,
0: हम आपको जाने ही नहीं देंगे। अब सर विश्वास कीजिए हम पर, हम अब कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
1: ठीक है जाओ, जाकर बैठो अपने स्थान पर। अब कर तुम बताओ, अगर तुम्हें मंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे?
0: सर मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है सर।
1: अरे अभी नहीं, मंत्री बनने के बाद।
0: सर मैं मंत्री नहीं बनूंगा सर।
1: अरे अभी नहीं, मंत्री बनने के बाद।
0: सर मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं तो आपको मंत्री बना दूंगा चाहे कुछ हो जाए।
1: मान लो तुम्हें कोई जबरदस्ती मंत्री बना ही दे, तब क्या करोगे?
0: तब भी सर मैं कुछ ही नहीं करूंगा, जैसे और मंत्रीगण कुछ कार्य नहीं करते हैं, मैं भी कुछ नहीं करूंगा सिवाय विदेश यात्रा के।
1: अच्छा चलो छोड़ो ये, भीम तुम बताओ जानवर किसे कहते हैं?
0: सर जो जान भी हो और

0: अरबी उसे जानवर कहते हैं।
1: गुड, वेरी गुड। कोई उदाहरण दे सकते हो?
0: जी सर, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है?
1: अर्जुन, चलो तुम दो कोई उदाहरण जानवर का।
2: सर, उदाहरणार्थ हम पति को जानवर कह सकते हैं। क्योंकि क्योंकि एक पत्नी के लिए ना उसका पति जान भी होता है और उसका वर भी।
1: उत्तम, अति उत्तम।
2: थैंक यू सर।
1: भीम, अपने पिता का नाम बताओ।
0: महादेव।
1: केवल महादेव? नाम के आगे कुछ नहीं लगाते हैं क्या?
0: लगाते हैं ना सर, हर हर महादेव।
1: बहुत अच्छे, बहुत खूब। जीवन में खूब उन्नति करोगे।
0: जी सर।
1: कर्ण, तुम माँ की ममता का वाक्य बनाओ।
0: माँ की ममता अशुद्ध है सर।
1: अच्छा, तो फिर शुद्ध क्या है?
0: मेरी माँ का नाम ममता है सर।
3: जी हाँ, एकदम सच्ची कहा इसने, मैं ही ममता हूँ।
1: ममता जी, आपके बच्चे तो बहुत ही बुद्धिमान हैं।
3: 16 ने सच्ची कहा है सर जी। और ऐसा भी ना है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर हिंदी का ज्ञान ना हो, सब आता है हिंदी में। वर्णमाला, गिनती, दिन, महीने, वार, सब कुछ। ना मानो तो बूझ के देख लो।
1: जी जी जी जी जी, मैं सब कुछ पूछ चुका हूँ।
3: अरे पूछो तो, हमारे साथ में भी तो पूछ कर देखो।
1: ठीक है, तो ये बताओ कि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है?
3: अरे इतनी सी बात, ये तो हम ही बता देंगे। जो लोग कृष्ण जी का पक्ष ले वे कृष्ण पक्ष वाले, और जो शुक्ल जी का पक्ष ले वे वो शुक्ल पक्ष वाले।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तभी तो मैं सोचूं बच्चे इतने होशियार कैसे हैं, पूरे के पूरे माँ के गुण हैं। बच्चे तो बच्चे, माँ सुभान अल्लाह।
3: और क्या?
1: हाँ, अच्छा एक बात और बताइए, ये कृष्ण जी तो समझ में आता है, परंतु शुक्ल जी कौन है?
3: अरे सर जी, शिक्षक होकर इतना भी ना पता? पंडित रामचंद्र शुक्ल और कौन, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं अंग्रेजी के।
1: ओ, मैं तो भूल ही गया था, आप तो महाज्ञानी हैं। अरे रंजन, हमें अपने नए कॉमेडी सीरियल के लिए कहानी तथा पात्र दोनों ही मिल गए हैं। कब से ढूंढ रहे थे, क्या धांसू थीम है, सुनोगे तो तुम भी उछल पड़ोगे। चल अब ये तलाश तो पूरी हो, रखता हूँ। ओके, अच्छा मैं अब चलता हूँ।
3: ठीक है सर जी, कल फिर किस समय आएंगे आप?
1: क्या कल फिर आना पड़ेगा?
3: क्यों नहीं सर, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आना तो रोजाना ही पड़ेगा।
1: ओ हाँ, मैं तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आना तो रोजाना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसा करते हैं, कल से मैं डेली सपने में आया करूँगा।
0: तो फिर पक्का, कल से डेली सपने में।

अभी आप सुन रहे थे ये लघु नाटिका जिन ठूंडा तिन पाइयां। इसी के साथ धरोहर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपकी शब्दावलियों पर आधारित आज का मन भावन।

मन भवन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं आज के मन भवन में शामिल होना तो लिख भेजिए हमें अपनी शब्दावली इस ईमेल एड्रेस पर, पत्र मिला aarrampur@gmail.com। ईमेल एड्रेस फिर से सुन लीजिए patraamilaaarrampur@gmail.com। जी हाँ, इसी ईमेल पर आपको अपनी शब्दावली पहुंचानी है। और ये जो पहली शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान और इरम गुड़िया। लिखते हैं कि सच्ची दोस्ती जीवन की सबसे अनमोल दौलत है, यह हर मुश्किल राह को आसान बना देती है और हर खुशी को दोगुना भी कर देती है। सकारात्मक सोच और सच्चे मित्र साथ हों तो हर चुनौती अवसर बन जाती है। इसलिए मुस्कुराइए, अच्छे विचार अपनाइए और अपने रिश्तों को प्रेम, विश्वास और सम्मान से सींचते रहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी है कि रिश्तों को निभाने के लिए हमें अच्छे विचार, मुस्कुराहट और अच्छी सोच के साथ रहने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ और विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। ये अगली जो शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं गंगा सिंह रावत जी। आपने लिखा है रामपुर रोड हल्द्वानी से। लिखते हैं कि चलो यार एक कप चाय हो जाए, अच्छा शाम को चाय पर मिलते हैं, बारिश हो रही है, वाह पकोड़े के साथ एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए। इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। दोस्तों, चाय पर अनेक कसीदे गढ़े गए हैं। चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ ही नहीं, किसी कवि या शायर का मजमून है, किसी के लिए सुबह की ताजगी है, ऑफिस में काम की थकान को दूर करने के लिए एनर्जी ड्रिंक है, लंबे सफर के दौरान चाय की टपरी का होना किसी मुराद के पूरा होने जैसा है, कटिंग वाली चाय का अपना स्वाद है और रेलवे स्टेशन पर रात के सन्नाटे को तोड़ती आवाज, क्या क्या ना कहें चाय के बारे में। रिश्तों को जोड़ने में चाय बेजोड़ रही है। अंत में, चाय की दीवानगी और इसके दीवाने हम भी थे और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, चाय होती ही ऐसी है जो अनसुलझी बातों को, अनसुलझे रिश्तों को अगर चाय के बहाने बैठकर बातें की जाएं तो संभल सकती हैं वो बातें, संभल सकते हैं वो रिश्ते और सुलझ सकती हैं बहुत सारी बातें। कुछ इसी तरीके से चाय पर हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी शब्दावली हम तक पहुंचाई है। ये हमारे श्रोता हैं कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से वी के जौहरी, विनोद अर्पित जौहरी, शीला ठाकुर और शाइना बी। लिखते हैं कि बस एक तेरा ख्याल ही तो है मेरे पास, वरना कौन अकेले में बैठकर चाय पीता है। चाय एक शाकाहारी नशा है, किसी महफिल में जाम से कहीं ज़्यादा कदरदान चाय की प्यालों के मिलेंगे। हिंदुस्तान में पानी के बाद सबसे ज़्यादा जो पिया जाता है वो चाय है। चाय हमारी सभ्यता की मुख्य सहयोगी है। किसी को दोस्त बनाना हो तो एक कप अच्छी चाय के अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं। हम अपने मिलने जुलने वालों को भी चाय का निमंत्रण देते हैं, कुछ ये कहकर, मिलो कभी चाय पर, फिर किससे बुनेंगे, तुम खामोशी से कहना हम चुप कैसे सुनेंगे। कभी वो दौर बड़ा खूबसूरत था जब किसी की यादों में खोकर चाय ठंडी हो जाती थी और दिल गर्म जज्बातों से भर जाता था। चाय के कप से उड़ते धुएं में मुझे तेरी शक्ल नजर आती है, तेरे इन ख्यालों में खोकर मेरी चाय अक्सर ठंडी हो जाती है। चाय तो एक बहाना है, अक्सर दिल में कई संवेदनाएं, कई बातें, कई जज्बातों को जिन्हें हम बांट लेना चाहते हैं ताकि मन हल्का हो सके। कई बार बड़े बड़े मुद्दों पर औपचारिक बातचीत गर्म चाय के प्याले के साथ शुरू हो जाती है। शादी, ब्याह जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर भी यदि बात करना हो तो चाय का बहाना बिल्कुल उपयुक्त रहता है। आज लफ्जों को मैंने शाम की चाय पर बुलाया है, बन गई बात तो गजल भी हो सकती है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम मन भवन में श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये शब्दावली हम तक पहुंची है ईदगाह गेट मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी और इनके परिवार वालों की। लिखते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी मोहब्बत, तू मेरी आदत है और आदत भी ऐसी कि तेरे बगैर अब कोई लम्हा गुजरता नहीं है मेरे दिल से, और तू मेरी चाहत है, मेरी चाहत भी आखिरी चाहत है, तेरे बाद किसी और का ख्याल नहीं आता, तू मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट भी ऐसी कि बस हमेशा मुस्कुराना चाहता हूँ, और ये कैद भी आखिरी अब आज़ादी का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता, मुझ पर सिर्फ तेरा हक है और ये हक आखिरी अब दिल किसी और का होना नहीं चाहता। शब्दावली हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अगली शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं निकट विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड बरेली से, अर्चना जौहरी, कृतिका जौहरी और चारू। लिखते हैं कि नज़र से दूर रहें या नज़र के पास रहें, हमेशा इश्क के मौसम बहुत खास रहें, ये कभी ठहरे जाते हैं कभी थम जाते हैं, कभी जिंदगी के कुछ पल पानी की बूंदों की मानिंद हथेलियों से फिसल जाते हैं, फना होती तमाम ख्वाहिशों के साथ चलती चली जाती है ये जिंदगी, इन दो नैनों की भी अजब कहानी है, कभी बादल तो कभी पानी है, कश्ती है एक जो इनमें बहती ही रहती है, कोई सुने या ना सुने ये अपनी कहानी कहती ही जाती है, कहीं अनकहीं तो कहीं जानी पहचानी नई पुरानी सी कहानी बस एक आंसू के ढलने पर मुकम्मल हो जाती हैं, कुछ बूंदें पानी की ना जाने कब से रुकी हुई हैं पलकों पे, ना कुछ कहती हैं और ना बहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जौहरी जी, इतनी अच्छी शब्दावली हम तक पहुंचाने के लिए। और ये जो अगली शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं मोहन सिंह रावत जी, इंदिरा कॉटेज दल्लीताल नैनीताल से। लिखते हैं कि किसी दार्शनिक ने सची कहा है कि आशा सफलता की कुंजी है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि मनुष्य हमेशा सफलता को प्राप्त करे, कभी कभी उसे असफलता का भी सामना करना पड़ता है, वस्तुतः सुख और दुख के समान ये भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आशा की प्रवृत्ति हमेशा असफलता से प्रारंभ होती है, आशा के द्वारा ही आगे बढ़ने का मार्ग सुलभ होता है, आशा उम्मीद कर्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मनुष्य में हमेशा कुछ न कुछ करने व पाने की प्रवृत्ति रही है जिसके लिए वह सदियों से संघर्षरत रहा है और हमेशा रहेगा, ऐसे में वे लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने निराशा को नकार कर स्वच्छ सुंदर और आशा व कर्म पर अपना ध्यान दिया, असफलता निराशा को जन्म देती है और निराशा कुंठा को, जीवन के कई रंग हैं जिनमें उन सभी अवस्थाओं का समावेश होता है जो कि जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जिससे आशा जागृत होती है, साथ ही कर्म के प्रति दृढ़ता भी प्रकट होती है, प्रतिभावान व्यक्ति अवसर नहीं गंवाते, उन्हें उसके मूल्यों का पूर्ण ज्ञान होता है और वे उन अवसरों का भरपूर लाभ भी उठाते हैं, अवसर चूक जाने के पश्चात पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होता, परंतु ज्ञानी और धैर्यवान मनुष्य इससे हताश नहीं होते बल्कि अपने कर्मों के प्रति और गंभीर हो जाते हैं, इस प्रकार वे अपने सफल कर्मों द्वारा मनोवांछित स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि निराशा दुख के समान अंतहीन अंधकुआ है जिसमें डूबकर मनुष्य को अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलता, यह अवस्था मनुष्य को भ्रम के मायाजाल में उलझा देती है जिससे पार पाना कठिन हो जाता है, अपने कर्मों के प्रति सचेत व कर्मठ रहना ही जीवन का मुख्य आधार है, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता बल्कि कर्म से महान बनता है, एक प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य का जीवन ही एक कर्म क्षेत्र है और यदि जीवन के दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह किया जाए तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जीवन में वास्तविकता का सामना करें या न करें उससे मुंह मोड़ें, फल की कामना के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें, सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी। बहुत ही उत्साहवर्धक आपकी शब्दावली हम तक पहुंची है मोहन सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी की। लिखते हैं कि जीवन में हर प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, बल्कि हमारी जरूरत के अनुसार मिलता है। हम फूल मांगते हैं लेकिन भगवान बारिश देते हैं, क्योंकि बिना बारिश के फूल खिल नहीं सकते। कई बार जो परिस्थितियाँ हमें कठिन लगती हैं वही आने वाली खुशियों की नींव होती हैं। इसलिए हर देर, हर संघर्ष और हर परीक्षा के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जब ये बात समझ आ जाती है तब शिकायतें विश्वास में बदल जाती हैं और जीवन पहले से अधिक अर्थपूर्ण दिखाई देने लगता है। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी है संतोष खड़से जी, क्योंकि विश्वास बहुत सारी चीज़ों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगली शब्दावली हम तक पहुँची है, ये हमारे श्रोता हैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफार खान, राजिया खान और सिमरन खान। लिखते हैं कि जो वक्त चला जाता है वो लौट कर नहीं आता, क्योंकि वक्त हर दम चलता रहता है। जो घड़ी गुजर गई वो फिर किसी तरह काबू में नहीं आ सकती। बचपन और जवानी का वक्त तालीम और सीखने का है। इस वक्त को किसी तरह जाया ना करें, इस वक्त मेहनत से काम कर लें तो बुढ़ापे में आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तालिबे इल्म को ज़्यादा वक्त मुताले में गुजारना चाहिए, और जो अहम बात है उसे अपनी याददाश्त की कॉपी में लिख लिया कीजिए। वक्त दबे पांव गुजर जाता है। दुनिया की हर चीज़ की हरकत का इल्म होता है, लेकिन वक्त का पता नहीं चलता। इतना जल्दी निकल जाता है कि खबर तक नहीं होती और बाद में अफसोस करना पड़ता है। बिल्कुल, अब देखिए ना 11:48 हो चुके हैं और आपकी शब्दावली भी हमारे पास बहुत संख्या में है। तो ये जो अगली शब्दावली हम तक पहुँची है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी साहब। लिखते हैं कि किस्मत का लिखा तो मिल ही जाएगा मौला, तू वो अता कर जो मुकद्दर में नहीं। आज किसी दिन थोड़े अच्छे हो जाते हैं तो वो किस्मत को बहुत दुहाई देते हैं। वहीं अगर किसी को कुछ परेशानी हो जाए तो दिन रात अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। मगर इंसान ने ये क्यों भूल जाता है कि किस्मत से बड़ी हिकमत होती है। अगर हम कोई काम करते हैं या कर्म करते हैं तो किस्मत पीछे पीछे चलती है। जैसा हमारे काम का रिजल्ट आता है उसी को किस्मत का नाम दे दिया जाता है। वास्तव में किस्मत हमारे कर्मों का निचोड़ है। जैसी करनी वैसी भरनी ही, यही किस्मत है।

ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है ग्राम पंजोनिया जला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया साहब की। लिखते हैं कि पीवी सिंधु 21वीं सदी में एक खेल के प्रतीक के रूप में सामने आई। वह भारत में खिलाड़ियों के लिए एक चमकता प्रकाश स्तंभ हैं। यह शटलर पिछले एक दशक में दुनिया भर में दर्जनों खिताब जीतकर दुनिया के शीर्ष पर पहुंच चुकी हैं। पीवी सिंधु भारत की पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन विश्व महासंघ चैंपियनशिप और ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने रियो डी जेनेरियो 2016 ओलंपिक खेलों में रजत पदक और टोक्यो 2020 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को यानी आज ही के दिन हैदराबाद में हुआ था। सिंधु के माता पिता भी बॉलीवुड खिलाड़ी थे। फुलेला गोपीचंद को एक्शन में देखने के बाद ही पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को अपने लिए चुन लिया और 8 साल तक वह नियमित रूप से ऐसे खेलती रहीं। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी लड़कियाँ खेलों में अपना नाम और भारत का नाम रोशन कर रही हैं। आज जन्मदिन पर पीवी सिंधु को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत ही अच्छी तरह आपने इशारा किया है। और वैसे भी कहते हैं सत्येंद्र जी कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अगर उन्हें हौसला मिले, हिम्मत मिले, साथ मिले और एक नई दिशा मिले तो वो जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं। ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है। ये हमारे श्रोता हैं समशूल कमर राही गंडुंडवारा से। लिखते हैं कि मोहब्बत एक इबादत है और उसमें डूब जाना जिंदगी। मोहब्बत में रहने वाला हर आंसू तस्वीर के दाने की अहमियत रखता है जिसे आशिक अपने महबूब के नाम का वर्द करता है। मोहब्बत का पहला उसूल जब्ते नब्ज है। जहां नब्ज सर्कस हुआ वहां मोहब्बत की पाकिजगी बगावत के गंदे पानी से नापाक हो गई और जहां उसमें इस्तकलाल और सब्र आया तो समझो कि ये पाकिजगी के नूर की तरह दिल में फैल गई। मोहब्बत रुसवाई की तरफ नहीं ले जाती। मोहब्बत का रास्ता इसार और कुर्बानियों की वादियों से होता हुआ मोहब्बत की जात में जम हो जाता है। मोहब्बत की महाराज तक सोचने के बाद कायनात के जर्रे जर्रे में मोहब्बत का जलवा नजर आता है। अगर ऐसा ना होता तो सीरी अपने फरहाद की कब्र में जिंदा न समा जाती। सोनी अपने महिलाल की मोहब्बत में कच्चे घड़े पर न तैरती। लैला अपने मजनू के प्यार में सहराब में न भटकती क्योंकि मोहब्बत के ये चिराग भले ही बुझ गए हों लेकिन इनकी मोहब्बत के तराने दुनिया में आज तक गूंजते रहेंगे क्योंकि मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो जिंदा रहती है हमारे धड़कन हमारे दिलों में, रूह की गहराइयों में, हमारी यादों में, गूंजते तरानों में, क्योंकि मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है। ये हमारे श्रोता हैं अनु बड़जात्या साहब और इन्होंने मुंबई से ये अपनी शब्दावली हम तक भेजी है। लिखते हैं कि रूप की मूरत शौर्य की खान पद्मनी रानी मेवाड़ की शान अलाउद्दीन की नापाक नजर से जौहर की ज्वाला में किया प्राणतान सिंह दीप राजकुमारी आई रतन सिंह के संग चित जोड़ सजाई।

आगे आप लिखते हैं कि जब किले पर घिराए दुश्मन हजार, छत्र छड़ियों ने चुनी आग की कतार। नमन उस रानी को जिसने बता दिया, औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मिट्टी में मिल जाना मंजूर है, पर गैरों के आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनु बढ़ जातिया जी अपनी शब्दावली हम तक पहुंचाने के लिए। और ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं हृदय कृष्ण सक्सेना, तुलिका सक्सेना, फूलपुर से। लिखते हैं कि पैसा एक रूप अनेक, बाहरे पैसा तेरे कितने नाम। मंदिर में दिया जाए तो चढ़ावा, स्कूल में फीस, शादी में दहेज, तलाक में गुजारा भत्ता, होटल में सेवा के लिए ट्रिप, बैंक से उधार लो तो कर्ज, श्रमिक के लिए वेतन, अदालत में जुर्माना, सरकार ले तो कर, अपहरण की फिरौती, अवैध रूप से रिश्वत, और मुझे दे तो गिफ्ट। मैं पैसा हूँ, मरने के बाद आप ऊपर नहीं ले जा सकते, मगर मैं जीते जी आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ। मैं नमक की तरह ही हूँ जो जरूरी हूँ, मगर जरूरत से ज़्यादा हो तो आपकी ज़िंदगी का स्वाद भी बिगाड़ सकता हूँ। मैं सारे फसाद की भी जड़ हूँ, फिर भी न जाने क्यों अब सब मेरे पीछे इतने पागल हैं। हर किसी को रहता है पैसे का गुरूर, मैं वो हूँ जो अपनों को अपनों से दूर कर देता हूँ। बिल्कुल सही बात है, पैसे की सबको ज़रूरत होती है और ये ज़रूरतें भी पूरी करता है। अंतिम शब्दावली आज हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम महेशपुर खेम से, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। लिखते हैं कि दोस्तों ये ज़िंदगी भी ना बड़ी अजीब है, इंसान जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है ऐसा सोचते नहीं हैं। इस दुनिया को बनाने वाले के खेल ही निराले हैं। ये ज़िंदगी है साहब, इसे हर हाल में ही जीना है, चाहे खुशी मिले या फिर गम, क्योंकि दोस्तों ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। ये खुदा की तरफ से बहुत ही खूबसूरत नेमत इंसान को अता की गई है। तो हम सबको चाहिए कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी जीने का खूबसूरत तरीका भी, क्योंकि इंसान का हर समय खूबसूरत नहीं होता, खुशनुमा नहीं होता, कुछ दिक्कतें परेशानी लगी रहती हैं। ये सब खुदा की मर्जी से ही होता है, पर हम सभी को दुख के समय घबराना नहीं चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छे दिन नहीं ठहर सकते तो बुरे दिनों की क्या औकात, इसलिए ज़िंदगी जैसी भी है हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और अपनी सुंदर सी शब्दावली हम तक पहुँचाई। छोड़ते हैं आपको इस गीत के साथ और दीजिए अनुमति मनोज को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप

0: मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी, रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कुछ संदेश।
2: अरे अरे सुनो, एक्सीडेंट हो गया।
3: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी।
4: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
3: नहीं, 112 लगाओ।
5: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
3: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
6: हेलो 112,
7: नमस्कार 112 यूपी,
6: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है,
7: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
6: सुनील।
7: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
6: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
7: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है, डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
8: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
9: सुनो ना।
10: हाँ?
9: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
10: तो रोका किसने है? हाँ?
9: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
10: मुझसे।
9: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
10: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
9: पर उससे मेरा क्या फायदा?
10: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
9: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
10: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
9: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 870-001-4242 पर।
11: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
12: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
11: लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
12: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
13: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
12: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
14: से नो टू प्लास्टिक।
15: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे

0: ओके पंख,
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

कार्यक्रम गीत आपके नाम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना तो अपने संदेश हमें लिख भेजिए इस ईमेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। जी हाँ, GETAPKENAAM नाम airrampur@gmail.com। इसी पर हम आपके संदेश पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं ग्राम गुरावा पोस्ट किलोद मध्य प्रदेश से नंदलाल राजपूत, राजू, मनुकाबाई, नंदनीबाई और रुद्र राजपूत। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगला संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह और अनिल शर्मा। कार्यक्रम में पहले गीत के लिए अपनी फरमाइश के लिए शामिल हो रहे हैं गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली से हमें संदेश भेजते हैं। और ये संदेश हमें मिला है विजय सुरलकर, रतलमाला सुरलकर, कुमकुम गुड़िया, मोताला, महाराष्ट्र से हमें संदेश भेजते हैं। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू जी का। राजवाड़ा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी और इनके परिवार के सभी लोग। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल और इनके परिवार के सभी लोग अपनी फरमाइश हम तक भेज रहे हैं। और ये संदेश हम तक पहुंचा है कर्नाटक स्टेट चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्वनी, आनंद और मनवीत। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रजदुल्ला अंसारी और इनके परिवार वाले। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और हमजा सिद्दीकी, इन्हीं के साथ हैं गुलशन साहिबा। ये संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं कुम्हार गली कोलगांव से पांडु, चंदन, उषा, चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग कुम्हार और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सलीम, फहीम, यासीन अंसारी और इनके साथ हैं इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश

हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं भोईनापार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, देव नारायण साहू, कुमारी योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई, त्रियांश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी लोग, विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, गुंजन छोटू, ललन मिश्रा हमें संदेश भेजते हैं नरहन स्टेट जिला समस्तीपुर से। ये फरमाइश हमें मिली है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव और इनके परिवार के सभी लोग। आप सबको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म राधा का संगम से। स्वर है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का, संगीत दिया है अनु मलिक ने और गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

0: यार प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या?
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
0: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं।
3: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए संदेश हम तक पहुंचे हैं करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजीत और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद दृषी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और DJ प्रधान। ये संदेश हमें मिला है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, ये हमारे श्रोता हैं। गोकुल चौक गंग जिला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी और अच्छे लाल। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल और इन्हीं के साथ हैं खुदाबख्श। आपने लिखा है रामदेवरा से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और इनके साथी। ये संदेश हमें मिला है मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम, यशफ, सुहेल हसन और रशीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभिया जुबैर और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, GS रामगढ़िया और इनके परिवार के सभी लोग। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज और इनके परिवार के सभी लोग हमें संदेश भेज रहे हैं। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, इन्हीं के साथ हैं। जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश रावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। ये संदेश हम तक पहुंचा है पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री वाई।

देवांगन और इनके परिवार वाले। मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन फरोजा मुस्कान और नगमान आज मंसूरी जी हमें संदेश भेजते हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं वेरणी से, राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बासेरे। ये ईमेल हम तक पहुंचा है एटा रोड गंडुंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम करीम शेख और डीएच बच्चन। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारी का, हार्दिक वंश बत्ता जी का, आपने अपना पता नहीं लिखा है। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं पाखुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद इन्हीं के साथ हैं। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। अगला संदेश हम तक पहुंचा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेजते हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार वाले। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल, कुणाल मेहरा और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेजते हैं। ये संदेश हमें मिला है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनके परिवार के सभी लोग हमें संदेश भेजते हैं। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से, गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। ये हमारे श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोट के, श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के, उत्तम जमदाड़े और इनके परिवार के सभी लोग। आप सबको सुनवाते हैं बिच्छू फिल्म में विनोद राठौर और अलका याग्निक के स्वर में ये गीत। संगीत तैयार किया है आनंद राज आनंद ने और फिल्म का नाम है बिच्छू। गीत को लिखा है समीर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया और इनके परिवार वाले। ये संदेश हमें मिला है जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। इन्हीं के साथ हैं शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये ईमेल हम तक पहुंचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार जी का। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेजते हैं। अगला ईमेल हमें मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। ये ईमेल हमें मिला है मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी जी का। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, उषार देव तामुरिया, डॉली बीबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रवा देवी तामुरिया और इन्हीं के साथ हैं मास्टर अलकबीर। आपने संदेश भेजा है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गांव जाकोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, गुलाम लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन जी का, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। ये ईमेल हमें मिला है बलराम गेट कासगंज से अहमद असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आवाद खान। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ग्राम व पोस्ट लदाबली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। ये ईमेल हम तक पहुंचा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर। इन्हीं के साथ हैं वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंडुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लोगना अंसारी, आलिया अंसारी और इनके परिवार वाले। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गांधी चौक राजनगर से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, क्रांति गुप्ता, भूलिया देवी गुप्ता, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, मधुबनी विहार से हमें संदेश भेजते हैं। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, वंडिंग खेड़ा पंजाब से हमें संदेश भेजते हैं। आप सबको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म हिना से, स्वर लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का है। फिल्म का नाम है हिना।

कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और इनके परिवार वालों का। ये संदेश हम तक पहुंचा है सुधाकर, राजे प्रशांत और संचित प्रथमेश इन्हीं के साथ हैं, सानवी और हर्षदा कालेगांव से हमें संदेश भेजते हैं। ये ईमेल हमें मिला है सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्री रामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका, विशाखा और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेजते हैं। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं पिपरिया से, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता और इनके परिवार के सभी साथी। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड से संदेश हम तक पहुंचा है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं निजामाबाद तेलंगाना से, अजीज, मतीन और इन्हीं के साथ हैं फारूक। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी हमें संदेश भेजते हैं रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं नवापारा से, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता और इनके परिवार के सभी लोग। रहमानिया मैसोल, सीतामणि, बिहार से बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा इन्हीं के साथ हैं। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। ये ईमेल हम तक पहुंचा है धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान जी का, जिला बदायूं से। बठिंडा डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेज रहे हैं। विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू, मोनू, रानू, सपना, श्रीवी, सलोनी और इनके परिवार के सभी लोग। रामगंज खंडवा से हमें संदेश भेजते हैं, इन्हीं के साथ हैं शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनाया और इनके परिवार के सभी लोग। जॉन डिकेस्टो जी हमें

अभी श्रोता सुन रहे थे अपने ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी।

0: छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 और 14 सेकंड हुए हैं। श्रोताओ, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। लेकिन पहले ये संदेश।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अब से थोड़ी देर में यानी 1:15 पर बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगी प्रियंका शर्मा और दिशा सक्सेना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अवधेश कुमार गौतम। सुनहरा दौर, इस कार्यक्रम में आज दिन में 2:30 पर सुनिएगा 50 के दौर के कुछ सुनहरे गीत। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00। कार्यक्रम आज शाम के साथ युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे संध्या 5:15 पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अवधेश कुमार गौतम।

संध्या 6:20 का समय रहेगा किसान साथियों के कार्यक्रम कृषि जगत का, जिसमें चर्चा होगी रसायनों के प्रयोग में रखें सावधानी विषय पर। साथ ही भेंटवार्ता होगी गेंदा, गुलाब और ग्लोडियस की खेती पर। इस बारे में डॉक्टर शिवशंकर शर्मा से बातचीत करेंगे जसमेंद्र सिंह। कृषि संकेत में बात होगी धान की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व विषय पर। साथ ही क्षेत्र संकलित बातचीत के अलावा लोकगीत और मौसम का पूर्वानुमान भी बताया जाएगा। कार्यक्रम लेकर आएंगे अनिल किशोर और प्रस्तुत करता है विक्रांत चौधरी। क्षेत्रीय गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास हम लेकर आएंगे शाम 7:00। संकलन सुहेल जैदी का है और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की।

शाम 7:30 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। ये कमेंट्री आप हमारे मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर सुन सकेंगे, जबकि मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से बता दें, क्षेत्रीय गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है विक्रांत चौधरी की, और युवाणी कार्यक्रम आज आप तक पहुंचेगा संध्या 5:15 पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अवधेश कुमार गौतम। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें आकाशवाणी लखनऊ से रिले की जाएंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में हिंदुस्तान की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अज्म और मुसलसल कोशिशों के जरिए उसने 21वीं सदी के सबसे बड़े तवानाई के बहरान पर कामयाबी से काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हर सतह पर बरवक्त फैसले किए, उभरते हुए बहरान का दुरुस्त अंदाजा लगाया, एक मौसर हिकमत अमली बनाई और मुल्की वसायल के मुतवाजन इस्तेमाल को यकीनी बनाया। वजीर आजम ने यह भी कहा कि सिफारतकारी और तजवीराती इकदाम के जरिए मुल्क ने इस बहरान से कामयाबी से निपटा।
1: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट नितिन नवीन कल पहली बार दो रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे। कौमी सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर में रियासती एग्जीक्यूटिव अहदेदारों और जिला सुदूर के साथ एक अहम मीटिंग की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने वजीर आला, नायब वजीर आला, बीजेपी के अरकीन पार्लियामेंट और एमएलसी से भी मुलाकातें की। कल लखनऊ के अपने दौरे के दौरान जनाब नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दरबार में अपना सर झुकाकर मुल्क और रियासत के लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। लखनऊ के अपने दो रोजा दौरे के दौरान कौमी सदर जनाब नितिन नवीन ने रियासती सदर पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में बीजेपी उत्तर प्रदेश के साबिक सुदूर की मीटिंग में भी शिरकत की और रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम श्री धर्मपाल कौमी सदर आज मुख्तलिफ आवामी तकरीबात में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल ने अवामी अहमियत की अराजी से मुतल्लिक मुकदमात के जल्द और मियारी निपटाने को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत रिजर्व कैटेगरी की जमीन, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, नजूल अराजी, खाली होने वाली जायदाद और दुश्मन की जायदाद से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत अब 3 रुकनी खसूसी बेंच करेगी। इस इंतजाम को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मिस्टर रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मसाइल पर बामानी बहस और फैसला साजी पर तवज्जो दी जाएगी। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा इस साल भी बड़े जोश के साथ शुरू हुई। यात्रा के पहले 2 दिनों के दौरान 32,313 जायरीन ने मुकद्दस गार की जियारत की। दरियसना सालाना यात्रा के लिए यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रवाना हुआ। रियासत के कई इजला में मरतूब गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इधर लखनऊ समेत कुछ इजला में बारिश होने से शदीद गर्मी से राहत मिली है। कानपुर और टूंडला में कल की मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक

0: रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही हैं प्रियंका शर्मा और दिशा सक्सेना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अवधेश कुमार गौतम।

0: गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ रविवार का आनंद ले रहे होंगे। तो मैं आपकी आज की साथी दिशा दीदी
1: और मैं आपकी दोस्त प्रियंका दीदी आ गए हैं नए सत्र नए महीने को मनोरंजन से भरने के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम कलियां लेकर।
0: वाह प्रियंका, क्या बात कही, नया सत्र जैसा कि गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद स्कूलों में फिर से चहल पहल लौट आई है और मुझे लगता है कि स्कूल की घंटी की आवाज, दोस्तों के संग मस्ती बच्चों ने बहुत मिस की होगी।
1: बिल्कुल दिशा, छुट्टियों में देर तक सोना, खेलना, आम खाना, नाना नानी के घर जाना, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने दोस्तों और स्कूलों की याद भी आने लगती है।
0: और अब फिर वही सुबह जल्दी उठना, यूनिफॉर्म पहनना, टिफिन तैयार करना और स्कूल निकल पड़ना।
1: शुरुआत में तो थोड़ा आलस लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर से वही पुराना रूटीन बन जाता है।
0: बच्चों, सुबह जल्दी उठने का एक फायदा भी है।
1: बिल्कुल, सुबह की ताजी हवा मन को अच्छा महसूस कराती है बच्चों, और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखती है।
0: इसलिए ट्राई कीजिए कि रात को समय पर सोएं ताकि सुबह आराम से उठ सकें।
1: दिशा, पता है मुझे तो ये लगता है कि छुट्टियों के बाद ना बच्चे कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, जैसे कभी कॉपी रखना, कभी पानी की बोतल रखना।
0: बिल्कुल, इसलिए बच्चों रात में ही टाइम टेबल देख कर अपना बैग तैयार कर लेना आप।
1: और हाँ बच्चों, अपनी मम्मी से कहना कि रेन कोट बैग में जरूर रखें, क्योंकि इन दिनों दिशा बारिश भी तो शुरू हो गई है ना।
0: बिल्कुल प्रियंका, बारिश में भी भीगने का कितना मजा आता है ना। लेकिन
1: बिल्कुल, लेकिन बारिश में बच्चों ज्यादा देर तक भीगना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता,
0: क्योंकि भीगे रहने से सर्दी, जुकाम और बुखार भी तो हो सकता है।
1: इसलिए बच्चों रेन कोट रखना ना भूलें, और अगर कपड़े कभी भीग जाएं तो घर पहुंचकर तुरंत सूखे कपड़े जरूर पहन लें।
0: प्रियंका, बारिश के मौसम में एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: वो क्या दिशा?
0: साफ सफाई।
1: बिल्कुल सही कहा बच्चों, खाना खाने से पहले और वॉशरूम यूज करने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं,
0: और हमेशा साफ और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीने की कोशिश करें।
1: बच्चों, स्कूल जाते समय सड़क पर भी तो बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए हमें।
0: बिल्कुल, सड़क पार करते समय कभी भागना नहीं चाहिए।
1: पहले अपने राइट और लेफ्ट साइड देखें और फिर लेफ्ट साइड ही सड़क के हमें चलना चाहिए।
0: अगर स्कूल बस से जाते हैं तो बस पूरी तरह रुकने के बाद ही चलना या उतरना चाहिए।
1: बच्चों, छुट्टियों में आपने खूब खेला होगा, और आप ये मत समझना कि स्कूल खुल गए तो आपका खेलना बंद हो गया।
0: बिल्कुल, आप रोज थोड़ा समय निकाल कर खेल सकते हैं, इससे शरीर भी फिट रहता है और मन भी खुश रहेगा।
1: बच्चों, आपको पता है मुस्कुराने से भी मन खुश रहता है।
0: बिल्कुल, इसलिए स्कूल जाइए, दोस्तों से प्यार से मिलिए, टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए,
1: क्योंकि छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमें बड़ा इंसान बनाती हैं। बच्चों,
0: अभी हमने स्कूल, बारिश और सेहत की बात करी, आपको पता है कल हमने स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई।
1: जी हाँ बच्चों, और आपको पता है विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे बहुत ही जिज्ञासु थे, उन्हें हर बात को समझना और उसके पीछे का कारण जानना बहुत अच्छा लगता था।
0: वे केवल किताबें पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि जो सीखते थे उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश भी करते थे।
1: बच्चों, यही तो है एक अच्छे स्टूडेंट होने की पहचान, केवल पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि अच्छी बातों को अपने व्यवहार में लाना भी बहुत जरूरी है।
0: स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जो सच्चा, ईमानदार, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला हो।
1: इसलिए जब भी आप स्कूल जाएं बच्चों, केवल अपनी किताबों पर ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार पर भी ध्यान दीजिए। अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए, अपने दोस्तों से प्यार से बात कीजिए, और किसी का भी मजाक कभी ना उड़ाएं।
0: बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत प्रसिद्ध संदेश भी है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
1: वाह दिशा, कितना सुंदर संदेश है। इसका मतलब है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो मेहनत करते रहना चाहिए। रास्ते में कठिनाइयां तो जरूर आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है बच्चों।
0: मान लो अगर किसी बच्चे के गणित में कम अंक आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पढ़ाई में कमजोर है। अगर वह रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे, मेहनत करे, तो वह जरूर आगे बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल, असफलता हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि हमें और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यही सीख हमें विवेकानंद के जीवन से मिलती है।
0: बच्चों, वे हमेशा कहते थे कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, अगर हमें खुद पर भरोसा होगा तो हम मुश्किल से भी मुश्किल काम कर सकते हैं।
1: इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा कहिए मैं कोशिश करूंगा, सीखूंगा और एक दिन जरूर सफल होऊंगा।
0: और सफलता केवल डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनने में नहीं होती, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी होती है, जो अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों की बातें माने, सच बोले, दूसरों की मदद करें, वही वास्तव में सफल कहलाता है।
1: बच्चों, उनकी पूर्ण

0: देश।
1: जल्दी
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बच्चों को लगे कि ये कितना मुश्किल शब्द है, लेकिन इसका मतलब बच्चों बहुत आसान है।
1: जूनोसिस यानी ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों तक पहुंच सकती हैं।
0: इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है बच्चों कि हमें जानवरों से डरना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, जानवर हमारे अच्छे

0: कि हम जानवरों से प्यार करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन अपनी और अपने परिवार की सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे।
1: अरे कौन है
2: दोपहर में? कौन हमारे स्टूडियो में दस्तक दे रहा है? जरा देखती हूँ।
1: अरे वाह, नमस्ते, आप कौन हैं? पहले तो कभी आपको हमारे स्टूडियो में नहीं देखा।
3: नमस्ते बच्चों, नमस्ते दीदी, मेरा नाम है विटामिन ए। आज मैं पहली बार कलिया स्टूडियो में आया हूँ, सोचा अपने नन्हे दोस्तों से मिलूं और उनसे दोस्ती करूं।
1: वाह बच्चों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नए मेहमान विटामिन ए का।
3: अरे वाह, हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो?
4: मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, लेकिन अंकल मैंने आपका नाम तो सुन लिया, पर मैं आपको पूरी तरह से जानता नहीं हूँ।
3: कोई बात नहीं, आज दोस्ती भी करेंगे और बहुत सारी मजेदार बातें भी सीखेंगे।
1: विटामिन जी, सबसे पहले हमारे इस नन्हे से दोस्त को ये तो बताइए कि विटामिन होता क्या है।
3: बहुत अच्छा सवाल दीदी। बच्चों, हमारा शरीर एक छोटी सी मशीन की तरह है, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए वैसे ही हमारे शरीर को ताकत, बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए कई पोषक तत्व चाहिए, उन्हीं में से एक है विटामिन। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा खाना बहुत जरूरी है।
1: तो विटामिन ए जी, आपका सबसे बड़ा काम क्या है?
3: दीदी, मेरा सबसे बड़ा काम है आंखों की रोशनी अच्छी रखना, रात में देखने में मदद करना, शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाना, त्वचा को स्वस्थ रखना, बच्चों की अच्छी ग्रोथ में मदद करना। सुपर हीरो तो नहीं, सुपर विटामिन जरूर हूँ।
1: अगर किसी बच्चे के शरीर में आपकी कमी हो जाए तो क्या होगा, ये तो बताइए।
3: तब रात में कम दिखाई दे सकता है, आंखें सूखी हो सकती है, बार बार बीमार पड़ सकते हैं, शरीर की बढ़त धीमी हो सकती है, इसलिए मेरी दोस्ती हमेशा बनाए रखना। मैं तो बहुत सारी चीजों में रहता हूँ, जैसे गाजर, पपीता, आम, पालक, मेथी, शकरकंद, दूध, मक्खन, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और बहुत सारी चीजों में। फिर तो आज से दोस्ती करनी पड़ेगी।
1: चलो बच्चों, देखते हैं विटामिन अंकल किन किन में छुपे हैं। मैं उनका नाम बोलूंगी और विटामिन अंकल आपको आंसर देंगे कि वो उसमें रहते हैं या नहीं। आलू?
3: नहीं।
1: गाजर?
3: हाँ, ये तो बहुत ज्यादा।
1: पालक?
3: हाँ।
1: चॉकलेट?
3: बिल्कुल भी नहीं।
1: आम?
3: हाँ।
1: कोल्ड ड्रिंक?
3: नहीं नहीं नहीं। नहीं मेरे दोस्त, चॉकलेट कभी हमें ठीक है लेकिन रोज नहीं, रोज हमें फल, हरी सब्जियाँ और दूध पीना चाहिए। गाजर खाओ, आम में खाओ, पालक मेथी रोज बनाओ, आखे चमके तरबूज खाए, विटामिन ए सबको खाए।
1: बच्चों, एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। तो दोस्त थे रोहन और मोहन। रोहन रोज फल और सब्जियाँ खाता था, मोहन सिर्फ चिप्स और टॉफी ही खाता था। कुछ दिनों बाद रोहन खेल में सबसे तेज आगे निकल गया, लेकिन मोहन ना

0: जल्दी थक गया और हार भी गया। पता है क्यों? क्योंकि रोहन का दोस्त था विटामिन ए।
1: विटामिन अंकल, आज से मैं भी गाजर, पालक और हरी सब्जियां जरूर खाऊंगा, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है।
2: शाबाश, और अपने दोस्तों को भी बताना।
0: अच्छा विटामिन जी, एक बात तो बताइए, आपके दोस्त कौन कौन हैं?
2: अरे दीदी, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं।
0: तो आप उन्हें आज अपने साथ क्यों नहीं लाए?
2: आज ही अगर मैं सबको ले आता तो अगले रविवार कैसे मनाता? बस इतना समझ लीजिए कि अगले रविवार मेरा एक और खास दोस्त आपके स्टूडियो में जरूर दस्तक देगा, लेकिन उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज रहेगा।
0: बच्चों, आप भी अगले रविवार जरूर सुनिए स्टूडियो में दस्तक, क्योंकि पता नहीं अगला मेहमान कौन होगा। तब तक खूब फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।
3: वाह दिशा, विटामिन ए ने तो बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ हेल्दी रहना भी सिखा दिया।
4: बच्चों, स्वास्थ्य की बात हो ही रही है तो इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण डे भी मनाने वाला है।
3: जी हाँ बच्चों, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या डे यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है।
4: अरे वाह, लेकिन प्रियंका, ये जनसंख्या होती क्या है? कहीं हमारे नन्हे दोस्तों को ये तो बहुत मुश्किल शब्द तो नहीं लग रहा होगा?
3: बच्चों, जनसंख्या का मतलब है किसी जगह पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या। जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं तो आपके परिवार की जनसंख्या हुई 5।
4: बिल्कुल सही। और जब किसी देश में लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो कई तरह की चुनौतियां भी सामने आती हैं।
3: जैसे सभी लोगों के लिए अच्छा खाना, साफ पानी, अच्छे स्कूल, अस्पताल, घर और रोजगार की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है।
4: मतलब इस दिन का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि हम सभी मिलकर स्वस्थ, शिक्षित और खुशहाल समाज बनाएं।
3: बिल्कुल। और बच्चों, याद रखिए, बड़ा देश वह नहीं होता जहां सिर्फ ज्यादा लोग हों, बल्कि बड़ा देश वह होता है जहां लोग स्वस्थ, शिक्षित, जिम्मेदार और जागरूक हों।
4: बच्चों, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, छोटा परिवार खुशहाल परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य है सबसे बड़ा उपहार।
3: क्या बात है दिशा। और बच्चों, अब आज की चर्चा में इतना ही। अब समय हो चला है कलियां प्रोग्राम की जान यानी नन्हे वो सेगमेंट का। तो आइए बच्चों, सुनते हैं नन्हे बच्चों की प्यारी प्यारी सी प्रस्तुतियां और उनके साथ हमारी बातचीत।

0: नन्हे बोल कार्यक्रम के अंतर्गत प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे स्टूडियो में आते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसी बीच एक प्यारा सा बच्चा हमारे बीच आज स्टूडियो में आया है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जानते हैं सबसे पहले इनका नाम। नाम क्या है आपका?
1: नित्यांश सक्सेना।
0: नित्यांश सक्सेना, ओके। नित्यांश, आप पहले भी हमारे स्टूडियो में आए हो ना एक बार, कैसा लगा आपको आकर?
1: अच्छा,
0: इसलिए आज आप दोबारा हमारे बीच आए हैं। तो नित्यांश, आप कौन सी क्लास में आ गए ये बताइए अपने दोस्तों को।
1: क्लास थर्ड ए।
0: थर्ड ए में आ गए हैं, ओके। अब आपके स्कूल खुल गए ना। तो ये बताइए, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं? फिर अब कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग करिए कि आप अब थर्ड क्लास में आ गए हैं तो कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, दोस्तों के संग कैसे रहेंगे, खूब मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे?
1: हमारी मैम तो सबसे स्ट्रिक्ट है, वो ओके वो मस्ती नहीं करने देती।
0: अच्छा, आपके टीचर मस्ती नहीं करने
1: तब
0: देते?
1: करती हैं वो, बच्चे तब करते हैं जब मैम चली जाती हैं।
0: अच्छा, यानी कि जब मैम नहीं होती तब आप लोग मस्ती करते हैं?
1: मैं नहीं करता, मैं चुपचाप बैठा रहता।
0: अरे वाह नित्यांश, तो इसका मतलब गुड बॉय है। आप गुड बॉय हैं, चलिए अच्छी बात है। और टीचर भी ठीक है ना, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी चाहिए ना स्कूल में, और जब आपका इंटरव्यू होता है तब आपको मस्ती करनी चाहिए, है ना? ऐसे करते हैं नित्यांश आप। तो नित्यांश, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, बच्चे आपकी आवाज सुन रहे हैं, तो क्या सुनाएंगे आज आप बच्चों को ये बताइए।
1: एक स्टोरी।
0: स्टोरी, तो स्टोरी का नेम बताइए सबसे पहले, क्या नेम है आपकी स्टोरी का?
1: आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है गलती का एहसास।
0: वाओ, गलती का एहसास, भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हर किसी का अगर गलती होती है तो उसका एहसास जरूर करना चाहिए नित्यांश। तो चलिए भाई नित्यांश।

0: हम एक स्टोरी सुनाने वाले हैं प्यारी सी, तो आइए सुनते हैं नित्यांश के मुंह से उनकी प्यारी प्यारी स्टोरी।
1: वर्षा के उत्सव मनाने के लिए पार्टी का आयोजन किया गया था राजा शेर खान की तरफ से। जानवरों के लिए खाने के लिए वे शाकाहारी व मांसाहारी भोजन रखा गया था। हाथी और हथनी ढोलक बजाते हैं दोनों। उसके बाद फिर सब लोग बहुत मजे करते हैं क्योंकि बारिश का मौसम था।
0: जी
1: और वहाँ पर एक छोटा भालू भी था। उसके बाद फिर जो राजा शेर खान की ओर से उपहार दिए गए, बच्चे उपहार पाके खुश थे। और एक छोटा भालू भी था जिसने जो उपहार देख के उसके मन में लालच आ गया। फिर उसने जाकर चुपके से सारे उपहार चुरा लिए। और फिर तभी हाथी का बच्चा रोता हुआ आया और कहने लगा कि पिताजी, मेरे उपहार किसी ने चुरा लिया। उन्होंने बोला, अच्छा, मैं भी पता लगाता हूँ। फिर उसके बाद लोमड़ी का बच्चा रोता हुआ आया। उसने भी कहा कि उसका उपहार भी किसी ने चुरा लिया। बारी बारी से सब बच्चे यही शिकायत करने लगे। तो जैसे ये बात शेर खान को पता चली, वो तुरंत वहां पहुंच गए और गार्ड कुत्ते को कहा, सभी की एक एक बारी बारी से तलाशी लो। किसी के भी पास नहीं था किसी का उपहार। फिर मधुमक्खी को उस पर शक हो गया, अब छोटे बालू पर। वो फिर उसके कोट के अंदर घुस गई, उसे काटने लगी। और जो छोटा भालू था वो उछलने लगा। उसके बाद फिर एक एक पूरी तरह से सारे के सारे उपहार निकलने लगे उसके कोट से है। फिर राजा शेर खान ने बोला, क्या हुआ? उसने बोला, कुछ नहीं, मधुमक्खियों ने काट लिया। बोला फिर उन्होंने बोला कि सर तो कोट उतार लो। वो फिर चिंता में पड़ गया, पर उसने फिर उतार लिए। उतनी देर में सारे के सारे उस उपहार निकले आए। फिर राजा शेर खान ने कहा, ये क्या? फिर उस देर में मधुमक्खी ने बोला कि ये हमारा शहद भी चुराता है। फिर उसके बाद राजा शेर खान ने उससे कहा कि यहाँ चोरों का कोई काम नहीं है। तो फिर वो कहता है, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी राजा शेर खान, मैं आज ही यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर उन्होंने उन्होंने शेर खान थे उन्होंने कहा कि अगली अगली बार से अगर तुमने ये किया तो तुमको मौत की सजा दी जाएगी। उसके बाद छोटे भालू को गलती का एहसास हो गया।
0: वाह नित्यांश, आपने बहुत अच्छी कहानी
1: अब
0: सुनाई। उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है इस स्टोरी का।
1: हमें कभी भी लालच और चोरी नहीं करनी चाहिए।
0: हाँ जी, क्या बात है, बहुत ही सही बात कही नित्यांश आपने, और बच्चों को भी इस कहानी के माध्यम से सिखाया कि हमें कभी भी चोरी या लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चोरी या लालच करेंगे ना, तो जैसे वो छोटे भालू का हाल हुआ ना, वैसे हमारा हाल भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए, है ना, और ईमानदारी से रहना चाहिए। वाह नित्यांश, आपकी स्टोरी बहुत मज़ेदार थी, आपकी स्टोरी की जो सीख थी वो भी मज़ेदार थी, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। और आपने देखी ये स्टोरी, आपको लर्न थी ना नित्यांश, आपने खुद से ये स्टोरी सुनाई।
1: मम्मी ने लर्न कराई थी।
0: आपकी मम्मी ने लर्न कराई थी, बहुत अच्छी बात है, आपकी मम्मी ने आपको बहुत अच्छी स्टोरी लर्न कराई थी, बहुत अच्छा मोरल भी था स्टोरी का। तो नित्यांश आज आप हमारे बीच आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अच्छा ये बताइए नित्यांश, अभी जो आपकी छुट्टियां बीती हैं, छुट्टियों में क्या किया आपने?
1: अपने मामा के गया गाजियाबाद, बहुत मजे किए।
0: अच्छा गाजियाबाद गए थे आप?
1: और अपने छोटे भाई की अपने
0: तो आप उसके साथ खूब खेले अपनी छुट्टियों में। अच्छा नित्यांश, आपको हॉलीडे होमवर्क भी तो मिला होगा, मिला था?
1: मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया।
0: चलिए नित्यांश, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे प्यारी प्यारी बातें करी, अच्छी अच्छी सी स्टोरी सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: यू वेलकम।
0: बाय।
2: सुप्रभात, मेरा नाम मरियम रहमान, मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। मैं सेफ एंड सोल्ड स्कूल में पढ़ती हूँ। स्कूल का पहला दिन, मैं स्कूल गई थी, मैंने ढेर सारा वर्क करा और मैंने अपने दोस्तों के साथ बातें करी और मैंने ये भी बताया कि मैं छुट्टियों में कहाँ कहाँ गई थी। मैं नानी के घर गई थी, नानी के घर पे मैंने अपने कजन्स के साथ खूब खेला, बहुत ज़्यादा, बैडमिंटन भी, क्रिकेट भी और बहुत चीज़ें, और मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें खाई। मेरी नानी ने रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाई। धन्यवाद। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।
3: जी, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम मनीष अयान खान।
3: अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं अयान आप?
4: आई एम स्टडीइंग इन 4th।
3: और 4th क्लास में पढ़ते हैं आप, किस स्कूल में पढ़ते हैं?
4: इन हादी अकेडमी।
3: हादी अकेडमी। अयान, अच्छा ये बताइए कि आपको जो छुट्टियों में असाइनमेंट मिला था वो आपने कंप्लीट किया? इतने दिन बाद स्कूल खुला था, आप स्कूल गए क्या?
4: नहीं मैम, हमारा असाइनमेंट, हमने छुट्टियों में बहुत मजा आया, असाइनमेंट भी बहुत हमने मेहनत से और अच्छा करा, हमने अपनी मैम को दिखाया तो मैथ वाली मैम ने हमें फुल मार्क्स दिए, इंग्लिश वाली मैम ने भी, साइंस वाली मैम ने भी फुल मार्क्स दिए और हमारे मैथ वाली मैम ने किया, तुमने तो बहुत अच्छा काम करा, हमें गुड भी दी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सभी मैम्स ने आपका असाइनमेंट बहुत अच्छे से चेक किया और आपको फुल मार्क्स मिले और गुड भी मिला है, वेल डन अयान। और ये बताइए कि आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड से मिले?
4: जी मैम, बहुत मजा आया, हम दो अपने फ्रेंड के साथ ग्राउंड खेले गए, हमने क्रिकेट भी खेला, फुटबॉल भी खेली।
3: अरे वाह। अच्छा अयान, ये बताइए कि आपको कोई पोयम आती है? आज आप क्या सुनाने वाले हैं हमें?
4: पोयम नहीं आती।
3: कोई हम नहीं आती है, कोई नात आती है आपसे? नात आती है तो नात सुना दीजिए।
4: जब हुई जंगे ओहद करे अल्लाह मदद, पहुंचे मैदान मोहम्मद ने जो लश्कर से कहा, जाओ सब अपनी जगह और सुनो हुक्म मेरे, जब तक मैं न कहूँ छोड़ना मत अपनी जगह, ये मगर हो न सका झूठा ऐलान हुआ, मुस्तफा हमारे गए, जब मोहम्मद ने सुना वो लगा अपना शरफ, बागे सब घर की तरफ, तनहाना भी शेर खुदा का पहुंचा, अर्शद तलवार बसी सदा रहती हुई, ला फतह इल्ला अली, तेरे लिए ऐसे लड़े रंग दुश्मन न रुके, घर भागे थे फिर लौटे तो मोहम्मद ने क्या, तुम तो लोगों ने छोड़ लगा तो छोड़ो ने।
3: ओके अयान, थैंक यू अयान।
4: थैंक यू मैम।
5: गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु एंड आई स्टडी इन क्लास 8। माय स्कूल नेम इज गाइडेंस इंटरनेशनल स्कूल एंड माय मदर नेम इज मिसेस आर्दसैनी, माय फादर नेम इज मिस्टर श्रीकांत। माय ऑल हॉलीडे होमवर्क इज डन and my teachers is very happy to see my all holiday homework and give me full marks. In holiday I was miss my school because there is a very big playground. I come back to school, I feel very happy, all the teachers are very happy to see me and I also happy to see him. Thank you.
6: Hello,
7: kaise hain aap?
6: मैं ठीक हूँ दीदी, आप ठीक हो?
7: हाँ मैं बढ़िया हूँ, आपका क्या नाम है?
6: अर्पित सैनी।
7: अर्पित सैनी, अच्छा आप ये बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है?
6: मम्मी और मेरे पापा, दीदी और मैं।
7: अच्छा, और आपका कोई बड़ी बड़ी बहन जो है उनका नाम क्या है?
6: पीहू।
7: पीहू नाम है, और दोनों आप लोग लड़ते तो नहीं हो?
6: नहीं
7: नहीं लड़ते, कोई लड़ाई नहीं होती है?
6: नहीं
7: नहीं होती है। अच्छा, दोनों साथ में स्कूल जाते हैं?
6: हाँ।
7: अच्छा ये बताइए आपकी गर्मी की छुट्टियां कैसी गईं, आपने कुछ नया सीखा?
6: हाँ सीखा, गर्मियों की छुट्टी में
7: क्या सीखा?
6: मैंने कविता और भजन सीखे।
7: अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, गर्मी की छुट्टियों में आपने कविता और भजन सीखे। आपकी कोई हॉबी है, आपको क्या करना ज्यादा पसंद है?
6: मुझे सब्जेक्ट तो विज्ञान अच्छा लगता है वैसे।
7: अच्छा विज्ञान अच्छा लगता है। ये मैं हॉबी पूछ रही हूँ कि आपको क्या सबसे ज्यादा करना पसंद है, जब आप खाली होते हो तो क्या करते हो आप? खेलते हो, टीवी देखते हो, पढ़ते हो, या फिर क्या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो?
6: खेलता हूँ वैसे तो।
7: खेलती हो?

0: मोहाने संग लगती हूँ ऐसी, जैसे चंदा संग चको सीरा दे राधे, जैसे चंदा संग चको सीरा दे राधे। मैं तो मोहाने संग हो रहा वृंदावन में सो सीरा दे राधे।
1: आपने तो बहुत अच्छा भजन सुनाया, आप कुछ और भी सुनाने वाले हैं?
0: हाँ सुनाओ दीदी
1: हाँ हाँ सुनाओ।
0: सुबह।

0: भूले हम इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम ही से है हर सुबह तुम ही हर शाम प्रभु। कहते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। कहते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आपको प्रार्थना दीदी मेरी कैसी लगी?
1: मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है जो आपको सुन रहे होंगे ना बच्चे, उन्हें भी बहुत पसंद आई होगी अर्पित की आवाज़ में। तो अच्छा, ये अर्पित, ये बताइए आपको ये प्रार्थना कहाँ से सीखने को मिली?
0: मम्मी ने सिखाई थी मेरी।
1: मम्मी ने सिखाई थी? तो बहुत अच्छी प्रार्थना थी। आप सुबह सुबह उठ के करते हो प्रार्थना?
0: हाँ
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अर्पित, ये बताओ आपको स्कूल जाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे हम अगली बार फिर बात करेंगे, आपसे ना फिर से हम भजन सुनेंगे। अगर आपको कुछ और भी सुनाना अच्छा लगता है तो आप हमें जरूर सुनाइएगा, ठीक है? बाय।
0: ओके दीदी बाय।
1: नमस्ते।
0: दीदी नमस्ते। हेलो
1: हेलो,
0: मैं
1: कैसे हैं आप?
0: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और क्या नाम है आपका?
0: माय नेम इज जिज्ञासा गंगवार,
1: आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
0: सेकंड।
1: सेकंड क्लास में पढ़ती हैं जिज्ञासा। अच्छा ये बताइए, स्कूल तो खुल गए हैं तो कैसा लग रहा है स्कूल जाके? अरे
0: मुझे स्कूल में अच्छा लग रहा है, मैं स्कूल में जाके फन कर रही हूँ।
1: वाह, मतलब छुट्टियां में मजे भी करे और जिज्ञासा ने अब स्कूल जाके पढ़ाई भी कर रही है ना? तो छुट्टियों में क्या क्या करा आपने पूरा, आप हमें बताएंगी?
0: ड्राइंग
1: ड्राइंग करी छुट्टियों में, बहुत बढ़िया। अच्छा आपने हमसे पहले भी बात करी थी तो आपने बताया था आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है ना? अच्छा जिज्ञासा, ये बताइए आज आप हमारे कलियर प्रोग्राम के बच्चों को क्या सुनाएंगी?
0: एक कहानी,
1: कहानी सुनाएंगी? सुनाइए।
0: एक समय की बात है। एक बार ऐसे परिवार में दो बच्चे रहते थे, श्रेयांशी का श्रेयांश। उन दोनों को बाहर की जंक फूड चीज खाना पसंद था। बहुत दिन तक उन्हें जंक फूड खाया। फिर माँ ने बोला कि अगर तुम जंक फूड बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाओगी। तुम हरी सब्जियां फल खाओ तो तुम्हारी आंखें ठीक रहेंगी। तो उन दोनों ने बोला कि नहीं, हम पिज्जा बर्गर खाएंगे। फिर एक बार फिर से प्यार से समझाया माँ ने कि अगर तुम हरी सब्जियां फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें अच्छी रहेंगी। श्रेयांशी का ने मान लिया और श्रेयांश ने बोला कि नहीं, मैं पिज्जा बर्गर खाऊंगा। फिर कुछ समय के बीतने के बाद श्रेयांशी का की आंखें ठीक थी और श्रेयांश

0: उसकी आंखें खराब थी। फिर वो स्कूल गया, फिर मैंने एक इजी सा सवाल पूछा, 2 + 2 कितना होता है। फिर उसको धुंधा धुंधा दिख रहा था श्रेयांश को, फिर वो आंसर बता नहीं पाया। मैम बोली कि तुम आसान सा क्वेश्चन नहीं बोल पाए। फिर मैम गई और फिर उसके माँ को फोन लगाया। फिर माँ आई, फिर टीचर बोले कि इसने इतना आसान सा सवाल नहीं दिखा बता पाएगा। फिर श्रेयांश बोला कि 2 + 2 = 4 आता है, मुझे दिख नहीं रहा था। माँ ने बोला कि तुम हरी सब्जियां नहीं खाते हो इसलिए, तुम पिज्जा बर्गर खाते खाते तुम्हारी आंखें खराब हो गई। फिर पिता ने फिर वो रोने लगा। फिर बोला कि कोई बात नहीं, मैं चश्मा बनवा देता तुम्हारा। फिर वो चश्मा लगाया, फिर उदास होकर चला गया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें जंक फूड कभी कभार खाना चाहिए, हेल्दी चीजें ज्यादा खानी चाहिए, इससे हमारी आंखें स्ट्रांग होती है।
1: आप खाते हो जंक फूड?
0: नहीं, मैं कभी कभार खाती हूँ।
1: अच्छा, जो सच सच बताना,
0: सच
1: सच सच बता रही है तो बहुत
0: सच
1: अच्छी बात है जिज्ञासा आपकी। और आप क्या क्या हेल्दी फूड खाते हैं?
0: बता रही हूँ। और एप्पल बनाना खाना चाहिए।

0: बच्चों अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा सेगमेंट नन्हे बोल, जिसके अंतर्गत प्यारे प्यारे बच्चों ने हमारे संग प्यारी प्यारी सी बातचीत करी और हमें अपनी प्यारी प्यारी सी प्रस्तुतियां भी सुनाई। और देखा ना देशा, बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, अब उनका नया सेशन स्टार्ट हो गया है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, उन्होंने स्कूलों में क्या क्या किया सब हमारे संग शेयर किया।
1: बिल्कुल प्रियंका, और जैसा कि हमने आज विटामिन ए की एंट्री कराई और देखते हैं नेक्स्ट रविवार हमारे बीच कौन नए मेहमान आएंगे, आपको इंतज़ार रहेगा ना? मुझे लगता है बच्चों को भी बहुत इंतज़ार रहेगा।
0: जी हाँ दिशा, मुझे भी बहुत इंतज़ार है कि विटामिन ए के बाद कौन सा विटामिन हमारे स्टूडियो में दस्तक देगा और बच्चों को ज्ञान देगा कि विटामिन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। इसी के साथ ही दिशा देखिए, अब कार्यक्रम का समय जो है समापन की ओर हो चला है, तो हमें जाना होगा, पर बच्चों से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि बच्चों आपको हमारा आज का कल्याण कार्यक्रम कैसा लगा, हमें लिख भेजिएगा। सबसे पहले बच्चों आप हमें अपने पत्र भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है कल्याण कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901।
1: और हमारा ईमेल एड्रेस है पत्र मिला airrampur@gmail.com।
0: मुझे लगता है दिशा बच्चों ने हमारा जो एड्रेस है नोट कर लिया होगा और मेल एड्रेस भी नोट कर लिया होगा और बच्चे हमें बताएंगे कि उनको हमारा आज का कल्याण कार्यक्रम कैसा लगा। और जो हम आज नया सेगमेंट भी लेके आए ना, इसके बारे में हम कहते हैं बच्चों आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा। और बच्चों की प्यारी प्यारी सी प्रस्तुतियाँ यूँ ही चलती रहेंगी और जो बच्चे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे स्टूडियो आ सकते हैं। रविवार को हमारा कार्यक्रम रहता है, तो बच्चों रविवार आपके जैसे कि स्कूल की छुट्टी भी होती है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ, हमसे जुड़ें और जो भी आप सुनाना चाहते हैं अपने दोस्तों को वो हमारे कार्यक्रम में आकर सुना सकते हैं।
1: प्रियंका देखिए, आप टिक टिक घड़ी कर रही है और हमारे जाने का समय आ चला है, तो तब तक के लिए आपकी अपनी प्यारी प्रियंका दीदी और दीदी दिशा को दीजिए अनुमति
0: और चलते हुए प्रेम से बोलिए जय।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही थी प्रियंका शर्मा और दिशा सक्सेना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अवधेश कुमार गौतम।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। हुर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तंबानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
4: And greater economic engagement between these two large countries.

0: यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दीने दीने वो मारे ढालते हैं जैसे पानी में ढूंढे ढेला।
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना लेने चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट

0: जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 और 20 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

सुनहरा दौर कार्यक्रम में आज श्रोताओं हम आपके लिए लाए हैं 1950 के दशक के कुछ सुनहरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं अफसाना फिल्म से। इस गीत में स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी का।

ये गीत आपने सुना फिल्म अफसाना से, स्वर था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद के स्वर में। फिल्म का नाम है संग दिल।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 1950 के कुछ यादगार गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, फिल्म का नाम है बैजू बावरा।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनारकली से। इस गीत में स्वर है लता मंगेशकर का।

ये गीत आपने सुना अनारकली फिल्म में, स्वर था लता मंगेशकर का। आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं 1950 के दशक के कुछ सुनहरे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं शमशाद बेगम के स्वर में। इस गीत में संगीत दिया है ओपी नैयर ने और फिल्म का नाम है आर पार।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

आज के सुनहरा दौर कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं लता मंगेशकर व सुबीर सेन के स्वर में। फिल्म का नाम है छोटी बहन।

आज के सुनहरा दौर कार्यक्रम में फिल्में थीं अफसाना, संग दिल, बैजू बावरा, अनारकली, आर पार, मधुमति और छोटी बहन। स्वर थे आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, तलत महमूद, शमशाद बेगम और साथियों के। इसी के साथ आज का सुनहरा दौर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। इन्हीं मीटर्स पर संध्या 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन अब से लेकर संध्या 5 बजे तक FM 102.9 MHz पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
4: कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी की पसंद पर सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद ये गीत।

तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से, आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपकी पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मन चाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत
2: चाहेगी।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
2: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
3: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरे के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
4: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
3: कौन
5: रानी रावती?
4: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
3: मित्र, अब क्या किया जाए?
5: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
4: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
6: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
7: भला हम कौन होती हैं
6: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चलें।
7: चलो।
4: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
5: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था। मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
3: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
4: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
3: परंतु देवी,
4: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
3: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
4: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का, हम चले यहाँ।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकलावलका के पैर में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही क्या गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: ओकी रानी ईरावती ने महाराज।
1: लगता है ईरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी ईरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देके कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो कान में सुनिए। मैं नाक को बांध करके नाक लेके
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे श्याम, गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा
5: है? महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
2: जैसे किया क्या?
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
5: अरे काल मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
5: मेरा तो अन्नंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में
3: दलता जा रहा है। हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम तनिक संभालिए, धीरज से काम लीजिए।
5: महाराज, मैं आपका मान सका हूँ, सिनाथ मेरे बात मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
2: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
2: देव की कैसी आज्ञा।
5: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हो वो क्षमा की।
3: नहीं नहीं नहीं, अरे गौतम भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
2: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा डली हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
2: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना।
6: और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से ब्रह्मवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत माल्विका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया। और
0: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
0: सखी
1: उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है
1: जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
0: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
2: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तितली अपनी देह जलाऊं?
3: हे हमारे नैनी,
1: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि ये तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न भी कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकला वाली का, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
5: अरे बकला वाली का, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ उसे भगाने चल।
0: चले
5: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सूचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे?
6: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
6: देवी आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
6: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंबे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छुपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी रावती
1: सच्ची बकुला वलिका, ये कैसा है? बकुला वलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणता भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओह तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया, पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर बिल्ली के सामने आके रहा।
6: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सेकी बकुला वलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
7: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
3: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
7: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
8: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 लाते भी नहीं दी थी कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के

नेतृत्व में महाराष्ट्र की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने देश स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न हाथी घोड़े

0: विद्यापति महाराज अग्निवीर
1: प्रवर्धमान उत्सव में बधा रहे
0: कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमित
1: प्रवर्धमान उत्सव में पधार रहे हैं।
2: जय हो विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
3: देवी सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
2: विराजिए देव
4: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
3: प्रणाम भगवती।
4: आपके मन की साथ पूरी हो।
2: आर्यपुत्र फूलों से लदे सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
3: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
2: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
3: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
5: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियां आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
3: ले आओ।
5: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत है।
6: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
3: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
6: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
3: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
2: मालविका आके देवी देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
6: अरे राजकुमारी आप यहाँ। जय हो राजकुमारी की जय हो।
2: अरे अरे मालविका राजकुमारी।
3: मालविका राजकुमारी।
6: हाँ महाराज ये हमारी राजकुमारी है।
3: कैसे?
6: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
2: ओह तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
3: भद्रे बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
6: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य स्मृति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
3: फिर क्या हुआ?
6: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
4: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
3: भगवती आप?
6: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती हैं।
4: हाँ वही है।
6: प्रणाम भगवती।
4: कल्याण हो।
3: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
4: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
3: अच्छा अब कुछ बात समझ में आने लगी।
4: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
7: मंत्री जी ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है, यहाँ तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
3: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
4: भैया आप भी तो।
3: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
7: अरे क्या हुआ, क्या हम लोग एक रुक क्यों गए?
8: जान प्यारी है वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
7: वही हुआ ना जिसका भाई था।
9: चाहिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: सारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लुहान होकर इधर आ रहे हैं, अरे डाकू ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीरसेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा ना कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है।
6: उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
5: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
5: फिर क्या हुआ?
2: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ा कर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
5: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञसेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
5: जयसेन।
4: आज्ञा देवी।
5: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हम वो वचन पूरा करना चाहती हूँ। कोई विघ्न न डाले।
4: देवी की जैसी आज्ञा।
5: मालविका इधर आओ।
6: प्रस्तुत हूँ देवी।
5: आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में ये प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लज्जा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
7: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजाई करते हैं।
8: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
9: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उन

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी, इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है.
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है.
2: एग्जैक्टली, मतलब विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में. इसलिए ये बहुत जरूरी था. और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड
2: तो,
1: जेंडर,
2: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे. हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही ऐसा नहीं था. लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है. अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं. कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी. लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे.
1: यहां गाना सुनते हैं.

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कह रहे हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है वो करता है। तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूं देखता हूं, दोस्तों को लेके जाता हूं इनका प्ले देखने, और वो गए वो प्ले देखने। और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी कामा कराई जात तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी
1: जनाना रोल आ
0: हाँ
1: रहा है।
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतियां क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो
0: करेक्ट
1: वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल,
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त
1: 80s वाला दौर जो पूरा
0: हाँ
1: था।
0: हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे पापा और धर्म जी या पापा और मिथुन दा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूं वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे, और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो? तो अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों? तो आप उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है, और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में,
1: और बहुत खूंखार रूल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, बीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू।
1: हाँ, था। और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश।
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट,
1: वहां से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है।
0: हाँ,
1: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
0: बहुत ही और उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था। आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे। राइट, सब लोगों को ऐसा लग रहा है आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा पूरा, दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे। वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: फर्ज निभाओ,
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है, इज व्हाट आई थिंक. लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं, मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म हो गई बात. और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के, ऑफ कोर्स, तो नफरत इतनी नहीं, लेकिन डर बहुत लगता था. तो
1: बिल्कुल
0: मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं आ सकते.
1: अच्छा, स्कूल
0: तो
1: में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज ऐसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था. तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था. और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त. अब मैं जितनी
1: अच्छा
0: बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी. पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है. और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है, उसके साथ वो दोस्त है. टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था. पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं. हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी, लेकिन यहां पर शी हैड टू परफॉर्म एज अ

0: जाते थे कभी, और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वॉज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
1: बिल्कुल, सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था? जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से,
1: अच्छा,
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत।
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
1: अच्छा,
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो. वो जल्दी उठते थे, 6-6.5 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना. बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
1: बिल्कुल
0: आते हैं.
1: बिल्कुल,
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है,
1: ओके।
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की।
0: अंपायर की कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है. आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो.
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते
0: नहीं
1: थे?
0: बिल्कुल नहीं.
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे,
1: सख्त मनाही।
0: इसलिए सख्त मनाई, बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो 2-3 दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे. तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए. औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है. तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है. लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे. बच्चे बड़े सब सब पकड़, 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजीनगर से, अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय

0: अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए,
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल,
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त और इसलिए उन्होंने किया। वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन,
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ,
0: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती हैं
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से लेकिन उसे ये पता है।

0: बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: हुकूमत सड़क
0: अर्धसत्य
1: है
0: दिखाऊंगी,
1: ना
0: ये
1: बिल्कुल।
0: सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत
1: वो
0: ही अलग
1: तो क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंद्र कुमार। एक
1: हाँ
0: तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और
1: हाँ
0: टाइमिंग
1: हाँ
0: कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये कुछ
0: ओवर द
1: अलग
0: टॉप नहीं
1: था।
0: थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
1: अच्छा
0: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदाजी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदाजी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
1: हाँ,
0: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
0: प्लीज।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी, एनएफडीसी की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकतनकर, इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है, दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म
0: को
1: मिला नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
0: राइट,
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवान घेवान कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी। कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है, तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु
0: गुप्त
1: पुरुष
0: मिली,
1: मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी, तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था।
0: बिल्कुल,
1: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है
0: जी।
1: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
0: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा,

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम उपलब्ध सुन रहे थे। शाम के 5 बजे ही मीडियम वेव और FM पर आज की हमारी दूसरी सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम आज शाम।

कार्यक्रम आज शाम सुनने वालों को एमन तंजील का नमस्कार। साथियों, जिंदगी जो कि सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को महसूस करने, सीखने, गिरने, संभलने और आगे बढ़ने का नाम है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें कभी खुशियों के फूल मिलते हैं तो कभी कठिनाइयों के कांटे, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को खूबसूरत और मायनेदार बनाते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कभी अपने साथ छोड़ देते हैं और कभी हमारी अपनी हिम्मत जवाब देने लगती है। ऐसे वक्त में हमें याद रखना चाहिए कि अंधेरी रात के बाद उजली सुबह जरूर आती है। मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन हिम्मत रखने वाले लोग आगे बढ़ते रहते हैं।

जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि हर इंसान, हर रिश्ता और हर पल अनमोल है। हमें अपनी व्यस्तताओं में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि अपने अपनों की अहमियत ही भूल जाएं। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द और किसी का साथ कई बार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी हार मत समझिए, उसे एक सीख मानिए। दुनिया का हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को बेहतर बनाया और फिर आगे बढ़ गया। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हर दिन एक नया मौका देती है, नया सपना देखने का, नई उम्मीद जगाने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। इसलिए बीते हुए कल की परेशानियों में उलझने के बजाय आज को बेहतर बनाइए और आने वाले कल के लिए मेहनत कीजिए। आपसे बस इतना ही कहेंगे कि याद रखिए, जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि इस तरह जीना है कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको इज्जत और प्यार से याद करें। प्यार बांटिए, दूसरों की मदद कीजिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। वो हर परिस्थिति में आभार व्यक्त कीजिए। यही जिंदगी का असली मकसद और यही जिंदगी की असली खूबसूरती है। यही एक कामयाब और खुशगवार जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
1: और मैं हूं आपकी रेडियो मेजबान फरहीन समद। साथियों एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए जोश, नई उमंग और ढेर सारी बातों के साथ। तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशियों से भरे और मुस्कान के साथ हमें सुन रहे होंगे। दोस्तों रोज की तरह आज भी आप सबका बेसब्री से इंतजार था, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम आज के सवाल के साथ।
1: साथियों हमारा आज का सवाल है,
0: भारतीय सिनेमा के जनक कहलाने वाले दादा साहेब फाल्के द्वारा वर्ष 1913 में निर्मित भारत की पहली पूर्ण लंबाई की मूक फीचर फिल्म का नाम क्या है?
1: साथ ही एक बार सवाल फिर और ध्यान से सुन लीजिए, हमारा आज का सवाल है, भारतीय सिनेमा के जनक कहलाने वाले दादा साहब फाल्के द्वारा वर्ष 1913 में निर्मित भारत की पहली पूर्ण लंबाई की मूक फीचर फिल्म का नाम क्या था?
0: और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी रामपुर पर और उसके अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजना होगा अपना सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों का नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
1: शिरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारी धरती कैसी दिखेगी?
0: सोचना भी मुश्किल है, न ठंडी हवा होगी, न घनी छाव, न पक्षियों की चहचहाहट और शायद जीवन भी इतना सुंदर नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल, पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: इसीलिए हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके।
1: वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी, तब से हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे देश में पौधे लगाए जाते हैं और लोगों को हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया जाता है।
0: एक पेड़ अपने जीवन काल में न केवल हमें स्वच्छ हवा देता है बल्कि मिट्टी का संरक्षण करता है, वर्षा में मदद करता है और अनेक जीव जंतुओं का आश्रय भी बनता है।
1: आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते जंगलों के बीच वृक्षारोपण पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।
0: लेकिन सिर्फ पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी नियमित देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है ताकि वे बड़े होकर एक स्वस्थ वृक्ष बन सके।
1: बिल्कुल, अगर हर व्यक्ति हर साल कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वच्छ भारत बना सकते हैं।
0: तो आइए वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे,
1: क्योंकि हरा भरा पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन और उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
0: तो दोस्तों हमारी ये बातचीत तो यूं ही चलती रहेगी, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम लेकर आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट यानी कुछ खास है आज की ओर।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: साथियों, कुछ खास है आज में आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी महान खिलाड़ी की जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और अद्भुत प्रतिभा से विश्व बैडमिंटन में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया है। जी हां साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जी की, जिनका जन्मदिन हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है।
3: दोस्तों, पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। खेलों का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन सिंधु ने अपना करियर बैडमिंटन में बनाने का निर्णय लिया और बहुत कम उम्र से ही कठिन अभ्यास शुरू कर दिया था।
2: उन्होंने प्रसिद्ध बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया। रोजाना कई घंटों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने उन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल कर दिया।
3: साल 2016 में रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल।
2: इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में उन्होंने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम। वे विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।
3: दोस्तों, पीवी सिंधु का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर मेहनत, अनुशासन, धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने हर युवा को यह विश्वास दिलाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।
2: तो आइए साथियों, पीवी सिंधु के जन्म दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाएंगे और अपने लक्ष्य को पूरी लगन और ईमानदारी से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
3: तो दोस्तों, कुछ खास है आज में आज बस इतना ही।
0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों आपको याद दिला दें कि आज दिन है रविवार और रविवार को रहता है हमारा स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस जिसका आज है एपिसोड नंबर 34। एपिसोड 34 में बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं एपिसोड 33 में पूछे गए सवाल और उनके सही जवाब। हमारा पहला सवाल हमने आपसे पूछा था, ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। गीत के बोल है खली बली हो गया है दिल और इसका सही जवाब है पद्मावत।
1: हमने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है वो कब रिलीज हुई थी। हमारा सॉन्ग था आयत और इसका सही जवाब है 25 जनवरी 2018।
0: दोस्तों हमारा तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा था, इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं। गीत के बोल हैं महबूबा और सही जवाब है आरडी बर्मन।
1: सिने एक्सप्रेस का एपिसोड नंबर 33 में लास्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। गीत था नगाड़ा नगाड़ा और इसका सही जवाब है शाहिद कपूर और करीना कपूर।
0: और इसके सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं एलेक्स गोयल, तनुजा जी, अमित जंगेल, भास्कर ठाकुर और अक्ष सक्सेना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस के सब सेगमेंट सितारों की बात की ओर।

0: कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस चुलबुली खूबसूरत और दमदार अदाकारा की जिनकी मुस्कान ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मुमताज जी की।
1: 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज का बचपन आसान नहीं था। फिल्मी दुनिया में जगह बनाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें छोटी छोटी भूमिकाएं मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड की

0: सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा कर दिया।
1: मुमताज ने अपने करियर में उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई राजेश खन्ना जी के साथ। दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बना दिए।
0: अगर उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो खिलौना, दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, अपना देश, रोटी, लोफर, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। खास तौर पर फिल्म खिलौना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला।
1: सिर्फ अभिनय ही नहीं, मुमताज जी का डांस, उनकी स्टाइल और उनकी चुलबुली अदाएं भी दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। 60 और 70 के दशक में वे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थीं।
0: साल 1974 में उन्होंने व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी की और फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि बाद में उन्होंने वापसी की कोशिश भी की, लेकिन परिवार को उन्होंने हमेशा अपनी पहली प्राथमिकता माना।
1: आज भी जब बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्रियों का जिक्र होता है तो मुमताज जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका सफर हमें सिखाता है कि अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है।
0: तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा मुमताज की प्रेरणादायक कहानी।
1: आइए साथियों, बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 34 में, जिसमें आपको हम सुनवाते हैं ये पहला गीत। और इसमें आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है।

0: दोस्तों, ये गीत जो अभी आपने सुना, इसमें आपको बताना होगा ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट सिने एक्सप्रेस के सब सेगमेंट फिल्मी पिटारा की ओर।
1: करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों के दिल जीते बल्कि अभिनेत्री मुमताज के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म खिलौना की।
2: मैं मेरे कपड़े बदल कर आती हूँ।
3: खिलौना 1970 में रिलीज हुई। साथ ही इस फिल्म की कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इंसानियत, त्याग और सच्चे प्यार का एहसास भी कराती है।
1: फिल्म में संजीव कुमार ने विजय सिंह का किरदार निभाया है, जो एक अमीर परिवार का बेटा है। एक दर्दनाक घटना के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। परिवार के लोग उसे ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती।
3: तभी कहानी में आती है चांद, एक तवायफ जिसका किरदार निभाया है मुमताज जी ने। पैसों की मजबूरी में वे विजय की देखभाल करने में उसके घर आती है, लेकिन धीरे धीरे उनका अपनापन, उनकी ममता और उनका सच्चा व्यवहार विजय की जिंदगी बदलने लगता है। विजय ठीक होने लगता है, लेकिन समाज चांद के अतीत को स्वीकार नहीं करता।
1: यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है।
4: ये तूने क्या किया सपना? मौत तुम्हें ना अपने लिए मांगी थी।
2: विजय पापा, आप ठीक हो गए। विजय पापा, आप ठीक हो गए। ठाकुर साहब,
5: क्या हुआ तुम?
2: कुछ नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक। अरे मिरांडा, इसके कपड़े हैं ना, बिल्कुल इसे ऊपर ले आइए।
5: भाभी,
2: लक्ष्मी भाभी, विजय बाबू ठीक हो गए। विजय बाबू,
5: भाभी, ये लड़की कौन है? भाभी,
2: मुझे नहीं पहचानते।
5: देखा है?
2: मैं चांद हूँ। चांद भाभी, भाभी आप भी चांद।
3: साथ ही फिल्म में भावनात्मक दृश्यों के साथ साथ शानदार संगीत भी था। इनके गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और आज भी बड़े प्यार से सुने जाते हैं। खिलौना उस दौर की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक बनी।
1: इस फिल्म के लिए मुमताज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला और उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ ग्लैमरस स्टार ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं।
3: और साथ ही इसी के साथ हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट फिल्मी पिटारा यहीं समाप्त होता है।
0: आइए साथियों, आप सुनवाते हैं आपको सिने एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 34 का ये सेकंड गीत, जिसमें आपको बताना है कि इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं।

0: दोस्तों, ये गीत जो अभी आपने सुना, इसमें आपको बताना होगा इस गीत के गायक कलाकार कौन है। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे बॉक्स ऑफिस बस का, जहां हम बात करते हैं बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही नई फिल्मों की, जो इस हफ्ते दर्शकों को भरपूर मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत करते हैं 3 जुलाई 2026 को रिलीज हुई फिल्म अल्फा से। ये एक हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन शिव रवेल ने किया था। मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल। अगर आपको एक्शन, रोमांच और स्पाई थ्रिलर पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
1: और इसी दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई बेबी डू डाई डू। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं हुमा कुरैशी, चंकी पांडे और सिकंदर खैर। अपनी अलग अलग कहानी और दमदार कलाकारों के साथ ये फिल्म भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है।
0: अब बढ़ते हैं 9 जुलाई 2026 की ओर, जब रिलीज होगी बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म धमाल 4। इस फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है। मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी। धमाल फ्रेंचाइजी की ये नई कड़ी एक बार फिर कॉमेडी, मस्ती और एडवेंचर का जबरदस्त तड़का लेकर आ रही है।
1: और साथ ही वो इसी दिन यानी 9 जुलाई 2026 को रिलीज होगी इक्का। ये एक ड्रामा और एक्शन फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं सनी देओल, अक्षय खन्ना और दिया मिर्जा। दमदार अभिनय और भावनात्मक कहानी के साथ यह फिल्म भी दर्शकों के लिए खास रहने वाली है।
0: तो ये थी इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही चार चर्चित फिल्में। दोस्तों, चलिए सुनते हैं ये गीत, जिसमें आपको बताना होगा ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है।

0: दोस्तों, ये गीत जो अभी आपने सुना, इसमें आपको बताना होगा ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। और साथियों, अब वक्त है आज के सवाल का सही जवाब जानने का। हमारा आज का सवाल था, भारतीय सिनेमा के जनक कहलाने वाले दादा साहेब फाल्के द्वारा वर्ष 1913 में निर्मित भारत की पहली पूर्ण लंबाई की मूक फीचर फिल्म का क्या नाम था? और इसका सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: बोधराज खोरवाल, मोहम्मद रफीक पवार, देवशंकर तमोरिया, हिरामणि वर्मा, सुरेश राठौर, जॉन डिकैस्ट्रो, लाडलाजी चौबे, नरेन नेताम, अशोक सिंह, भाई रफत साहब, उत्तम सिंह जंघेल, दिनेश वर्मा, रियासत हुसैन सिद्दीकी, अजीत कसाना, किशन सपकाल, रामकुमार रेवाड़, जाकिर मंसूरी, नजमुल हुदा, फागुराम यादव, विनोद बरासा, सोहन जोशी, धर्मेंद्र छिपा, सोनू जी, शंकरलाल जायसवाल, दिग्दर्शन गौड़, गंगा सिंह रावत, शेख मूसा, मोहम्मद यासीन, बबलेश पवार, विठल सरोश, योगेश कुचरती, सुरेश जायसवाल, विनोद मोनत, नबी हसन अब्बासी, रामशरण, दिशान वारसी, हल्के जयपाल यादव, श्री कृष्ण भाटे, पुंजाजी नवाकर, सिद्धार्थ गोंडने, संजय ढींगिया, राधेश्याम पांडे, इरशाद अहमद, लालगिरी गोस्वामी, निसार सलमानी, एम अफसलताज, नरेश मल्होत्रा, जगदीश ठाकर, दुर्गाराम साहू, चौधरी राजवीर सिंह, विजय सुरलकर, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, आफताब अंसारी, हाजी गफ्फार खान, लाल मोहम्मद अंसारी, शाहजी बोरखे, मिसबा शमसी, गुरमीत सिंह मीता, सुरेश गगनेजा, अरविंद कुमार, राजवीर सिंह यादव, मोहम्मद सईद अब्बासी, मोहम्मद जाहिद अली, धीरज भाई रबारी, गजनन येले दरियापुर भाबली, यूनुस खत्री, प्रवीण चौहान, आकाश रस्तोगी, शहरून नूर अंसारी, दिलदार, सुनील पाठक, एमडी यासीन अंजान, अनोखे लाल, गंगा सिंह रावत और मुकेश कश्यप।
0: तो दोस्तों, आप सभी ने दिया है इस सवाल का सही जवाब। चलिए सुनवाते हैं आपको सिने एक्सप्रेस का ये आखिरी गीत, जिसमें आपको बताना होगा ये गीत जिस फिल्म से लिया है वो कब रिलीज़ हुई थी।

0: तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सेगमेंट्स और हमारा आखिरी सवाल हमने आपसे पूछा था, ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है वो कब रिलीज हुई थी। तो साथियों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड संख्या है 244901।
1: और हमारे जो श्रोता साथी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं वे हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 9410087876।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.com। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपकी रेडियो साथी शीरीन खान
1: और मैं हूँ आज आपकी रेडियो मेजबान फरहीन समद को दीजिए प्रोग्राम संपन्न करने की अनुमति।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजे हैं, अब सुनिए समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अब सुनिए कुछ संदेश।
2: है और भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, کوئی بھی نہیں غیر محبت کی زبان میں.
3: آئیے حفاظت کریں اپنی وراثت کی
2: اور محبت کریں اپنے وطن سے.

सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: पानी पानी,
1: कहाँ से लाऊं पानी?
0: पानी,
1: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
0: पानी,
1: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
0: पानी, पानी।
2: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
3: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे? तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
4: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
5: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना।
3: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना, तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
4: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, अलका याग्निक, कैलाश खेर और साथियों की आवाजों में।

और अब कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म है आ अब लौट चलें।

अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो हेमपाल भैया, राम राम।
1: राम राम अनिल भैया, और सुनाओ, घर परिवार के रहने सहने कैसे चल रहे हैं?
0: घर परिवार में सब कुशल मंगल है, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया हैं ना, वे भी अच्छी तरह से होंगे।
1: बिल्कुल भैया,
0: आप अपने सुनाओ, घर परिवार में कैसे हैं सब लोग?
1: भैया हमारे यहाँ भी ठीक ठाक हैं, बस थोड़ी सी ये परेशानी चल रही है कि देखो कई दिन से जो ना बारिश थोड़ी सी ही गई, अब बारिश को इंतजार है, अभी धान लगन के लिए रह गए।
0: अच्छा,
1: हाँ तो सोच रहे हैं कब बारिश हुए और जो धान रह गए हैं वे लगा लें।
0: तो कौन सा धान लगा रहे हो
1: भैया? 15-09 ही लगा हुआ है, और थोड़ी सरबती की पौध डाल दी थोड़ी लेट, वो अब पड़ाई।
0: तो बहुत अच्छी बात है। देखो भैया, धान आपने पौध डाल दी है और लगाने की तैयारी में है।
1: बिल्कुल।
0: तो धानन में कौन कौन से काम कर रहा है इस समय? लगान के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं
1: भाई,
0: देखो जाता है, खेत की जो तैयारी हमारे किसान भैया करते हैं, और लगाते समय बहुत सारी बीमारियाँ जाती हैं। जैसे आपने बात करी कि हमने 15-09 लगाई है, ये 15-09 लगाने की तैयारी कर रहे हैं, 15-09 में बीमारी आ जाती है। अब आप बीमारी को रोकने के लिए बहुत से काम करने होते हैं, अभी से दवा लगाने हुई, जड़ पर दवा लगाने होती है, जड़ शोधित करने पड़ती है, जिससे कि आगे आने वाले समय में बीमारी ना आवे।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भैया कौन कौन से काम कर रहे हैं?
1: भाई देखो, वैसे तो हमने कुछ लगा दो वो धान जो बारिश भाई तई लगा दो, अब कुछ लगा बंगे।
0: अच्छा,
1: तो हम जो धान लगा बंगे बाई के आधार पर अपने किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि हमारे जो किसान साथी लगा पाए, बात करी हमने 15-09 की।
0: अच्छा,
1: कि जैसे कि आपने भैया कही कि इसमें ज्यादा बीमारी लगती है, जो बात बिल्कुल सही है, तो अगर हम शुरू से ही उसकी देखभाल कर लें, जैसे कि आपने कही उसकी जड़न को शोधन कर लें, तो ऐसी तमाम जो छोटी छोटी बातें उनको ध्यान रख लें, तो हमारो धान सुरक्षित रहे। जैसे बात करी जड़ की शोधन की, तो वहाँ मैं क्या करें, जैसे सब मुजरियाँ तो जितनी पौधे की वो तो ना भेंगे पाते हैं, चाहे तो किसान साथी भेंगे भी देंगे, कोई टब वगैरह में मुजरियाँ डाल दें 20-25 मिनट के आधे घंटा के लिए, और उसकी रोपाई कर दें, फिर भी ही जाएंगे, फिर निकाल के उससे थोड़ी सी ये दिक्कत ही जाती है उसमें कि सुखान की दिक्कत ही जाती है। तो ऐसे हमारे किसान साथी जो करें, जैसे एक दिन पहले कोई भी फंगस वाली दवा को घोल बना के स्प्रे वाली टंकी से बाकू स्प्रे कर दें, और बाकी स्प्रे इतनी करें कि वो जड़ तक पहुंच जाए।
0: अच्छा,
1: उसके बाद में दूसरे या तीसरे दिन के उसकी पौध की उखड़ाई करके और रोपाई करा दें, तो जो फंगस वाले रोग हैं वे ना आवेंगे।
0: और भैया देखो, एक बात और देख मारी है जा समय कि जो जिन किसान भैया ने पौध डाली ना, उनकी पौध अब लगान के समय में है, और लगान की स्थिति में तो भैया देखो, इस समय सूढ़ी को प्रकोप पौध में हमें देखन माओ।
1: हाँ, पत्ता लपेट ज्यादा लगी हुई।
0: हाँ, और बाकी ले कई एक किसान भैया ने रसायनों को प्रयोग भी करो। अब रसायनों के प्रयोग करण में कौन कौन सी सावधानी बरती जाए, यह बात बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल भैया, देखो जो तो धान की बात आपने बताई इस समय की, जो कि इस समय जोरों शोरों पर जो हमारी खरीफ की फसल है वो चल रही है, और वैसे मैं रसायनों के प्रयोग में सावधानी की अगर बात करें, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी वाली हो, दालन वाली हो, दलहनी तिलहनी कोई भी हो, हर फसल में जब भी हम रसायनों को प्रयोग करेंगे तो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। पहले तो हम जय कहेंगे कि जैसे कि हमारी सरकार भी कह रही है, हमारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि रसायनों को प्रयोग बहुत कम अपनी फसलों में आप करो, तो हम जय अपने किसान साथी इनसे कहेंगे कि आप जो भी फसल करें वो जैविक विधि से और प्राकृतिक विधि से फसल को करें, वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे वातावरण को लाभदायक होगी। अगर प्रयोग उसके सावधानी की बात करें, क्योंकि किसान साथी अभी छोड़ ना रहे हैं, बहुत से किसान साथी रसायनों के प्रयोग को कम कर चुके हैं, लेकिन अगर उसकी प्रयोग करने भी पड़ रहा हो रसायनों को, तो उसमें सावधानी छोटी छोटी ये बरतें, जब सबसे पहले तो अपने शरीर की सावधानी रखें। आप स्प्रे करते समय या फिर उसको टॉप ड्रेसिंग वगैरह करते समय किसी प्रकार को खाद्य पदार्थ ना खाएं, हाथन पर दस्ताने पहन लें, मुंह पर मास्क लगा लें, और कहीं पर कटी फटी जगह हो तो उस पर कोई पन्नी वगैरह ऐसी चीज़ बांध लें जिस पर उस पर रसायन को प्रयोग ना हो, इस बात को ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, और एक बात और ध्यान रखें कि पूरी आस्तीन के कपड़ा पहने।
1: बिल्कुल,
0: कुछ किसान भैया ऐसे होते हैं कि

0: डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तभी किसी दवा को या किसी खाद को या किसी उर्वरक को, किसी पोषक तत्व, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व उनको प्रयोग कर रहे हैं आप, तभी करें। तब आपके जो फसल है ना, उसमें क्या होता है कि जो फसल के स्टोमेटा होते हैं वे ठंडे मौसम में खुले हुए होते हैं, और जब तेज़ धूप होती है तो वे पौधा जो होता है ना अपने स्टोमेटा को बंद कर लेता है, और जब बंद कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पोषक तत्व हैं वे पूरी तरह से न ले पाएंगे, या किसी कीट को अगर कोई कीटनाशक डाल रहा है तो वो उसको भी असर पूरी तरह से न हो पावे। तो किसी भी दवा को प्रयोग करें या किसी रसायन को प्रयोग करें या उर्वरक को प्रयोग कर रहे हैं तो वो ठंडे मौसम में करें, ऐसा ना हो कि तेज़ धूप में आप करें तो वहाँ से पूरा भरपूर लाभ ना मिले।
1: बिल्कुल भैया, जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि आप टेम्परेचर को देखकर ही स्प्रे या फिर टॉप ड्रेसिंग वगैरह जो भी जिस तरह से भी आप रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तभी करें। अब हमारे किसान साथी कह रहे होंगे कि इतना तापमान ही रहो 40 डिग्री के आसपास 39 डिग्री के आसपास, तो हम कहाँ से तापमान कम को इंतजार करें? तो भैया देखो, आपको सुबह ही सुबह आप उसको इस्तेमाल करें, और फिर शाम या फिर शाम को 4 बजे के बाद में अगर आप रसायन को प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम हुआ है। इसी तरह से साथियों, ये तो बात रही अपने शरीर की, अब कुछ बातें अभी भैया ने बताई कि आप अनुपात को बहुत ध्यान रखें। तो साथियों, जो बात बहुत ज़रूरी होती है, हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि अगर कोई कीट या रोग लाग रहा हो तो उन्हें अनाप शनाप दवा ले ली भैया ना, और आप मिलान के तो है वो 1 ml/L के हिसाब से या फिर 1 g/L के हिसाब से या फिर 1 किलो 2 किलो, तो भी दुगनी तिगनी मात्रा मिलाकर और अपने फसल में प्रयोग करना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बस का हो तो हमारी फसल भी ख़राब होती है, हमारी ज़मीन की मिट्टी भी ख़राब होती है, साथ ही साथ हमारी रुपया की भी बर्बादी होती है।
0: तो भैया देखो, इन बातों को हमारे किसान भैया ध्यान रखें, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया ऐसे काम करेंगे तो उनको ज़रूर लाभ मिलाए। और दूसरी बात यह है कि देखो भैया, बहुत सारी किसान भैया हमारे फसलों को उगाते हैं, ज़रूरत यह है कि फूल वाली फसलों को भी उगा हो जाए।
1: बिल्कुल भैया,
0: और फूल वाली फसलें उगा कर हमारे किसान भैया अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। फूल वाली फसलन से होता का है कि आपको कम खर्चा में और ज़्यादा लाभ मिल जाता है।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो क्यों ना हम अपने किसान भैया के लिए इसी बात पर एक जानकारी करा दें।
1: बिल्कुल भैया, तो किसान साथियों, हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता जिसको विषय है गेंदा गुलाब और ग्लेडियोलस की खेती। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिव शंकर वर्मा, और आपसे बातचीत करके जानकारी दिलवा रहे हैं हमारे भैया जसविंदर सिंह। तो साथियों, सुनो आप जो भेंट वार्ता।
2: आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिव शंकर वर्मा जी को, और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसान साथियों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं गेंदा गुलाब और ग्लेडलस की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे जो किसान साथी इस तरह की जो खेती करना चाहते हैं, जानना चाहेंगे वो कैसे इसकी शुरुआत करें।
3: सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और किसान भाइयों को भी जो पुष्प की खेती कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि पुष्प हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो आप पैदा होने से लेकर मरने तक की बात करें तो हमें पुष्प की जरूरत पड़ती है।
2: बिल्कुल,
3: शादी विवाह मंदिरों में आजकल हर फंक्शन में हमें पुष्प की जरूरत है
2: जी।
3: तो देखिए, आपने जो ये बात रखी गेंदा गुलाब और ग्लाइडोलस की खेती की, तो गेंदा जो है ये हमारा लूज फ्लावर में जाता है कि जो कि बिना डंठल के जा रहा है हमारा
2: जी,
3: और गुलाब और ग्लाइडोलस ये विद स्टिक जाता है, तो इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है
2: जी।
3: लेकिन किसान इसको करने में थोड़ा सा असमर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर या मतलब ज्यादातर पॉली हाउस में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो खुले में अगर करना चाहे तो गेंदा सबसे बेहतर है किसानों के लिए, उत्पादन के लिए।
2: अगर कहा जाए कि जो अच्छे से और थोड़ा कम मेहनत से तैयार किया जा सकता है तो वो गेंदा की खेती
3: जी। बिल्कुल, गेंदा की खेती है, और गेंदा ज्यादातर आजकल विवाह में और इस सब जगहों पे ज्यादातर यूज हो रहा है, तो गेंदा की खेती मैं कहूंगा कि किसान भाई करें, इससे ज्यादा मुनाफा वो कमा सकते हैं।
2: बात आती है डॉक्टर साहब, जब गेंदा की खेती हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो सबसे पहले किस तरह की उनको मिट्टी चाहिए, और मिट्टी अगर उनके पास होती है तो उसके बाद कौन कौन सी प्रजातियां जो है वो लगा सकते हैं
3: जी। बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों को ये मैं बताना चाहूंगा कि मिट्टी तो बलुई डोमट हो, बढ़िया हो, उसका पीएच मान जो है वो न्यूट्रल 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए, बढ़िया। और देखिए, गेंदा दो टाइप का होता है, दो तरीके के गेंदा होता है जो हमारे देश में हो रहा है, एक अफ्रीकन गेंदा होता है, एक फ्रेंच गेंदा होता है। तो

0: श्रीकंद गेंदा में मैं किस्म की बात करूं तो जैसे पूसा नारंगी हो गया और पूसा बासमती, ये IRI से विकसित है, पूसा से बढ़िया है। और अगर फ्रेंच गेंदा में बात करूं तो मैं पूसा दीप है और पूसा अर्पिता, ये बढ़िया वैरायटी हैं जो किसान भाई अपने खेत में उगा सकते।
1: जी अगर बात करें इनकी जलवायु की तो कौन सी जलवायु में ये हो सकते हैं?
0: देखिए गेंदा तो नॉर्मली सब ट्रॉपिकल मतलब कि उष्णकटिबंधीय होता है, तो उष्णकटिबंधीय में इसको बढ़िया से हम ग्रो कर सकते हैं, उगा सकता है किसान, कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा।
1: जैसे बात करी आपने फ्रेंच गेंदा की, तो इनके जो फूल होते हैं वो हमारे किसान साथी आसानी से उगा सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं?
0: जी देखिए इसको तो पहले तो बीज द्वारा हम कर सकते हैं, उगा सकते हैं, और इसका कटिंग भी मतलब जिसकी कलम भी हम लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: दोनों बीज से, जैसे बीज द्वारा अगर हम करेंगे तो देसी अगर हम ले रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 किलो बीज लगता है, अगर हाइब्रिड वैरायटी में जाते हैं तो 700 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे इसका हम बीज ग्रो करते हैं या मतलब नर्सरी, पहले पौध डालेंगे, उसके पौध डालने के 20 से 25 दिन बाद ही इसको हम खेत में रोपण करेंगे।
1: डॉक्टर साहब देखा जाता है कि हमारे जो किसान साथी हैं गेंदा की फसल साल में कई बार लेते हैं,
0: जी
1: तो कब कब इसको हमारे किसान साथी लगा सकते हैं, उपयुक्त समय इसका?
0: देखिए इसका तीनों टाइम में हम लगा सकते हैं, जैसे शरद कालीन में भी लगा सकते हैं, ग्रीष्म कालीन में भी लगा सकते हैं, वर्षा कालीन में भी लगा सकते हैं।
1: क्या जो आपने प्रजातियां बताई ये तीनों प्रजातियां के तीनों समय में पता लगा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे शरद कालीन में लगाने का क्या है कि अगर हमें नर्सरी डालनी है तो वो सितंबर से अक्टूबर में हम डालेंगे।
1: अच्छा।
0: और उसकी रोपाई हम अक्टूबर से नवंबर में करेंगे
1: जी।
0: और अगर ग्रीष्म ऋतु की हमें तैयार करनी है तो उसको हम फरवरी से मार्च में बीज डालेंगे और रोपाई उसकी हम मार्च से अप्रैल में करेंगे।
1: अच्छा।
0: और वर्षा कालीन में मई से जून में डालेंगे और रोपाई उसकी जुलाई में हम कर सकते हैं।
1: यानी कि अगर हमारे किसान साथियों ने इसकी जो नर्सरी है तैयार कर ली है तो वो इस समय उपयुक्त समय है, लगा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब गेंदा लगा लिया, लगाने के बाद में उत्पादन भी उनको अच्छा मिल गया, देखा जाता है कि कभी कभी जो फूल होते हैं वो हमारे किसान साथी पता नहीं होता है कि किस तरीके से और कहाँ बेचें, तो उसके लिए हमारे किसान साथी क्या करें?
0: देखिए मैं एक चीज बताऊंगा किसान भाइयों को कि पहली चीज कोई भी फसल लेने से पहले, वो चाहे किसी भी चीज की हो, हमें मार्केट देखनी चाहिए कि वहां की लोकल मार्केट का डिमांड क्या है हमारी।
1: जी
0: तो मैं तो किसान भाइयों को कहूंगा कि पहले देखें कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है हमारा, मतलब कि हमारा फूल इजीली वहां जा रहा है, बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा और आसानी से पहुंच जाए। तो मैं उन्हीं किसान भाइयों को कहूंगा कि जहां पे डिमांड अच्छी हो, मार्केट अच्छी हो और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, वो इसको अच्छे से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि पौधे जब तैयार हो जाती है, चाहे हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, वर्षा ऋतु की बात करें या फिर शरदकालीन की बात करें, तो जब हमारे किसान साथी इन पौधों को जो मुख्य फसल के रूप में रोपण करते हैं तो वहां पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें?
0: देखिए मुख्य फसल के तौर पर अगर हम इसका रोपण कर रहे हैं तो पहली चीज हमें ये देखनी होगी कि पानी नहीं भरना चाहिए खेत में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि डोल बना के या मेड़ बना के उस पे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
1: कुछ किसान साथी नाली बना लेते हैं और नाली के ऊपरी हिस्से पे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊंची मतलब 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर मेड़ बना के उस पे करें तो बेहतर रहेगा।
1: जी पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी क्या कुछ हमारे किसान साथी निश्चित तय कर सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे पौध से पौध की दूरी अगर लेना चाहे किसान तो 40 सेंटीमीटर की, रो टू रो अगर दूरी लेना चाहे तो वो भी 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए हमें।
1: अब बात आती है पौधशाला में किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं हमारे किसान साथी।
0: देखिए पौधशाला के प्रबंधन में सबसे पहली चीज ये है कि हमें तीनों हिस्से बराबर रखने पड़ेंगे, मिट्टी, गोबर और रेत पौध डालने, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ज्यादा पौध जब हम डालते हैं अगर रेत या गोबर की खाद कम रह जाती है तो उसमें एक बीमारी बहुत आती है डैम्पिंग ऑफ
1: जी,
0: जिसमें जड़ गलन की समस्या रहती है। तो पहली चीज ये रहेगा रेत रहेगा तो पानी अगर ज्यादा भी लग गया तो वो अवशोषित कर लेता है, इसलिए तो मतलब वो दिक्कत नहीं रह जाती कि जिसमें जड़ गलन की समस्या बनी रहे।
1: जब हमारे किसान साथी पौधशाला से मुख्य खेत में पौध का रोपण कर देते हैं तो बात आती है सिंचाई और खाद की, तो मुख्यतः कितनी सिंचाई हमारे किसान साथियों को और कब करनी चाहिए और खाद का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: जी देखिए ये है कि अगर ग्रीष्म ऋतु में अगर हमने फसल ले रखी तो उसमें सिंचाई ज्यादा लगती है कि 4 से 5 दिन में हमें सिंचाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम शरदकालीन वाली लेते हैं तो उसमें हमें 7 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि हमारा मौसम कैसा है, गर्मी ज्यादा रहेगी तो हमें सिंचाई जल्दी करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, कभी कभी बीच में बरसात भी हो जाती है तो उसको भी देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जब हमारी जो फसल है इसके बाद तैयार हो जाती है तो इसमें तुड़ाई का भी कोई ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे किसान साथी फूलों की तुड़ाई कब और किस अवस्था में करें।
0: जी बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो एक मैं और बिंदु छूट रहा था उस पे मैं बात कर लूं कि गेंदे में एक बहुत ही मुख्य क्रिया है पिंचिंग की।
1: अच्छा,
0: कि अगर वो पिंचिंग नहीं करते तो जो सहायक शाखाएं होती हैं वो उसमें बनती नहीं है।
1: ओके,
0: तो 30 से 35 दिन बाद जब अगर हम रोपण कर दें तो ऊपरी हिस्सा को हमें तोड़ना पड़ता है उसमें।
1: अच्छा,
0: तो उससे सहायक शाखाएं जो निकलती है तो इससे हमारा पुष्प की संख्या भी बढ़ती है, उत्पादन भी हम बढ़ा सकते हैं उससे। और आपने जो बात की कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें यह है कि हमें देखना चाहिए कि फूल जब कॉम्पैक्ट रहे, खिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब फूल कॉम्पैक्ट रहेगा तो वो मार्केट में जाएगा तो 1-2 दिन लगेगा बिक्री होने में। लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम जा रहे हैं, दूर जा रहा है हमारा फूल, तो हमें कॉम्पैक्ट अवस्था में तोड़ना चाहिए फूल को, जिससे कि फूल मार्केट में अच्छा दिखे और उसका भाव अच्छा लगे और क्या कहते हैं बिके आसानी से,
1: उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: बात यहाँ तक आती है तब बात ये भी आती है कि जब हम कोई फसल लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई रोग और बीमारी भी आती है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो क्या इस फसल में भी कुछ रोग या बीमारियां?
0: बिल्कुल, देखिए पहली एक हमारी चर्चा आपसे हो गई डैम्पिंग ऑफ,
1: जी
0: जिसमें जड़ गलन का होता है ये मुख्य, ये नर्सरी अवस्था में आती है, किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आ भी गई तो उसका उपचार के लिए हमें कार्बेंडाजिम 2%
1: घोल,
0: हाँ प्रति लीटर घोल बना के उस पे स्प्रे करना होगा
1: जी।
0: और दूसरी बात, दूसरी बीमारी रह गई पाउडरी मिल्ड्यू की।
1: जी,
0: पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि पत्तियों शाखाओं और पुष्प पे सफेद से धब्बे बन जाते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को जो लगाना चाहिए वो सल्फर कंटेनिंग जो भी हो, गंधक 2%, वो भी 2 ml या 2 g प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के हम उस पर स्प्रे कर सकते हैं,
1: छिड़काव कर सकते
0: हैं। और अब साथ आपने जब रोकथाम की बात की तो कीटों की भी बात आती है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें मुख्य रूप से जो कीट लगता है वो माइट होता है
1: जी।
0: तो माइट के लिए ये निचली पत्ती पे सतह पे रहता है लाल मकड़ी की तरह, ये जब लग जाता है तो ये पत्तियों के रस चूसते हैं, रस चूस के पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिसको आम भाषा में किसान कहते हैं कि पौधे बंधने लगे हमारे। तो इसकी रोकथाम के लिए कई सारी दवाएं हैं, जैसे इमडा क्लोरोपीड भी डाल सकते हैं या इमामेक्टिन बेंजोएट आती है एक, वो डाल सकते हैं। तो 2% इसका भी है कि 2 g प्रति लीटर के
1: हिसाब से घोल बनाकर
0: आप स्प्रे कर सकते हैं।
1: जी जी जी, डॉक्टर साहब एक और समस्या आती है, गेंदा गुलाब की बात करें तो जो पुष्प होते हैं पुष्प सड़ने लगते हैं, तो उसके लिए हमारे किसान साथी कैसे रोकथाम करें?
0: देखिए अगर हम ज्यादा पानी लगाएंगे खेत में, कभी भी अगर हमें पानी ज्यादा नहीं स्टैग्नेंट करना, अगर पानी ज्यादा लगाएंगे तो पुष्प शुष्क हो जाते हैं, फिर वो सूखने लगते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पानी का विशेष ध्यान देना है कि जब रिक्वायरमेंट हो तभी खेत में लगाएं, अन्यथा की अवस्था में हमें पानी नहीं देना है।
1: इसीलिए कहा जाता है कि जो आप खेत का चयन कर रहे हैं उसमें पानी निकास की उचित
0: व्यवस्था होनी चाहिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और गेंदा गुलाब और ग्लैडुलस के बारे में विस्तृत जानकारी दी हमारे किसान साथियों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो हेमपाल भैया, देखो अभी आपने गेंदा गुलाब और ग्लैडुलिस की खेती विषय पे विस्तार से जानकारी करवाई हमारे किसान भैया और बहनन के लिए। हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया है ना, वे फूल वाली खेती जरूर करेंगे। और जानकारी दे रहे डॉक्टर शिव शंकर वर्मा जी, और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे जसमेंद्र सिंह। तो भैया देखो, हम अपने सभी किसान भैया और बहनन से कहना चाहेंगे कि जो फूलों वाली खेती हैं उनको भी अपनावें, और ज़्यादातर जो अनाज वाली फसलें हैं उन पर ही ध्यान ना दें, क्योंकि खेत को बदलते जो फसलें हैं बोनो चाहिए, और उससे होता है कि जो हमारी भूमि है ना उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहती है। होता है लगातार हमारे किसान भैया दर फसलन पर फसलें फसलन पर फसलें ले चले जा रहे हैं, और धान गेहूँ तो बदल बदल कर भी खेती जरूरी है।
3: बिल्कुल भैया, आपने सही बात कही कि अगर हमारे किसान साथी अदल बदल कर यानी मिश्रित खेती है या फिर फसल चक्र अपना कर खेती को करेंगे और अनेक तरह की फसलें करेंगे तो उन्हें जाहिर सी बात है लाभ ही लाभ हुआ।
2: बिल्कुल, और जहाँ बात लाभ की आ जाती है ना भैया, तो देखो कुछ ना कुछ मन करो कि मनोरंजन कर लो जाए, और जब दिल खुश होता है तभी मनोरंजन भी अच्छा लगता है,
3: बिल्कुल भैया।
2: तो कौन से लोग की सुनवा रहे हैं?
3: तो साथ इनके लिए आज सुनवा रहे हैं।

0: भाई बहनों, अभी आपने योगेश कुमारी की आवाज़ में जो लोकगीत सुनो, हमें उम्मीद है आपको पसंद आओ हुए। साथियों, कार्यक्रम को अब और आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक सफल कृषक से करी गई बातचीत। साथियों, सफल कृषक से बातचीत करी है हमारे भैया अनिल ने। तो साथियों, काका बातचीत करिए, हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें, सफल कृषक हैं श्री मंगल सिंह नारायण नगला, बिलासपुर रामपुर से।
1: आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं ग्राम नारायण नगला, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर का निवासी हूँ।
1: अच्छा जी, तो आप खेती बाड़ी करते हैं
2: जी।
1: तो इस समय खेती बाड़ी में क्या काम चल रहा है?
2: इस समय जी धान की रुपाई चल रही है।
1: अच्छा, आपने कौन सा धान लगाने का मन बनाया है?
2: इस समय PR 126 है।
1: अच्छा,
2: और PR 126 15.09।
1: जी, PR 126 और 15.09 बहुत किसान भाई लगाते हैं, हमने सुना है इस इधर आपके क्षेत्र में
2: जी।
1: तो इसको लगाने की क्या वजह है कि आप PR 126 को ही क्यों चुना है और 15.09 को क्यों चुना है? कोई ना कोई
2: पीआर 26 जो कम समय में हो जाता है, इसकी
1: अच्छा
2: 25 दिन की पौध जो लगाने योग्य होती है,
1: जी,
2: और जो कई बार किसान हमारे ज्यादा अधिक दिन की पौध लगा देते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है और फिर डबल धान होता है उससे।
1: अच्छा, वो
2: तो कम समय में हो जाता, आगे मटर की खेती भी कर सकते हैं समय से।
1: तो ये जो है कम लागत में हो जाता है और कम समय में हो जाता है।
2: जी,
1: तो इसके लिए आपने अभी धान की रोपाई कर रहे हैं?
2: धान की रुपाई लमसम 50% हो गई है।
1: अच्छा, तब तो काफी हो गई।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, तो इसमें कोई बीमारी वगैरह भी आती है क्या?
2: बीमारी तो इस समय नहीं है, इस समय तो अपना घास पात जो भी है उसकी दवा का प्रयोग कर रहे हैं।
1: अच्छा,
2: आगे गोप की सूंडी लगती है
1: अच्छा,
2: तो
1: तो
2: उसमें
1: इसके
2: फिर
1: लिए
2: दवाई का प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा, तो अभी इसमें हमने देखते हैं कि जो जब पकते समय इसमें कुछ कंडुआ वगैरह लग जाता।
2: हाँ, कंडुआ जो है वो तो इस समय ही रुक सकता है, जब हम बीज को
1: जी
2: उपचारित करके बोएंगे
1: हाँ,
2: तो जो कंडुआ की समस्या नहीं आएगी। किसान हमारे जो हैं
1: अच्छा
2: उसको बीज को उपचारित नहीं करते हैं, तो बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है, तो कंडुआ तभी रुकेगा जब हम बीज को उपचारित करेंगे। तो
1: अच्छा ऐसा नहीं है कोई तरीका कि जब बाल बनती हो उससे पहले जो है उसमें कोई ऐसा?
2: नहीं, ये बीज जनित रोग है, इसको उपचारित करना बहुत जरूरी होता है और साथ में अपनी भूमि को भी उपचारित करना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, भूमि को उपचारित करने का समय तो देखो अब निकल चुका है।
2: नहीं, इस समय नहीं होगी, उस किसान को ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा
2: उसी समय जुताई के समय, जैसे अपना धान के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं उसी समय
1: अच्छा
2: इसको उपचारित करना चाहिए।
1: अच्छा इस समय खाद की क्या क्या ध्यान रखें हमारे बहुत सारे किसान भाई? अभी जैसे आपने बात करी कि 15.09 भी लगाया, 15.09 है उसमें भी देखा जाता है कि बीमारी आ जाती है।
2: हाँ, उसको भी एक हमारे यहाँ सरकारी गोदाम पे जो राजकीय कृषि बीज भंडार है वहाँ पे रक्षा इकाई पे
1: जी
2: अपने ट्राइकोडर्मा मिलता है।
1: अच्छा,
2: ये ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे तो उसमें बीमारी बहुत कम आती है, जो फंगस से बीमारी आती है वो रुक जाती है।
1: अच्छा, तो इसका किस तरह से प्रयोग करा जाता है हमारे किसान भाई को बताना चाहेंगे?
2: ट्राइकोडर्मा का प्रयोग देखो, एक डिब्बा जो एक एकड़ में प्रयोग किया जाता है
1: अच्छा एक
2: उसको
1: किलो
2: 25 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला लेते हैं, तो
1: जी
2: वो अपने खेत में रोपाई के पहले उसको छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा,
2: और ट्राइकोडर्मा का हम घोल बना करके भी उपचारित कर सकते हैं, लगाते समय
1: अच्छा
2: जड़ों को उपचारित भी कर सकते हैं।
1: अच्छा,
2: इस समय से अपनी जो भी वो एक झुंड, पता नहीं कौन सी बीमारी, इस तरीके का कोई नाम है, वो नहीं हो पाती है उसमें 15.09 में।
1: सीका लग जाता, सीका निकल जाता
2: सीका,
1: है,
2: सीका, सीका। हाँ जी,
1: लंबा ऐसा हो जाता है पौधा, एक पौधा लंबा निकल जाता है फिर।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो उसमें
2: तो
1: बहुत
2: बहुत
1: सारे
2: अच्छी चीज है, ट्राइकोडर्मा का किसानों को प्रयोग करना चाहिए। ये 100 रुपए का डिब्बा होता है, 75 रुपए खाते में आ जाते हैं और 25 रुपए का ही मिलता है ये।
1: तो बहुत सस्ता पड़ता है किसान भाई को।
2: जी,
1: तो इसको इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई लाभ ले सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: हमारे किसान भाई ध्यान रखें, अगर सीका की बीमारी से बचना चाहते हैं तो इसको लगाएं और अपनी जो फसल है उसको सही से अपने पैदावार लें। और इसके अलावा पशुपालन भी करते हैं क्या?
2: हाँ जी, पशुपालन तो एक सहायक धंधा है,
1: अच्छा,
2: किसानों को
1: जरूरी
2: पशु जरूर पालने चाहिए। जो खेती कर रहे हैं तो
1: जी
2: उससे हमें सड़ी हुई गोबर की खाद हम बना सकते हैं और अपनी खेती में प्रयोग करेंगे। आजकल आप देख ही रहे हैं कि जैविक तरीके से हम खेती को करेंगे,
1: जी
2: बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और आजकल देखा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमारे किसान भाई ज्यादा कर चुके हैं, तो अब कहा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कम करें।
2: हाँ, सरकार की भी मंशा यही है कि जो अब पॉश मशीन के द्वारा जो खाद मिल रही है बुकिंग कर रहे हैं,
1: जी
2: सीमित मात्रा में ही खाद मिलेगी, तो
1: जी
2: उसका किसान साथी सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो जो कि यूरिया अधिक डालने से बीमारी पैदा हो रही है
1: जी जी
2: तो वो नहीं होगी।
1: बिल्कुल, और उसकी भरपाई भी हो जाएगी। जब आप पशुपालन करेंगे तो पशुओं से गोबर मिलेगा, गोबर
2: हाँ,
1: से खाद
2: पशुओं से बहुत
1: मिलेगी।
2: सारी चीजें हमें प्राप्त होंगी। गौमूत्र, जो गाय पाल रहे हैं तो
1: जी जी
2: गौमूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कीट और बीमारियों के लिए।
2: हाँ जी,
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
0: भाई बहनों, अभी आपने सफल कृषक श्री मंगल सिंह नारायण नंगला बिलासपुर रामपुर से जो हमारे भैया अनिल ने बातचीत करी वो सुनी। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने धान की रोपाई के बारे में जो कुछ खास बातें हैं उस पर जानकारी जानी। साथियों, अब देखो, धान की बात जब चली रही है तो धान की फसल में कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं, उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे धान की फसल हो या फिर कोई भी फसल हो, उसमें उर्वरक देनो या फिर और भी कोई पोषक तत्व देनो ही पर्याप्त ना होता है, कुछ पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व देने भी जरूरी होता है।
3: तो भैया देखो, इसी बात को ध्यान में आज हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए अब लेकर आए हैं कृषि संकेत में जानकारी, जो कि धान की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व कि किस तरह से हमारे जो किसान भैया हैं, देखो बहुत से किसान भैया ऐसे होता है कि जो यूरिया डाल देते हैं, NPK डाल देते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व की ध्यान ना देते हैं। तो ज़रूरी जा है कि अपनी जो भी फसलें हैं उनमें धान की उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी जरूर दें, फसलों की बेहतर और विकास बेहतर करें, भरपूर पैदावार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक है। और हम अपने सभी किसान बहनों के लिए बता दें, जो पोषक तत्व हैं वे किस किस तरह से उनसे कैसे लाभ लो जा सकता है। जिंक पोषक तत्व जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी है धान की फसल के लिए। और इसके अलावा देखो जाता है लोहा है, फेरस, बोरोन है, मैंगनीज है, कॉपर है, तांबा है, मोलिब्डेनम है, इस तरह के जो क्लोरीन है, निकेल है, ये बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं उनको खेत में धान में लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन फसलन को, इन पोषक तत्वों को ना देते हैं अपनी फसलन में, तो देखो जाता है कि कई तरह की बीमारी भी आ जाती है। तो इनके द्वारा जो भी होने वाली बीमारी है उनको जरूर बचाने हैं, पोषक तत्वों को अपनी फसल में जरूर देने हैं।
0: बिल्कुल भैया, आपने सही कही कि जिंक धान की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो क्लोरो फिल की मात्रा को बढ़ाता है यानी उसको निर्माण करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ तो अगर इसकी साथियों कमी ही जाए तो खैरा रोग जिसे कहते हैं वो ही जाता है। इसकी पहचान जो होती है कि पत्तियों पर हल्के पीले या कत्थे रंग के धब्बा पड़ जाते हैं जो पौधे की बढ़वार को रोक देता है।
3: इसी तरह से अगर लोहा की बात करें हम, तो लोहा तत्व की कमी से देखो जाता है कि जो आपकी पत्तियां हैं धान के पौधा की उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारियां पड़ जाती हैं, और जे लक्षण हैं उनसे पहचान करके आप अपने जो धान की फसल है उसमें लोहा तत्व की पूर्ति को कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल हरी भरी रहे।
0: बिल्कुल भैया, इसी तरह से अगर बोरान की बात करें तो बोरान तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि वैसे तो सभी हैं, बोरान जो है हमारे फलों फल को और फूल को सब में बहुत ही अधिक काम करता है। इसकी कमी अगर ही जाए बोरान की, तो अगर धान की बात करें धान के जो दाने हैं वे खाली रह जाते हैं और उनको आकार भी छोटू ही जाता है, तो बोरान की कमी बिल्कुल भी ना होने दें।
3: और मैंगनीज की अगर हम बात करें तो भैया देखो, जाको महत्व तो इस तरह से है, जे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी के जो अणु होता है ना उनको तोड़ने और एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है, और इसकी कमी के जो लक्षण होता है ना वो पत्तियों की नसों के बीच धब्बेदार पीलेपन आ जाता है। इस तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए ये लक्षण पहचान कर और मैंगनीज की पूर्ति कर सकते हैं।
0: और साथियों देखो, कॉपर यानी तांबा जैसे कहते हैं, इसकी भी पूर्ति करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पौधे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपयोग को नियंत्रित जो कॉपर और तांबा करता है, और इससे जो है पौधे में जो फंगस वगैरह लगता है उसकी भी लड़ने की क्षमता तांबा यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तो दवा होती है, कॉपर तत्व उसमें भूमिका निभाता है।
3: और इसके जो कमी के लक्षण है ना भैया, पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं और पौधा जो होता है वो मुरझाए से दिखाई देता है। इस तरह के अगर लक्षण हो तो समझ लो कि आपके जो फसल है ना उसमें कॉपर तत्व की कमी है, तो इस तरह से वे पूरी कर सकते हैं। मोलिब्डेनम की अगर हम बात करें तो इसको भी महत्व तो बहुत ज़रूरी है। इसको जो महत्व है ना भैया वो दलहनी फसलों में ज़्यादा है। राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा बायोमोलिब्डेनम जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण है ना उसमें बहुत सहायता करते हैं। और अगर इसकी कमी के लक्षण दिखा बतावें तो कि जो पुरानी पत्तियाँ हैं ना वे पीली होती नज़र आती हैं और नई पत्तियों के आकार छोटे रह जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया आपने सही बात कही। तो किसान साथी इस तरह से अपनी धान की फसल की देखभाल करें। कुल मिला के साथियों बात कहने की मकसद जो है हमारो कि आप जो भी धान की फसल कर रहे हों या फिर और कोई फसल कर रहे हों उसकी आप नियमित देखभाल करते रहें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो है कि आप जब किसी भी फसल की देखभाल करें और उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर बात करी जाए उसकी देखभाल की बात आ जाए तो आप हर फसल बोन से पहले मिट्टी की जांच करा लें, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। अगर हमने फसल बोन से पहले उस पोषक तत्व की पूर्ति कर दी अपनी मिट्टी में तो हमें जाहिर सी बात है आगे जो हम फसल करेंगे उसमें उस तत्व की हमें कमी देखने को ना मिलेगी।
3: बिल्कुल भैया, तो इन बातों को हमारे किसान भैया ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान भैया को जरूर लाभ मिला है। और सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी फसलन के लिए कितने ज़रूरी हैं जब बात उन्होंने अच्छे से जान ली होगी, कौन कौन से लक्षण से उनको पहचानो जा सकता है कि कौन से तत्व की हमारी फसल में कमी है और हम किस तत्व को फसल में दें तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, हमारी फसल हरी भरी रहेगी और उत्पादन अच्छो देगी। इसलिए हमारे किसान भैया को जब बात को बहुत ही ध्यान रखने हैं। और भैया देखो अब हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए एक और जानकारी दे दें कि कल को जो कृषि जगत कार्यक्रम है उसमें कौन कौन सी जानकारी कराई जाएगी। सबसे पहले चर्चा होगी सामायिक कृषि कार्य, इसके बाद आपके लिए एक भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी मिश्रित और अंतर्वर्ती के लाभ, या विषय की विस्तार से जानकारी देंगे अविनाश चौहान जी, और फिर आपके लिए एक प्यारे से लोकगीत से कराओ जाएगा मनोरंजन।
0: कृषि संकेत में जैव पदार्थों की का ऊर्जा उत्पादन पर प्रयोग, साथ ही साथ क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी आप तक पहुँचाया जाएगा। तो साथियों जो तो हुई कल के कृषि जगत के पिटारे में आपको क्या क्या जानकारी दी जाएगी उसके बारे में, अब साथियों कार्यक्रम के अंत में हम आपको बता दें कि कल को मौसम को संभावित मौसम कैसा रहा है।
3: अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। वर्षा को अनुमान जो है 62% बताया जा रहा है और वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो 74% से रहने की संभावना है। हवा की दशा पूर्व की ओर से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहन की उम्मीद है। इस तरह से तो भैया देखो कल को जो मौसम है उसके रहने को अनुमान है। और भैया देखो अब हमें समय अनुमति न दोगे, हम किसान भैया से और बातें करें, तो अगले कार्यक्रम तक अपने भैया अनिल
0: और हेमपाल भैया को दो अनुमति।
3: राम राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आसपास। इस कार्यक्रम में संकलन रहेगा सुहेल जैदी का और प्रस्तुति है विक्रांत चौधरी की।

0: नमस्कार। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह क्या हुआ खास, आप तक वो जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास, साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। आसपास के आज के इस अंक में आपका स्वागत है।
1: आसपास के आज के इस अंक में शामिल है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहबाद में जनसभा को किया संबोधित, जिले को 690 करोड़ की 102 विकास परियोजनाओं की दी सौगात, 12 मुहर्रम को इमामबाड़ा खासबाग रामपुर से निकला मेहंदी का जुलूस, जुलूस में जुलजना भी शामिल रहा, अजादारों ने की नुहाख्वानी और मातम, स्कूल चलो अभियान के तहत जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी, स्कूल चलो अभियान के तहत दी जानकारी, जिला अस्पताल रामपुर में नशा विरोधी अभियान के तहत हुई संगोष्ठी में डॉक्टर संतोष कुमार ने नशे से बचने पर दिया जोर। 30 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर जनपद की तहसील शाहबाद में 690 करोड़ की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे भी अंदाजा लग जाता है कि जब मैं रामपुर में आता हूं तो यहां का मौसम एकदम शिमला जैसा हो जाता है। कल तक उमस भरी गर्मी और आज इतना शानदार सुहावना मौसम, ये रामपुर के विकास और रामपुर के उन पौराणिक स्थलों, जिस धरती ने विरासत को, सनातन आस को और भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। भगवान बामेश्वर महादेव, श्री पातलेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर, मां बाला सुंदरी की दिव्य आशीर्वाद से जो धरती निरंतर लाभान्वित होती है। बहन और भाइयों, रामपुर जनपद जहां पे पैचवर्क, जरी वर्क, टाइलिन निर्माण और मेथा के प्रोडक्शन का कार्य बड़ी ही साफगोई के साथ अन्नदाता किसान और उद्यमियों के समूह के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ता है, ऐसे भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक, नौजवानों के लिए उनके हाथ को रोजगार प्रदान करने के लिए नए नए अभिनव नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे रामपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जब रामपुर आए हैं तो विकास की योजनाएं जरूर आएंगी। दो विधानसभाओं में ही 777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 101 परियोजनाओं का उपहार आज इन दोनों विधानसभाओं को मिलना है। इसके लिए पूरे रामपुर जनपद को, मिलट और बिलासपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को, दोनों विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं, दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है। और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। और यही कार्य रामपुर से निकला हुआ यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया था। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का जो काम हुआ, आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है, रामपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, रामपुर में विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं और रामपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो नया उत्तर प्रदेश के अंदर नया रामपुर भी आज पूरे प्रभावी ढंग से अपने विरासत और विकास की एक नई कार्य योजना के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, हमारे जब दोनों विधायक मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला जी के द्वारा, बिलासपुर के विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलक जी के द्वारा जब अपनी बातों को यहां पर मंच के माध्यम से संबोधन दिया जा रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो पहले असंभव थी आज डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो पाई है। बहनों और भाइयों, आपने इन योजनाओं को संभव इसलिए बना दिया, ये डबल इंजन सरकार ने इसलिए बना दिया क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने विश्वास किया। मोदी जी पे विश्वास आज इस विकास का आधार है।
1: 12 मुहर्रम को इमामबाड़ा खासबाग से मेहंदी का जुलूस निकला, जुलूस में जुलजना भी शामिल रहा। जुलूस सीआरपीएफ कैंपस होते हुए आगापुर स्थित करबला पहुंचा। जुलूस में नवाब रजा अली खान द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया ये नोहा असलम महमूद और इफ्तिखार महमूद ने पढ़ा।

0: के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। जो अभिभावकगण हैं उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो सभी बच्चों को स्कूल भेजें। और दूसरा इसके साथ ये भी निर्देश दिया है कि जो स्कूल में बेसिक पीने के पानी की शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था समुचित हो, ताकि विद्यालय का जो परिवेश है वो एक आकर्षक परिवेश बने बच्चों।
1: ठीक है सर, और स्कूल के गेट के सामने कूड़े को लेकर के भी कुछ?
0: हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो विद्यालय प्रांगण है वो आमतौर पर उसकी साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, चाहे विद्यालय के अंदर हो या बाहर हो, आसपास का जो परिवेश है वो साफ सुथरा व्यवस्थित रहे, ताकि बच्चों को स्कूल आने में रुचि हो और स्कूल उनके लिए आकर्षक स्थान बने।
2: जिला अस्पताल रामपुर में हुई नशा निरोधक संगोष्ठी में डॉक्टर संतोष कुमार बोले,
3: आसपास के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है आसपास कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। इसी के साथ संपन्न होता है क्षेत्रीय गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। वाचन एवं संकलन सुहेल जैदी का और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की थी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आस पास। संकलन था सुहेल जैदी का और प्रस्तुति थी विक्रांत चौधरी की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोता, आपसे कुछ ही देर में यानी कि शाम 7:30 पर आप सुनेंगे इंग्लैंड में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंटर इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। मैच आप सुन सकेंगे एफएम और मीडियम वेव पर। ऐप पर विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

श्रोताओं आप सुनिए कल सवेरे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ और विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जानकारी, घर में रखें स्वच्छता का ध्यान। सवेरे 7:00 आप सुनेंगे सेहतनामा, इसमें भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे। नियमित स्वास्थ्य जांच कितनी जरूरी है विषय पर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता से की जाएगी बात। ग्यारह बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम धरोहर, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नाटक ये धुआं सा कहां से उठता है, लेखक होंगे नफीस अहमद सिद्दीकी। सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, इसमें आप कुछ विशेष जानकारी और इन्फोटेनमेंट सुन सकेंगे। श्रोताओं ये थी आज हमारे और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 हुए हैं। अब सुनिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
4: कहाँ
3: एडमिशन कराने,
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: प्लेटो का कथन है बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ, कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
10: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
9: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
11: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
9: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
6: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे उस पर चर्चा हुई है और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए के इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
9: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
12: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गाँव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
9: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR

0: ताएं टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर के व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1501 प्रतिभागियों ने 3032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगर क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।

0: यही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। थोड़ी देर में आप

0: आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: क्रिकेटर वैशाली, यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू टॉक, राइट?
2: जी,
1: बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बाय एनी मीन्स, मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम अगेन। वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट गेम एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द निटिग्रिटीज, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट।
2: थैंक यू।
3: अब बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई, आप ही से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात करते हैं। 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं, इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
4: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है, और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में, दो टीमों ने चेस करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया है, और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहां हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
1: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर। ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुंच चुके हैं ग्राउंड में, देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
5: Foes. I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
6: Heads.
7: It's heads?
6: We'll have a bowl.
5: Heads it is. Australia has won the coin toss. So what are Australia going to do?
6: We're going to have a bowl. Beautiful day out here, and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
5: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
6: Yeah, there's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
5: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the accord awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
6: We've got no changes, so yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday, and very excited to come out here.
5: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well, and you're captaining Australia. That's good to beat that, doesn't it?
6: Oh, it sounds pretty wild to be fair, but special day.
5: And 5-day gap, did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
6: Yeah, the girls got a couple of days off, went across town from south of London to north, and started training over the last couple of days, so we're in a really good place.
5: We'll enjoy everything that is a final.
6: Thanks, Josie.
5: Matt, if it had fallen your way, would have things been different?
8: I was going to bowl as well, actually. It's a fresh wicket. Runs on the board in a final is no bad thing, so happy to be sitting here batting first.
5: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
8: No, we're unchanged.
5: You can stick with that as well. Talk to me about your squad, and I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards captained a team on this ground in 2009, Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
8: It would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've produced some really good cricket along the way. So hopefully we can do the same again today.
5: What wins it for England today?
8: One more run than the opposition, I suppose.
5: As simple as that. All the best. Go well, Matt. Australia have won the coin toss today, and they're going to bowl first in the final.
3: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बोलिंग करने का फैसला किया है। गर्मी बढ़ रही है लंदन में, विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए, उसी गर्मी को हम यहां पे कायम रखते हैं। वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता, आपने सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार?
2: इस पिच पे अगर देखें ना तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25

0: 5% बॉलिंग पिच है. अगर और सी अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफी स्विंग में फायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने. एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर. एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है, तो वो स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
1: ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगे.
2: बिल्कुल.
1: टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूं. हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085. दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342-1084, 2342-1085. गीतांजलि
2: जी, मनीष बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं, जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मुना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट. लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है, उनको ये एज मिलेगा.
3: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे, तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फायदा मिला. इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते. और काफी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफर रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नजर आती हैं. इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नजर आ रही है, तो काफी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला
2: जी. और अभी रोचक बात यह है, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से. नमस्कार
4: जी. नमस्कार
2: जी, नाम बताइए अपना.
4: जी मैं गुजरात तरफ से अशोक नाई बात कर रहा हूँ.
2: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं.
4: देखिए मैम, मेरे ख्याल से सोफिया डंकली को मौका नहीं देना चाहिए मेरे समझ से परे, और क्या कितना टोटल होना चाहिए अगर जीतना है तो इस मैदान पर.
2: जी टोटल की चर्चा जरूर करेंगे, सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है. सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम.
5: देखिए दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए. और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में ये है कि आप फील्डिंग करें. बट मैं हर समय ये कहता हूं कि इतने बड़े मंच पे आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर. और इंग्लैंड के कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए हैं लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा. आपके जो कहते हैं ना, सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं इस समय, तो चीजें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180. देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट. इसके ऊपर हम देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था. 170 रन्स एक ओवर पहले चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे. स्टिल 1 ओवर टू स्पेयर, दे फिनिश द गेम. तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है. तो इसलिए 170-180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली.
2: चेतन अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा इस ग्राउंड पर.
5: 180 बना दीजिए.
1: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-85, उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी. बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे एक प्लेयर है एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं. शी इज बीन एन ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में. हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन बहुत डेप्थ है उनके बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी. अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
0: उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, एलिसी पेरी, वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में फायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देती है। और उनका ये खासियत, उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वहीं वहां पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है, एंड उसकी वजह से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज खेली हैं, और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
1: मोना, आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूंगा, ये एलिसी पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
3: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले दो प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। सेवंथ, अभी तक वो छह बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है, उन्होंने काफी अच्छा सफर देखा है। और 2023 से जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया लेती।
2: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते, हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार।
6: हेलो
2: जी, नाम बताइए अपना।
6: चेतन शर्मा जी, नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
6: नमस्कार, आप आ गए तो मेरा बहुत खुशी हो जाता साहब, मैं 1970 से कमेंट्री सुन रहा साहब।
5: नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा।
6: साहब आप शारजा में एक बार मैच हो रहा था जब क्या हुआ, आप हैट्रिक नहीं है, मेरे को याद है अभी तक।
2: जी सभी को याद है हैट्रिक।
6: और एक मैच में जावेद मियां था आपका बॉलिंग में, लास्ट में छक्का मार के मैच विन हो गया था साहब।
5: जी जी जी जी,
2: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
6: अभी तक याद रहता, आप आते में वही याद आता साहब, के रमेश हैदराबाद उस्मानगंज।
5: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को
2: जी।
1: पाजी, वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
2: एक्साइटमेंट
1: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई। अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडेप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस?
5: देखिए, कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए, डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है। इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए हैं। यहां पर एडवांटेज, अगर हम मैं मनीष और गीतांजलि बात करूं, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए, आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की, 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज आता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा, अगर मैं कैप्टन होता, कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेज करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूं तो। लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
2: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें तो जो इंग्लैंड, ऑफ कोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाई करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहां ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रांग टीम नजर आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
3: देखिए, अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीटर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन क्लैप्टन और हीटर नाइट और डैनी, तीनों प्लेयर के पास काफी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, वो कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है। और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप। और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच है, तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
1: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन है बिकॉज यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल। आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रनअप ले रही है, वो थोड़ा सा रनअप ले रही है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोज में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाए।
0: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है, तो उनके ज्यादा रन्स है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास। एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती है एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती है वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत जबरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफी बेटर है, इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफी बेटर करते हुए दिखाई दी है। तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग, आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज्यादा मैटर करती है।
1: ऑलराइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आए और एक अगला सवाल पूछे, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में, पाजी आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी है, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है।
2: जी, और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की, चेतन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हेथ नाइट है और ऑस्ट्रेलियन की नई कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टेंसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
5: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई हैं अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल। अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूंगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले छह ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट सिक्स ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूं कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू। देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा। और अभी तक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखें ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन। जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है दे नेवर वॉन्ट की कॉन्टेस्ट रहेगा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रहे थे कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं, होम सपोर्ट होगा, अपने विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट। बट मैं सिर्फ चाहता हूं बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेसिंग दैट।
1: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
5: देखिए हो सकता है, देखिए आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं वो, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते। तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स।
1: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए।
2: हां बिल्कुल, वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं। हेलो
7: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना।
7: मैम मेरा नाम उमाशंकर सिंह है, मैं यूएस सपोर्ट किसी से बोल रहा हूं।
2: हां जी
7: मैम, जितने भी अभी तक सब लोग ने मैच हमारे जैसे चाहे वो
2: है, जी अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है बिल्कुल। दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पर चीज़ें वर्कआउट होंगी। बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, हमेशा हम यही कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्था साथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीश जौली।
1: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड।
3: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है, ऐसे भी कई बार हुआ है। और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें। लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है। और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज्यादातर सारे प्लेयर्स जो है वो हम WPL में इनको देखते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजुडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
2: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे। अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नजर आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद है?
0: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है। एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं। आप देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो लिप मिलता है ना बॉल को वो डिफरेंट होता है, वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए। तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है। एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो बेटर है, चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है।
1: पाजी, बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूं, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
5: देखिए, मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर, तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है। तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 एंड आई वॉन्ट सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग इट। तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वोंट बी ए कंटेस्ट। आई वॉन्ट इंग्लैंड टू स्कोर 180।
1: मोना, क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का, हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है, इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया के नाम।
3: हाँ, बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया।
1: ऑस्ट्रेलिया, राइट। वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली, गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे, और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20, और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ।
8: फर्स्ट बॉल 20।
1: तो आइए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर है भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
9: नमस्कार, है क्रिकेट के इस महाकुंभ में आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है और किसके बीच में, पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में। और ऐसे में इंग्लैंड, जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है। तो ये एक अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं, चर्चा जारी रहेगी। पिच नंबर 10 जिसपे थोड़ी सी घास है, नीचे से वो काफ़ी सूखी हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग सेंटर पिच हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है। तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं, और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूं प्रकाश वाकणकर।
10: थैंक यू विनीत एंड गुड इवनिंग wherever you are listening. It's a big day at Lord's, where the T20 World Cup final between the old rivals, as Vineet has described, is going to be played, and one of the two prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home, and they have also never beaten Australia. Australia looking for their 7th title, England for their 2nd, and those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsole really was the key difference, Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors, it seems to be good conditions as Vineet described. It's a fresh pitch and England will have to get a above par score, Vineet, because this Australian juggernaut is not going to be stopped by anything short of that.
9: सबके दिमागों में यही बात है प्रकाश, की किस तरह से वेल ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं। और आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है ऑस्ट्रेलियाई टीम, एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शायद एक दो ऐसे हैं क्रिकेटर, विकेट कीपर को हटाई दीजिए, बैटर हैं सारे के सारे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो इनके पास इतने विकल्प हैं।
11: செய்தி அறிக்கைகளுக்கு பிறகு கிரிக்கெட் வர்ணனை தொடரும்.
12: அமைச்சர் திரு சிவராஜ் சிங் சௌஹான் காணொலி வாயிலாக 25,863 கோடி ரூபாயை மாநிலங்களுக்கு விடுவித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இந்த திட்டத்தின் கீழ் பணியாளர்களுக்கு 15 நாட்களுக்குள் ஊதியம் வழங்க இந்த தொகை உதவிடும் என்று கூறினார். மாநில அரசும் இந்த திட்டத்திற்கான தங்களது பங்களிப்பை குறித்த காலத்திற்குள் விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார். நாடு முழுவதும் கடந்த 1ஆம் தேதி முதல் இந்த திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். ஆந்திரா, கேரளம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்கள் முதல் நாளிலேயே ஏராளமான வேலை வாய்ப்புகளை இந்த திட்டத்தின் கீழ் வழங்கியது பாராட்டுதலுக்கு உரியது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். இந்த திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஊதியம் 10% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். இதன் மூலம் பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் குறைந்தது நாளொன்றுக்கு 300 ரூபாய் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் திரு சிவராஜ் சிங் சௌஹான் தெரிவித்தார். 20% எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல்
13: பயாக்கி போலிங் கா விகல்ப் உன்கோ மில்தா ஹை லேகின் கிம் கார்த் की शुरुआत होने वाली है उनके ओवर की। एक से छह के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल दो खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं। ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद, एक स्लिप तैयार है और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी, एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई स्टंप्स के पास से नहीं होकर बल्कि थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। सावधानी रखिए, कुछ नहीं छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलीन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूमकर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी और यह शुरुआत हुई खाते की, 4 रन।
14: ये लगा आभा का चौका
13: के बल्ले से, चौका था लगभग टू ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से, भाग्य ने साथ दिया और उस पर 4 रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का। फील्डिंग का दिखेगा बड़ा मजा आएगा, फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो 4 रन वहां पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोक के ऊपर उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो 4 रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है और इंग्लैंड फाइनल्स में 4 रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार। किम गार्थ, और इस बार ज्यादा ललचाती हुई गेंद थी, खेला उसको पॉइंट पे, फील्डर है बाउंड्री लाइन के नजदीक, फील्ड कर लिया गया। पिच को अगर आप देखें तो काफी घास है लेकिन नीचे से काफी सूखी नजर आ रही है, और जैसा प्रकाश ने बताया बिल्कुल फ्रेश है, अब तक इस पर कोई मैच हुआ नहीं है। आमतौर पर स्क्वायर बाउंड्री 58 और 65 की रही है लॉर्ड्स में, आज लगभग 64-64 की रहेगी, दोनों ओर एक सार नजर आ रहा है स्क्वायर बाउंड्री का जो इलाका है। 5 रन बगैर नुकसान के, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने। व्हाइट हॉट जो जबरदस्त फॉर्म में है, किम गार्थ सामने है, और क्योंकि बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है और इसी से आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी बैट की और स्टंप्स के पास से निकल गई। क्या आज का दिन इंग्लैंड का दिन साबित होने वाला है, क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है।
10: Certainly looked like that on that occasion, dropped between the batter and the stumps and then bounced over the stumps, unbelievable luck।
13: किम गार्थ 5 विकेट लिए अब तक टूर्नामेंट में, बिल्कुल स्टंप्स के पास आके शॉर्ट एंड वाइड कट किया उसको, पॉइंट फील्डर मौजूद है बैकवर्ड, फील्ड किया गया 1 रन और। तो दिलचस्प है, आमतौर पर जो सीम का इस्तेमाल करता है वो पेविलियन एंड से बॉलिंग करता है, यहां जहां तक संभव पेविलियन एंड से सीम बॉलर्स जो पिच का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और नर्सरी एंड से स्विंग बॉलर्स, और लाजमी है कि हैमिल्टन उस ओर से बॉलिंग करेंगी जो खासा स्विंग कराती हैं। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, हाफ वॉली स्विंग होती हुई और क्या फील्डिंग, कवर क्षेत्र में शानदार क्षेत्र रक्षण, रन नहीं लेने दिया, यही है T20 क्रिकेट का मजा।
15: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
16: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
15: तुम हो ही भुलक्कड़।
16: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
17: ली। जानिए आभा के बारे में आधार यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
10: A tentative start really by England, a streaky boundary for Amy Jones got things underway, and there have been a couple of questions asked. Already we've seen the athleticism of the Australian girls in the field, and that will be a factor, as Vineet mentioned quite clearly. Both sides, but particularly Australia, just exceptional in the form of a well-oiled machine that has not had any silverware for a few years now, and they'll be thirsting to get the trophy in their cabinet. Right then, Lucy Hamilton, left arm over the wicket, bowled wide outside the off stump, may well be called that. Wait to see whether Jackie Williams thinks so. No, it's all right, must have pitched just inside the tram line, but certainly moved away, exaggerated movement away from the right hander. Danny Wyatt Hodge, leading run scorer in the tournament so far, healthy strike rate just under 300 runs as well. And Amy Jones, who hasn't really blossomed with the bat. Next one's pitched up and it's gone. I think it's carried. Yes, it has. And that's a big wicket. Amy Jones edging one to the lone fielder in that slip cordon. And that means England have lost an early wicket. Australia rocking the home team in the very second over. In fact, that is the last thing that England wanted, having been put into bat, shaping away, looking for a big drive. Outside edge, carries to gully and taken very comfortably. Australians don't drop catches beneath, and that's the dream start for the girls in their green and yellow.
18: Amy Jones ek bar fir offside mein out ho rahi hain. Predominantly onside ki cricketer hai, pata nahi kyun jo wicketkeepers hote hain wo onside mein zyada mazboot kyun hote hain. Pichle match mein semi final mein bhi point ke aas paas wo out hui thi, इसी तरीके के ऑफ स्टंप के बाहर की स्लाइटली वाइड गेंद पर, और लगभग उसी इलाके में जैसा प्रकाश ने आपको बताया गली पे वो कैच आउट हो गई। महत्वपूर्ण सफलता मिली है ऑस्ट्रेलिया को, और इंग्लैंड को अब भरपाई करनी पड़ेगी ऑन द बैक फुट शुरुआत में ही, और पावर प्ले में अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर जाए तो फिर एक बड़ा स्कोर बना पाना थोड़ा दुष्कर हो जाता है।
10: Well, we saw that in the semi-final, didn't we, Vineet? England lost three early wickets, and then it was the two captains, the current and the former, Nat Siva Brunt, who will come into bat at number three, and her immediate predecessor, Heather Knight, who stitched together that partnership. Here's the first ball that's been faced, and it's been creamed away just elegantly and timed to perfection through the extra cover boundary for four. What a terrific shot.
14: ये लगा आभा का चौका।
10: That's the class there, just waiting on it, Siva Brunt, and then easing it away, not trying to hit the ball too hard, just pure timing, and it races across the hallowed turf at the Lord's Cricket Ground, and England move into double figures, 11 for 1. Here's Hamilton in again, and this time unable to quite time it, getting the inside part of the bat, the ball trickles away towards the offside. There will be no run. Just watching the replay of that dismissal again now in real time, Vineet, you can see that the anticipation was there. There was a plan there. And Amy Jones unable to get her foot to the pitch of it. And as a result, drove away and Wall, Georgia Wall, making no mistake. Here's the fifth ball of the second over. It's Lucy Hamilton, left arm over, past umpire Williams, bowls. And Siva Brunt is defending on the offside. Out to cover, there will be no run. The home crowd will be a big factor in this game, one feels. England playing at Lord's, the last time any England team, men or women, played a World Cup final at Lord's. We all know the drama that happened there. Many would argue that it was a victory that was snatched by defeat or by fate more than anything else, but it was a great game of cricket. Let's hope this one lives up to it. Last ball of the over. Here's Hamilton Boulder. This one's a swing and a miss from Siva Brunt as the ball shapes away. End of the over, 11 for 1.
19: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
18: ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोरदार शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसकी दरकार उनको थी। और ताज्जुब ये होता है कि ज़्यादा इस मैदान को समझते इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट जबकि गेंद नर्सरी एंड से की जा रही थी, इतनी लाजवाब थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट डाउन द स्लोप जो फील्ड प्लेसमेंट विकेट के पीछे अतिरिक्त खिलाड़ी लेकर, दो खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा लेकर उन्होंने बॉलिंग की। गार्थ के नए ओवर की पहली गेंद को बैकफुट पे संतुलित होकर खेल दिया डीप विकेट पॉइंट। एक समय था एक थर्ड मैन लगता था और एक फाइनल लगता था, काम पूरा हुआ शुरुआती ओवर। अब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर लेग क्षेत्र के आसपास, नहीं तो लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी नजर आएगा। क्रिकेट बहुत बदला है, उसकी तस्वीर बहुत बदली है और दोनों ही टीम वही हैं जो सेमीफाइनल में खेली थी, कोई परिवर्तन नहीं है। और गार्थ पेवेलियन एंड से बॉलिंग कर रही हैं और ये डाउन द हिल है। डाउन द हिल वो जो पेवेलियन एंड है वो थोड़ा सा इस समय मदद करता है कि आप गेंद को बाहर की ओर निकालें। गार्थ देखें इस ओवर में क्या करती हैं, क्रीज के बीचों बीच से ये गेंद थी और वहीं दबाकर सिंगल दौड़ना चाहती थी, टाइम नहीं कर पाई अपनी स्ट्रोक को, गेंद वहीं लुढ़क कर रह गई और वापस दी जा रही है किम गार्थ को। काहिला मैग्रा उप कप्तान है, टीम में नहीं, चार बेंच पे जो बैठी हुई खिलाड़ी हैं सब आईसीसी ट्रॉफी में जीत के समय शामिल रही हैं।
10: They're all World Cup winners, right? That shows the depth of Australia.
18: Danny Whitehorse enables Sutherland. Sutherland को एक विकेट चाहिए 50 T20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने के लिए। मैगन शूट जो अब तक सब टूर्नामेंट्स में खेली हैं T20 के, ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीम में नहीं है, केवल एक मैच में, दूसरे मैच में शामिल किया गया था अगली के, और उसको पूरा सम्मान देते हुए उसके ऊपर आते हुए कलाइयों को जोर से धीरे से पुश भर किया और 2.3 ओवर के बाद टॉस हारकर इंग्लैंड 12 रन और विकेट कीपर एमी जोन्स का वो खो चुके हैं। शिवर ब्रंट और व्हाइट हॉज की जोड़ी इस समय मैदान पर है। शिवर तीन मैच खेली, उसके बाद उनको क्वाड की ट्रबल हुई, उनको जांगों में तकलीफ हुई, उसके बाद नहीं खेली। पिछले मैच में क्या जोरदार वापसी की, 75 रन बनाए 47 गेंदों पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों का प्रयोग किया, डाइव किए हुए फील्डर से गेंद छिटकी, दूसरे रन के लिए जा रही है, इससे पहले कि आके उसको उठाया जाए दूसरा रन भी पूरा हो गया। यह होता है जब पहला रन आप तेज लें, फील्डर्स के ऊपर दबाव बनाए, अपनी दाई तरफ जाकर डाइव लगाई, पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए डाइव लगाई, लेकिन हाथ से लगने के बाद छिटके और एक रन और पूरा हुआ। तीन रन अब तक इस ओवर में, दो गेंदें शेष हैं। ऑफ साइड में एक कवर पॉइंट है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर और लॉन्ग लेग है सीमा रेखा पर, बाकी सब दायरे के अंदर है। बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं ओवर्स करने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जरूरी है नहीं तो लास्ट पावर प्ले में एक फील्डर कम मिलेगा। बाउंड्री लाइन के पास अगली गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला और गेंद वापस बॉलर को दी जा रही है। शिवर ब्रंट 10 इनिंग्स अब तक उनकी हैं, जो पिछली 10 इनिंग्स हैं उनमें उनका लेखा जोखा बढ़िया है। क्या कर सकता है इंग्लैंड, कितना संतुलन रखना होगा, कितने स्ट्रोक्स खेलने हैं, विकेट गिरने से बचाने हैं। ये 6 ओवर का पावर प्ले जिसमें केवल दो खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, उसका फायदा भी तो उठाना है और ऐसे में आप विकेट भी दे सकते हैं। लॉर्ड्स के स्लोप में जिस जगह खड़े होकर बैटिंग कर रही हैं शिवर ब्रंट, आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आप शफल करके आपका फुटवर्क आपको ऑफ स्टंप के बाहर ले जाता रहता है और उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इसके आदि हैं, दर्शक भरे हुए हैं, लगभग 30,000 के आसपास दर्शक, और क्यों ना हो, बहुत बड़ा अवसर है क्रिकेट के मुख्यालय में। और मैच किसका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, परंपरागत प्रतिद्वंदी, कांटे के मुकाबले के लिए सब ललायित हैं। क्या होगा अंतिम गेंद पर, अच्छी गेंद स्टंप्स को, यू हैव टू अटैक स्टंप्स, बीच बीच में स्टंप्स की सीध में, अगर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ऑन साइड में फील्ड प्लेसमेंट है तो आपको फायदा मिल सकता है, नहीं तो फिर आप महंगे भी साबित हो सकते हैं।
15: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
16: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
15: तुम हो ही भुलक्कड़।
16: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
17: जानिए आभा के बारे में,
16: आभा
17: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें। जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
10: 14 for 130 over is gone. England haven't really been able to capitalize on the power play so far, except for one authoritative cover drive by Natasha Brunt. There's just been that one bottom edge boundary for Amy Jones. Australia starting off just the way you'd expect, and a change in bowling now. The Australian captain, Sophie Molyneux, will start her left arm spin, and she's replacing Lucy Hamilton, who's got the best economy rate, I dare say, probably in the tournament itself, but certainly in the Australian team. She hasn't been among the wickets as much, but she's kept a very tight leash. And Wyatt Hodge has been susceptible to spin in an early part of the innings. And here's Sophie Molyneux now. An economy just at 6.5 runs and over. First ball of spin. And down the wicket comes Wyatt Hodge. Gets a thick outside edge. He's going to run down towards the square third boundary. Won't be cut off. 4 runs.
14: ये लगा आभा का चौका।
10: Again, not quite where Wyatt Hodge wanted to play that. She was looking to play inside out through extra cover. Thickish outside edge. Keeper standing up, but covering the turn well and getting a fortuitous boundary. So 2 out of the 3 boundaries for England with a slice of luck. Here's Molyneux again. Wide of the crease, short and off the back foot, crunched. Not timed at all. Diving stop. I think it's Ellis Perry there who dives to her right. What a cricketer she is. Talismanic. And someone who's played football for Australia as well. Supreme athlete. Had a little bit of an injury scare in the semi-final, but she's come back raring to go. And Wyatt Hodge now completes 300 runs in the tournament. 19 for 1. Siva Brunt. Molyneux. Captain to captain. Straight to the fielder at point, and there will be no chance of a run. It remains 19 for 1 in the fourth over now. 3.5 overs gone. England will have to look at getting move on here. Molyneux bowls down the wicket, comes Siva Brunt again. There's a bit of turn. This could be tight. The bails have been whipped off. They will go upstairs, I think. We'll have to wait and see whether Brinda Rathi will actually signal that, or will the third umpire just review it and respond. But certainly beaten in the air was Siva Brunt. Had to check her shot. Again outside edge. Quick throw in from Georgia Wall. And I think she's made her ground. But it was tight there. A single that they really shouldn't have been taking a risk with, but managing it. I think 20 for 1. The two batters in mid-conference now, Vineet. Here's the decision. Yes, she looks like she's in, Vineet.
18: बिल्कुल, और विकेट कीपर काफ़ी परेशान नज़र आई, खफा थी कि वो एक बेहतरीन अवसर को चूक गई रन आउट करने का. सिवर ब्रंट को मोल्यूनू ने 3 बार आउट किया है T20 में. अच्छा मैचअप है, राइट हैंडर और बाएं हाथ का स्पिन बॉलर.
10: नाउ वाइट हॉज हुज हैड अ स्प्रिंट टू सेव हर विकेट नाउ वेट्स फॉर मोल्यूनू एंड शी लुक्स टू स्वीप. द बॉल कम्स ऑफ द बैट ऑन टू द ग्रिल ऑफ हर हेलमेट. नाउ विल दिस लीड टू अनदर स्मॉल स्टॉपेज फॉर अ चेक, safety check, or was it not something that impacted the batter? We'll find out. We don't know that yet. 20 for 1. Siva Brunt is on 7. Wyatt Hodge also on 7. And these two have put on 13 runs. We're in the fourth over, last ball. And it's turned away on the onside to think of a run which isn't there. Excellent over, except for that one edge boundary. 20 for 1.
18: तो दिलचस्प क्रिकेट चल रहा है. ये पिछली गेंद 80 के आसपास की थी. कभी कभी ऐसा अब तक जितना थोड़ा सा खेल हुआ है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि गेंद बहुत आसानी से बल्ले की तरफ आ नहीं रही है. स्ट्रोक्स खेलना इतना आसान नहीं है. गति में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ द पेस भी नजर आ रहा है. बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया इस समय. और राइट हैंडर्स हैं उधर. आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में सब लेफ्ट हैंडर्स हैं, ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं. कम से कम 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं. और इसीलिए वो ऑफ स्पिनर का मैचअप जो उनके साथ होगा, जो चार्ली डीन कारगर साबित हो सकती हैं. लेकिन फिलहाल नेट सिवर ब्रंट के दिमाग में भी ये बात होगी कि उनको कई बार मोलिनो ने आउट किया है. अच्छा बॉलिंग चेंज था और परेशानी में नजर भी आई. कोई भी बैटर अब तक प्रकाश विश्वसनीय नजर नहीं आया है पिच पे कि वो रफ्तार को समझ गया है या अपना खुलकर स्ट्रोक खेल पा रहे हो। ओवर पिच गेंद पैरों के पास ऑफ द टोस खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री की तरफ चार रन।
14: ये लगा आभा का चौका।
18: लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रही हैं कप्तान अनाबेल सदरलैंड को लगाया था और उनका अच्छा स्वागत किया और नसीहत दी एक खराब गेंद जो ओवर पिच हुई और स्विंग के साथ अंदर की तरफ आ रही थी विद द टाइड खेल दिया उसको और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास उधर जहां टेवन स्टैंड है उस ओर गेंद चली गई चार रन के लिए। 24 रन एक विकेट पर। इस बार उठा कर खेला है उस ओर फील्डर है लेकिन काफी दूर है फील्ड किया दूसरे रन के बारे में नहीं सोच रही हैं। लॉर्ड्स के मैदान पर जब आप देखेंगे मैदान तो आमतौर पर तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं वो बाउंड्री लाइन पे कम से कम 5-7 फीट अंदर की तरफ खड़े रहते हैं। लॉर्ड्स में आप बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े नहीं रह सकते ये एक विशेषता है इस मैदान की। इन सारी चीजों को दिमाग में रखना होता है उसके बाद भी लोग उत्सुक होते हैं कि लॉर्ड्स में आकर खेलना है। 25 रन एक विकेट पे पांचवा ओवर चल रहा है टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता फील्डिंग कर रही है अच्छी लंबाई की गेंद कर रही है स्विंग हो रही है अगेन और रन लिया जरूर है लेकिन इस समय वेल विद इन देमसेल्व्स दोनों बैटर्स कोई बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर प्रकाश नहीं दिखा रही हैं।
10: ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड क्रिएट अ बेस हियर आई डोंट थिंक दे आर टू वर्ड अबाउट द पावर प्ले डिफरेंट टीम्स अप्रोच पावर प्ले डिफरेंटली एज वी नो विनीत इंग्लैंड लुकिंग लाइक दे वांट जस्ट मेक श्योर दे डोंट लूज टू मेनी विकेट्स।
18: सदरलैंड प्रतीक्षा कर रही है फील्ड को ही बड़ी जतन के साथ जमाई जा रही है और अंपायर की भी निगाह है और बैटर की भी निगाह होगी। नो बॉल का इशारा कुछ विलंब के साथ आया तीसरे अंपायर जो कि किम कॉटन बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं और वहीं से तीसरे अंपायर से ही इस टूर्नामेंट में इशारे आते रहे और यही नियम बनाया गया है। वेरी क्लोज जस्ट ऑन टाइम
10: ऑलमोस्ट हार्श
18: कड़ा निर्णय अंपायर ने काफी समय भी लिया ये फैसला करने में और अंततः बैटर के पक्ष में यह निर्णय गया। फ्री हिट मिलेगा उसकी तैयारी की जा रही है। मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया में हम कमेंट्री कर रहे थे सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में प्रकाश ने मुझसे पूछा था कि जब इस तरीके से होता है फील्ड में परिवर्तन होता है या नहीं होता फिर वही जवाब ढूंढ के लाए थे कि अगर बैटर बदल गया है तो होता है ऑफ स्टंप के बाहर से यह गेंद और उसको घुमा दिया है पुल के अंदाज में और गेंद जा रही है स्लॉग कॉर्नर में मिड विकेट के बाई तरफ से सीमा रेखा के बाहर चार रन।
14: ये लगा आभा का चौका।
18: पूरी बैकलिफ्ट 360 डिग्री में घूमता हुआ बैट जैसे कि पुराने समय में कैलेप्सो कहलाने वाले वेस्टइंडीज क्रिकेटर खेलते थे लेकिन ये T20 का जमाना है साहब और महिलाओं का क्रिकेट हो या मेंस का पारंपरिक क्रिकेट हो अब तो बल्ला घूमता है और बखूबी घूमता है। दो चौके लग चुके हैं इस ओवर में खराब गेंद थोड़ी दिशाहीन लेग स्टंप के बाहर आई पूरा फायदा नहीं उठा पाई दूसरे रन के लिए सोच रही है दो फील्डर झपटे विकेट कीपर स्वयं पहुंची वहां उस गेंद को रोकने के लिए लेकिन कोई विशेष लाभ बैटर उठा नहीं पाए क्योंकि गुंजाइश केवल उस लेग बाइस पर एक रन की ही थी। और जैसा कि हम दोनों ही आपको बताते रहे अब तक टाइम नहीं कर पा रहे हैं गति का परिवर्तन है निश्चित है कर रहे हैं चतुराई के साथ बॉलर्स लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट कुछ धीमा लग रहा है और बैट पे नहीं आ रही है गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर कलाबाजी खाते हुए विकेट के पीछे कैच के लिए अपील कर रही है और अंपायर इशारा कर रहे हैं वाइड का। गार था ये बात करने के लिए और उस सलाह मशवरा हो रहा है कि रेफरल लिया जाए या नहीं लिया जाए 7-6-5 समय रुकता थोड़ी है और ले लिया। सोफी मोलिनू कप्तान जो है उन्होंने इशारा कर दिया हमें रेफरल चाहिए तीसरे अंपायर को निर्णय कर लेने दीजिए क्या ये आउट था अथवा नहीं।
10: माइट बी क्लोज रिमाइंड्स मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट व्हेन हैरी ब्रुक वाज गिवन आउट एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन डाउन द लेग साइड द अंपायर डिक्लेयर्ड इट अ वाइड एंड इन द रिप्ले शोड द बॉल हैड टेकन द ग्लव दिस विल टेल यू विनीत
18: बिल्कुल ग्लव्स के बेहद करीब से जा रही है निश्चित रूप से अल्ट्रा एज देखना चाहेंगी किम कॉटन बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं बहुत अनुभव है उनके पास और वो जो दृश्य है आपके दिमाग में भी आया होगा ईशान किशन बहुत ज्यादा विश्वसनीय नजर आ रहे थे, संकल्प से भरे हुए थे, कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल आउट है आउट है। और यहां विकेट कीपर एमी जबकि ग्लव्स के पास से एज नजर आ रही और ये निश्चित रूप से विकेट मिल जाएगा वहां। अच्छा रेफरल किम कॉटन के निर्णय की हालांकि प्रतीक्षा है, लेकिन वो स्निको वो जो अल्ट्रा एज है जो कार्डियोग्राम की तरह उस ऊपर नीचे उठने वाली रेखाएं आती हैं ग्लव्स के पास से जब गेंद गुजर रही थी और विकेट कीपर बहुत जल्दी बर्ट मुनी उसको समझ गई थी और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ कैच की तरफ वो लपकी थी और छलांग लगाते हुए डाइव लगाते हुए उन्होंने किया था, वो कैच किया था और रेफरल मिला, उनके रेफरल दो अभी

0: And a little fumble at mid-wicket. Otherwise, there could have been trouble at the non-striker's end. Vinith Kapsi had no chance. She was way out of the crease when the ball came to the hands of Annabel Sutherland. But the throw wasn't great from Ash Gardner, and that allowed the run to be completed. So fortune still continuing to favour England. How long are they going to ride their luck, Vinith? That is what we have to wait and watch. Everything so far, from a luck point of view, seems to have gone in favour of the hosts, along with the fact that they're playing at their home ground. Wide of the crease, cut away on the offside. Fielder at deep point will cut it off for a single, is all that England will get. 38 for 2. Brunt, Siva Brunt moves to 18, and Kapsi back on strike. The run rate just edging over 6.5. Not the kind of start you'd expect in the power play of a big World Cup final, but that's just the way it is at the moment. 38 for 2. England will have to do some rebuilding here. Australia will be quite pleased, I think, with the way things have gone so far. Sophie Molyneux, their captain. Two no balls already. Not something Australia will be proud of. They really love their discipline. Kapsi waits for the last ball of the power play. Bowls, and she's placing it out onto the deep cover area for another run. End of the over. Six gone. 39 for 2.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो ड्रिंक्स मैदान पर हैं, 6 ओवर के बाद और फिर 14 ओवर के बाद दो ड्रिंक्स इंटरवल एक पारी में। सवा घंटे की पारी, 15 मिनट 20 मिनट मौके के अनुसार कि ओवर्स टाइम पे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। ओवर टाइम पे पूरे करने बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एक खिलाड़ी अंतिम ओवर्स में कम आपको मिलेगा बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द। ये सूरत हाल है यहाँ पर। आज टॉस हुआ, फाइनल मुकाबला है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का ये 10वां है। कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि 39 रन के स्कोर पर दो खिलाड़ी इंग्लैंड ने खोल दिए हैं। हालांकि कप्तान अभी भी मौजूद है नेट सेवर ब्रंट, और जैसा कि प्रकाश ने बताया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब उनका मुकाबला हुआ सेमीफाइनल, लगभग यही परिस्थितियां थी। उसके बाद हैदर नाइट और कप्तान के बीच में 133 रन की साझेदारी हुई। तो इसी तरीके की कुछ ज़रूरत यहां पर है, लेकिन पिच निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बैटिंग के अनुकूल लगभग इस समय नज़र नहीं आ रही है। तो जैसे जैसे धूप होगी, क्रॉस ब्रीज है मैदान पर, वेस्टर्ली ब्लो कर रही है जो पिच के ऊपर से अक्रॉस जा रही है, तो शायद बाद में बैटिंग करना शायद कुछ अपेक्षाकृत आसान हो, लेकिन अभी जूझ रही है इंग्लैंड की टीम एक बड़े स्कोर करने के लिए। एक स्ट्रोक ऐसा याद नहीं आ रहा है प्रकाश जिसमें आक्रामक तेवर से मिडल करके उसको बाउंड्री पार पहुंचाया।
0: I would say, Vinith, except for the first cover-driven boundary that Nat Siva Brunt played, which was really a beautifully timed shot, there hasn't been, you're right, a stroke of authority, a stroke of control, or a stroke of determination. But it seems like that is the plan that England are playing with. They haven't shown aggression, and different teams approach power plays differently. India, for example, look to maximize the power play. And in the process, if they lose wickets, it's okay. That's their thinking. Some other teams play slightly more conservatively. But the occasion, the World Cup final, the losses to Australia, home pressure, all of those things must be playing on the minds of the England batters as well.
2: एक बात तो तय हो चुकी है, और आंकड़े इस बात का सबूत हैं, stats इस बात का सबूत हैं, प्रमाण हैं कि ये सिक्सर लगाने का खेल तो नहीं है T20 क्रिकेट। आप देखेंगे कि जो टीमें आगे बढ़ी हैं उनमें कम सिक्सर लगाने का ही रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, ज़्यादा लगाए नहीं हैं। सबसे बड़ी बात स्ट्राइक रोटेशन और डॉट बॉल्स कम से कम खेलना बहुत मायने रखता है, और उसमें कुछ टीमें पिछड़ी हैं जिसमें भारत भी है। हालांकि आप देखें छक्के लगाने में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा दोनों ने 5-5 छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा ड्रैक्सन ने लगाए हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो ऊपर हैं सिक्सर्स में तो। लेकिन वो जो स्टार्ट मिलना चाहिए था भारत को नहीं मिला, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेशन नजर नहीं आया। ये दीजिए, ये एक और खतरनाक बॉलर जॉर्जिया वेरन, लेग स्पिनर हैं लेकिन गजब की बॉलिंग करती हैं, झांसा देने में माहिर हैं, हवा में झूलती हुई, तैरती हुई, डिप होती हुई गेंद मिडिल स्टंप पर आती हुई। ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स को लगातार अटैक किया है, यथासंभव स्टंप्स पर रखी है, यू मिस आई हिट, और ऐसे में फिर दुश्वारियां बैटर्स की बढ़ जाती है और आपको देखना पड़ता है कि कैसे खेलेंगे। 40 रन दो विकेट पर, ये सातवां ओवर ड्रिंक्स के बाद का पहला ओवर लॉर्ड्स में शुरू हुआ है। इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला खेला जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है और उसको उल्टा खेलना चाहती थी, रिवर्स रैंप के हिसाब से खेलना चाहती थी या स्कूप कह लीजिए। हालांकि संपर्क हुआ, दूसरे रन के लिए आएंगी जरूर, लेकिन इससे ज्यादा तेजी से रन चाहिए क्योंकि पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है, अब बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द ज्यादा खिलाड़ी रखे जा सकते हैं। आगे की ओर झुकी, कलाइयों को घुमाया, बैट का मुंह आसमान की ओर कर दिया और फिर विकेट के पीछे की ओर उसको खेलने का प्रयास किया, और गेंद का जो मूवमेंट था टप्पा खाने के बाद गेंद एक तो नीचे रह रही थी, ज्यादा उसमें उछाल नहीं था, अपने स्ट्रोक को नियंत्रित करके चेंज करने की कोशिश की थी। 3 रन 2 गेंदों पर अगली गेंद को कवर्स में फील्ड कर लिया गया, ज्यादा ऊंची बैकलिफ्ट लेके ड्राइव किया था इस बार, लेकिन नेट शिवर ब्रंट जिन्होंने 75 रन 47 गेंदों पर पिछले मैच में बनाए थे, जबकि सोफिया डंकली के स्थान पर टीम में शामिल हुई जो अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन कप्तान ने बढ़िया पारी खेली, एक और सिंगल दौड़ते हुए इस बार गेंद को खेला है डाउन द स्लोप, उस ओर गई है जहां की माउंट स्टैंड है और वहां गेंद खुद ब खुद तेजी से जाती है, लेकिन स्ट्रोक में कोई गति ही नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, प्लेसमेंट थी, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करने का प्रयास था, मोड़ा भर था, केवल 1 रन। अब तक 4 रन इस ओवर में, 2 गेंदें शेष हैं, 43 रन 2 विकेट पर। अगली गेंद वेरियम की, वेरियम देखिए बहुत बढ़िया गेंदें कर रही हैं, गेंद को आई लाइन के ऊपर कर रही हैं, बीच में फास्टर वन करती हैं, लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंदें करती हैं, भरपूर वेरिएशन विविधता लिए हुए उनका ओवर होता है, और कुल मिलाकर टूर्नामेंट में उनका इस्तेमाल किया है और जब इस्तेमाल किया है उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। हालांकि इस समय हावी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, 7वें ओवर की 1 गेंद शेष है, 43 रन 2 विकेट पर, 43 for 2 ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग, इंग्लैंड बैटिंग आफ्टर लूजिंग द टॉस। अगली गेंद बहुत नीचे रह गई एकदम, और अब लाचार हैं, खफा हैं अपने आप से, और क्या करें, गेंद बल्ले पे आ ही नहीं रही और ओवर पूरा हो गया।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: England's blows with the bat continuing at the moment, 43 for 2. There's a positive they can take from it is that they haven't lost a third wicket. And this is the phase now where they're going to have to really start looking to move on. But the Lord's pitch in recent times, whether it was the test match between New Zealand and England, whether it was the earlier games played in the county championship, the Lord's pitch after the square has been relayed has had the odd occasion. The last one barely got up to ankle high. And that is a concern for sure at this early in a big game like the Women's T20 World Cup Final. Start of a fresh over, Sutherland bowls and she has no idea at all, does Siva Brunt. I think leading edge, she's lucky that the ball didn't go further up the pitch. In fact, looking at the replay, it looks like it just came off the pad, inward movement and defeating the stroke that she attempted, to which was a flick towards the onside. So the two-paced nature maybe of the pitch and the variable bounce already on view, not an ideal advertisement for a T20 cricket. Here's the next ball, this one short, and this time Siva Brunt makes some room and pulls it away, but again not getting any timing, the ball sort of trickles away, the effort as visible on our screens clearly not translating into power of the middle of the bat, and just a single, limping along to 44 for 2. It's almost like the England car is only in first gear at the moment. They haven't even been able to move up to second. And Australia will not be disturbed at all. They'll be happy with the pressure they've put on the bowlers. And even as we watch Sutherland bowling, the keeper is up to the stumps, which is to prevent the England batters from looking at going down the pitch. Here's Sutherland bowls. This one's an ill-directed delivery. We'll go off the pad. We'll wait for the umpire to signal. But there'll be one more run to the total before it's fielded by the fielder Kim Garth, coming around from a squarer position deep on the onside, leg by signal by Jackie Williams, and that'll take the total to 45 now for two. Siv Abraham 22, Alice Capsey is on 5, and Australia keeping a stranglehold on the England run scoring. Here's the next run from Sutherland, again keeping a little bit low, but this time timed a little bit better by Siv Abraham, and that will allow them to come across, but just a single, because Ash Gardner was quickly onto it, moving around, and she's got a good throwing arm, and there was no way that England were going to take a chance with that one. So two balls of the eighth over to come. England will be reassessing what kind of target they'll be thinking given the nature of the pitch, as Sutherland comes in, this time making room. Capsey, she sees it, does Sutherland, drops it short and over the head, says the square leg umpire, and therefore a wide signal. She'll have to bowl that one again, and one more run to the total. This is not a game for bowlers, Vineet. Back in the day, if a batter showed intention and came down the wicket, you had a couple of balls whizzing through your in front of your nose, and as they say, you made them smell the leather. Next one said driven up on the offside, slightly over pitch, but only as far as cover. No placement, no timing. England struggling big time. The last ball of the eighth over coming up, 47 for 2. The run rate just about to run a ball. Not the kind of start you want in a big World Cup final when the opposition has put you into bat. How is Nat Siv Abraham going to respond now? It looks like the onus is going to be on her yet again. She's the champion batter. Sutherland bowls, Capsey comes down the wicket, cracks it away square of the wicket on the offside. But for all her effort, she'll just get a single. Another excellent over from Sutherland and Australia. 48 for 2.
2: तो ये समझा जा रहा था कि एक ओर से ही पिच पर गेंदें नीचे रह रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से सदरलैंड की गेंद इस ओवर में नीचे रही है, उससे लगता है कि बीच बीच में दोनों ही छोर पर कुछ गेंद बिल्कुल सुर्रा के अंदाज में नीचे हो जाती हैं, और हतप्रभ हैं इंग्लैंड के बैटर्स, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे स्ट्रोक खेलें। और विशेष करके प्रकाश, उनकी परेशानी इसलिए ज्यादा है कि ओवल जहां की दोनों सेमीफाइनल इन टीमों ने खेले हैं दोनों अपने अपने, वो इंग्लैंड में इस समय सबसे ज्यादा बाउंसी पिच है, तो वो जो बाउंस का परिवर्तन आया है उससे बड़ी परेशानी बढ़ गई है इंग्लैंड के खिलाड़ियों की, और टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही हैं, और पावर प्ले के 6 ओवर में 39 रन बनाए और दो खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। सिव अब्राहम कप्तान मौजूद है, एशली गार्डनर एक और खतरनाक बॉलर, उनको बुलाया गया है, ब्रेक थ्रू दिलाती हैं ये जब बॉलिंग के मोर्चे पर आती हैं। इनसे कुछ भी करा लीजिए आप, इनसे बैटिंग बॉलिंग।
6: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माही और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण थाने और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
6: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
8: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
9: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
10: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
9: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
6: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन

0: 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव

0: भेदभाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया

रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस

0: दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और टी20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले चार दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले दो से तीन दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नगिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में दांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। आईएमडी अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामेंटी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तसव्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरेन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ्फुज़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीकेकार के तहत अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनहिसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नजर रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखाह फंड्स मौजूद हों ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी ताकि विकसित भारत के तस्वर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट में कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तिहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सुलूक से मुतालिक मटेरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटेरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोख देने वाले तमाम इश्तिहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तिलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोज की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें। हुकूमत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाजे में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकाम लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाजों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमरीका के बैन अलाक्वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हटसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर जमाना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फखरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया, जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफर की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत जिले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडु की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोहरा आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाकये में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाकया बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आजादी पर जारी एहतजाज मुजाहिरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहिरों के बाद खित्ते में 600 से ज्यादा सिविल हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहिरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविजन की खबरों के मुताबिक

0: आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन तसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें खत्म हुई।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। आइए अब आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
2: ज्यादा तेजी से खेल पा रही है, स्ट्रोक्स अब इस पिच को देखकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी है। सदरलैंड नए ओवर की शुरुआत करते हुए धीमी गेंद और उसमें पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाकर मोड़ दिया उसको ऑन साइड में और 1 रन ले लिया। सेवा ब्रांट 52 रन बनाकर खेल रही है। 9वां अर्धशतक पूरा हुआ, 132 चार विकेट पर। यह 19वां ओवर चल रहा है, इसके बाद एक ओवर रह जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रन इंग्लैंड जोड़ना चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से रोकेगा, क्योंकि सेवा ब्रांट काफी देर से खेल रही है क्योंकि बैटिंग काफी ज्यादा शेष रह गई है। अब हर गेंद पर भरपूर प्रहार करने का प्रयास इंग्लैंड का रहेगा। 7.27 का रन बनाने का औसत है। सदरलैंड लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, 114 के आसपास की इस गेंद पर केवल एक सिंगल। सो सिंगल से ऑस्ट्रेलिया को अब कोई परेशानी नहीं होगी इस समय खेल के, तो बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। सर हिला रहे हैं, बैटर जिस तरह से कैंप हिला रही है उसको देख के लगता है कि निराश है। करें तो करें क्या इस पिच पर। फील्ड देखने को मिली तो आप थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट भी दायरे के अंदर है, कवर्स है शॉट वो भी दायरे के अंदर नजर आ रहा है। हवा में झूमती हुई तैरती हुई गेंद को घुमाया लगभग फुल टॉस पे और दूसरे रन के लिए इस बार जा रही है। दिशाहीन थ्रो हाफ पिच पर आया, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाती। ये होता है दबाव बनाने का नतीजा। आसानी के साथ दूसरा रन पूरा हुआ, 3 गेंदें 4 रन अब तक बन चुके हैं, 135 चार विकेट पर। ये 19वें ओवर की 3 गेंदें अब तक हुई हैं। शिवा ब्रांट 54 गेंदों पर 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैंप खेल रही है, लेकिन स्ट्राइक के समय सेवर के पास है। फुल टॉस में घुमाया एक बार फिर, उस बार तो गेंद थोड़ी गैप में जाती हुई भी दिख रही थी, इस बार सीधे फील्डर के पास। 1 रन और, हर गेंद पर रन तो बन रहा है लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इंग्लैंड को। 5 चौके लगाए हैं ब्रंट ने अपने 55 रनों में 50 गेंदों पर। विकेट के चारों ओर खेली अवश्य हैं लेकिन इससे ज्यादा तेज खेलने की क्षमता रखती हैं। इंप्रोवाइज भी किया है, उल्टे शॉट्स भी खेले हैं, रैंप और स्कूप भी खेले हैं। लगातार दूसरे मैच में उनका अर्धशतक। फिर धीमी गेंद हवा में झूलती हुई मोड़ा, बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं, कोई अवसर नहीं दे रही हैं कि बड़ा स्ट्रोक लगे, क्योंकि रफ्तार कम हो और वो भी इस पिच पर तो स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाइट हॉज सबसे अधिक रन इस टूर्नामेंट में 302, साउथ

0: भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: स्वागत है आप सभी का फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के पास 151 रनों का टारगेट है। मेरा नाम है मुनीश जौली, मेरे साथ हैं गीतांजलि सोनी और बहुत छोटे से ब्रेक में हमारे साथ बहुत बड़े दिग्गज पैनलिस्ट यहां जुड़ रहे हैं, चेतन शर्मा जी फॉर्मर इंटरनेशनल, मोना पार्थसारथी और साथ ही साथ गीतांजलि सोनी की बाईं तरफ बैठी। मैं चाहता हूं कि आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं। गीतांजलि
2: जी बिल्कुल, वैशाली माथुर हैं हमारे साथ और जैसे हमारे श्रोता जानते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला चल रहा है अभी और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों के सपोर्टर्स होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंग्लैंड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो मैच हुआ है, मैं सबसे पहले चेतन जी से पूछना चाहती हूं। चेतन, फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रेडिक्शन वाज बैंग ऑन द वे यू सेड। आपने कितना स्कोर बताया था बताइए।
3: देखिए, मैंने कहा था कि मैंने जो पूरा वर्ल्ड कप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इकोनॉमी रेट है दैट इज 6.2, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था 140-150 के बीच में, बिकॉज फाइनल्स है, फाइनल्स में ऑब्वियसली इंग्लैंड विल ट्राई द बेस्ट टू रीच 180। अगर आप 180 सोच के जा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी हुई तो 140-150, बट स्टिल आई थिंक गीतांजलि दे आर 30 रन्स लेस,
2: बिकॉज
3: डेफिनेटली इफ यू बैटिंग फर्स्ट इट शुड बी 180, बट इंग्लैंड के स्पिनर्स में अच्छा दमखम है, लेट्स सी हाउ दे कम बैक एंड विन ए गेम फॉर देयर कंट्री, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑस्ट्रेलिया यू नो दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइन अप, तो 30 रन मुझे अभी भी लगता है कम है इंग्लैंड के।
2: सो क्लियरली इंग्लैंड इज देयर एंड गिविंग अ गुड फाइट एंड वी जस्ट हैव टू सी हाउ ऑस्ट्रेलिया फेयर्स नाउ।
3: डेफिनेटली यस, एंड देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मैंने उस समय मैच से पहले वाले शो में ये बात की थी, आप एंड ऑफ द डे द बॉलर्स विन यू द गेम्स, बैटर्स नेवर विन यू द गेम्स, तो लेट्स होप कि इंग्लैंड के स्पिनर्स में जो दमखम है वो आज आए, अपना दमखम दिखाएं और ऑस्ट्रेलिया को मात दे, क्योंकि 3 बार फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी है, 2012, 2014, 2018, तो लेट्स होप 2026 अलग हो इंग्लैंड के लिए।
1: वैशाली, 150 का स्कोर इंग्लैंड ने बनाया, आप ज्यादा चाह रही होंगी, बट क्या ये फाइटिंग स्कोर है?
4: अभी इंग्लैंड की बारी बाकी है एंड वहाँ उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं एंड देखना यह है कि उनके स्पिनर्स क्या कमाल करके दिखाते हैं, वो बहुत जरूरी है। एंड 150 स्कोर अगर उनके, जिस तरह से उनके पेपर्स पे आंकड़े हैं उनके स्पिनर्स के, तो उस हिसाब से 150 भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लॉर्ड्स की पिच पे स्पिनर्स का स्पिनर्स के हाथ में जो बॉल है और वो जिस तरीके से टर्न कराएंगे आज, वो कितना मुश्किल होगा बेथ मुनी के लिए खेलना और हमारी पैरी के लिए खेलना, एलिसी पैरी, तो ये दोनों एक बॉल बैटर हैं कि उन पे ज्यादा इंग्लैंड की आंखें होंगी, नजरें होंगी कि उनको बाहर का रास्ता वो कैसे दिखाए।
1: मोना, एक समय था जब लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम 150 भी ना टच करे, 130 के आसपास, वो एक क्षण आ गया था वहां पे, लेकिन आपको लगता है एक अच्छी रिकवरी की, क्योंकि पापले उतना तो इफेक्टिव नहीं रहा इंग्लैंड के लिए, बट इट वॉज गुड रिकवरी, आखिरी के 10 ओवर में लगभग 90 टच किया उन्होंने।
5: देखिए बिल्कुल, आप जब 2 विकेट आपके 5वें ओवर में गिर गए, पावर प्ले में आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, उसके बाद जो आपकी कैप्टन है नेट सीवर ब्रेंट, वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है आज, उसके बाद मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि जो सोफी मोलिनू है, जब जॉर्जिया वेरहम इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, और आपको ये भी पता होगा कि लेग स्पिनर है और नेट को उनके खिलाफ प्रॉब्लम आती है, पिछले 5 T20 इनिंग्स में 3 बार उनको वेरहम ने आउट किया है, उसके बाद उनका कोटा पूरा क्यों नहीं कराया गया, जबकि अनाबेल महंगी साबित हो रही थी, कुछ सोफी बाद में महंगी साबित हुई, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉलिंग में अगर चतुराई से किया होता तो 130, जैसे कि आप कह रहे हैं 130 के आसपास ही इंग्लैंड का स्कोर रहता, लेकिन आखिर में कुछ फ्रेया कैंप ने अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जो ऊपर के क्रम के बल्लेबाजों को करनी चाहिए थी।
2: चेतन, बहुत ज्यादा कुछ कंसर्निंग तो लग ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, बहुत सारा ऑलराउंडर्स हैं इनकी टीम में, बैटिंग कोई कंसर्न नहीं है, कुछ ऐसा आपको लगता है कि कंसर्निंग हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए?
3: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ये टोटल जो 150 का नजर आ रहा है इट वुड हैव बीन 180, मतलब फील्डिंग की आप तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियंस ने जिस तरह की फील्डिंग की, कैचेस पकड़े। अब इंग्लैंड को भी बहुत जरूरी है कि 150, मतलब आपको वो रन्स जो 15-20 रन

0: कैसे फील्ड में रोकने हैं, मेक द लाइफ मिजरेबल फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, वो तभी हो सकता है अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे। मतलब उनको 150 बनाने के लिए 170 की बैटिंग करनी होगी, तब वो 150 बनाने के नजदीक पहुंचेंगे। इफ योर फील्डर्स बेसिकली, मैं हर समय कहता हूँ, फील्डर्स अगर अपने गेंदबाजों की मदद कर रहे हैं तभी आप मैचेस जीतेंगे। तो इस समय इंग्लैंड के पास गेंदबाज एंड द फील्डर्स, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया अपनी फील्डिंग में, कमाल की फील्डिंग है। एक कैचेस आप देख लीजिए, जैसे कैचेस पकड़े उन्होंने और जैसी फील्डिंग की है, कम से कम 20-25 रन रोके हैं, तो अदरवाइज दिस टोटल वुड हैव बीन 170 ऑड।
1: एंड पिच इज गोइंग टू बिहेव एनी डिफरेंट?
0: आई डोंट थिंक सो। इट्स ए नाइस बैटिंग विकेट, इट्स अप टू द बॉलर्स, इट्स लिटिल स्लो। आपने देखा होगा कुछ गेंदे बिल्कुल नीचे रह गई है, बिल्कुल लो रह गई है, तो जब गेंद नीचे रहती है इसका मतलब इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्पिनर्स। आप थोड़ा धीमा डालिए, गेंद तेज मत डालिए, बल्लेबाज को आने दीजिए गेंद के पास, ना कि आप गेंद को पहुंचाएं बल्लेबाज के पास। ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज हैं व्हिच आई थिंक सो द बोलिंग कोच विल बी टॉकिंग टू द गर्ल्स एंड आई होप। मैं अच्छा मैच देखना चाहता हूं। देखिए, एज ए इंडियन मेरा इंटरेस्ट तो अच्छी क्रिकेट के ऊपर है, हमारी टीम बाहर है तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि अच्छी क्रिकेट और फाइनल एक फाइनल की तरह लगे, दैट्स इंपॉर्टेंट।
2: राइट देन, टीम भले ही बाहर हो लेकिन अंपायर वृंदा राठी हैं, जीएस लक्ष्मी मैच रेफरी हैं, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन इंडिया दिखाई देती है। वैशाली, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द पार्टनरशिप जो हमने देखा शिवा ब्रांड के बारे में, और एक 85 रनों की मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी साझेदारी मैं कहूंगा कैंप के बीच में हुई। यू थिंक क्या फील्डिंग करने जब आएंगे बोलेंगे चलो हमने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर इस पार्टनरशिप के जरिए तो कर दिया, देयर इज सम न्यूज फॉर मोटिवेशन?
3: और दोनों की पार्टनरशिप, लेकिन ना स्कीवर का यहाँ पे एक बड़ा रोल है कि जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं ना उन्होंने कॉन्टिन्यूस स्कोर किया है। अगर हम उनके स्कोर की बात करें ना तो कोई भी उन्होंने 40 के अंदर कोई स्कोर नहीं किया, उससे अबव ही किया है। तो ये एक है ना बेनिफिट था इंग्लैंड के पास, और इसको थोड़ा सा ऊपर भेजते तो मे बी ये स्कोर डबल हो सकता था आज। एंड अगर हम फील्डिंग की बात करें, जैसे मैंने फर्स्ट पहले भी बोला था कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके दिखाई है।
2: दोनों क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
3: एंड इंग्लैंड अगर फील्डिंग ऐसे ही टाइट फील्डिंग करती है एंड स्पिनर उनके टाइट करके बॉल डालते हैं, लाइन टू लेंथ बॉल डालते हैं, तो हो सकता है कि वो ये किताब अपने नाम भी जीत सकते हैं।
2: लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट बन सकती हैं आज इंग्लैंड, मोना?
4: नहीं, मुझे लगता है कि जब बार बार हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से आप बैटिंग लाइनअप देखिए, जॉर्जिया वॉल से शुरू होता है, बेथ मुनी पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, फीबी लिचफील्ड 2022 में डेब्यू किया था उन्होंने, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, पहली बार फाइनल है और वर्ल्ड कप जीतना चाहती हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है, उन पर काफी दारोमदार होगा। एलिस पेरी की हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो कितनी कमाल की खिलाड़ी, एशले गार्डनर जो एशेज सीरीज हुई थी 2025 में दोनों टीमों की, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा डेप्थ है, बहुत गहराई है, और ये सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सारा अनुभव है इनके पास। आप एलिस पेरी अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखती, तो स्कोर वाकई में जो चेतन सर ने कहा 30-35 रन कम रह गया है।
1: चेतन, ऑलवेज यू टॉक अबाउट इज अ प्रेशर ऑन प्लेयर्स एंड इट्स अ बिग फाइनल्स, इट्स अ बिग टूर्नामेंट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, दे हैव डन सो वेल, दे हैव वन ऑल द मैचेस टिल हियर, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर एक्चुअली प्लेयर्स गो थ्रू?
0: गीताजी, मैं जो बात सोच रहा था ना मेरे दिमाग में, आपने वही क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, आप हमारे समय की क्रिकेट छोड़ दीजिए, आजकल आपको जब आउट होने से डर नहीं लगता ना तो आप निडर हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया के खिलाफ देखी, द वे दे एक्चुअली बैटेड, वहां से आपको अनुमान लगता है कि जब आपका डर, वो आउट होने का डर खत्म हो जाए ना तो एक्सप्लोसिव क्रिकेट आपको नजर आती है। आपने ये अंदर प्लान कर लिया है कि अगर वी आर 23 for 3 ऑल्सो वी विल गो फॉर इट। मतलब आजकल की जो क्रिकेट है वो इस तरह की क्रिकेट होगी, वो मेंस क्रिकेट है, वुमेंस क्रिकेट, डजंट मेक ए डिफरेंस, इट्स सेम, द मेंटेलिटी इज सेम। जब ये मेंटेलिटी आपकी हो जाती है तो 150 जो अभी हम पासा था शर्मा मैम बोल रही थी और मैं वही पहले बात कर रहा था कि आपको 150 की जगह 180 चाहिए था, एक क्वेश्चन चाहिए था आपके बोलर्स के लिए, बट अब आपके पास 150 है, 151 जीतने के लिए चाहिए। यू हैव टू फाइट ऑन दिस, यू हैव टू रियली फाइट, इट्स अ मैटर, आपने इतना हार्ड वर्क किया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, दोनों अनबीटन साइड्स पहुंची हैं, इतनी मेहनत करके आप पहुंची हैं, और एक मैच की वजह से ट्रॉफी निकल जाएगी हाथ से, यू हैव टू गिव व्हाटएवर यू हैव विद यू, जस्ट गो एंड डू इट।

0: राइट देन मेरे को ना लग रहा है कि ये शो जब वे बैक 1983 में अगर कोई लंचार शो हुआ होगा तो तक क्या बात की होगी वेस्ट इंडीज के बारे में। चेतन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड की विमेन्स टीम भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 की जो टीम थी उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बड़ी जल्दी से सोफी एकलस्टोन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। शी इज ऑफकोर्स द टॉप सेकेंड बोलर आईसीसी की रैंकिंग्स में, उनका इम्पैक्ट कितना होगा?
1: उनका इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्योंकि अभी तक देखा गया उनकी इकोनॉमी 6 से ऊपर नहीं गई है अभी तक, एंड वो 6-5 के बीच में ही रही है।
0: हाइट भी उनकी 6 फुट है
1: बिल्कुल, एंड वो 110 प्लस विकेट्स भी उन्होंने लिए T20 के अंदर। तो ये इम्पैक्ट ना एक बेटर है इंग्लैंड टीम के लिए, एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत जरूरी है, एंड वही आती है जो बीच में जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसके अंदर आके वो विकेट्स जो चटकाती हैं वो डिफरेंट होता है, और वहां पे उनको लाना और वो विकेट्स आज उनको वो चटकाने बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया टीम के, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो ये उनको करना पड़ेगा, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो अपना दिखाना पड़ेगा इस पिच पे आज।
2: And you know, everyone is excited because we want to see great match, as Chetan says. One thing which I really want to ask now, that Australia is very comfortable. It's England's ground and they know that, you know, they have been winning on this particular ground. What are the chances that Australia skips? Is it overconfidence or it might be like they in their mind have decided they are going to do well?
3: देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो अपने जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेलती आई है वैसे खेलेगी। आपके पास एज ए बॉलर यू हैव ए चांस बिकॉज दे लव द अटैकिंग क्रिकेट। अगर आप मेरे से इस समय ये पूछेंगे कि फेवरेट्स, मैं अभी भी फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया को मानता हूँ, तो विद 150-60-40 रेशियो इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आई विल गिव इट।
0: चेतन भैया, बड़ी जल्दी से हमको कमेंटेटर्स को हैंड ओवर करना है। आप फेवरेट तो मार रहे हो, लेकिन अंदर की कोई आवाज इंग्लैंड के लिए कुछ कह रही है?
3: आई डोंट नो, आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट इट। यू आस्क मी द ट्रुथ। 180 होता तो मैं जरूर कहता मनीष।
0: मोना, बड़ी जल्दी आपसे पूछना चाहूंगा, चार्ली डीन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट आपका मन क्या कह रहा है?
4: देखिए, मुझे अगर स्कोरबोर्ड पे बहुत बड़ा स्कोर होता ना तो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है। एक यहाँ एक एडिशनल प्रेशर तो है ही कि आपको सिर्फ 150 रन डिफेंड करने, तो उससे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा।
0: अब वैशाली, बड़ी जल्दी से योर
1: एग्री विद मोना।
0: ओके, थर्ड अंपायर का रोल प्ले कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन भाई आपका, मोना पार्थसारथी आपका, और वैशाली माथुर आपका, और गीतांजलि सोनी के साथ मैं मुनीश जौली यहाँ पे आप सभी लोगों से विदा ले रहा हूँ, क्योंकि कॉमेंट्री टीम हमारा इंतजार कर रही है अगले 20 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे विनीत गर्ग, एंड द बॉल बाय बॉल कमेंट्री इन इंग्लिश विल बी विद प्रकाश वाकनकर। टू लेजेंडरी फिगर्स अलोंग विद द स्कोर ऑफ भूपेंद्र सिंह भाटी, स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू द कमेंट्री टीम।
5: स्वागत है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर। ये दूसरी पारी 2026 के फाइनल मैच की शुरू होने जा रही है। 151 का लक्ष्य है और 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप जीत लेगा, ये स्थिति यहां पर है। इंग्लैंड प्रयास करेगा, उनका अपना मैदान है, यहां पर वो कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहेंगे। सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम है और मशहूर है कि नॉकआउट में उनके मुकाबले वो बिल्कुल एक तरफा कर देती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं विपक्ष पर। तो क्या ऐसा होगा? इस समय सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। एक रोमांच इस समय तो कम से कम है कि 151 रन है। क्या इंग्लैंड शुरू में कुछ अच्छे विकेट्स निकाल लेता है, जल्दी जल्दी कुछ उसकी विकेट उसकी झोली में आ जाते हैं तो उनके अवसर बन सकते हैं इस मैच पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप यूं समझ लीजिए नंबर 11 तक बैटिंग करती है, तो इसलिए बैटिंग की कोई कमी है नहीं। पिच में भले ही थोड़ी बहुत दुश्वारी हो कि वो धीमी है, नीची रहती है, लेकिन जिस तरह से स्टंप्स को अटैक किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने, कंटिन्यूअसली स्टंप्स को प्ले में रखा और बैटर को बाध्य किया कि वो सावधानी से खेलें, और गति का बहुत ही चतुराई के साथ लगातार परिवर्तन करना, इस तरह से करना कि पकड़ में ना आ सके, और उससे मात खाई। इंग्लैंड को शिकस्त दी उन्होंने उस पारी में, उसको बांध के रखा। 7.55 के औसत से 151 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए। जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी दोनों फॉर्म में है, और बेथ मूनी तो जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में भी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, तो उम्मीद ये की जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रकाश,
6: Well, that's what you'd expect. Stranger things have happened. But yes, one does feel this game is Australia's to lose. England, one feels, will almost have to bowl Australia out. I don't think they can defend 20 overs and limit the scoring below 151.
5: पिछले मैच में 61 रन बनाकर नाबाद रही थी बैथ मूनी, विकेट कीपर है, अच्छी कीपिंग की और कम से कम दो, एक में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका योगदान रहा, चार्ली डीन ऑफ स्पिनर वो बॉलिंग करने जा रही हैं और जब नेट सेवर ब्रांड नहीं थी तब उन्होंने कप्तानी भी की इस टूर्नामेंट में तीन मैचों में और ये अच्छा मैचअप है। दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने, पहले ही गेंद को ओवर द टॉप खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, चार रन।
7: ये लगा आभा का चौका।
6: दैट्स अ स्टेटमेंट विनीत, दैट्स द वे ऑस्ट्रेलिया प्ले राइट, ब्रिलियंट शॉट टू स्टार्ट ऑफ।
5: हाफ वॉली ऑन दी ऑफ स्टंप और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बैट का अच्छी बैकलिफ्ट, पूरा फॉलो थ्रू, अच्छी फ्लरिश, चार रन। अगली गेंद और बहुत खतरनाक ढंग से आई, गेंद ये और उंगली उठी, अराउंड, खतरनाक ढंग से गेंद मूव हो रही थी, हालांकि रेफरल लिया गया है, ऑन ग्राउंड निर्णय है आउट का, वो मद्देनजर जरूर रखा जाएगा, वो मायने रखा जाएगा और रेफरल लिया है जबकि 3 सेकंड शेष थे टाइमर पे और वेस्ट इंडीज की जो अंपायर है जैकलीन अब इशारा कर रही है हाथों से टीवी बनाकर कि टीवी अंपायर ये सुनिश्चित करे कि भाई ये निर्णय बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या वो आउट था या नहीं था। गेंद वास्तव में कुछ ऐसी अप्रत्याशित कर रही थी, चकवा खा गए थे बैटर, बैट के दूर नजर आ रही है प्रकाश गेंद।
6: Yeah, very similar to the way that she got out against India, Vineet, if you remember. Struck on the back leg, and this will be close.
5: Kim Cotton, jabki leg stump ke bahar gend tippa khaye to out nahi diya ja sakta, aur aisa hi hua hai. Achha referral, aur umpire, itna varishth umpire hai ye, Jacqueline itni varishth hai. Kam se kam senior most umpireon mein se ek hai. Anyway, the ball pitching outside the leg, और बच गए वहां पहले विकेट देने से ऑस्ट्रेलिया। बॉल सामना करेंगे अभी इस गेंद की, डीन की गेंद घूम रही है, खेला है बहुत विश्वास के साथ नहीं लेकिन पहले ही पूरा मन बना लिया था उस स्ट्रोक को खेलेंगी, कमिट हो गई थी उस स्ट्रोक के लिए और उसको बखूबी खेल भी दिया, आसानी के साथ एक रन ले लिया, 5 रन जीतने के लिए बनाने हैं, कुल मिलाकर 151 रन। मूनी और बॉल की जोड़ी मैदान पर है, ऑस्ट्रेलिया चाहे तो इत्मीनान से भी खेल सकती है क्योंकि आस्किंग रेट 7.5 के आसपास का है, 5 रन बगैर नुकसान के। अब मूनी के ही लिए डीन ने अपने को मोर्चे पर लगाया है क्योंकि बर्ट मूनी विकेट कीपर लेफ्ट हैंडर है और यह अच्छा मैचअप है ऑफ स्पिनर डीन, जिन्होंने की काफी विकेट लिए हैं, कुल मिला के चार्ली डीन अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में छाई रही है, 9 विकेट उनके खाते में इस मैच से पूर्व पहले ही है, टॉप 3 बॉलर्स में उनकी गिनती है। चार्ली डीन ये गेंद और उसमें सिंगल लेना चाहते थे, गेंद को वहीं पास में खेला था, कोई स्ट्रोक में टाइमिंग नहीं था, ज्यादा दूर गेंद गई नहीं, मुश्किल से 5 गज के फासले पर गेंद जा रही थी, ये देखते हुए पलटकर अपने बॉलिंग मार्क पे वापस आ गई। ऑफ स्पिनर हैं, राउंड विकेट बॉलिंग कर रही हैं लेफ्ट हैंडर को, इस बार क्रीज में जगह का परिवर्तन उन्होंने किया और फास्टर वन कुछ हड़बड़ाकर खेला और आमदा है, हर गेंद पर रन लेना चाहती हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इधर उधर प्लेस करके सिंगल स्ट्राइक रोटेट करके एक अवसर बनाती ही जा रही हैं और बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई बैटिंग नजर आ रही है और इस बार गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम थी, बैकफुट पे जाके खेला, हालांकि स्ट्रोक की बहुत ज्यादा टाइमिंग और प्लेसमेंट नहीं था, 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकलने की कोशिश थी, स्मिथ के हाथ में लगने के बाद गेंद छिटकी लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने उसको उठा लिया और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति।
8: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
9: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
8: तुम हो ही भुलक्कड़।
9: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
10: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
11: आभा
10: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: In women's T20 international cricket, batters ranked 1 and 2 are the Australian openers. Beth Mooney and Georgia Wall. They are the ones who've started things off to try and get Australia to their seventh T20 Women's World Cup title. Whether or not that will happen, we'll find out as Lauren Bell gets ready. She's one of England's rising stars. She comes into bowl to the left-handed Mooney. She's in, she bowls. Mooney comes down the wicket, looks to go over the offside, is beaten. The aggression from Australia up front, very visible, trying to put the England bowlers off, not letting them settle into a line and a length. How will England respond? That is the key question. Good delivery, just back of a length. She made some room, did Mooney. Looking to drive through the offside expansively. Didn't make any contact. Lucky, didn't take an edge. Nice bouncy run up to the wicket. Tall figure of Lauren Bell bowls on the pads. Follows Beth Mooney. A shy at the now strike is end. If she had struck, Georgia Wall might have been short of her ground. But as it turned out, Lauren Bell's throw was off target. Excitement early on in this Australian chase. The two batters, like two cats on a hot tin roof, want a run of every ball. She was a goner, was Georgia, if that ball had hit the stumps. Anguish on the face of Lauren Bell. She knew she had a chance there. In comes Bell again. Two dot balls to start things off. Bowls to Mooney. No timing, but she'll get that ball away just in front of short cover. They'll pick up a single. Seven without loss. Alice Capsey there charging in jersey number 28 and a run to Mooney. She goes to two. Wall is on five. Australia seven without loss, chasing 151, which I think everybody agrees, at least statistically speaking, is below par. Conversations between the England captain and the bowler now settles, and Mooney waits as Georgia Wall settles the right-hander, and Bell comes in, bowls wide outside the off stump, and the ball's been deflected off the gloves, running down towards the third boundary for four runs. By ye laga aapha ka chauka. Waiting for the umpire to signal to see whether there was anything on it, whether it's a leg bye or whatever. Four runs nevertheless. No ball to boot, because it was outside the tram line, the guiding return crease, and so that is not on the playing surface, which means it's a no ball and a free hit, just what Georgia Wall would have looked for. The batter moved to the offside, but not sufficiently, and in any case, anything that pitches outside the cut surface on the return crease is a no ball. Lauren Bell was thrown away by that movement. Comes in and bowls now, and Wall pulls handsomely. Question is, did it go all the way or did it drop inside the boundary? Looks like one bounce four, and Australia's innings gaining momentum. Ye laga aapha ka chauka. Our scorer Bhatti very keen to tell me that this was the 1,000th boundary in the T20 World Cup. Thank you. And 1,000 fours, if that means anything. I think it does to those who are statistically minded. But 16 without loss now. Australia setting the tone for this run chase. Here's Bell again. Comes in and bowls. Down the leg side, will be called wide, I am certain. We'll wait for the umpire's signal to confirm. It is 17 now without loss. Australia creating panic among the England bowlers who haven't been able to settle down. Lauren Bell bowling a no ball, not for the front foot but for direction, as Wall waits now for the fifth ball. This is an extended over, this one, and she's pulled it on. George Wall has dragged this one from outside the off stump, inside edge, smiles on Charlie Dean as well as Lauren Bell's faces, and that is the first wicket. England will need plenty more of that. 17 for one. Vineet.
5: जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आमद आती हर गेंद पे बड़ा स्ट्रोक या रन लेने की, और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, अंदरूनी सिरा लगा, स्टंप से जाके टकरा गई। बेल युवा हैं, अभी 25 बरस की, बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, हड़बड़ा गई थी जिस तरह से उन के ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बैटर, और उस

0: की वजह से उनकी लाइन बार बार वो बदल रही थी, लेंथ भी बगड़ी। शॉर्ट गेंद ये देखते हुए कि दो फील्डर बाहर हैं और मिड विकेट बाउंड्री पे कोई है नहीं, शॉर्ट गेंद की और पुल कर दी गई, और एक गेंद तो उनकी पिच से बाहर, जैसा कि प्रकाश ने बताया टिप्पा खाया, और इसलिए क्योंकि पिच के बाहर टिप्पा खाया वो नो बॉल दी गई थी। लेकिन अच्छी वापसी की है, एक विकेट मिल गया है, ये महत्वपूर्ण है। अब शिकंजा कसा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगा था कि दोनों छोर से ताबड़तोड़ बैटिंग करने का मन बनाकर मैदान पर उतरा था बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, और कुछ असर नजर भी आया इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर। वो हड़बाकर इधर उधर गेंद करते रहे, लेंथ भी चूके। मेलिनी काफी अच्छी कप्तानी करती रही हैं पिछली पारी में। इस बीच एक गेंद और इसको सीधा ड्राइव कर दिया, उस ओर कोई फील्डर है ही नहीं। चार रन स्ट्रेट ड्राइव, फोर रन्स।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: बहुत ही इत्मीनान के साथ 21 रन एक विकेट पर दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: दिलचस्प क्रिकेट। इंग्लैंड चाहेगा झोली में एक विकेट और आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया अब दोबारा सोच में लगा होगा कि क्या जिस तरह से शुरुआत की थी उसको बदल कर कुछ धैर्य से काम लिया जाए। कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर उनके सामने है नहीं, जीतने के लिए 151 रन बनाने हैं। बहुत बैटिंग उनके पास है, बेल का निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा। इस बीच गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, गेंद को अपना संतुलन नीचे करते हुए फिर खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है और वो पूरा भी हो जाएगा। 23 रन एक विकेट पर। स्मिथ बॉलिंग में परिवर्तन, चार्ली डीन की जगह लिंसे स्मिथ आई हैं, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं। ये मैचअप्स का जमाना है जनाब, तो जिस तरीके का बैटर है, अगर आपको गेंद बैटर से अलग जा रही है तो खेलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बॉलर को लगाया जाता है जो बैटर से दूर गेंद को निकाले। कुछ गेंदें बिल्कुल ग्रिप हो जाती हैं, नीची भी रहती हैं, और यह बात सही है कि गेंद वाइड थी, लेकिन उन दो कारणों की वजह से वो बोल्ड आउट हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास तो था, कलाबाजी खाई, लेकिन रोक नहीं सकेंगी ये चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मिथ ने कुछ तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप की सीध पे आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के क्षेत्र की तरफ गई, पूरी लंबाई में डाइव लगाई, लगभग गेंद तक पहुंच गई थी, एक हाथ आगे बढ़ाया लेकिन गेंद रुकी नहीं और बाउंड्री पार हो गई। अगली गेंद स्टंप्स पर, स्टंप पर अटैक कर रही है स्मिथ। स्मिथ अच्छी लगातार, कई बार उन्होंने नई गेंद का भी इस्तेमाल किया है और यही सही नई रणनीति है इंग्लैंड की, वो भी लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर को हटाया गया। थोड़ी सी शॉट नीची थी, पुल करने में थोड़ी दिक्कत तो आई, लेकिन फील्डर है वहां पर, वो उसको उठा लेंगे आसानी के साथ और केवल एक रन मिलेगा। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। डैनी थी वहां पर जो फील्ड कर रही थी, बैथ मूनी, 65 रन की आवश्यकता है 1000 वर्ल्ड कप में रन पूरे करने के लिए। एलिस पेरी का क्या कहें, महान क्रिकेटर, इनको पिछले 50 साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। या तो आप एज ए बैटर ही उनको शामिल कर लें या एज ए बॉलर, दोनों कामों को भरपूर अंजाम देती हैं। अगली गेंद को ओवर द टॉप खेला, फील्डर मौजूद है, केवल एक रन मिलेगा। स्ट्रोक के साथ दौड़ते हुए उसे एक रन को पूरा किया। और कुछ लोग उनको गैरी सोबर्स ऑफ विमेन्स क्रिकेट बुलाते हैं। तीन ओवर की समाप्ति पर 29 रन एक विकेट पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: वेरी एविडेंटली ऑस्ट्रेलिया लुकिंग टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले, दे आर गोइंग जस्ट

0: भी मिला था जब वो आउट हुए थे, तो वो इसी तरह से हुई थी कि गेंद टिप्पा खाने के बाद फंस गई, पिच में रुक गई और बाहर थी ऑफ स्टंप के, और उसमें जो मूवमेंट ऑफ नीचे भी रह गई थी थोड़ी, और फिर इस तरह से उसको खींच लिया, प्लेड ऑन हो गई और स्टंप्स पे जट के टकराई थी गेंद। लेकिन इरादे मजबूत हैं ऑस्ट्रेलिया के और इसीलिए तेजी के साथ वो करती हैं। डीन वापस बॉलिंग करने के लिए आ गई हैं, उनकी पहली गेंद को ड्राइव किया। इंग्लैंड भी स्टंप्स को अटैक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह, यथासंभव लगातार स्टंप्स की सीध में गेंद करने की कोशिश है। लेकिन युवा लॉरेन बेल कुछ ज्यादा वाइड इधर उधर की गेंदें करती रही है, अगली गेंद को स्वीप कर दिया, उस ओर फील्डर अब पहुंच रहा है, पहुंच से दूर, चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया सोच समझ के उन क्षेत्रों में ही स्ट्रोक खेल रहे हैं जिस ओर फील्डर दूर हैं या हैं ही नहीं, और वैसे भी दो ही हैं बाउंड्री लाइन के पास, एक मिड विकेट की तरफ हटकर स्क्वायर फील्डर है लेग साइड में और एक कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, और ये पावर प्ले का फायदा वो उठा रहे हैं। अभी इसमें गेंदे शेष हैं, एज ऑफ द क्रीज से ये गेंद की कट करने का अंदाज, लेकिन फील्डर दायरे के अंदर है, फाइन लेग की बाई तरफ लेकिन दायरे के अंदर, 25 गज के, कोई रन नहीं मिलेगा। दो डॉट बॉल, एक चौका, पांचवा ओवर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं 151 रन, 49 रन एक विकेट पर। अब वो लेग साइड का फील्डर अब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर कर दिया गया है, अगली गेंद को एक कदम बाहर निकला, हाफ वॉली पर उठाकर खेला, और इस बार क्या 6 रन मिल जाएंगे, 6 रन।
1: ये लगा आभा का छक्का,
0: और इस छक्के के साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ, पहले 50 रन ऑस्ट्रेलिया की पारी के, बहुत तेजी के साथ आए हैं। फीबी लिचफील्ड एक अर्धशतक पहले ही बना चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, हालांकि बहुत सारे मैचेस में वो नहीं खेली गई हैं, खिलाई गई हैं, लेकिन हौसले, क्योंकि लक्ष्य ज्यादा नहीं है, इस तरीके के कुछ स्ट्रोक लगे तो फिर चेहरे लटकते और बुझते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड को, हौसला रखना पड़ेगा। 11 रन के ऊपर से ज्यादा का इस समय रन रेट है, 11.79। अगली गेंद, और बहुत लेट के लिए, अंतिम समय तक क्रीज की गहराई में लगभग पीछे चली गई थी और लगभग स्टंप्स के करीब पहुंच गई थी, और गेंद चली ही तो गई थी स्टंप्स के पास, इस तरह से वो जो स्ट्रोक खेला था 6 रनों के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकल आना इस पिच पर, मानना पड़ेगा आत्मबल, आत्मविश्वास, संकल्प, तीनों चारों को, और नजरिया है क्रिकेट खेलने का, अपना अपना नजरिया, एक मिड विकेट और ऑफ साइड में कवर पॉइंट बाउंड्री पर दो खिलाड़ी बाहर है, बाकी सब दायरे के अंदर। धीमी गेंद, कोण बनाती हुई, एंगल डिलीवरी मिडिल स्टंप पर, उसको रक्षात्मक रूप से पुश भर कर दिया, आके दबा भर दिया, बैट से टकराने दिया, पांचवा ओवर समाप्त हो गया 55 रन एक विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में,
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Australia look to be in a real hurry here, Vineet. Maybe they've got an early flight, I don't know, 55-1. Dominating England's bowlers. The loss of Georgia Wall not putting any change whatsoever to their approach, which has been dominating. Lindsay Smith continues, pulled away towards wide-ish long on. They'll take one and the total will move up to 56. Mooney goes to 23, Litchfield on 16. And long faces in the England crowd. There are three players in this England team who have already gone through the pain of losing to Australia in a World Cup final. One of them is Heather Knight, Nat Siver-Brunt, and Heather and Danny Wyatt. This one struck her on the pad. There's a big appeal, but umpire Rati is unmoved. I think the ball probably pitching outside the line of leg stump. Looking for the reverse sweep, there was Phoebe Litchfield, making no contact. Lindsay Smith bowling and varying her pace. That's what I think England haven't done. Lauren Bell in particular has bowled pretty much at a standard pace. Smith bowls again. This one's wristily pushed away on the offside. This is turning out to be a decent start to the over, just the one run, ensuring that they try and keep the Australian batters at bay. Three balls of the power play to come. Here's Smith Bowles again, nicely holding her length back a little bit and defeating the batter in the air, but able to adjust was Litchfield, pushing it away towards wide-ish mid-on for a single. 57 for one. Litchfield 17, Mooney on 23. Two balls of the power play to come, after which England will have some relief in terms of placing a couple of fielders, and I suspect we'll see Eccleston into the attack immediately after that. Short ball pulled away on the onside. There could be runs, four runs.
1: Ye laga, abha ka choka.
5: Just a little bit of length, back and short of a length, and pulled away authoritatively by Beth Mooney. What a cricketer. In complete control and really timing it beautifully. 61 now for one, and the last ball of the power play is now coming up. Australia showing how to play the power play, and they've knocked off 61 of the target already. Nicely worked away on the onside for a single. Will keep the strike. Six overs bowled, power play complete. 61 for one. Australia in the driver's seat.
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: जानिए आभा के बारे में.
1: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: तो 6 ओवर पूरे हुए हैं, ड्रिंक्स मैदान पर हैं, खेल रुका हुआ है, खिलाड़ी अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं. चार खिलाड़ी मात्र खोए थे इंग्लैंड ने, लेकिन रन केवल 150 बना पाए थे. ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने में इस पिच पे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं. हौसला बुलंद है उनका और वो आक्रामक शैली से खेल रहे हैं. कई बार अपने स्ट्रोक्स को चेंज करना पड़ा है, चेक करना पड़ा है. क्रीज छोड़ के बाहर भी निकली हैं खिलाड़ी. बैटर्स जो इस तरह से खेलना चाहते हैं वैसे खेल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद ताबड़तोड़ रन बना दिए. इंग्लैंड ने बनाए थे 39 रन दो विकेट पर पावर प्ले में, और ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बनाए हैं एक विकेट पर. इतना फर्क है. और कहा जाता था कि बैटिंग पहले करें या फील्डिंग पहले करें, क्या सही रहेगा फाइनल्स में. और पहले बैटिंग करने का जब अवसर मिला तो पिच की दुश्वारियों को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चेंजेस, गति में परिवर्तन और स्टंप्स को अटैक करने का वो जो उनकी रणनीति थी, उसका मुकाबला ठीक से इंग्लैंड कर नहीं सकी. अपनी इनिंग्स को पेस नहीं कर पाए, क्योंकि प्रकाश केवल 4 विकेट ही गिरे और उसके बाद भी वो पेस को फोर्स नहीं कर पाए. अब यहां से ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन के लिए अतिरिक्त रात का समय जुगाड़ना चाहेंगी और इसीलिए कुछ तेजी से खेल रही हैं. स्मरण रहे कि इंग्लैंड में 9:30 बजे से पहले दिन सूर्यास्त नहीं होता, और इसीलिए पहले वनडे क्रिकेट जब शुरू हुआ तो 60 ओवर का खेल हुआ करता था. तो सूर्यास्त का समय लगभग 9:30 के आसपास का है लंदन में, जहां के दो प्रसिद्ध मैदान हैं. ओवल में दोनों सेमीफाइनल हुए और लॉर्ड्स में इस समय फाइनल चल रहा है. 151 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, और 62 रन वो पहले ही बना चुका है 6 ओवर में. बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है. क्या कर सकता है इंग्लैंड यहां से? और सो एकलस्टन की बात कर रहे थे प्रकाश वाकनकर. एकलस्टन ने वो एक शानदार कैच वोल्फार्ट का पकड़ा था जब 43 रन बन चुके थे, को विकेट नहीं गिरा था अपने कद का फायदा उठाकर. उनकी बॉलिंग भी बहुत कारगर साबित हो सकती है निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से रन बनाने पे आमदा हैं ऑस्ट्रेलिया, आज अग्नि परीक्षा होगी. बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन कैंप डीन की जगह लगाई गई, चार्ली डीन की जगह कैंप आई हैं और वो बॉलिंग करेंगे. बैटिंग अच्छी की उन्होंने आज, और देखें क्या करती हैं. लेफ्ट हैंडर मूनी सामने हैं उनके, और खेला है गेंद, स्ट्रोक को चेक किया, गेंद हवा में है, लेकिन उस ओर फील्डर है कहां, दूर से आना पड़ेगा उठाने के लिए. तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही हैं, और रन उन दो रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 64 रन एक विकेट पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर. नेट शिवन ब्रंट नॉट आउट रही 53 गेंदों पर 58 रन बनाकर।

0: और फ्रेन फ्रेया कैंप ने 28 गेंदों पे 44 रन बनाए, एकमात्र बैटर जिन्होंने कुछ हौसला दिखाया। कैंप चली उनकी ये गेंद स्टंप्स के पास से की थी, कलाइयों को ऊपर उठाकर, कोहनी को ऊपर उठाकर मोड़ा भर जगह निकाली और तेजी से दौड़कर दोनों बैटर ने अपने सिरे बदल लिए। ये जो लॉन्च फेज होता है 1 से 6 पावर प्ले में, कितने रन किस टीम ने ज्यादा बनाई है, ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले में औसतन 9.53 का औसत रहा है, इंग्लैंड का भी 8 और 9 के आसपास रहा है, दोनों शीर्ष पर रही हैं पावर प्ले की बैटिंग में। और गेंद की अंतिम समय तक प्रतीक्षा की, पंजों पर ऊपर उछली, कलाइयों को मोड़ दिया, एक रन मिल जाएगा, दो फील्डर हैं लेकिन उसको रोके उससे पहले। कैंप की ये गेंद लगभग 92 थी, स्लोअर डिलीवरी करने की कोशिश, स्टंप्स पे कर तो रहे हैं इंग्लैंड, लेकिन देखिए नजरिए का कितना फर्क पड़ता है, आप किस सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं वो फर्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का अपना अंदाज है खेल के मैदान पर, चाहे वो क्रिकेट हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो। लगातार स्टंप्स के पास आकर गेंद कर रही है, बॉटम एज लगी है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, बहुत ही फाइन, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: वॉवल सीम से की थी, गेंद की रफ्तार कम की थी लेकिन इतनी वाइड थी और इतनी नीचे रह रही थी और उसमें कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं थी, अपने बैट को दबाया उस वाइड गेंद पर, सिरा लगा, बॉटम एज निचला हिस्सा जिसको कहा जाता है, और उसको लगने के बाद लुढ़कती हुई गेंद चली गई लॉर्ड्स के उस ओर जहां की वो मीडिया सेंटर है। कैंप चली, 2 गेंदे शेष हैं इस ओवर में, लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, मिडल और लेग स्टंप की इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन में कितने रन आज इस पिच पर दोनों ही टीमों ने बनाए हैं। मूनी और लिचफील्ड की ये जोड़ी है, अब तक केवल 1 विकेट गिरा है, लिचफील्ड ने रन बनाए हैं और इस पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 50 किया था इस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में। गेंद की लंबाई कुछ ज्यादा रख रहे हैं, कोई स्विंग तो है नहीं, नॉट स्विंग के लिए कोई ऐसी रफ्तार भी है, इस बार गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, अपने आप को व्यवस्थित किया, कलाइयों को मोड़ दिया, फुर्ती में नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ताबड़तोड़ आनंद फानन में इस मैच को खत्म कर देना चाहती है, ओवर समाप्त हो गया।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर, आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: ऑस्ट्रेलिया गोइंग अलोंग एट लिटिल ओवर 10 रन्स इन ओवर, 72 for 1, एंड हियर इज एकलस्टन। First ball worked away on the onside. They've taken one. Think of the second and change their mind. Litchfield goes to 20. Australia 73 for 1 now. Required run rate just about a run a ball. And if Australia continue like this, unless there is a mini collapse and England can strike now and not just one wicket, I think England need a couple to try and come back into this game. Can Eccleston provide that? Left arm over. Experienced bowler, tossed up, turned out towards the wide-ish mid-on region for a single by Beth Mooney. More fielders in the deep now permitted, of course. 4 fielders in the ring, 5 will be in the deep. Capsey is out at long on. Eccleston bowls and driven on the offside, but straight to Nat Siverbrunt at short mid-wicket. There is no run. 74 for 1 in the 7th over, chasing 151 to notch up their 7th title. Australia this time making some room, pulled away, fine, swept beautifully. Initially I thought it hadn't been timed, but it was placed and timed well by Litchfield, and that gave up 4 more runs.
1: Ye laga abha ka choka,
6: swept very

0: Very sensible cricket. 8 overs complete, 80 for 1.
1: ओवर समाप्त हुआ है आठवां, और किसी भी तरीके का इस अनुभवी बॉलर ने गति का परिवर्तन नहीं लिया अपने इस पहले ओवर में। एकलस्टन ने 51-52-53 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही बॉलिंग की।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: अब बचे हुए रन केवल 5.92 के औसत से बनाने, यानी कि 6 से भी कम रन बचे हुए ओवर्स में उस गति से ही बनाने शेष हैं, क्योंकि पहले ही 10 के औसत से वो खेल रही हैं। पहली गेंद और उसको लगभग पुल के अंदाज में बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया, एक रन मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। 81 रन एक विकेट पर, टारगेट 151 का है। क्रिकेट से संबंधित हर व्यक्ति आपको इस समय लॉर्ड्स में दिख जाएगा, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा फैन, सब लॉर्ड्स की ओर ही तो आ गए हैं। कितना बड़ा अवसर है ये, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर। कंधे का इस्तेमाल किया पटका गेंद को गिब्सन ने, गिब्सन से लगातार बॉलिंग कराई, नई गेंद का इस्तेमाल भी किया है गिब्सन ने, आज थोड़ा देर से तलब किया है। अब 70 गेंदों पर 70 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। लिचफील्ड 25-19 गेंदों पर और मुनी ने 39 रन बनाए 26 गेंदों पर। यह 9वां ओवर है जिसकी तीसरी गेंद आ रही है। काफी स्टंप छोड़कर लेग स्टंप की गार्ड लेकर खेल रही है, सीधा ड्राइव किया, ऐसा एक बार को लगा कि टाइम नहीं कर पाई है, फील्डर ने बाउंड्री लाइन के करीब डाइव लगाई, उनसे रुके कि नहीं, 4 रन।
7: ये लगा आभा का चौका।
1: जैसे अब तो ये एक तरफा मुकाबला हो गया है, जैसा चाह रही हैं वैसा खेल ले रही हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स, और इसको पहले ही समझकर अपने आप को पोजीशन किया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बॉलर के पास से 4 रनों के लिए। और इस बार केवल एक प्लेसमेंट बहुत इत्मीनान से चलते हुए एक रन पूरा किया इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए। ये 9वां ओवर चल रहा है, 86 रन अब एक विकेट के नुकसान पर। सोफी डिवाइन, टूहू और वरिष्ठ खिलाड़ी, कुल मिलाकर 3 रिटायर हुए न्यूजीलैंड के, सूजी बेट्स भी रिटायर हुई, अलविदा कहा इस टूर्नामेंट में। कितने बड़े बड़े कैरियर समाप्त हुए। इस बार बिल्कुल स्टंप्स के करीब आ रही थी गेंद, शॉट तो थी लेकिन स्टंप से इतनी ज्यादा दूर नहीं थी, अपने पैर फैलाकर जगह निकाली उस स्ट्रोक के लिए और फिर खेला उसको ऑफ साइड में। 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी, 56, आप समझ सकते हैं, एक बाएं हाथ का स्पिनर 53 की मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था, और ये मीडियम पेसर अगर आप देखें तो ये बॉलिंग कर रही है 56 की स्पीड से। घूम कर खेला और रन लेने के लिए बाहर निकल आए, क्या इसमें रन आउट का अवसर होगा? अंपायर से पूछा जा रहा है, अंपायर आमतौर पर इस टूर्नामेंट में हमने देखा है प्रकाश, निर्णय ले लेते हैं तुरंत और बता देती हैं वहीं पर कि आउट है या नहीं है, तीसरे अंपायर के पास नहीं भेजती हैं, और लगता है कि विकेट मिल गया है वहां पर। हालांकि निश्चित रूप से यह तय कर लिया जाएगा कि सही है कि या नहीं है, अंपायर का रिव्यू इस समय चल रहा है कि ये रन आउट है या नहीं है। फिसलाया, बैट को आगे बढ़ाया, अच्छी तकनीक, ठीक उस समय जब बैट आगे सरक रहा था, क्या ऊपर हवा में उठा है, क्या ग्लव से वो जो हटाया था वहां पर।

0: पर बेल्स को जब हटाया था तब तक बैट अंदर पहुंच गया था। मुझे लगता है बैटर के पास एक अवसर बन गया है, क्योंकि बैट ऊपर भी नहीं उठा है और जब वो हटाया था तो भाई तकनीक जब आप अच्छी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पहले तो उन्होंने अपनी पूरी पहुंच में बैट आगे बढ़ा दिया और बिल्कुल नीचे घास पर चिपकाते हुए पिच के ऊपर रखते हुए उसको फिसला दिया, उनकी पहुंच बढ़ गई और इसलिए विकेटकीपर के पास जो एक अवसर था वो जाया होता रहा। हालांकि अभी प्रतीक्षा की जा रही है औपचारिक निर्णय की।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 87 for one, a close call for a run out, looking for the second run there, but going Australia's way. Lauren Bell back into the attack, replacing Eccleston, pulled away on the onside. That itself, with that single, the total moves to 88 now, and just watching that replay, very close thing, short again from 88 for one. Is where the total has moved now, requiring runs at 5.8 and over. And Australia really in complete control. Slower ball driven between the legs and past the fielder at mid-off. Four runs.
5: Ye laga abha ka choka.
0: Phoebe Litchfield really peppering that long off straight boundary. Probably her third or fourth boundary there, using her feet, keep her standing up, but that doesn't deter young Phoebe Litchfield. And Lauren Bell's been taken to the cleaners, even though she tried to bowl a slower ball there. 92 now for one, needing just 59 more runs. Slower ball, full toss, hammered away, and that will be a one bounce four at quite long run.
5: Ye laga abha ka choka.
0: Back-to-back boundaries, Litchfield on fire as well. Australia not just dominating, they are destroying England's bowling at the moment. It is unbelievable that in a World Cup final, having done the bowling bit, the Australian batters now just pulverizing the opposition with their super aggressive stroke play, and they have made the England bowling look very, very ordinary indeed. Here's Bell again, bowls, and this time on the stumps, not able to beat the fielder at mid-on. And the total stays 96 for one. 55 runs required for Australia to lay their hands on a seventh title and complete the, or rather stop the drought of silverware, ICC silverware that is, that they have had for the last couple of years. Here's Bell again in bowls to Litchfield, who's wristily driving it to wide-ish mid-on and will steal a single in front of the fielder coming in from there. 97 now for one. Litchfield 39 and Beth Mooney on 41. So these two really taking the attack to England. Great footwork, intent very obvious, not afraid, brave cricket. And as they always say, never judge a pitch till two teams have batted. Australia making this pitch look like a very good batting wicket, while England certainly struggled, and that's credit to Australia's bowlers. Here's Bell. Slower ball, cracked away into the deep cover region for a single by Mooney. She'll go to 42, and that is 10 overs bowled, 98 for one.
1: What's lying on?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: जीत की ओर कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल ये नहीं लग रहा सबके जहनों में कि वो जीतेंगे या नहीं, सवाल यह है कि कितनी जल्दी जीतेंगे। तो अब सवाल यह भी है कि अब चैंपियन टीम वही होती है जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत ज्यादा बदली है, कई बार अपने को ढालना पड़ा है, इंप्रोवाइज करना पड़ा है, अंतिम समय में स्ट्रोक को बदलना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। डाइव लगाते हुए बॉलर से छिटकी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में अपनी बाईं तरफ जाती हुई स्मिथ ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक रन मिल गया ऑस्ट्रेलिया को 99 पर। ये 11वें ओवर की पहली गेंद है, 100 रन पूरे होने जा रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 151, यानी कि अब 59 गेंदों पर मात्र 52 रनों की आवश्यकता है सातवीं बार T20 विश्व कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को। स्मिथ की गेंद ओवर द विकेट बिल्कुल स्टंप्स के पास से की थी, अब तो इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ रन बन रहे हैं और 100 रन पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे गेंद पर ये दूसरा सिंगल 10.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन, लिचफील्ड 26 गेंदों पर और मूनी 43 रन पर खेल रही हैं और लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं। पिछले मैच में 61 बनाए थे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया सभी सोच रहे थे कि जीतेगी, लेकिन इस तरह से इस अंदाज में जीत जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी, ये देखते हुए कि इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा अपने मैदान पर और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप रोक तो नहीं सकते। एक और सिंगल मिला है, इत्मीनान से अब ये हो रहा है और फाइनल मुकाबला है, लॉर्ड्स का मुकाबला है। आप विश्व कप जीतना चाह रहे हैं, जो खेमे में नॉट आउट बैट्समैन बैठे हुए हैं, बैटर्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हमें अवसर मिल जाएगा, हम कुछ बैटिंग करके दिखाएं। यहां पर स्वीप किया, गेंद कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन 4 रन अवश्य मिलेंगे। सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है, अंपायर भी पहले सुनिश्चित करना चाह रहे हैं 4 है अथवा 6 है, प्रतीक्षा करेगा, हर व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा और ये 6 रन।
5: ये लगा आभा का छक्का।
0: रिवर्स यानी कि उल्टा घूमकर खेला उसको और स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉपिंग क्रीज की सीध में उन्होंने लगा दिया ये 6 रन। और स्मिथ अच्छे अच्छे बैटर्स को छकाया है इस टूर्नामेंट में, आज भारी पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स उनके ऊपर, 6, 7, 8, 9 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं, 82.5, 11 ओवर समाप्त हो गए 107 एक विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में,
5: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 90-run partnership between young Phoebe Litchfield and the experienced Beth Mooney has powered Australia into a position where one feels it's a question of only the formalities now. In how many overs will Australia win this title and how many more wickets can England get, if any? These two are on a mission and start of a fresh over from Eccleston, lofted over the infield, beautiful shot inside out from Beth Mooney, takes her to 48, 4 more runs.
5: ये लगा आभा का चौका।
0: They're in a real hurry, the Aussie women, batting superbly, and England bowlers have absolutely no answers to how they are going to respond as Australia continue the juggernaut. Nelson on the board, 111 for 1. So most fours in this World Cup. Wyatt Hodge 42, Smriti Mandhana 30, and Beth Mooney now just one shy on 29. Eccleston in again, bowls, and a lovely ball, the arm ball just straightening and beating Beth Mooney. The first time really in this innings that we've seen an England bowler defeat an Australian batter. Beautiful ball, just went past the outside edge. Siva Brunt for a moment thought there might be an opportunity, there wasn't. Mooney waits on 48. Eccleston bowls, worked away to short mid wicket. This is good. Just two or three balls here, but certainly trying to put a little bit of a break on the Australian rate of scoring. They need much more than that, do England. They need wickets in a hurry here. Eccleston bowls, Mooney pushes on the offside. They go off for a single. Two England fielders collide. I think that's the story of England's performance today. Two fielders going for the ball and both of them running into each other. 112 for one now. That was Danny Wyatt-Hodge. 112 for one. On the offside, it was pushed away. I think that was Freya Kemp and Wyatt-Hodge who ran into each other. 112 for one. The fifth ball of the 12th over. Eccleston bowls and looking for a reverse sweep again was Phoebe Litchfield. Good take by the keeper, Amy Jones, and no runs. 95 of 61 is this partnership, dominating partnership, and Litchfield's done the bulk of the scoring. Eccleston bowls down the leg side, will be called wide, will wait for the umpire. Yes, it is. Another wide, another run. 113 for one now, and the last ball of the 12th over has to be re-bowled by Sophie Eccleston, who's gone for 14 runs so far with one ball to come. Reverse sweep attempted, and once again she misses it. She holds her head, does Eccleston, wondering how she hasn't got through. 12 overs complete, 113 for one.
4: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: तो धीरे धीरे मंजिल मकसूद की तरफ कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम. अब स्पष्ट विजेता नजर आ रही है क्योंकि केवल 4.75 के औसत से शेष रन उनको बनाने हैं. 113 एक विकेट पर, कुल 151 चाहिए जीतने के लिए. पहली बार एकलस्टन की फास्टर बॉल देखने को मिली, पहली बार उन्होंने गति परिवर्तन लिया और उसमें बीट भी किया ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर को. बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था, अच्छा बाउंस उसको मिला. 92 क्लिक्स की वो गेंद थी, नहीं तो 80 के आसपास की वो करती रही हैं. अब यहाँ से ये आप देखें कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है. मामला थोड़ा विकट है क्योंकि चार बॉलर्स ने एक एक विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए. चार ही विकेट गिरे इंग्लैंड के. दो फील्डर्स के बीच में तेजी के साथ दौड़कर, अच्छा तालमेल, सूझबूझ के साथ सिंगल दौड़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम. और इसके साथ ही मूर्नी का अर्धशतक पूरा हुआ केवल 38 गेंदों पर, 50 रन. नौवां अर्धशतक है उनका विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के खिलाफ पहला है और 31st विमेन टी20 इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं उनका अपना ये है जिसमें उन्होंने ये करके दिखाया है. और इस टूर्नामेंट में मूर्नी का तीसरा अर्धशतक है. मूर्नी ने 74 रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ, पिछले सेमीफाइनल में 61 रन बनाए ओम जी. तो कुल मिलाकर मूनी ही मुझे लग रही है मैन ऑफ द मैच होंगी क्योंकि इन्होंने ही शुरू में बढ़िया बैटिंग करके इस मैच को एक तरफा किया. क्यों, बॉलिंग में कोई एक खिलाड़ी आप चुन नहीं सकते. बैट मूनी 38 गेंदों पर 50 रन बनाकर अपने तमाम अनुभव का लाभ अपनी टीम को देते हुए 7, 10, 74, 0, 22 और 61 ये स्कोर्स रहे हैं. वाइड का इशारा वेस्ट इंडीज के अंपायर द्वारा. अब 46 गेंदों पर मात्र 36 रन की दरकार है. लिचफील्ड पलटकर लेग साइड की फील्ड का मुआयना कर रही है, देख रही है कहां फील्डर है. धीमी गेंद को खेलने की कोशिश, जाके टकराई उनसे गेंद. क्या ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि गेंद तो काफी सीधी थी लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है दोनों ही तरफ की टीमों से. शायद कुछ हाइट कम हो या, लेकिन गई सीधी थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग थी. अगली गेंद को कलाइयों के सारे सामने की ओर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास. अब आतुर हैं इस मैच को खत्म करने के लिए. हालांकि शैली शुरू से ही रही है, मुड़कर जब उसको ऑन साइड में खेलना चाहती थी निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी ये गेंद. तो सर्कल के अंदर गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री पे चली गई, बाएं हाथ से गेंद को उठाया जाए तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही है। ये 13वां ओवर चल रहा है। लिचफील्ड अब अपने अर्धशतक पे 48 रन बनाकर वो खेल रही थी, अब उनके लिए ये अवसर है कि वो अपने अर्धशतक को पहुंच सकें। पार्टनरशिप 100 रन की पूरी हुई है 69 गेंदों पे, कमाल की साझेदारी। ओ बोल्ड कर दिया, चार्ली डीन ने विकेट ले ही तो लिया, और थोड़ा सा विलंब होगा ऑस्ट्रेलिया की जीत में, लेकिन वो जो विकेट गिरा है वो बोल्ड साफ कर दिया। लिचफील्ड अपनी अर्धशतक से 2 रन से चूकी, वहां पर 35 गेंदों पर खेल रही थी और ये गेंद को अच्छा फ्लाइट किया था अबव द आई लाइन, उसको डिफ्लेक्ट भर करना चाहती थी और उनके मिडल स्टंप को ले उड़ी और वो गेंद, और इस तरह से ये दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का और 13वां ओवर समाप्त हो गया।
0: Forty-eight is what Phoebe Litchfield got. That partnership just going past 100 runs, 117 now for 2, and I suspect we'll see Ellis Perry coming into bat, unless of course the Australians decide that they want to change in the batting order. 117, Eccleston 2 overs done for 14, and Charlie Dean striking after that early wicket for Lauren Bell, where Georgia Vall dragged a ball back onto her stumps from outside the off stump. Last couple of overs, the England spinners just beginning to find a little bit of bite and make a little bit of an impact, but it's too little too late, one feels. Australia now need just under 5 runs an over, and they've got 8 wickets in hand. So the question is, how soon Ellis Perry, the champion Australian, is at the non-striker's end. First ball of a fresh over, worked away on the onside. They wanted a single. Perry wasn't interested. Mooney's on 50. And it's a question really of how does Beth Mooney play from here. Young Phoebe Litchfield, maybe that ball just keeping a little bit low as well, but aiming at the stumps and getting the reward was Charlie Dean. Kemp Bowles worked away nicely on the onside. Will it go all the way? Yes, it looks like it has. I think it's Capsey who dives over the ball. And 4 more runs to Beth Mooney and to Australia.
5: Ye laga abha ka choka.
0: 121 for 2 now. 54 to Beth Mooney. Just worked the ball away. And a pedestrian effort really in the deep. And 121 for 2 is the Australian total now. 16 fours and 2 sixes. Inside edge, fortuitous runs this time off the bat of Beth Mooney. Fortune favours the brave, they said. That's exactly what happened here. Another boundary, 4 more.
5: Ye laga abha ka choka.
0: Mooney moves to 58, Australia to 125. Now really, only the formalities remain. 26 more runs needed. And Australia will be keeping whatever it is, whatever beverage it is that they choose to have after this game, on ice and getting it ready. 26 runs required. 125 for 2. Making room again. This one was played a little bit in the air, but not carrying to the bowler, Freya Kemp. And so there's no damage done. Ellis Perry's helmet has been the topic of significant discussion. We've seen the national county cap of many a player being worn out over the years, and they're very touchy about it and they look after it well, but they also keep it with them. Now looking at the rebound of the bowler's fingers is the third umpire, Ellis Perry. Doesn't look like she was outside the crease. We're just trying to figure out whether the ball actually hit the bowler's fingers on its way or not. My eyesight certainly not as good as Vineet's. Maybe he can tell us whether he thinks the ball's hit the finger of Freya Kemp or not.
6: बहुत नजदीक तो थी उंगलियों के पास वो गेंद, लेकिन आजकल तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं बता पाती है। कितनी ही बार उसके रिप्लेस देखने पड़ते हैं, लेकिन मामला नजदीक अवश्य है। अच्छा प्रयास था।
0: मे बी दे नीड टू स्टार्ट पुटिंग अ चिप इन द क्रिकेट बॉल लाइक द फुटबॉल नाउ,
6: या
0: टू डिसाइड वेदर और नॉट द फील्डर्स टच्ड इट। हु नोज व्हाट टेक्नोलॉजी विल डू नेक्स्ट विनीत, बट एट द मोमेंट the umpire now ruled there's no damage done. 125 for 2, 14th over in progress. Perry yet to face a ball, Beth Mooney on 58, and Freya Kemp waits. And now the umpire has gone up and signaled for a television replay. What was all of that earlier? I'm not sure. Maybe they just realized that we've got so much time in this game that we might as well get a TV replay and see what happens. We saw about 20 images of that, whether or not the umpire had the bowler had touched the ball or not. Ellis Perry having a word there with the umpire. Right now they're going to use ultra edge on the finger.
6: Oh God,
0: which is not something I have seen before, but it's a fair call. I mean, you have the technology, you might as well use it. And ultra edge certainly looks clean, and what many of us felt earlier now being confirmed, not out. It almost is like take no risks, doesn't matter if the game gets held up. 125 for 2. Kemp back into the attack. Bowls to Mooney, who lofts this over the head of mid-off. And 4 more runs.
5: Ye laga, abha ka choka.
0: Not a very nice thing to say, Vinny, but I'm going to say that I think England also are in a hurry to finish this game. The way they're bowling, there's no fight. The stuffing, as they say, has been taken out of England's bowlers. Really, really ordinary bowling effort. I think it's just a question of formality now. Here's Kemp in again to Mooney, who's moved to 62. Pulls this one round, doesn't get hold of it. Off the pad, over complete. 14 gone, 129 for 2.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: शुरू से ही 10 का औसत रखा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने, और उसका नतीजा यह है 3.67 की अब आस्किंग रेट रह गई है। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कितनी 16 वर्षीय बालिकाएं हैं जिनको के डेब्यू दिया गया है, और वो आज बड़े क्रिकेटर बन के तैयार है। न मालूम 15 वर्ष की उम्र का इतना वो क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सूर्यवंशी हालांकि डेब्यू कर चुके हैं, उनको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है। हर गेंद को सिक्सर नहीं लगाया जा सकता। बड़े खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। 129 दो विकेट पर, ओवर कितने हुए हैं भाटी? 14वां ओवर है, हो चुका है, इसका मतलब ड्रिंक्स मैदान पर हैं, हालांकि हमको नहीं नजर आ रही। तो खेल तमाम संभावनाओं के साथ शुरू हुआ लॉर्ड्स के इस मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, और बड़ी हसरत के साथ। ऑस्ट्रेलिया पिछली दो बार जीत नहीं सका था, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ इंग्लैंड अपने यहाँ कभी हारा नहीं और ऑस्ट्रेलिया को कभी फाइनल में हराया नहीं, लेकिन दोनों ही टीमें विजय रथ पे सवार और परचम लहराती हुई पहुंची। कोई मैच हारी नहीं टूर्नामेंट में, और इसीलिए लगा कि टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हो, और वो भी नॉकआउट स्टेज में, तो मुकाबले एक तरफे हो जाते हैं। पिच कुछ धीमी कुछ नीची है, और अभी भी है, ऐसा नहीं है सेकेंड हाफ में या दूसरी पारी में कुछ बदलाव आया है। लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। पिच अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में नीची हो जाती है, गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है। पहले 6 ओवर में 62 रन बना डाले ऑस्ट्रेलिया ने, केवल एक खिलाड़ी को खोया और एक खिलाड़ी और खोया 7-14 के बीच में, और 67 रन और जोड़े उन्होंने। शुरू से मूनी हावी रहे, गेंद बॉलर्स के ऊपर उन्होंने जमदार प्रहार किए और बहुत ही शानदार बैटिंग करके दिखाई एक मुश्किल पिच पर। अगर अगर ऑस्ट्रेलिया ये 151 रन बना लेती है आज तो ये बेस्ट एवर रन चेज होगी T20 के फाइनल में, T20 के फाइनल में होगी। भारत जब ऑस्ट्रेलिया से खेला तो 171 जो बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को वो भी रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड चेज थी, लेकिन डीन चार्ली डीन ऑफ स्पिनर नए ओवर की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया, फ्रंट फुट पे स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, 54 मील प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी और क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी थी, कोई ड्रिफ्ट नजर नहीं आया। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर से हवा है लॉर्ड्स के मैदान पर और इस गेंद को खेला बाहरी मोटे सिरे से लगकर गेंद कवर्स में गई, एक रन बहुत आसानी के साथ ले लिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। 130 दो विकेट पर यह 15वां ओवर हुआ है जिसकी दो गेंदें अब तक हुई हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ी हसरत के साथ दर्शक मैदान पर आए और इनमें जो ऑस्ट्रेलियाई समर्थक हैं उनको निश्चित रूप से हर्ष हो रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दो अवसर गंवा देने के बाद पिछले सालों में अब फिर T20 का वर्ल्ड कप चैंपियन होने जा रहा है। 34 गेंदे।
7: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
8: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
7: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
9: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas, as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, a new chapter is being written in Shivpuri's history today. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia. Mr. Sindhya said, the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from tomorrow till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister Modi's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashwani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said, celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar began his official visit to West Asia today, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, Dr. Jaishankar said, they explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Dr. Jaishankar thanked Mohammed bin Abdul Rahman for ensuring the safety and well-being of the Indian community and appreciated his sharing of assessments on the West Asia conflict and its impact. In the ICC Women's T20 World Cup final, chasing a target of 151 runs set by England, Australia were 137 for the loss of 2 wickets in 15 overs at Lord's Cricket Ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. Skipper Natsir Brunt was top scored with an unbeaten 58 runs, while Freya Kemp made 44 runs. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian Standard Time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
10: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए अब आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
11: एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे, उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी। अगली गेंद को फिर उठाकर खेला फील्डर के पास, जाते ही जाते बुझते हुए जीए की लौ जैसे बढ़ रही है, विकेट मिल गया इंग्लैंड को और आउट हुआ चौथा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का। पेरी ड्राइव कर रहे थे, अपिश ड्राइव मिड ऑफ पर, दायरे के अंदर वो कैच हुई।
12: Good catch by Eccleston there. It was travelling, it was low, it was sharp, but Sophie Eccleston holding on to it. And a late flourish for England in terms of picking up both the said batters. But I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpire has asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vineet. So they have to have reviews.
11: आजकल इतना कुछ लगा रहता है प्रसारण पर, सैटेलाइट्स इत्यादि बुक रहती हैं और विज्ञापनों का और कमर्शियल जमाना है, लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि क्यों उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी। नो कैच एकलस्टन द्वारा। सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं, क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं। उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर, वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है, रेफरल्स में ज्यादा जाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है। एक नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी, अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रन आउट बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या नहीं लगी वो भी मॉनिटर पे स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया, जो हमारे अनुभव में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है, यूं कहना चाहिए। लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एकलस्टोन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर, जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट।
12: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत, आई कांट एक्सप्लेन।
11: सर ही तो पकड़ लिया एकलस्टोन ने अपना, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही हैं, क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए और वो है, किम कॉटन कोई मामूली अंपायर नहीं है।
0: point is, and this is something that people don't understand, what we see on the monitor is a two-dimensional image. You never can get a three-dimensional image, and the more you show it, the more the doubt goes on. And that is where technology has to be subordinate to the game. It cannot lead the game, in my opinion, but who cares?
6: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नजरिया होता है उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है और ये अलग अलग हो सकता है सब्जेक्टिव है हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहां से ड्राइव करके इस बार रन मिला है नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है
0: सॉरी विनीत यू नो इन द अर्लियर डेज बिफोर दैट रूल वाज अबॉलिश्ड देयर यूज्ड टू बी अ सॉफ्ट सिग्नल फ्रॉम द अंपायर आई थिंक दैट वाज अ बेटर वे बिकॉज देन यू नीडेड कंक्लूसिव एविडेंस टू ओवरटर्न द अंपायर्स सॉफ्ट सिग्नल But that is no longer the rule.
6: और जब वो soft signal दिया जाता था मार सुर्खियों में रही ये खबर कि soft signal की क्या जरूरत है ऊपर भेज ही रहे हैं आप तो ये चलती रहती है कश्मकश होती रहती है आईसीसी नियमों में बदलाव करती चली जाती है बहुत सी चीजें हैं जिसका अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी दफा और इतने समय तक देखने के बाद भी वो निर्णय से सब संतुष्ट नहीं है और ये है प्रक्रिया इसीलिए कि आप सही फेयर निर्णय न्यायपूर्वक उसका फैसला कर सकें और कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि यह तो तीसरे अंपायर का अपना नजरिया था कि उसने आउट दिया और ऐसा होता रहा है 17 ओवर पूरे हुए 146 तीन विकेट पर
0: सो लुक्स लाइक वी माइट बी इनटू द लास्ट ओवर ऑफ द गेम विनीत 146 फॉर 3 5 रन्स रिक्वायर्ड एलिस पेरी इज ऑन 13 एश गार्डनर इज ऑन 1 एंड ऑफ कोर्स दैट इनिंग्स फ्रॉम Beth Mooney of 64 and that partnership with Phoebe Litchfield of 100 runs really setting the tone. 48 to Litchfield. Mooney on 64. Both got out just after Australia had stamped their authority and now it looks like a pure formality. But the fact that the game has gone to 17 overs itself is a bit of a surprise the way Australia were batting. And who's going to bowl the next over? Looks like it might be Sophie Eccleston who is going to bowl out. 3 overs, 1 for 17. The best of the England bowlers, really, because if you look at Charlie Dean, 4 overs for 28. Lauren Bell, 3 overs for 28. Lindsay Smith, 4 overs for 30. ...146 for 3. 17 overs, lofted over. Pulled back in. Dragged back in probably is a better way of putting it. Limits the scoring to 2. Gardner goes to 3 and the total now 148 for 3. 2 to tie, 3 to win. 7th T20 Women's World Cup trophy awaits Australia and the celebration. Eccleston ball swept. This one's running down to the boundary. This could be it. 4 runs and Australia have won. So...
5: ये लगा आभा का चौका
0: सो एज मेनी हैड प्रिडिक्टेड विनीत इट क्लियरली वॉज ऑस्ट्रेलियाज डे दे वर डॉमिनेटिंग दे डॉमिनेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ द विमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप विद अ विन फॉर ऑस्ट्रेलिया देयर ड्राउट इज ओवर देयर सेवेंथ टाइटल इज देयर्स
6: बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है जीतना जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की और सबको लग रहा था कि इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है लेकिन उन्होंने आसानी से बैटिंग करके दिखाया दिक्कत उनको भी हुई कुछ भाग्य ने भी साथ दिया शुरू में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की स्टंप्स पे अटैक किया धीमी गेंदे की गति में परिवर्तन किए वो सब चीज़ें मायने रखती हैं कुल मिला के यही होता है कि नॉकआउट्स में अगर ऑस्ट्रेलिया है और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है तो आपको ये बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है लेकिन चर्चा क्रिकेट की जारी रहेगी आकाशवाणी आपके लिए लाता है क्रिकेट और ढेर सारा क्रिकेट तो इस प्रसारण के तुरंत बाद आप स्टूडियो से सुनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच
13: प्लेयर ऑफ द मैच

0: All right, so finally history is made, and as we always saying that this was England's ground, but now Australia has a stamp of it. Seventh time champion, Australia has won the World Cup 2026 ICC Women's, and this is actually a lovely moment for all the cricket lovers. This was actually anticipation everybody was having, and finally the news is that Australia has won ICC Women's World Cup 2026. I'm Gitanjali Soni, with me is Munish Jolly, and we have our experts.
1: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस एक बार फिर से कराते हैं. चेतन शर्मा जी, बहुत अच्छा मैच रहा ये, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं. बड़ी जल्दी से आपके, अगर मैं कहूँ कि आप इसको किस तरीके से समराइज करेंगे इस फाइनल को.
2: देखिए, जैसे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के हम बात कर रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट, मतलब कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, उन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, अपनी जो नेचुरल क्रिकेट है, दे वांट टू प्ले दैट, और वही हुआ. देखिए, आपने मैच खत्म किया, 7 विकेट से आपने मैच जीता, आपने 17.1 ओवर में उस मैच को खत्म कर दिया. तभी तो बार बार हम मनीष कह रहे थे 180, आप सोचिए 180 रन होते तो यहां पर आपको द मैच देखने को मिलता जो सभी फाइनल्स में देखना चाहते हैं.
1: राइट, देन मैं बाकी एक्सपर्ट से भी उनके व्यू लूंगा. मोना पार्थसारथी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वैशाली माथुर, मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई.
3: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम थी.
1: ओके, इंडिया. ओके, आई थॉट कि इंग्लैंड को आप ज्यादा सपोर्ट कर रही थी.
3: उनके स्पिनर्स अच्छे थे, मैं उनको सपोर्ट कर रही थी, बट बाय हार्ट मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही
1: थी. नॉट बैड.
0: एंड चेतन, एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू व्हेन वी वर सिटिंग इन द ग्रीन रूम, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉन द टॉस, इफ hypothetically if they would have chosen to bat first, I think things would have been little more interesting. What do you say?
2: Definitely they would have. जैसे उनकी बल्लेबाजी 190 रन तो जरूर बनते हैं, जो 186 की बार बार बात कर रहे थे ना गीतांजलि, वो आज रिकॉर्ड तोड़ते, बिकॉज दे गॉट ए पावर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिलीव कर रहा था कि इंग्लैंड के स्पिनर्स काफी हद तक कुछ कर पाएंगे इस विकेट के ऊपर. मुझे नहीं लगता आज, ठीक है उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन रन भी ठीक ठाक थे. मतलब अगर 180 रन बनते तो अलग बात थी, लेकिन 150 पे लड़ना जो चाहिए था इंग्लैंड को, वैसा उन्होंने लड़ाई की नहीं. उनके गेंदबाजों ने उस धार के साथ गेंदबाजी नहीं की जो हम सोच रहे थे.
1: मोना, आपसे मैं हिंदी फिल्म की, बॉलीवुड के एक पिक्चर के गाने के बोल के साथ सवाल पूछना चाहूंगा कि 7 अजूबे इस दुनिया में, आखिरी अपनी जोड़ी तोड़े से भाई टूटे ना. बिल्कुल, लिचफील्ड की जोड़ी.
4: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अब बेथ मुनी सेमीफाइनल में भी जिस तरीके से उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसको बरकरार रखा, और ये अनुभव है जो निर्णायक मुकाबलों में, जैसे बार बार हम बात करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में है तो कंटेस्ट रह ही नहीं जाती, उसके लिए आपको बहुत ही अपना ए गेम जो होता है वो दिखाना होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और किसी भी मूवमेंट से वो मैच का पासा पलट सकते हैं. और आज तो खैर इंग्लैंड ने वैसा कोई मूवमेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल ही जिस तरीके से कहा गया लोप साइडेड फाइनल रहा है, और चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दबदबा अपना बनाए रखा. और फीबी लिचफील्ड की, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा मूवमेंट था, और आज अपेक्षाओं पर पूरी खरी उतरी है. बेथ मुनी का उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है, तो ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इसने ये टूर्नामेंट जीता.
0: श्योर, हमारे स्टूडियो में हमारी डोमिनेंस हमारे कॉलर्स की हमेशा बनी रहेगी. मुझे पूरी उम्मीद है वो हमसे जुड़ना चाहेंगे. नंबर वही है 2342-1084, 2342-1085. अगर आप दिल्ली के बाहर से या फिर मोबाइल से कॉल करेंगे, 011 लगाना बहुत ही जरूरी है. क्या बात होती है हमेशा जब हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं, दो तीन चीज़ें वैशाली बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फर्म क्वेश्चन हैं. कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड टीम को, कुछ ऑस्ट्रेलियन टीम को. अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कि इंग्लैंड टीम उनकी सॉइल पे, हम कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेलेगी और 5 मैच जीते आई है, एज अ क्रिकेटर आपका असेसमेंट क्या है? क्या हो जाता है जब इतनी ज़्यादा नोन कंडीशन पे आप खेल रहे हैं, उसके बावजूद काफ़ी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस?
3: सबसे मेन होता है आपका प्रेशर हैंडलिंग, कि आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो. आप अपने ही गेम, अपने ही ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, एंड उसके बाद जो प्रेशर होता है वो आप कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्लेयर खेलना. एंड जो आपकी बैटिंग या बॉलिंग जो भी आपका पार्ट है, आपको वो प्रोफेशनली अच्छे वे में करना चाहिए, उसको पूरा 100% देना चाहिए. जो आज इंग्लैंड टीम का जो मिसिंग था, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बॉलिंग लाइन लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छा था बट बैटिंग में वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं. सो ये एक बैटिंग जो जहां पे वो लैक कर रहे हैं उसी की वजह से आज वो रनर्स अप बने हैं.
0: और इसी के साथ हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही बड़े विन के बाद पहला कॉलर हमारे इस कार्यक्रम का. नमस्कार.
5: नमस्कार मैडम
0: जी. नाम बताइए अपना.
5: मैं महाराष्ट्र कॉलर से सचिनपुरी बात कर रहा हूँ.
0: जी सचिन. अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में. सचिन क्या पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप?
5: मुझे इतना सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो अटैक है वो इंग्लैंड के पास वैसा अटैक नहीं था क्या? इंग्लैंड की कहाँ से गलती हो गई क्योंकि पहले छह ओवर में 62 रन और एक

0: टिकट था उनका,
1: जी
0: तो इंग्लैंड की बंदे गेंदबाजों से कहाँ गलती हुई, और इंग्लैंड के पास 180-150 रन का टारगेट होना चाहिए था।
1: जी बिल्कुल, ये टारगेट तो हम काफ़ी टाइम से बात डिस्कस कर रहे हैं, अगर इतना टारगेट होता तो अभी कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। चेतन, जैसा हमने कहा हमारे जितने भी कॉलेज हैं वो कॉल करेंगे, बहुत सारी एनालिसिस हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। आई थिंक राइट ऑफ द बैट आपसे डायरेक्टली मैं पूछ लेती हूँ, इससे पहले बहुत सारे और कॉलर्स पूछें, दोनों टीम्स में से क्या क्या पर्टिकुलर असेसमेंट आपके हिसाब से बेहतर की जा सकती थी, खासकर अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करें?
2: देखिए गीतांजलि, सबसे बड़ी बात इंग्लैंड की क्या थी कि आपने पार्टनरशिप पनपने दी। पहली विकेट आपने जल्दी आउट करने के बाद दूसरी विकेट की साझेदारी 100 रन की थी। देखिए जब 150 रन टोटल आपका बोर्ड पे और आप 100 रन की साझेदारी पनप देने देते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में वो धार नहीं थी। रेगुलर इंटरवल्स पे जो हम विकेट्स की बात करते हैं वो विकेट्स निकालने में आप कामयाब नहीं रहे। और मुझे लगता है कि जैसे हम मिड शो में बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा इंग्लैंड का, वो स्पिनर्स ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुझे लगता है कि जब ऐसे टोटल के ऊपर आप 100 रन की साझेदारी बनने देते आप मैच वहीं हार गए। उसके बाद ठीक है आपने लड़ने की कोशिश की बट वो लड़ाई बनी नहीं। और जो पहले उन्होंने हमारे कॉलर ने बात की 180 बनने चाहिए थे, वो डेफिनेटली, वो तो हम पहले से कह रहे हैं 180 होते माइट बी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती इंग्लैंड के लिए।
1: चेतन, बार बार ये बात आ रही थी कि आफ्टर सेवर्ड फ्यू ओवर्स थोड़े से क्रैक जरूर आते हैं ग्राउंड में तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ऐसा कुछ होता नहीं दिखा कहीं पिच में? आपको लगता है देयर वाज यू नो
2: ऐसा दिखा नहीं मुझे, कुछ स्पिनर्स के लिए मदद मुझे नजर नहीं आई। कुछ गेंदे जरूर नीचे रही थी जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय मुझे लगा कि हो सकता है स्पिनर्स को मदद मिले लेकिन ऐसा नहीं था। एंड देन सबसे बड़ी बात क्या, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने सेटल ही नहीं होने दिए गेंदबाजों को। देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम बात कर रहे थे ना पावर गेम की, ऑस्ट्रेलिया की पावर गेम की, उन्होंने कंटिन्यू रखी, उन्होंने सेटल नहीं होने दिया और मन बना के रखा था कि हम 20वें ओवर तक नहीं जाएंगे, इसको खत्म करना है तो कम से कम 15-16 ओवर में खत्म करेंगे। एंड दे फिनिश्ड इन 17.1, दैट्स अ ग्रेट थिंग।
3: तो मोना, आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी क्या खास बात है कि अपनी धरती पर तो ठीक है जीतते हैं लेकिन बाहर किसी विदेशी धरती पे जाते हैं तो वहाँ वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं?
4: और सिर्फ ये क्रिकेट तक सीमित नहीं है, अक्रॉस द गेम्स, आप क्रिकेट हो, हॉकी हो, किसी भी खेल में, आपको याद होगा कॉमनवेल्थ 2010 जब 8 गोल से ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम जीत कर गई थी, तो एक माइंडसेट है। मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्टिंग कल्चर है और वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने देश के लिए खेलना, और वो तो हर टीम करती है लेकिन इनके अंदर जो जज्बा भरा जाता है ना कि हमें उतरना है तो हमें जीत के लिए ही उतरना है, और मुझे लगता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को तो क्रेडिट जाता ही है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम खेली है, लेकिन इंग्लैंड ने जो अपने देश के अपने ग्राउंड पर खेलते हुए निराश किया उसमें बहुत बड़ा जो एक हाथ है वो मुझे लगता है, अगर आप फाइनल जैसे मैच में 16 एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें 11 वाइड बॉल दे रहे हो, मतलब 2 ओवर आपने एक्स्ट्रा दे दिए सामने वाली टीम को, तो काफी सारे एस्पेक्ट है। और फाइनल जैसे मैच में प्रेशर हैंडलिंग, जैसे वैशाली कह रही थी प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉर्ड्स पर खेलते हुए 2009 के बाद पहला वर्ल्ड कप जीतने का एक जो प्रेशर रहा होगा इंग्लैंड के ऊपर वो कहीं ना कहीं हावी हो गया, क्योंकि आखिर में जिस तरीके से विकेट थोड़े एक दो गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर वो पहले उस तरीके से हुआ होता तो शायद कुछ तस्वीर दूसरी होती।
3: जैसा कि परंपरा चलती है आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं जीत के बाद, द वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद यहाँ पे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज होते हैं ग्राउंड पे, अभी वही हम जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज हो रहे हैं। वैशाली, ऑस्ट्रेलिया की टीम की क्या खास बात है आपकी जुबानी?
5: जैसे मोना ने बोला कि माइंडसेट तो ऑफ कोर्स है ही, उसके साथ वो जो भी 100% है वो देते हैं और वो ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस से देते हैं, क्योंकि वो एक मैटर करता है कि आपने जो सीखा है, जो आपने प्रैक्टिस करी है, वो आप कितना यहाँ पर कितना अपनी टीम को दे सकते हैं, और वो 100% देते हैं हर एक प्लेयर। एक कहते हैं कि कुछ एक दो दिन किसी किसी प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। एक टीम वर्क है यहाँ पे, तो ये ऐसा टीम वर्क, एक साथ रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये बहुत रेयर किसी टीम में देखा जाता है।
4: और किसी टीम में एक मैच विनर होता है, किसी में दो होते हैं, ये तो पूरी की पूरी टीम ही मैच विनर से भरी हुई है। तो एक दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, दूसरे दिन कोई खिलाड़ी

0: लेकर ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे कुछ साल पहले, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ही वहां जाके इतना तीखा बाउंसर मारा और दो विकेट वो ले गए। आप लोग जानना चाहेंगे वो फास्ट बॉलर कौन थे?
1: बिल्कुल बताएं।
0: आपकी बाईं तरफ बैठे।
2: ऐसे एक्चुअली बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जब हमारे पास क्रिकेटर्स लाइक चेतन शर्मा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हैं जितनी हम शेयर कर सकें या उनसे जान पाएं। चेतन, बात क्योंकि आज प्रेडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होगी, बट यहाँ पर थोड़ी देर में हिंदुस्तान की जो हमारी आवाम है वो हमारी भारतीय टीम के बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहेगी। उनके लिए फेयर होगा ये बात करना कि हमारी भारतीय टीम की स्ट्रेंथ, स्पेशली हम विमेन टीम्स की बात करें, इस वक्त आपको क्या नजर आती है?
3: देखिए, बहुत अच्छी टीम है। अगर आप नॉर्मल बात करें वर्ल्ड कप में, मुझे जो थोड़ी सी समस्या नजर आई कि एक तो 16 प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स होते हैं, इंजरी की वजह से 16 प्लेयर हो, आपने चार मैचेस के अंदर ही 16 प्लेयर्स का इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब आपके पास प्लान नहीं था, या प्लान नहीं था या आपको विश्वास नहीं था प्लेयर्स के ऊपर। आप 15 के 15 प्लेयर्स चार मैचेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम आप देखते हैं, तो इसका मतलब सेटअप जो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, या प्लेयर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। इतने जब बदलाव होते हैं ना टीम के अंदर, तो हर समय क्रिकेट में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप देखिए, यही भारतीय टीम है जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आई है। यही टीम थी जो हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन, इट्स नॉट ए इजी थिंग, यू नो, उनकी बॉलिंग के खिलाफ, उनकी फील्डिंग के खिलाफ आपने 170 रन बनाए। तो थोड़ा सेटअप पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हार जीत एक पहलू है क्रिकेट का। मैं कभी नहीं कहता कि आप गए हो और आप हर समय वर्ल्ड कप जीत के आइए। देखिए, दूसरी टीम जो आई है वो भी लड़ने आई है, वो भी लड़ाई करेंगी, लेकिन जो मैंने अभी बात की गीतांजलि कि आप इतने बदलाव टीम में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि समस्या आई तो कहां आई, वो आगे गलतियां ना हो, उस पर हम कैसे सुधार करें, उस सुधार की बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना देखिए क्रिकेट की फैसिलिटीज बीसीसीआई ने आज के समय में हमारे प्लेयर्स को दे रखी है, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसी फैसिलिटीज है। आप एक सीईओ जाकर आइए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में, आपको लगेगा नहीं आप इस कंट्री में हैं, आपको लगेगा मैं कहां आ गया। मतलब वो फैसिलिटीज, मैं कहता हूं मैं गया अभी रिसेंटली, और लक्ष्मण को मैं यही कह रहा था, लक्ष्मण इज डायरेक्टर देयर, वीवीएस लक्ष्मण, कि हमारे जमाने में 50% ये फैसिलिटीज होती ना, मेरे 5 से 7 साल क्रिकेट और बढ़ जाती। ये बीसीसीआई ने किया हमारे प्लेयर्स के लिए। आपको उस जगह से हिलने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्लेयर बनना है। तो देखिए, कुछ चीजें जो हुई हैं गड़बड़, उन पे सुधार जल्द होगा, हमें नजर आएगा, बट अदरवाइज वी आर डूइंग वेल, देयर इज नथिंग टू वरी,
2: नथिंग टू वरी। तो जितने भी कॉलर्स हमें कॉल करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, नंबर वही है 2342108424, 2342108485, और किसी भी तरीके से कोई टेंशन लिए बिना आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल करें। मोना पार्था साथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, चेतन शर्मा फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, वैशाली माथुर इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ हैं, और मैं हूं गीतांजलि सोनी। मेरे साथ है मुनीश जौली, और बहुत ही जल्द प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी आपको सुनवाने वाले हैं जी, तो आइए सुनते हैं।
4: So look, 64 of just 49 balls with 10 boundaries in there. We need to get a mic to Beth at some point. There you go. You seem to like finals, don't you? You seem to step up.
5: Yeah, just happy to be here. I think, you know, it's been pretty well documented. We didn't quite make it this far in the last two ICC events. So, yeah, just woke up this morning, pretty grateful we made it this far.
4: Let's talk about how you play. First of all, with the gloves, I mean, brilliant takedown, the stumps with Danny Wyatt. And then obviously your batting. Let's talk about your keeping, first of all. What did it feel like out there?
5: Yeah, I've, you know, warmed up in the tournament. I think at the start I was a little bit rusty, but got some great support in our coaching staff with Gab Twining and Shell's back there with the gloves and Sean Flegler. So I've had plenty of help along the way. I can't take too much credit. It's been really nice to have some consistency with the gloves and to play a role in the field as well.
4: Tactical as well, to stand up to the stumps quite a lot today, it seems.
5: Yeah, you know, it's obviously a conversation that happens between me and the bowlers. I'm more than happy to do what they tell me to. You know, it's their plans and their job to execute, and thankfully they back me to clean up anything that goes a bit awry. But yeah, we're umming and ahhing about that review off Dan, but yeah, we got there in the end.
4: And 64 of 49 balls, so you went pretty quickly. Moved around the crease a lot as well. What was your game plan today?
5: Oh, I think, you know, like I spoke about in the semi-final, it's really important to settle the dugout in the power play in a big game. So I thought Polly hit the ball really well and then had an unfortunate dismissal. So, you know, Phoebe came out and nailed it from ball one. So, you know, I just kept going and tried to make sure we got ahead of the game.

0: Dale is possible. Congratulations on your play of the match today. Go and join your team and enjoy.
1: Right then, Beth Mooney, 64 off for 49 with 10 fours. Of course, there were sixes hit by Phoebe Litchfield. And of course, Vaishali, you will want to know what player you are. I think that he is a very good player, Beth Mooney. But the wicketkeeper, batter, hona, Richa Ghosh, I remember Richa Ghosh.
2: बिल्कुल और उनकी बराबरी हम कर सकते हैं क्योंकि ऋचा घोष भी आके जिस तरह से बल्लेबाजी मुनी करती है वैसे ही ऋचा घोष भी करती है दोनों पावर हिटिंग शॉट्स खेलते हैं एंड आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग करते हैं कहीं भी लेग या ऑफ कहीं भी अगर बॉल आते तो वो कोशिश करते हैं कि बॉल बाउंड्री तक ना जाए
1: और अब समय है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है उन्हें जानने का
0: As an experienced player who's been around, seen many World Cups, do you still get the same buzz? Does it feel the same today?
3: Yeah, you know, this has been on the calendar for a little while for us, so, you know, it's just nice to be part of the squad first and foremost and have a role to play, opening the batting and wicket-keeping. So, yeah, just pumped to be here. There's been a lot of evolution in this group in the last 12 months and a lot of growth and some fun times as well, so really nice that we've capped off the league today.
0: Of course, the whole tournament as well, your side has been so consistent. What do you think the key to your success has been?
3: Oh, I think just playing the game with a bit of conviction, a lot of freedom, a lot of bravery and backing each other and having lots of belief. You know, I mentioned we've got a lot of support on the sideline. Our coaching staff and support staff are amazing. Had a couple of niggles along the way that we've managed to, you know, have a full squad to pick from in a big game. And I think that, you know, we can't shy away from how important that is. So it's a great group to travel with. We've been on the road for 5.5 weeks and, you know, plenty of people have come over from halfway across the world to watch the final, some a couple of days ago, some a few weeks ago. So we feel the love and feel the support here and back home.
0: Word on your new captain as well, obviously pretty exciting to come and win this tournament. What's she been like?
3: Yeah, Soph's been amazing. She's just calm and composed and doesn't look too flustered, I think. She's put her own spin on the captaincy and been a great leader. I think she's been a great leader in Australian cricket for a long time. People probably just haven't been able to see that and we're fortunate we get to see it firsthand and, you know, the girls have really got around her and it's just amazing icing on the cake for what's been a pretty amazing tournament for us as a group.
0: Well, Beth, you've got a lot of silverware to look after. Put it in the home and cherish it well. Well done, the game.
3: Thank you.
4: Well, it's Beth Mooney all the way, a player of the series and player of the match as well. And she made 238 runs in the series. Actually, she did, Mona, very, very well.
5: बिल्कुल बिल्कुल मतलब जिनकी हम पहले से बात करते ही आ रहे हैं लगातार कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो है और उसके साथ मैच अवेयरनेस और विकेट के पीछे विकेट के आगे दोनों तरफ का जो उनका परफॉर्मेंस रहा है जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया था डैनी वेयर्ट का वो बहुत जबरदस्त कैच था और आप देखिए 3000 से ज्यादा वनडे में रन बनाए हैं 3200 से ज्यादा T20 में रन बनाए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल गोल्ड मेडल जीता था उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए तो काफी सारे अपोनेंट्स के खिलाफ दुनिया भर के मैदानों पे रन बना चुकी है कई फाइनल खेल चुकी है तो उनके लिए क्या कहा जाए सोने पे सुहागा है कि एक जीत और
4: जी बिल्कुल और हमारे पास तो सोने पे सुहागा हमारे कॉलर स्टूडियो में आते रहते हैं एक और कॉलर जुड़ गए हैं नमस्ते
6: हेलो नमस्ते
4: जी नाम बताइए अपना
6: जी मैम दिल्ली से
4: जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं
6: जी आपको डोली भाई को और मेरे दो सवाल और एक सवाल तो ये जो होती है या और भी है ना
4: जी अनफॉर्चुनेटली आपकी ना आवाज नहीं आ रही है ठीक से हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें कॉल करेंगे और आपकी आवाज हमारे हम सब सुन पाएंगे अच्छे से बट आई एम श्योर कि जितने भी लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं वो आज के खेल के बारे में जीत के बारे में और ऑब्वियसली अपनी क्रिकेट की इंफॉर्मेशन को नॉलेज को ज्यादा बढ़ाने के बारे में बात करना चाहते हैं वैशाली चूंकि सब बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेज क्रिकेटर्स की होनी चाहिए आपने काफ़ी बार प्रेशर की भी बात की और बार बार हम यही बात मानते हैं जैसे अगर आप जॉर्जिया वॉल को ले लें बहुत ही अच्छा उनके लिए तो टूर्नामेंट रहा है बट आज देखिए उनका जो रन है 9 रन बनाए हैं 6 बॉल पर उन्होंने तो ये इतने बड़े जब प्लेयर्स हो जाते हैं इतना अच्छा टूर्नामेंट जाता है और पता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, उसके बावजूद कैसे, समटाइम्स यू नो आई कांट रियली फैदम व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर इट इज.
2: आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो, लेकिन आपको एक अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है. और काफ़ी हजारों की करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, वो एक प्रेशर अलग होता है. तो आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, कहीं ना कहीं वो प्रेशर माइनर होता ही होता है, लेकिन उसके साथ हमारा सबसे मेन होता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं एज अ प्लेयर. आप विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, या फिर आप लीड कर रहे हो अपनी टीम को एज अ कैप्टन, वो सबसे मेन होता है लीड. क्योंकि एक लीडर जो होता है वो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं देख रहा, वो आप सभी अपने अलावा 10 जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी देखना है, उनकी बैटिंग लाइनअप भी करना है, एंड उसके साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, एंड कौन से बॉलर को कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा बैटर के सामने लेके आना, वो भी माइंडसेट आप देखिए कि एक कैप्टन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड करनी पड़ती है.
1: राइट देन, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, शायद आइए देखते हैं कि कहां से बोल रहे हैं. नमस्कार, स्वागत है.
6: जी नमस्कार. हेलो.
1: हाँ जी बोलिए, क्या कहेंगे और अपना पूरा परिचय दें पहले.
6: जी सर, मैं कर रहा हूँ दिल्ली.
1: जी आपकी आपकी तरफ से ना कोई थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है और आवाज आपकी जो है हम तक पहुंच नहीं रही है. तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं जिसके सारे आप हमारा इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं वो हैं 011 दिल्ली का कोड और उसके बाद 2342-1084 और 2342-1085. चेतन भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भारत ने भले ही सेमीफाइनल के लिए हम लोग क्वालिफाई ना कर गए हो, लेकिन श्री चरनी टॉप विकेट टेकर हैं 14 विकेट्स लेकर. मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो एनरी डर्कसन साउथ अफ्रीका की हैं टॉप पर, लेकिन शेफाली वर्मा दूसरे नंबर पे हैं 5 सिक्सेस के साथ. ये स्टैट्स आजकल मॉडर्न डे में बहुत काम कर रहे हैं. और सबसे ज्यादा चौके अगर देखे जाएं तो स्मृति मानधना तीसरे स्थान पर हैं, अ ग्रेट हिटर, अ वेरी एलिगेंट प्लेयर, 30 चौके उन्होंने लगाए हैं. तो जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहा मैं चाहूंगा कि इन तीनों उपलब्धियों के बारे में आप कुछ कहें.
7: देखिए सबसे बड़ी बात चरनी की जो आपने बात की कि जिस समय पर उन्होंने गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की. आप शुरू में भी गेंदबाजी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में आकर एज ए स्पिनर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए. और चरनी ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को संभाल कर मतलब ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया कि कुछ मैचेस आप जीत पाएं. और शेफाली और आपने स्मृति की बात की, देखिए वो अपने आप में ही अगर आप दोनों ओपनर्स की बात कर रहे हैं और दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं तो वहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय टीम अगर कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है तो मिडल ऑर्डर वो सक्षम नहीं रह पाया, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही. आप ऑन एंड ऑफ अगर रन्स बनाते हैं, ऊपर से भी ऑन एंड ऑफ रन्स बनाते हैं. स्मृति की मैं बात करूं, स्मृति के मैचेस कुछ बहुत अच्छे गए, कुछ एकदम गिर गए. लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मनीष, आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स को, कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. इतने देखिए वर्ल्ड कप आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप आ जाते हैं, 2 साल के बाद आपको वर्ल्ड कप मिलता है. हमारे समय में 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता था, 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था. कितने ऐसे सुपर स्टार्स हैं इस कंट्री के अंदर जिन्होंने 10-10 साल 12-12 साल क्रिकेट खेली है लेकिन वर्ल्ड कप एक नहीं खेला. देखिए हो जाता है कभी कभी, वर्ल्ड कप के समय आप फॉर्म में नहीं थे, टीम में नहीं आए. तो जब वर्ल्ड कप में आपको मौका मिलता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सभी की, और वहां पर फेलियर्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते. देखिए आपको मिलने 5 या 6 मैचेस हैं, अगर उसमें से 2 मैच या 3 मैच एज ए प्लेयर आपके खराब हो गए तो टीम को बहुत नुकसान होता है. वही हुआ भारतीय टीम के साथ. अगर आप आंकड़े देखेंगे इंडिविजुअल बहुत अच्छे नजर आएंगे, जब आप कंबाइन चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का डाउनफॉल कहां हुआ, ये रीजन था कि आपने एक मैच में बहुत अच्छा किया, 2 मैच खराब हो गए, वो 2 मैच भारतीय टीम हार गई, तो वो समस्या आई आपके साथ.
4: जी, और इस वक्त उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर जब कॉल करते हैं उनको कोई समस्या ना आए, बिल्कुल क्लियर उनकी आवाज हम तक पहुंचे. हेलो.
8: सबको नमस्कार.
4: नमस्कार.
8: मैं वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ.
4: वेंकट सर कैसे हैं आप?
8: जिला सूर्यापेट तेलंगाना से.
4: जी वेंकट, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं.
8: चेतन जी आपसे मेरा सवाल है.
7: जी बताइए.
8: नमस्कार. पहले
7: नमस्कार जी.
8: ऑस्ट्रेलियन टीम ने चैंपियन की तरह खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया, पहले इनको कांग्रेट. और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेन्स हो क्या वुमेन्स हो, गैप्स में शॉट्स ज्यादा खेलते हैं, हवाई शॉट्स बहुत कम खेलते हैं. हमारी टीम मेंस हो या वुमेन्स हो, हवाई शॉ

0: अधिक से अधिक हवाई शॉट्स खेलते हुए आजकल विकेट्स खो रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये तो मेरा क्वेश्चन है आपसे।
1: नहीं जी, आपका प्रश्न देखिए, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स अगर आप खेलेंगे, रन्स बनाएंगे, लेकिन मैं आपके थोड़े से नॉलेज के लिए डाल दूं कि T20 दो लगातार दो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जीती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती है, तो भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेलती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन भारतीय टीम अगर अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेट्स सपोर्ट आवर इंडियन टीम, बिकॉज अगर हम अपने इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। मेंस क्रिकेट की बात करें, पिछले दो साल के चैंपियंस कौन है? भारतीय टीम है, और हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी हाल ही में 50 ओवर्स मैचेस जीत के आई है। ठीक है, वन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इट हैपन्स, नथिंग टू वरी अबाउट। हम जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा हम तारीफ करेंगे, अगर भारतीय टीम भी अच्छा खेलेगी वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट।
2: जी बिल्कुल, और जब भी हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हवा में खेलते हैं, एक ये जरूर मोना बहस छिड़ जाती है कि T20 फॉर्मेट और वन डे फॉर्मेट दोनों बहुत ही डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि हम लोग T20 में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, वन डे में टिक कर खेलना पड़ेगा, क्या सेम प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में खेलें या फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, T20 में यंग अलॉट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर है?
3: देखिए, T20 निश्चित तौर पर कि आपको एक ही स्पेल में मैच का रुख बदल सकता है, आपको आते से ही पहली गेंद से मारना शुरू करना पड़ता है, और 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें आपको टिक कर खेलना है। लेकिन अभी आप ज़्यादातर टीमों को देखिए तो जो फलक्रम होता है, जो कोर ग्रुप होता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर हम अपनी महिला टीम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही टीम है, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवरों का। तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए आप, कि आप वो T20 में भी आपने देखा IPL में किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे अब तो वो रिटायर ही हो चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अच्छी प्रतिभा है तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। ये जरूरी कतई नहीं है कि T20 के लिए अलग टीम हो, और लेकिन जब बात होती वर्कलोड मैनेजमेंट की, वहां ये बात आती है कि जो अलग अलग की रेस्ट की जरूरत है, आप एक सीरीज खेल रहे हैं दूसरी सीरीज नहीं खेल रहे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर आता है। लेकिन आप जो अगर ये कहें कि एक खिलाड़ी में प्रतिभा है कि वो सिर्फ T20 खेल सकता है और वो वनडे नहीं खेल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है।
2: क्योंकि अभी रिसेंटली हरमनप्रीत को लेकर काफी चर्चा हुई कि वेदर शी इज फिट फॉर T20 एंड शी शुड बी स्टिकिंग विद ODI।
3: देखिए, जब हमारे यहाँ फैंस जो होते हैं ना, वो सिर पे भी बिठाते हैं और क्रूअल भी बहुत होते हैं, और मेमोरी स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भूल जाते हैं कि टीम वर्ल्ड कप विनर टीम है, और अभी बात होने लगी कि रीथिंक नहीं करना, रीसेट करना है इस टीम को, और हरमनप्रीत टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो आखिरी मैच था उसमें उनकी ही इनिंग थी कि इंडिया 170 तक पहुंच सकी है। तो ये सब तो चलता रहेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं, और जो अक्सर मैं सुनती हूं खिलाड़ियों को, चेतन सर बिल्कुल इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि जो मैदान के बाहर का नॉइस होता है वो हमें अफेक्ट नहीं करता, तो ये जो नॉइस है वो सोशल मीडिया का नॉइस है, वो मीडिया का नॉइस है, तो वो प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा, उनका फोकस जो रहता है वो अपने प्रदर्शन पर रहता है, और कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का हो वो हारने के लिए कभी नहीं मैदान पे उतरता।
2: वेरी ट्रू।
4: वैशाली, आप कुछ कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली हो रहा है प्लेयर्स के लिए, उसके बाद चेतन भाई बोलेंगे।
5: एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये देखा जाता है कि जैसा आप दिखाते हैं वैसा आपको समझना पड़ेगा, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे कैसा पड़ रहा है या लोगों के पे कैसा पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ आता है कि किस प्लेयर ने कहाँ पे कैच ड्रॉप किया, कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, या बैटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर बैटिंग जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि किस वे में हम बॉल स्विंग हुआ, कितना हुआ, एंड उसके बाद अगर हम विकेट कीपिंग की भी बात करें तो वहाँ पर भी हम जज कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि किस वे में कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के लिए लायक है और कौन नहीं है, तो वो हमारी जजमेंट देखने से, मैच को देखने से होती, नॉट ऑन द शॉर्ट रूल्स देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते हम।
2: जी जी, बिकॉज चेतन आप तो बहुत ही इंटेंसली मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, प्रो एंड कॉन सोशल मीडिया के काफी हो सकते हैं, और जैसे मुना ने बोला कि ज्यादातर जो है वो जीरो नॉइस कर देते हैं क्रिकेटर्स, वाकई ऐसा हो पाता है? बिकॉज दे एवरीबडी हैज अ मोबाइल, ऑल्दो हमने सुना था कि अलाउड नहीं होता, बाकी आप ही ज्यादा बता सकते हैं कि कितना मोबाइल यूज कर सकते हैं।
1: देखिए, मुझे नहीं लगता कोई अफेक्ट करता है सोशल मीडिया, या मीडिया को कोई चीज अफेक्ट करती है प्लेयर्स को, और ना ही ध्यान देने की जरूरत है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करती। बिकॉज अगर आप देखेंगे 90% चीजें जो चल रही होती है मार्केट में, बिकॉज आई वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रशियन सेलेक्टर्स, तो 90% चीजें होती हैं वो मतलब आसपास नहीं होती जो अंदर चीजें हैं, तो वो इसलिए प्लेयर्स को मालूम होता है कि जो चीज चल रही है, इवन सेलेक्टर्स को मालूम होता है जो चीज चल रही है वो आसपास नहीं है, बिकॉज मेन चीज तो मालूम ही नहीं है, और नहीं कभी वो जिंदगी में बाहर आएगी और क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस, बिकॉज अभी जैसे मैं मोना जी अभी बात कर रही थी हरमनप्रीत का, हरमनप्रीत इज मतलब शी इज ए लीडर, शी इज नॉट अ कैप्टन, शी नोज हाउ टू लीड ए साइड, एंड कैप्टन और लीडर में, कैप्टन तो कोई भी बन जाता है, लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है, वर्ल्ड कप्स जताने अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है। हिंदुस्तान इंडिया की अगर आप बात करें, कितने साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने कैप्टन हैं जिन्होंने हमें ICC वर्ल्ड कप जितवाया, कपिल देव इज नंबर वन, नंबर टू इज महेंद्र सिंह धोनी, नंबर तीन इज रोहित शर्मा, नंबर चार इज सूर्य कुमार यादव, और हाल ही में अभी कैप्टन बने थे, और वो बने ओनली 4 कैप्टन इन सो मेनी ईयर्स। तो कैप्टन्स तो बहुत बने हैं, लीडर्स बनना बहुत मुश्किल होता, तो कभी कभी जब पब्लिक उठकर बात करती है ना हमारे लीडर्स के बारे में, दुख लगता है। देखिए, बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है कि अभी आप जिताकर आए तो आप राजा हैं, नहीं जिता के आए तो आप रंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड सपोर्ट द गेम को सपोर्ट करें, और हार को कैसे आप स्वीकार करें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार जीत पहलू है स्पोर्ट्स में, हर समय आप जीत नहीं सकते। आज ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना अच्छी खेल रही है, अगर नहीं तो हम कहें नहीं वो अच्छे नहीं खेले, इंडिया अच्छी खेली थी लेकिन वो किस्मत खराब थी, इंडिया हार गई। नो, ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट, दे डिजर्व टू विन, दे वॉन इट, दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप, एंड दैट शुड कम इन आर फैंस कि नहीं अच्छा है ठीक है, हाँ जो गलतियां वो तो हम बोल ही रहे हैं, गलतियों पर यू हैव टू गो बैक ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं इंडियन टीम के साथ, वुमेन्स इंडियन टीम के साथ, और यू हैव टू गो ऑन द बोर्ड एंड रेक्टिफाई थिंग्स, दैट्स इट।
4: राइट, देन याद दिला दें कि ये जो डिस्कशन आप सुन रहे हैं, इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, और ये डिस्कशन जो है ये वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। 150 रन बनाए थे इंग्लैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया, 17.1 ओवर में ये मैच खत्म कर दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वो टीम जिसने अनबीटन रन रखा अभी तक, इंग्लैंड ने रखा था साल 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार ऐसा किया है कि पूरे वर्ल्ड कप में वो एक भी मैच नहीं हारे, 2010 में, 2023 में और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन वो जीते हैं। चेतन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी हमारे साथ मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ हमारे इस पैनल में जुड़ी हैं, और मुझे लगता है गीतांजलि पैनल में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो है हमारे नए कॉलर, और देखते हैं कि वो कहां से बोल रहे हैं।
2: हेलो हेलो,
4: राइट देन आई थिंक थोड़ी देर में उनके पास आते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ टेकअवेज हो वैशाली, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेज की बात करें तो हम दीप्ति की वो परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक धुआंधार गेंदबाजी की, 5 विकेट ली, बेस्ट बोलिंग एनालिसिस उनके बन गए, मेरे ख्याल से उससे बेहतर कर तो सकती हैं, लेकिन यादगार वो रहा। श्री चरणी भी 4 for 19, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कप अगर हम बोलर्स की बात करें तो, ये एक अचीवमेंट है भारतीय बोलर्स के लिए।
5: बिल्कुल, और राधा यादव भी है, आप से आप ऐड करना भूल गए उसे भी, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट। एंड वहां पर दीप्ति शर्मा ने, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की थी। तो यहाँ पर दिखाता है कि आप जब आपका कॉन्फिडेंस अप होता है तो आप कैसे अच्छी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कि दीप्ति

0: शर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फील्डिंग में दी एंड उसके बाद उनकी बैटिंग में भी हुआ। एंड अगर हम मैं बात करूँ श्री चरणी की, एक यंग प्लेयर है एंड वुमेन टीम के अंदर ऐसा यंग प्लेयर राधा यादव के बाद, जो राधा यादव एज अ बेस्ट फील्डर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर बोली जाती है, लेकिन अब एक और नाम जुड़ गया श्री चरणी जो बेस्ट बॉलर बोली जाती है। दोनों यंग प्लेयर्स हैं, तो अब आने वाले टाइम पे यंग प्लेयर्स काफी अच्छा खेलेंगे और उनका कहीं ना कहीं दबाव बनता रहेगा। और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है उनको, क्योंकि उनसे जो एक्सपीरियंस उनको है वहां से वो उनको गेन करना भी बहुत जरूरी है।
1: मोना, जितने भी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, रेप्यूटेड टूर्नामेंट होते हैं, इनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत बात होती है कि दे कम आउट विद अ ब्यूटिफुल स्टोरीज। और यू बींग सच अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग लवली स्टोरीज टू टेल। कोई ऐसी आपकी फेवरेट क्रिकेटिंग स्टोरी जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है, आप शेयर करना चाहें ऑन दिस प्लेटफॉर्म?
2: देखिए, ऐसी तो बहुत सारी है। जब हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था तो काफ़ी प्लेयर्स के बारे में स्टोरीज आई थी। मुझे ऋचा घोष का याद आ रहा है कि जब वो खेलना शुरू किया था सिलीगुड़ी में, तो कोई लड़कियां वहाँ खेलती नहीं थी, लड़कों के साथ वो खेलती थी और उसी से उन्होंने अपने खेल में वो ताकत पैदा की। उस तरीके की वो शॉट लगाती थी और रॉयल बंगाल टाइगर का टैटू बनाया था उन्होंने अपने हाथ पर कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो काफ़ी सारी, जब आप जीतते हैं तो बहुत सारी कहानियां आपकी सामने आने लगती हैं और बहुत मोटिवेशन। अभी एक क्रांति गौड़ की मैं स्टोरी सुन रही थी कि उनकी मदर को उनकी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी एक क्रिकेट किट खरीदने के लिए। तो कहां, हमने सफलता हम सब देखते हैं लेकिन उसके पीछे कई लोगों का जो योगदान होता है, कई सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
1: जी, आई एम श्योर हम लोग पूरी रात अच्छी अच्छी स्टोरी सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में वो अपनी भी स्टोरीज बताना चाहेंगे। एक और कॉलेज जुड़ गए हमारे साथ। हेलो,
3: नमस्कार सर। मैम
1: जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
3: हम आकाश कुमार बोल रहे हैं बिहार पूर्वी चंपारण से।
1: जी आकाश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
3: सर मेरा पहला सवाल है सर कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड का फाइनल जब होता है सर, उसका भी दबाव से इंग्लैंड के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया का दबाव रहता है, इसी वजह से एक तरफा मैच चला जाता है क्या?
1: जी एक्चुअली हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में, लेकिन एक चीज मैं चेतन जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले कहा आप सिलेक्टर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर रहे हैं और बहुत सारे अभी भी मेंटरिंग आप बच्चों की करते हैं, इतने सारे जो आजकल कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें लोअर स्ट्राटा, जिसे अभी जैसे बता रही थी मोना कि कैसे जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते, हाउ दे गो टू एनी लेंथ टू बी अ क्रिकेटर, तो इसमें आप कैसे, हाउ यू हैव दैट आई, द कीन आई टू फाइंड आउट द टैलेंट, व्हाट्स द प्रोसेस? पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, द यंगस्टर्स हु वांट टू रियली कम इन, दे कांट रियली अफोर्ड मच, व्हाट एग्जैक्टली वुड यू लाइक टू टेल देम?
4: देखिए आजकल अगर टैलेंटेड क्रिकेटर है कोई, वो आपकी आंखों से नहीं दूर नहीं होगा। अगर आप बेशक जितने मर्जी बच्चों के बीच में हैं तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है। कोचेस की आंख इतनी अच्छी होती है कि इट टेक्स ओनली फॉर ए बेटर, मतलब 6-7 गेंदों में समझ आ जाती है। देखिए क्या है कि एक जो हुनर है ना वो ऊपर वाला आपको देता है और देन उसको तराशता एक कोच है। तभी तो कहते हैं ना, हीरे को तराशता कौन है, तो वो कोच है। तो वो आपका टैलेंट नहीं छुप सकता और टैलेंटेड जो बच्चा है वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इमटेरियल आजकल देखिए बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर जाकर बच्चा खेल सकता है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे को लेकर कोई ज्यादा समस्या है कहीं भी। अगर अच्छा क्रिकेटर है उसको कोई भी अपनी अकेडमी में, या मतलब मैंने जितना आज तक सुना है, बिकॉज जितना मैं सुनता हूँ बहुत क्रिकेटर्स की है, दे लव टू हैव गुड क्रिकेटर, बिकॉज सबको तराश के देश के लिए तैयार करना है, उनका नाम होता है, कोचेस का मेहनत करते हैं। देखिए आसान नहीं होता एक प्लेयर को छोटी उम्र से बड़ा तक करना और वहां जाकर देश के लिए खेलना, बिकॉज एंड ऑफ द डे ओनली 15 प्लेयर्स सिलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री। लाखों करोड़ों बच्चों में से 15 ऊपर जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है,
1: मैमथ टास्क।
4: तो वो जो टैलेंटेड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आजकल बहुत स्कूल क्रिकेट भी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एक जमाने में अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। तभी मैं हर युवा बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहता हूं कि देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब इट जहां आपको मिलती है। इतनी क्रिकेट अवेलेबल है आज के समय में यंगस्टर्स के लिए कि यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। और जब से ये 3-3 टीम्स बनती है, आप देखिए आईपीएल के साथ 3 टीम्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज अपना अपना टैलेंट दिखाने के लिए, देन अगर उसके बाद भी आप नहीं ब्रेक इन कर सकते तो मतलब या तो आपके कहते ना किस्मत में नहीं लिखा हुआ और या फिर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं। तो अदर
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात के 12 बजे हैं। मीडियम वेव और एफएम पर हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर हमारी प्रथम सभा एक साथ आरंभ होगी।

सर रामपुर केंद्र है। रात के 12 बजे हैं। मीडियम वेव और एफएम पर हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर हमारी प्रथम सभा एक साथ आरंभ होगी।